0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।
3: तेरी याद सताए तो हम खाटू जाएं, तेरे सिवा शाम बता हम कहां जाएं।

गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: और है ना एकदम ऐसे ऐसे चल रहा था जैसे गिर ही जाना।
1: तो तुम लोग क्या किया?
0: कुछ नहीं, फिर लंच ब्रेक हो।
1: अच्छा खाओ खाओ।
0: माँ कल क्या खाएंगे?
2: भगवान खिलाएंगे वही
1: खाएंगे।
3: और फिर जशोदा माँ ने उसके मुंह ऐसे खोला और देखा उसके मुंह के अंदर एकदम विश्व ब्रह्मांड पूरा।

0: मैं हर पराजय की विजय, मैं हर निराशा का निवारण। मेरी करुणा है शाश्वत, मेरी कृपा है सनातन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

नमस्कार, आकाशवाणी पर प्रस्तुत है आज की ताजा खबर नैन्सी कुकरेती के साथ। हिमाचल से खबर आई है कि रामपुर से रिकोंग पीओ जाने वाली एक बस निगुलसरी में भूस्खलन की वजह से दुर्घटना की शिकार हुई। इसमें 22 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई और अनुमान है कि ये संख्या बढ़ सकती है।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। अब आप कुछ ही पलों में समाचार सुनेंगे।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य
5: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में।

0: समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना का पहला चरण वाली 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले नागरिकों के सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। 1 अक्टूबर को संदर्भ तिथि मानकर लद्दाख में जनगणना 2027 पूरी हो जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: लद्दाख देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है, जहां जनगणना 2027 का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अंतर्गत जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर तक होगी। स्वगणना आज से शुरू हो रही है। लद्दाख में पूरी आबादी को शामिल करने के लिए करीब 637 गणना ब्लॉक बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जनगणना संचालन अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि सितंबर में जनसंख्या गणना कराने का निर्णय क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी, दुर्गम इलाकों और पहुंच को देखते हुए लिया गया है। जनसंख्या गणना में आबादी के वितरण, जनसांख्यिकी संरचना, शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों, पलायन, दिव्यांगता, भाषा, प्रजनन और आबादी से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जाएंगी। जनगणना 2027 डिजिटल माध्यम से कराई जा रही है। यांगचेन डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की मंजूरी के लिए सिफारिश की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने बताया है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्किंग प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। ये जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने संसद में हाल ही में संपन्न मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में लिखित उत्तर में दी। इसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक योजना और अवसंरचना परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ लाना है। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC JSSC भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
2: JPSC JSSC अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट टिक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मध्य प्रदेश के इंदौर में देश में पहला वर्चुअल चिड़ियाघर शुरू किया है। इसके साथ ही इंदौर प्राणी संग्रहालय में 14D सिनेमा थिएटर और वर्चुअल जंगल सफारी की सुविधा भी शुरू हुई है। एक रिपोर्ट।
3: करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से PPP मॉडल पर 14D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी तैयार की गई है। वर्चुअल जंगल सफारी में लोग तकनीक के जरिए जंगल और वन्य जीवों का आभासी अनुभव ले सकेंगे। वहीं 14D सिनेमा में दर्शकों को फिल्म देखने का अलग अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन सुविधाओं का कल लोकार्पण किया और स्कूली बच्चों के साथ 14D सिनेमा में फिल्म भी देखी। इन नई सुविधाओं से बच्चों और पर्यटकों को वन्य जीवों और प्रकृति को तकनीक के जरिए समझने का मौका मिलेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान के 5वें चरण के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की प्रगति केवल सामूहिक संकल्प और एकता की शक्ति से ही संभव है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि यही भावना भारत की प्रगति और समृद्धि की मजबूत नींव है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 011-23-31-04-81 या 23-71-17-17 या 23-71-71-06 और 23-31-44-44। व्हाट्सएप नंबर 9289904044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज पटना में चुनावी साक्षरता क्लब का शुभारंभ करेंगे। इस पहल को चुनावी साक्षरता, डिजिटल सहभागिता और लोकतंत्र में नागरिकों की सार्थक भागीदारी को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। उड़ीसा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
4: राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है और भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर में राहत और बहाली के काम में तालमेल बिठाने के लिए 3 IAS अधिकारियों को तैनात किया है। मछुआरों को कल तक समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। बालेश्वर जिले के जलेश्वर में लगातार बारिश के कारण एक दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। मयूरभंज जिले में रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू हो गई है। पुंछ जिले की मंडी तहसील में बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की 12 दिवसीय ये वार्षिक यात्रा 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। एक रिपोर्ट।
5: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को कड़ी सुरक्षा के बीच पुंछ के लिए रवाना किया। राजौरी और पुंछ जिलों में यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुंछ जिला प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अग्रिम पंजीकरण की सुविधा देने के लिए एक विशेष पोर्टल भी शुरू किया है। समुद्र तल से करीब 4,600 फीट की ऊंचाई स्थित बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में स्वयंभू सफेद पत्थर का शिवलिंग है। यात्रा से जुड़ी सहायता के लिए श्रद्धालु जम्मू यातायात नियंत्रण इकाई से 0191246732 और श्रीनगर यातायात नियंत्रण इकाई से 0194247987 पर संपर्क कर सकते हैं। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं कृष्णकांत।
6: BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। भारतीय खिलाड़ी आज से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। महिला डबल्स में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज से भिड़ेंगी। पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गौले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: धन्यवाद प्रियंका। वंदे मातरम पर तीखी तकरार और UGC नेट पेपर में गड़बड़ी से जुड़े खबरों को आज हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, आजादी के उत्सव के बाद सत्ता और विपक्ष में सियासी संग्राम, कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम के गायन के बीच टोका टाकी, भाजपा बोली माफी मांगे। रेलवे स्टेशनों के पानी में जहरीले बैक्टीरिया मिलने की CAG की रिपोर्ट के बाद नवभारत टाइम्स ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस बयान को सुर्खी दी है कि रेलवे करीब 20,000 जगहों पर नया टैंक टू टैप पानी फिल्टर सिस्टम लगाएगा, पुरानी टंकियां बदली जाएंगी और नियमित जांच होगी। 5 बार के तृणमूल विधायक आशीष बनर्जी के दफ्तर में खुदकुशी की खबर को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट हटाने की वजह जान सकेंगे यूजर्स। अमर उजाला की सुर्खी है, लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद बड़े सुधार की चल रही है तैयारी, छोटे शहरों में JEE नीट CUET के मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलेगी सरकार। पंजाब हरियाणा सहित 7 राज्य साथी पोर्टल से पायलट प्रोजेक्ट में 21 लाख बच्चे ले चुके हैं कोचिंग। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, कभी नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ रहे बस्तर में आजादी के बाद से पहली बार तिरंगा फहराया जाना और प्रधानमंत्री मोदी का अपने संबोधन में युवा कार्यबल पर जोर देना स्वागत योग्य है, लेकिन विकसित भारत का लक्ष्य तभी अर्थपूर्ण होगा जब विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। दैनिक भास्कर की यह खबर ध्यान खींचती है, ना इंटरनेट ना बिजली, दीवारों पर ही नोट्स तैयार किए। राजस्थान के बाड़मेर और आसपास के जिलों के करीब 18 गरीब होनहारों ने नीट क्वालिफाई किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
9: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
8: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
10: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: ょうか。
1: कैसे हाल चाल है, मेरा नाम आरजे आनंद है, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 आप सुन रहे हैं आपके शहर का ब्यूटीफुल रेडियो स्टेशन। दोस्तों कहते हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज होती है आपकी मुस्कान, हमारी मुस्कान है ना, जब मुस्कुराते हैं तो अलग ही लेवल का स्वैग होता है, लेकिन मुस्कुराने के लिए हमारे दांतों का सुंदर दिखना भी तो बहुत जरूरी है ना। सो आज आपके दांतों को और भी चमकदार बनाने, देखिए हम एंटरटेनमेंट पे बात करते हैं, हम तमाम सारे मुद्दों पे बात करते हैं, लेकिन मुझे लगा आपके दांतों की बात भी होनी चाहिए, तमाम सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी आती रहती है, तो हमने सोचा यार आज इस सेशन को और भी खास बनाते हैं। इस खास मुलाकात में हमने खास एक्सपर्ट को किया है अपने स्टूडियो में, तो आइए जरा सर का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं उनके बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद के स्टूडियो में, कैसे हैं आप? हाउ आर यू
2: सर? आई एम वेरी गुड, मैं बहुत अच्छा हूँ
1: जी। सर इट्स माय प्लेजर सर, प्लीज थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमारे सुनने वालों को।
2: मैं डॉक्टर एसपी सिंह, मैं आई एम प्रैक्टिसिंग देयर इन देवनंदी हॉस्पिटल।
1: ऑलराइट,
2: और मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ अपने डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट का, और इसके अलावा मेरा खुद का क्लिनिक है अवंतिका डेंटल होम्योपैथी क्लिनिक नाम से, तो मैं पिछले 16 साल से जनता की सेवा कर रहा हूँ।
1: अरे वाह क्या बात है, ब्यूटीफुल। देखिए सर ने तो परिचय भी बड़ा अमेजिंग सा दिया है, बहुत ही बढ़िया। सर आप ये बताइए रेडियो स्टेशन में आके आपको कैसा लग रहा है, मतलब वाइब स्टूडियो माइक और ये सब देख के आपको कैसा लग रहा है?
2: ये अमेजिंग है बिल्कुल, न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी।
1: ऑलराइट, अच्छा पहली बार आप स्टूडियो में आए हैं, मतलब रेडियो स्टेशन में?
2: हाँ रेडियो स्टेशन में पहली बार आया हूं।
1: क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। सो आई होप आपको मजा आ रहा होगा।
2: नहीं डेफिनेटली।
1: चलिए सर, चलिए सर मुद्दे की बात शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम शुरुआत, छोटे बच्चे जो है ना भाई बड़े नॉटी होते हैं यार, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में उनको चॉकलेट चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए, लेकिन खाने पीने के साथ साथ उनकी दांतों की हेल्थ का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। सो बच्चों के दांतों की देखभाल क्यों जरूरी है डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे।
2: सर बच्चों की देखभाल इसलिए जरूरी है कि बच्चों के संदर्भ में पेरेंट्स को ये जानकारी नहीं होती कि बच्चों के दांत आने के बाद उनको साफ करना भी जरूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कहते नहीं डॉक्टर साहब ये तो अभी दांत आए थे 2 साल में 3 साल में खराब हो गए, तो उनको ऐसा लगता है कि दूध के दांतों को देखभाल की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, बच्चे को जनरली 6 माह में पहला दांत आ जाता है, वो कई बार 7 माह भी हो जाते हैं, 8 माह भी हो जाते हैं, तो बच्चा फीड करता है और वो कई बार फीड करता है, दूध भी पिएगा और बहुत सारी चीजें खाता है बीच बीच में, बट उसकी सफाई नहीं होती। पेरेंट्स को भी नॉलेज नहीं होती, पेरेंट्स को ज्ञान नहीं होता, या जो माता लोग हैं उसको फीड कराती हैं, बॉटल लगा दी मुंह में और बच्चा सो गया, क्योंकि जब जब बच्चा रोता है मम्मी क्या करती है बॉटल लगा देती है, और बॉटल लगाने के बाद बच्चा सो जाता है और बॉटल से दूध थोड़ा थोड़ा करके उसके दांतों में एक्युमुलेट होता रहता है, जिससे दांतों में कैविटी होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती
1: है। ओके, तो देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आई होप गाइस आपको बहुत मजा आने वाला है सेशन में, और आपको आ भी रहा होगा, तमाम सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। जैसे छोटे बच्चों की उम्र के हिसाब से उन्हें कितनी बार ब्रश करना चाहिए दिन में, पूछूं?
2: ब्रशिंग का तरीका सभी के लिए बराबर है, छोटे बच्चों में भी 2 बार ब्रश करना चाहिए, बड़े बच्चों में भी 2 बार ब्रश करना चाहिए। एक्चुअली जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको अगर आप ब्रश नहीं कर पा रहे तो आप कॉटन से भी साफ करा सकते हैं, मतलब ये पेरेंट्स की ड्यूटी है, मम्मी की ड्यूटी है कि अगर आप ब्रश से साफ नहीं कर सकते, कॉटन या कपड़े से आप जो भी दूध चिपका है दांतों में उसको साफ कर दे दोनों टाइम।
1: कॉटन से मतलब नॉर्मली कॉटन लेके या कुछ यूज करना है उससे?
2: नहीं, कॉटन साफ होना चाहिए, उसको वेट करके उससे क्लीन कर सकते।
1: ऑलराइट, मतलब ये छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा इजी भी हो जाएगा,
2: इजी हो जाता है जो बहुत छोटे बच्चे।
1: समझ गया मैं, बहुत बढ़िया। सो गाइस आई होप आपको ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आपने छोटे बच्चों के लिए ब्रश का टाइम भी बताया कि 2 टाइम तो होता ही है, तो एक पर्टिकुलर टाइम मतलब एक सुबह का तो रूटीन सबको ही पता होता है,
2: सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले ब्रश करना जरूरी होता है।
1: ओके, तो मुझे लगता है ये वाली बात जो है वो हर एक एज ग्रुप के लोगों को मुझे लगता है
2: सभी के लिए वो यूनिवर्सल है।
1: बहुत बढ़िया, वेरी नाइस सर, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आज आप दे रहे हैं, बहुत बेहतरीन जानकारियां आप दे रहे हैं। सो डॉक्टर साहब एक और सवाल है मेरा आपसे, जो 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके दांतों की कैसे मतलब देखरेख, थोड़ा सा उनके बारे में आप बताइए।
2: देखिए बच्चे में पहला दांत 6 महीने में आता है और दूध के दांत लगभग 2.5 से 3 साल में कंप्लीट हो जाते हैं।
1: ओके,
2: और अगर सब कुछ सही रहता है तो 6 साल में पहला पक्का दांत आता है। तो ये जो पीरियड है 6 साल से 10 साल का पीरियड, ये काफी क्रूशियल होता है, क्योंकि इसमें दूध के दांत गिरते हैं और पक्के दांत आते हैं।
1: ओके,
2: तो हमें ये भी ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है दूध के दांत नहीं गिरते तो पक्के दांत नहीं निकल पाते।
1: ओके,
2: पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से दांत उसके टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, निकलते ही नहीं है। तो जनरली इस एज में पेरेंट्स को बच्चे को डेंटिस्ट को दिखाना जरूरी होता है, एक बार स्क्रीनिंग करानी जरूरी होती है।
1: ओके,
2: जो हम लोग अवॉइड,
1: क्या बात है, तो दोस्तों ऐसी छोटी छोटी बातों को अवॉइड मत किया करो, बहुत जरूरी है, ओरल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो 12 वर्ष की उम्र के बाद जो है बच्चों की दांतों की देखरेख किस तरीके से होनी चाहिए, थोड़ा एज ग्रुप बढ़ जाता है उसके हिसाब से?
2: देखिए, आज के टाइम में एस्थेटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है. मतलब पहले हम लोग नहीं सोचते थे कि हाँ, दांत टेढ़े मेढ़े हैं, क्या है,
1: करेक्ट
2: सब चलता था, बट अब नहीं चलता है.
1: अब नहीं चलता है,
2: चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, अब वो सबको बिल्कुल परफेक्ट दांत चाहिए. तो इसके लिए ये जरूरी है कि जब दांत पक्के वाले दांत आ रहे हैं, हम उनका ठीक से देखभाल करें. अगर कोई दांत समय पे नहीं आ रहा है तो उसको डेंटिस्ट को जाके दिखाएं, वो देख के बताएगा हाँ भाई क्या परेशानी है, क्यों नहीं आ रहा है. और अगर बाय चांस किसी भी कारण से बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े हो गए, तो ये जो एज है 10 से 11 साल या 12 साल, ये परफेक्ट एज होती है टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज कराने के लिए.
1: अच्छा, मतलब इस एज में अगर हम अपने दांतों का ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म हमारे लिए सही बेनिफिशियल होता है.
2: एग्जैक्टली.
1: ऑलराइट. अच्छा सर जी, प्लीज टेल अस, आप कुछ कह रहे हैं.
2: एक्चुअली जब दांत निकल रहे हैं, ठीक है, तो हम उनको मॉड्यूलेट कर सकते हैं, हम उनको उनकी ग्रोथ को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, हम उनको आगे पीछे कर सकते हैं. और उस समय जो हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करते हैं उसके जो रिजल्ट्स हैं ज्यादा परमानेंट होते हैं. और इवन वी कैन चेंज द मस्कुलेचर, हम जबड़े की संरचना को भी थोड़ा बहुत बदल सकते हैं इस एज में.
1: ओके, अच्छा, ओके. सो डॉक्टर साहब, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा. दांतों का सबसे आम और कॉमन, जिसे हम कह सकते हैं ना, कौन कौन से वो रोग है और उनकी देखभाल क्या है, सही उपचार क्या है?
2: सर, दांतों में जो सबसे बड़ा रोग है वो डेंटल कैरीज.
1: ओके.
2: और आपको ताज्जुब होगा सुन के, ये दुनिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के मामले में सबसे बड़ी बीमारी है.
1: ओके.
2: और मतलब इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड वाइड, मतलब दूसरे देशों में तो इवन दे हैव टू अपॉइंट डेंटल नर्सेज, मतलब वहाँ पे डेंटिस्ट इतने नहीं है, इस वजह से उन्हें डेंटल नर्स अपॉइंट कर रखी है देखभाल के लिए.
1: ओके.
2: हमारे इंडिया में भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो है. ऑल्दो आजकल काफी डेंटिस्ट है, काफी अवेयरनेस है, डेंटल कैविटी के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो दिखाई नहीं देता. मतलब केवल डेंटिस्ट ही देख के पहचान सकते हैं कि ये कैविटी है. बहुत ऊपर से बहुत स्मॉल सा पिन पॉइंट दिखाई देगा, बट वो एकदम ट्रायंगुलर शेप में नीचे स्प्रेड करती है. और आम आदमी को पता नहीं चलेगा, उसको पता तब चलेगा जब उसके दांत में दर्द हो जाएगा, बट तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. जो कैविटी है वो उसकी नस में पहुंच चुकी होती है, उसका ट्रीटमेंट फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ता है. और एक बार रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद ऑल्दो दांत ठीक हो जाता है, फंक्शन भी हो जाता है, एस्थेटिक्स भी आ जाती है, लेकिन वो दांत ब्रिटल हो जाता है, उसके खराब होने की संभावना अल्टीमेटली बढ़ जाती है.
1: ओके डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी हमारे तमाम सुनने वाले श्रोताओं को, तमाम जानकारी आपसे मिल रही है आज. इसी बीच में एक सवाल पूछना चाहूंगा. अगर मैं बात करूं आज के जमाने के बच्चों की, तो इतनी सारी चीजें मार्केट में आ गई हैं जिसे हम दिन भर में अनलिमिटेड खाते हैं कई बारी, और हमें पता नहीं होता. और आजकल तो इवन ये भी चल रहा है कि शाम को किसी ने ब्रश किया किसी ने नहीं किया, तो मतलब एक सही तरीका क्या है ब्रश करने का, स्पेशली आज की जेंसी के लिए अगर मैं बोलूं तो?
2: सर, ब्रश करने के लिए आपको इट हैज टू बी वेरी सॉफ्ट. ब्रश आपका बहुत सॉफ्ट होना चाहिए और उस ब्रश को सॉफ्ट तरीके से ही करना चाहिए.
1: ओके.
2: हम जनरली सर्कुलर मोशन में एडवाइस करते हैं ब्रश करने के लिए, ठीक है. प्रेशर बिल्कुल अप्लाई नहीं करना होता है. टाइम लगभग 2 से 2.5 मिनट देना है. ठीक है, आप ज्यादा प्रेशर लगाओगे आपके दांत घिस जाएंगे. खाने का ऐसा है, खाने की तो बहुत सारी चीजें मार्केट में, आप किसी को खाने से रोक नहीं सकते. बच्चे को चॉकलेट भी खानी है, बच्चे को चिंगम भी खानी है, बच्चे को टॉफी भी खानी है. उसकी एज भी है, वो नहीं खाएगा तो कौन खाएगा?
1: ठीक है,
2: बट आप खाइए. बट क्लीनिंग बहुत जरूरी है, आपको ब्रश करना जरूरी है. कुछ भी खाइए लेकिन रात को ब्रश करके सोइए. अगर आप
1: जी सर, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा यहीं पे, मतलब ब्रश करना डेली जरूरी है, मतलब हफ्ते के 7 दिन रात को भी करके सोना है?
2: डेफिनेटली.
1: ऑल राइट. जैसे कई लोगों का मिथ होता है, भाई आज कर लिया, सुबह तो डेली कर ही रहा हूँ, रात में आज कर लिया, कल नहीं करूंगा तो कहीं चला जाएगा?
2: ऐसा नहीं चलेगा.
1: ऑल राइट.
2: जो खाना आपने आज खाया वो खाना आपको आज ही साफ करना पड़ेगा ब्रश से. अदरवाइज अगर आप सोच रहे कल ब्रश करके आज का खाना साफ हो जाएगा तो वो लगभग असंभव सी बात है.
1: ऑल राइट. अच्छा जी, चलिए सर, बहुत अच्छा लगा. एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कई बार मैंने बहुत घरों में देखा है ऐसा, मेरे रिलेटिव के घरों में भी मैंने देखा है कि वो एक ही ब्रश को 5-5 महीने 6-6 महीने चला रहे होते हैं, तो क्या ब्रश चेंज करने की भी कुछ है ऐसी टाइमिंग?
2: ब्रश चेंज करना डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से यूज करते हो. कुछ लोग ब्रश पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं तो उनका वो 1 महीने में खराब हो जाता है.
1: ओके.
2: वो पूरे ब्रिसल्स फ्लेयर हो जाते. कुछ लोग बहुत सॉफ्ट प्रेशर यूज करते हैं तो उनके ब्रश लंबे समय तक चलते हैं. बट 6 महीने साल भर में आप ब्रश चेंज कर सकते हैं.
1: ऑलराइट, चलिए. तो दोस्तों ये भी आपका मिथ दूर हो गया. अच्छा, मैंने एक रिसर्च में पढ़ा था सर, मतलब आपने ये बात बोली तो मैं उस पर बोलना चाहूंगा कि मतलब अगर आप ज्यादा ब्रश करते हैं तो आपके दांत घिसने लगते हैं और तो ये क्या सही बात
2: इट्स वेरी ट्रू। देखिए जो हमारे दांत का एनेमल है वो बॉडी का सबसे स्ट्रांग पार्ट है, बट अगर आप उस पे प्रेशर लगाएंगे, ये वाइटल पार्ट है, अगर आप उस पे प्रेशर लगाएंगे तो दांत गिर जाता है। और कई बार तो मतलब जो लोग प्रेशर लगा के, मतलब हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पहले से ये टेंडेंसी है कि नहीं आप प्रेशर लगा के ब्रश करेंगे दांत अच्छे से साफ होंगे, तो वो अच्छे से साफ होते हैं पूरे ही साफ हो जाते हैं, मतलब पूरा दांत घिस जाएगा ऐसे। जैसे आपने देखा होगा बचपन में जो कुआं होता था, कुएं पे जब रस्सी से पानी खींचते तो जैसे ग्रूव बन जाती है, ऐसी दांतों में पूरा ग्रूव बन जाते हैं।
1: ओके, तो फिर मतलब ये तो आपने बता दिया, फिर इसका सही तरीका क्या है बेसिकली?
2: इट हैज टू बी वेरी सॉफ्ट, जो ब्रश कर रहे हैं आप सॉफ्ट तरीके से,
1: मतलब दांतों की धुलाई नहीं करनी है, दांतों की सफाई करनी है,
2: तरीके से करना है, मतलब सर्कुलर मोशन में,
1: समझ?
2: उसका एक प्रॉपर तरीका है वो, मतलब मैं ऐसे रेडियो पे समझा नहीं सकता वो।
1: बिल्कुल
2: ठीक है, बास मेथड बोलते हैं, BASS बास मेथड।
1: ओके,
2: मतलब जिन लोगों को देखना है वो गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, बास मेथड ऑफ टूथ क्लीनिंग, दैट इज द परफेक्ट मेथड फॉर टूथ क्लीनिंग।
1: अच्छा सर, कई बार जैसे दांतों में ना अचानक से पेन होने लगता है, कई बार मसूड़ों में सूजन आ जाती है, तो कई सारे लोग ना होम रेमेडीज करने लग जाते हैं, दादी नानी के नुस्खे, आप लौंग चबा लो, ये कर लो, वो कर लो, तो क्या ये चीज काम करती है और ये दर्द बेसिकली होता क्यों है?
2: सर, दांत में दो तरह से दर्द हो सकता है।
1: ओके,
2: एक तो दांत के अंदर दर्द हो रहा है, एक जो उसका सपोर्टिंग टिश्यू है, जो मसूड़ा है, आपने सपोज करो रात को कोई खाना खाया और वो फूड पार्टिकल दांतों के पीछे फंसा रहेगा, तो जब वो खाना सड़ने लगेगा तो मसूड़े को इन्फेक्ट करेगा, पहले वो मसूड़े को इन्फेक्ट करेगा जिससे पायरिया होता है। ठीक है, तो आपके मसूड़े में जो दर्द हो रहा है वो मसूड़े का दर्द है, बट वो बहुत तीव्र दर्द नहीं होता। ठीक है, आपको ठंडा लगेगा, गर्म लगेगा, ठीक है, कुछ कुरेदने का मन करेगा उसको, तो वो मसूड़े का दर्द है। बट लेकिन दांत का जो दर्द है, जो कैविटी के बाद दांत में दर्द होता है, बहुत तीव्र दर्द होता है, मतलब वो असहनीय दर्द होता है, नर्व वाला, जैसे नस वाला दर्द होता है, उतना गंभीर दर्द होता है।
1: तो सर, इससे बचने का
2: एक ही तरीका है, प्रॉपर ब्रश करो, सफाई रखो,
1: हाइजीन,
2: ओरल हाइजीन सबसे बड़ी चीज है, वो मेंटेन करेंगे तो आप डेंटिस्ट से बचे रहेंगे, उसके अलावा और बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे।
1: ऑलराइट डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं हमारी महिलाओं के लिए पूछना चाहूंगा, जो मतलब प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो अपने दांतों की देखरेख कैसे करें?
2: देखिए सर, प्रेगनेंसी में क्या है, जो हमारी माता बहन है उनकी बॉडी में हार्मोन लेवल काफी बढ़ जाते हैं, ठीक है, उस हार्मोन की वजह से दांतों और मसूड़े पे उस जो भी नुकसान होना है वो कई गुना बढ़ जाता है, तो उस समय मतलब अगर छोटी सी गंदगी है तो बहुत ज्यादा नुकसान करेगी। ठीक है, तो उसके लिए माताओं बहनों को सफाई का विशेष ध्यान रखना है। और एक जो हमारे इंडिया में मिथ है कि हाँ भाई माता लोग या हमारी जो पुरानी माता जी हैं वो बोलती है कि हाँ भाई डिलीवरी के बाद 1 से 1.5 महीने आप उसको ब्रश ही नहीं करने देते, ये एक बहुत गलत, ऐसा करने से आप सोचो जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद पूरा ध्यान उस जच्चा के खाने पीने के पीछे ही रहता है, वो पूरा दिन कभी कुछ खाएगी कभी, बिकॉज उसको ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है।
1: Exactly.
2: और आप अगले 2 महीने ब्रश नहीं करोगे तो सोचो दांतों की और मसूड़ों की क्या हालत होगी।
1: तो
2: मैं तो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, जो भी लेडीज आती है कि नहीं जी मेरी सासू माँ ने बोला था कि नहीं ब्रश नहीं करना है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि सासू माँ को बताने की जरूरत ही नहीं है आपको ब्रश करना है नहीं करना, आप बाथरूम में गए चुपचाप ब्रश उठाओ ब्रश कर लो, कौन देख रहे हैं?
1: बिल्कुल,
2: उससे आपकी सासू माँ को पता नहीं चला और आपके दांतों की भी देखोगी।
1: बिल्कुल, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है सर, मुझे ऐसा लगता है, जरूरी नहीं है कि सबको बता के किया जाए। बहुत अच्छी बात है। सो अब जो है आपके मन में जो भी मिथ है, आई होप वो आज सारे दूर हो रहे होंगे डॉक्टर साहब से। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमने दांतों की बात करी, पेन की बात करी, तो इसका ट्रीटमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है और कितने समय में स्टार्ट कर देना चाहिए?
2: जैसे ही आपको दर्द हो, कायदे में
1: कई लोग अवॉइड करते हैं, जैसे अवॉइड कर देते हैं, आज डिले कर दिया, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे।
2: देखिए सर, दांत के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, अगर आपको दर्द है तो उसका ट्रीटमेंट डेंटिस्ट के पास है। आप पेन के खा के दांत का इलाज नहीं कर सकते।
1: करेक्ट,
2: आप पेन किलर खा के दर्द खत्म कर सकते हो, और अगर आप इलाज नहीं करा रहे तो यकीन मानिए आपका दांत भी खत्म हो जाना है।
1: ओ माय गॉड, मतलब ये बहुत बड़ा रिस्क भी है।
2: जी
1: ओके। सो दोस्तों देखिए, तमाम सारे मिथ आज आपके दूर हो रहे हैं, एंड आई होप आपको ये सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव भी लगने वाला है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल इसी बीच मेरे जहन में तमाम सारे सवाल आ रहे हैं, और आज मैं सोच रहा हूँ भर भर के जितने भी सवाल है सब क्लियर कर लूं, क्योंकि ये मौका कभी कभी मिलता है हमें। अच्छा, कई लोगों के मुंह से दुर्गंध आती है, तो ये दुर्गंध मतलब दांतों की वजह से आती है, खाना फंसा रह जाता है इस वजह से, या कुछ और रीजन है?
2: सर, मुंह से दुर्गंध के 2 कारण हो सकते हैं। एक तो लोकल रीजन, मतलब अगर आपका दांतों में गंदगी है तो मुंह से बदबू आएगी। ठीक है, कई बार हम देखते हैं कि आदमी के दांत साफ हैं, ओरल हाइजीन बहुत अच्छी है, उसके बावजूद भी उसे बदबू आ रही है, तो इसका दूसरा कारण है कि उस आदमी का या बंदे का डाइजेशन प्रॉपर नहीं है। अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो भी आपके मुंह से स्मेल आती है, जो आप रिफ्लेक्स से जाते हैं वो बदबू के रूप में बाहर आते हैं।
1: मतलब इसका दांतों से कोई लेना देना है
2: नहीं? बदबू के 2 कारण है, एक तो दांतों, दांत है,
1: ठीक है,
2: अगर दांत आपके साफ हैं उसके बाद बदबू आ रही है तो इसका मतलब आपका पेट खराब है।
1: ओके,
2: आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है। अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो अंदर से बहुत सारी गैसेज आती है पेट से, वो बदबू करती है।
1: ओके ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि दांतों में ब्लीच कराना अच्छा होता है, आजकल ये बड़ा ट्रेंड भी हो गया है कि आप दांतों की जो है ब्लीच करा लो, आपकी शाइन बढ़ जाएगी, ग्लो बढ़ जाएगा दांतों का, तो क्या ये सही में सही होता है क्या दांतों के लिए?
2: सर ब्लीच कराना मतलब जो हम ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हैं वो बेसिकली एसिड होता है।
1: ओके
2: वंस ए वाइल्ड ठीक है, हाँ भाई किसी की

0: दांत क्यों हिल रहा है, पहले तो हमें इसका कारण जानना चाहिए। वो जो हम पायरिया की बात कर रहे थे, ये बेसिकली पायरिया ही है। पायरिया ऐसी बीमारी,
1: मतलब अगर खून नहीं भी आता तो भी पायरिया।
0: या एग्जैक्टली, खून जब पायरिया शुरू होगा तब आएगा। जब पायरिया, जब इन्फेक्शन आपकी हड्डी में चला जाएगा, फिर आपको ब्लीडिंग नहीं होगी। वो धीरे धीरे धीरे धीरे आपकी दांत की हड्डी को गलाता रहेगा, और जब हड्डी पूरी गल जाएगी तो दांत निकल के बाहर आ जाएगा। तो इसलिए पायरिया भी खतरनाक बीमारी है, वो पूरा टूथ लॉस कर देती है। अगर आपको लग रहा है आपका कोई दांत हिल रहा है, तो आप जाओ डेंटिस्ट को जाके दिखाओ, वो आपके दांतों की सफाई करेगा, पायरिया का इलाज करेगा। एक चीज और, कई बार दांत हिलने का और भी कारण हो सकता है,
1: जैसे
0: बहुत सारे लोग हैं, मतलब आजकल कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है, तो अगर किसी आदमी को, कोई आदमी गुटखा खाता है, कोई आदमी सिगरेट पीता है, तो ऐसे लोगों को कैंसर होने की संभावना ज्यादा
1: होती है।
0: ठीक है, तो अगर कोई आदमी गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, या तम्बाकू से रिलेटेड कोई भी चीज वो यूज करता है, कंज्यूम करता है, और उसको लगता है कि मेरा दांत अचानक से हिलने लगा, तो उसको एकदम से जाके किसी भी डेंटिस्ट के पास उखड़वाना नहीं चाहिए। ठीक है, उसका कारण ये है कि वो दांत हिल रहा है, उसको ऐसा लगता है कि नॉर्मली हिल रहा है, बट कई बार मतलब ऐसा होता है कि वो कैंसर की वजह से दांत हिल रहा होता है, तो वो पूरा प्रॉपर चेकअप कराने के बाद ही दांत को उखड़वाना चाहिए। तो हमारे पास पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब, अभी जैसे मेरे पास 3 दिन पहले एक पेशेंट आया, उसने दुबई में दांत उखड़वाया 4 महीने पहले। और वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब, ये मेरा जख्म 4 महीने से नहीं भर रहा है। तो मैंने उसको देखा, मुझे देखते ही लगा, अरे तो कैंसर का है, मतलब प्रोबेबिलिटी कैंसर की ज्यादा। मैंने उसकी बायोप्सी ली, बायोप्सी भेज दी लैब में, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ, शायद कैंसर ही निकलेगा। और कैंसर ऐसे ही पता चलता है कि जी मैंने दांत उखड़वाया था। लोगों में ये उम्मीद था कि दांत उखड़वाने की वजह से कैंसर होता है, ऐसा नहीं है। इवन मेरे से एक पेशेंट आया, वो बहुत गुटका क्रोनिक चीवर, ठीक है, और उसको पीछे अक्कल दाढ़ फंसी हुई है। मैंने कहा, तुम गुटखा खाते हो, ये तुम्हारी दाढ़ तुम्हारे गाल को काट रही है, मैं इसको निकालना पड़ेगा, अक्कल दाढ़ है, इसका वैसे भी कोई यूज नहीं होता। कह रहे, नहीं डॉक्टर साहब, दाढ़ नहीं उखड़वाऊंगा, मेरा वो साला है, उसको दाढ़ उखड़वा, उसके बाद उसको कैंसर हो गया।
1: ओह माय गॉड।
0: तो वो उसकी जो सोच है वो ये है कि दाढ़ उखड़वाने से कैंसर हो गया, ऐसा नहीं है।
1: ये तो बहुत सारे लोगों का मिथ है फिर, कहीं ना कहीं सर।
0: हाँ, गलत है वो। तो अब वो, अब आप उसकी क्रोनोलॉजी समझो, अब वो तब आएगा या तो उसको कुछ नुकसान हो जाएगा, उससे पहले वो नहीं आएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए मतलब आपको दांत उखड़वाना है तो मतलब डेंटिस्ट के पास जाइए, और मेरा एक सबसे रिक्वेस्ट है, एक पढ़े लिखे अच्छे डेंटिस्ट को ही दिखाइए।
1: बिल्कुल
0: ठीक है, अनक्वालिफाइड लोगों को दिखाना मतलब आप अपने दांत के साथ और अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
1: ओह माय गॉड। कई बार होता है ना सर कि छोटे छोटे हम ऐसे ही किसी के पास भी चले जाते हैं, कुछ झोला छाप के पास भी चले जाते हैं, तो वो चीज नहीं करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, तमाम जानकारियों के बीच एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा। आजकल आपको पता है हमारे सभी लोगों को लाइफस्टाइल कहीं बहुत चेंज हो गया है, एंड खान पान भी बहुत बदल रहा है लोगों का, स्पेशली आज की जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो। आजकल जैसे जंक फूड एकदम से ना बहुत छाया हुआ है लोगों के दिमाग में, जहन में, तो क्या इससे भी हमारे दांतों की सेहत पे कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़ता है?
0: जंक फूड तो आपके पूरे सिस्टम को खराब करता है। जनरली जंक फूड क्या है, वो स्टिकी फूड होता है, तो वो दांतों में ज्यादा चिपकता है, उसको साफ करना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब जो ट्रेडिशनल फूड है उसके मुकाबले दांतों से ज्यादा चिपकता है, तो उससे कैविटी होने की संभावना ज्यादा बढ़ती है। इतना नुकसान है, बाकी जो आपके सिस्टम को, आपके डाइजेशन को नुकसान है, वो एक अलग चीज है।
1: अच्छा, जैसे बहुत सारे लोगों के दांतों में आपने देखा होगा येलोपन आ जाता है, तो वो येलोपन मतलब किस वजह से बनता है वो येलो परत, क्या वो लाइफ में कभी हटेगी भी या नहीं? जैसे कुछ लोगों का मिथ हो जाता है कि कभी हटेगी नहीं, आप कितनी ब्रश कर लो, कितनी ब्लीचिंग करा लो,
0: दांत कभी भी व्हाइट नहीं होते। वो थोड़े से पीले होते ही है, ठीक है, अंदर डेंटिन होती है, वो बिल्कुल येलो होती है, उसके ऊपर हमारा इनेमल होता है। तो इनेमल की थिकनेस के ऊपर उस दांत का कलर डिपेंड करता है। और ये कलर आदमी के स्किन के कलर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कोई ब्लैक आदमी है, मतलब जो अफ्रीकन है, उनके दांत हमेशा आपको सफेद ही दिखाई देंगे, चाहे वो व्हाइट है चाहे येलो है। और उसके कंट्रास्ट अगर आप किसी व्हाइट पर्सन को देखो, किसी अंग्रेज को देखो, ठीक है, उस दांत आपको हमेशा पीले दिखेंगे, क्योंकि वो तो इतना व्हाइट है, उससे ज्यादा व्हाइट उसके टीथ हो ही नहीं सकते। इसके अलावा अगर दांत गंदे, अगर वो गंदगी की वजह से पीले हैं, तो उस गंदगी को साफ करके दांतों को साफ किया।
1: अच्छा, मतलब तो उसके लिए आपको रेगुलरली ब्रश और इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप नीम की दातुन करो, दातुन चबाओ, ये ब्रश से अच्छी होती है, तो आपका क्या सजेशन होगा?
0: सर, नीम की दातुन मसाज कर सकती है, वो ब्रश नहीं कर सकती।
1: वही ना, कई लोग उसको चबा के उसका फूल बना के ब्रश करने की कोशिश करते हैं।
0: बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, नीम की दातुन बहुत बढ़िया है, नीम की दातुन आपने पूरी क्रश कर दी तो वो इतनी सॉफ्ट होती है, वो दांतों के बीच में जाके साफ ही नहीं कर सकती।
1: इनफैक्ट फंस और जाएगी, छोटी छोटी होती है वो फंस जाती है, तो मतलब ब्रश का ही इस्तेमाल करना है।
0: एग्जैक्टली, ब्रश से ही साफ
1: मिला के। तो दोस्तों देखिए।

0: जागो श्रोताओं, जागो, अब ब्रश करने की बारी। आप जो है एक्सक्यूज़ मत दो, सुबह हो या शाम ब्रश करना जरूरी है, ये एक छोटा सा है काम सर। सो डॉक्टर साहब, आपसे तमाम सारी बातें हम कर रहे हैं, दांतों की हेल्थ के ऊपर तमाम इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, तो आप बताइए सबसे पहले आपको कैसा लग रहा है, अभी ये जानना बहुत जरूरी है। आपकी वाइब चेक कर लेते हैं, आप रेडियो स्टेशन में बैठे हैं, एंटरटेनमेंट की फील्ड है।
1: नहीं, डेफिनेटली मतलब इट इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस बीइंग हियर। और आपका मतलब मैं सुनता ही था, आज मैं आपको साक्षात देख रहा हूँ, तो ऐसी फीलिंग आ रही है, लग रहा है कि नहीं यार आपका काम भी काफी हार्ड है, इट्स नॉट सो सिंपल।
0: एग्जैक्टली,
1: ठीक है,
0: मतलब चैलेंजिंग भी है आई थिंक।
1: एग्जैक्टली, मतलब आपको जनता की नब्ज पहचाननी है, ठीक है, जो दूसरा बंदा आपके सामने उसकी भी नब्ज पहचाननी है, मतलब यू शुड हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, जो मैं देख रहा हूँ आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का।
0: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सर जिस काम को आप करते हो ना, वो चीजें आपको ऑटोमेटिकली करते चले जाते हैं, तो अपग्रेड होती चली जाती है। आप दांतों के डॉक्टर हैं, हम रेडियो के डॉक्टर हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, नो डाउट। सो वेल, आगे बढ़ेंगे सर। एक और क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारे लोगों के दांत खराब हो जाते हैं, तो फिर उनको ये लगता है कि अभी किसी काम के नहीं रहे, और वो कई बार डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं। कहीं ऐसे बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर लोग आज भी इतने अवेयर नहीं है, तो अगर किसी वजह से किसी के दांत खराब है या कोई दिक्कत परेशानी है दांतों में, तो उसका बेसिकली सही तरीका क्या होगा?
1: सर, अगर किसी के दांत खराब हो गए हैं, तो पहले तो कोशिश यही करनी चाहिए कि उसको इलाज करके सही कर लें, क्योंकि नेचुरल के जैसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। वो नेचुरल खराब होने के बाद भी अगर वो सही हो सकता है, तो आपके लिए वो सबसे अच्छा है। बट अगर आपका दांत किसी भी कारण से उखड़ गया है, तो अभी बहुत सारी नई टेक्निक आ गई है, ठीक है, आप ब्रिज लगवा सकते हैं। और ब्रिज में क्या है, आपको साइड वाले दांत घिसवाने पड़ते हैं, दांत घिसने का मतलब दांत का नुकसान होना। बट एक दूसरा तरीका है जो आजकल बहुत पॉपुलरली है, काफी पॉपुलर है और चल भी रहा है, डेंटल इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट देखिए नेचुरल जैसा ही है, नेचुरल नहीं हो सकता, बट आपको उससे बिल्कुल नेचुरल जैसी फीलिंग आएगी, और बहुत सिंपल प्रोसीजर है, ठीक है, जरा सा हल्का सा चीरा लगाते हैं, ड्रिल करके लगा देते हैं, और बिल्कुल नेचुरल जैसा दिखाई देता है, और आप उससे कुछ भी चबा सकते हैं।
0: ओके,
1: इम्प्लांट लगाने में कोई दर्द नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती है, और आपके दांत बिल्कुल नेचुरल जैसे ही दिखाई देंगे, बशर्ते वो जो लगाने वाला है वो एक एक्सपर्ट होना चाहिए, वो अनुभव वाला डॉक्टर होना चाहिए,
0: एक्सपीरियंस होल्डर।
1: एग्जैक्टली,
0: ओके,
1: वो सारा स्किल का खेल है। अगर आप अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, तो आपका ट्रीटमेंट भी मतलब बोलेगा, लगेगा कि नहीं यार, मतलब वो नेचुरल जैसा दिखाई देगा।
0: ओके,
1: इंडिया में दांतों की थोड़ी सी मतलब वैल्यू कम है लोगों को, उनको लगता है कि बिना दांत के भी सारी चीजें हो जाती है, ऐसा नहीं है। एक आदमी को अगर दांत नहीं है, तो वो खाना चबा के नहीं खाता, खाना चबा के नहीं खाएगा तो उसका पेट खराब होगा, उसका पेट खराब होगा तो वो डेंटिस्ट के पास नहीं जाएगा, वो फिजिशियन के पास जाएगा, और वो पूरी उम्र पेंटाप्रोजोल, ठीक है, रेव्यूप्राजोल या वो गैस वाली दवाइयां पूरी उम्र खाता रहेगा।
0: करेक्ट,
1: तो दांत का काम तो दांत ही करे, पेट नहीं कर सकता, उसकी एक लिमिट है, कब तक करेगा।
0: बिल्कुल सर,
1: और जैसा सभी जानते हैं कि भाई जो डाइजेशन है वो 50-60% ओरल कैविटी में ही हो जाता है। जब आपके दांत खाने को अच्छे से चबाएंगे, सलाइवा आके मिक्स होगा, बहुत सारे एंजाइम उसमें मिक्स होंगे, तो डाइजेशन आपकी ओरल कैविटी से शुरू हो जाता है।
0: बिल्कुल
1: ठीक है, अगर आपके मुंह में दांत नहीं है तो वो वाला काम हो नहीं रहा है, उस काम के लिए फिर पेट पे डिपेंड रहना पड़ेगा, पेट वो काम कर नहीं पाता, तो अल्टीमेटली आपको गैस, कब्ज़ और इन सब चीजों से गुजरना।
0: ओके, सो श्रोताओं, छोटी छोटी बातें हैं, एंड आई एम श्योर ये बहुत काम की होंगी, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। डॉक्टर साहब, जाते जाते मेरा एक लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे, बहुत छोटा सा सवाल है, जैसे छोटे बच्चों के बारे में आपने बात करी थी अभी कि ब्रशिंग का उनका टाइम बेसिकली, तो कई बारी ना बच्चों के ब्रशिंग के साथ साथ उनका जो नेचुरल लाइट होता है वो भी हमारे दांतों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो हमारा नेचुरल खान पान जो है वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी दांतों की हेल्थ के लिए, चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े हो।
1: देखिए सर, नेचुरल तो हमेशा बेस्ट होता है, लेकिन
0: स्पेशली जैसे दांत, कुछ लोग कहते हैं, मैं आपको बीच में कि दूध ले सकते हो, कैल्शियम, ये दांतों के लिए बहुत जरूरी होता है, तो इस तरह की कुछ
1: नहीं, दांतों के लिए कैल्शियम रिच डाइट या मतलब आयरन, कैल्शियम, ये सारी चीजें जरूरी है, वो आपके बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए भी जरूरी है और दांतों के लिए भी जरूरी है, ठीक है, बट न्यूट्रिशन के लिए पहले दांत होने चाहिए।
0: ओके, बिल्कुल सही बात है,
1: ठीक है, अगर आप चबा के ही नहीं खा पाओगे तो न्यूट्रिशन कैसे
0: प्रॉपर होगा।
1: बहुत सारे पेरेंट्स को ये लगता है, नहीं तो दूध के दांत निकल जाएंगे। अगर ऐसी बात थी तो नेचर ने क्यों दिए?
0: सही बात है,
1: भगवान ने, कुदरत ने, अल्लाह ने क्यों दिया इनको? जरूरत है।
0: करेक्ट,
1: जब तक परमानेंट दांत नहीं आ जाते तब तक इनकी जरूरत है, तब तक बच्चा उन्हीं से खा रहा है, तो उनकी केयर करना भी जरूरी है। बच्चे के दांत में एक बार दर्द हो गया तो किन मानी वो नहीं खाएगा।
0: करेक्ट,
1: ठीक है, आपने उसको मेडिसिन दे दी, दर्द बंद हो गया, आप डेंटिस्ट के पास नहीं गए, बट उसको कंटिन्यूसली दर्द हो रहा है, तो वो एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, उसके बाद बोलना भी छोड़ देगा, बट वो उधर से चबाना भी छोड़ देगा, ठीक है। और अगर यही कंडीशन दूसरी साइड भी होगी तो बिल्कुल ही चबाना छोड़ देगा, वो चबाने वाली चीज जो है वो खाएगा ही नहीं। और यकीन मानिए, अगर बच्चा चबा के नहीं खा रहा है तो उसके जबड़े की ग्रोथ भी नहीं होगी।
0: अच्छा, और सर जब चबा के खाना खाते हैं तो उसके रिजल्ट भी बेहतर मिलते हैं।
1: एग्जैक्टली।
0: तो थैंक यू सो मच, आपने तमाम जानकारियां दी आज हमारे सुनने वालों को, और ये जो इन्फॉर्मेशन है तमाम लोगों तक बहुत हेल्प करने वाली है। सो सर, जाते जाते कोई एक अपनी तरफ से सबकी दांत स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और दांतों की हेल्थ के लिए कोई एक अच्छा सा,
1: सिर्फ एक ही मंत्र है, सफाई, ओरल हाइजीन, उसके लिए आप दोनों टाइम प्रॉपरली ब्रश कीजिए, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, साल में एक बार अपने डेंटिस्ट को जाके चेकअप करा लीजिए, क्योंकि अगर कोई परेशानी होगी तो आपको पता नहीं चलेगा।
0: ओके।
1: वो सिर्फ आपका डेंटिस्ट ही चेक करके बताएगा कि इस दांत में ये परेशानी, और उसका समय से इलाज हो जाएगा।
0: अरे वाह, क्या बात है। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच, आपने भी इस इन्फॉर्मेशन को सुना, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप हमें अपने मैसेज जरूर पहुंचाइएगा, अपने फीडबैक, आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। हमारा नंबर बहुत सिंपल है, 9837896896, और ऐसी तमाम सारी जानकारी आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला रेडियो FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। सर कुछ और कहना चाहते हैं आपसे, मुझे बात करके बहुत मजा आया, मेरा मन तो नहीं कर रहा कि मैं भी आपको फ्री कर दूं, लेकिन ज्यादा लंबा आप कर भी नहीं सकते हैं।
1: नहीं नहीं, सेम यार, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मुरादाबाद आके, तो इट वाज ए नाइस एक्सपीरियंस, आई विल रिमेंबर इट।
0: थैंक यू सर, और मुझे लगता है कि कुछ चीजें ना बात के लिए भी छोड़नी चाहिए, कुछ आज ही पूछ लेंगे तो फिर मजा नहीं
1: आएगा, सही कह रहे हैं।
0: जल्दी सर से फिर वापस मिलेंगे, आप कहीं मत जाइए, अच्छे गानों के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद। थैंक यू सर, FM मुरादाबाद और आरजे आनंद आपका दिल से शुक्रिया करता है सर।
1: थैंक यू सर,
0: थैंक यू सो मच।
2: आवश्यक सूचना, 400 केबी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केबी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
5: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: इस आजादी के जश्न को मनाइए और भी खास द हाउस ऑफ राधिका स्वीट बेकरी एंड रेस्टोरेंट के साथ। मिठाइयों की मिठास, बेकरी का स्वाद, रेस्टोरेंट का जायका। द हाउस ऑफ राधिका, एड्रेस प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार, मुरादाबाद।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
2: था मेरी कसम?
1: मिस कर दिया तो रीलोड.
3: चाय चाय चाय
4: बिंदास मॉर्निंग
1: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10

0: गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हेलो दोस्तों, आज हमारे बीच में खास मेहमान विदिशा सिंह, जो एक काउंसलर, पीयर सपोर्टर एवं पॉजिटिव साइकोलॉजी कोच हैं, जो बच्चों के साथ उनके माता पिता और महिलाओं के इमोशनल वेलबींग, सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ लव के क्षेत्र में निरंतर कार्यरत हैं। दोस्तों, उनका मानना है कि सशक्त मन ही सशक्त जीवन की नींव होता है। माइंडफुलनेस और मोटिवेशन के माध्यम से वह बच्चों को आत्म जागरूकता, भावनात्मक संतुलन और आत्मविश्वास की दिशा में प्रेरित करती हैं। उनका कार्य केवल काउंसलिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विश्वास, आत्म स्वीकृति और सकारात्मक परिवर्तन की एक सतत यात्रा है। मैं हूं भावना और मेरे साथ है मेरे साथी आशीष। हमारे बीच में स्वागत करते हैं दोनों मिलके विदिशा सिंह जी का। हेलो मैम।
2: हेलो भावना जी।
3: और जैसा हम लोग हमेशा से किसी ना किसी विषय पर चर्चा करते हैं, तो आज आपके साथ विशेष चर्चा हम बच्चों को लेकर करना चाहेंगे कि जब हम बच्चों के एग्जाम्स के रूटीन में जा रहे होते हैं तो बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रेशर काम कर रहा होता है, और भले ही पेरेंट्स उनको ये समझाएं कि बेटा तुम बहुत मेहनत से पढ़ो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर बहुत सारे डर घर कर गए होते हैं क्योंकि उनको अच्छे मार्क्स चाहिए। तो ऐसे में आप उन्हें क्या यहाँ से कोच करना चाहेंगी और कैसे उनके अंदर की ये एंग्जाइटी, ये डर हम दूर कर पाएंगे मैम?
2: जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं हम बड़े ही उस डर की शुरुआत करते हैं। आमतौर पर कभी भी आपने देखा होगा जब बोर्ड एग्जाम्स या नॉर्मल एग्जाम्स की शुरुआत होती है तो हम हमेशा बच्चों को सिर्फ एग्जाम्स आ रहे हैं नहीं बोलते, एक तरह से एक एनवायरमेंट सेटअप कर देते हैं जिसमें कि हम बोलते हैं एग्जाम फीवर, एग्जाम स्ट्रेस,
3: फोबिया।
2: Exactly. तो कहीं ना कहीं हमने ऑलरेडी बच्चों को ये बता दिया कि ये जो एग्जाम है ये आपको स्ट्रेस देगा ही देगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर शुरुआत से हम थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान दें कि एग्जाम्स हैं, साल भर आपने जो पढ़ा है वो बस एक तरह से आपका एक टेस्ट लेने की उसमें कोशिश है कि आपने कितना सीखा, कैसे सीखा और उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपनी लाइफ में।
3: फटाफट उठो, पढ़ाई करो, रात में जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी जाग जाना क्योंकि तुम्हें पढ़ाई करनी है, सुबह का पढ़ा हुआ बच्चों को याद ज्यादा रहता है। तो उसको हम कैसे क्या ऐसा बताएं कि वो उनके लिए स्ट्रेस बस्टर का काम करें और वो अपने उस फ्लो चार्ट पर काम करें, उस पैटर्न पे काम करें जिससे उनके मार्क्स पर उसका असर दिखाई पड़े।
2: एग्जैक्टली। अब मैं आपको आप ही के इस लाइन से एक चीज बताना चाहूंगी कि ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही एग्जाम्स के बारे में बात आती है तुरंत उसका जो रिलेशन होता है वो मार्क्स कितने स्कोर करोगे, कैसा परफॉर्म करोगे उसके ऊपर हो जाता है।
3: एग्जैक्टली।
2: सबसे पहले मैं हर माता पिता को ये बोलना चाहूंगी कि जब एग्जाम है तो उसको आप एक पर्टिकुलर चीज लेकर के चलिए। आज टाइम है कि बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम पूरा फोकस दे देते हैं जैसा अभी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे वैसा ही रिजल्ट आएगा।
3: एग्जैक्टली।
2: रिजल्ट एक सेकेंडरी ऑप्शन है जो एग्जाम्स देने के बाद आता है। आई अंडरस्टैंड कि एग्जाम है तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, लेकिन अभी जो फोकस है वो सिर्फ इस पे होना चाहिए कि हमारे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं तो उस वक्त हम क्या ऐसा कुछ करें कि जिससे हमारे बच्चे जो हैं वो थोड़े से शांत मन से रहें, एंजाइटी कम रहे उनके अंदर और एक जो डर है वो खत्म हो। और उसके लिए इस वक्त मैं आपको बताऊं कि माता पिता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि आपका बच्चा ऑलरेडी परेशान है, और खास करके ये बात मैं माओ के लिए कहना चाहूंगी कि जितना बच्चा परेशान नहीं होता शायद उससे 50-60% ज्यादा उनकी माताएं परेशान हो जाती हैं। आप एक ऐसा एनवायरमेंट ऑलरेडी अपने घर में सेटअप कर दे रहे हैं, टीवी नहीं चलेगा, खेलने नहीं जाना है, हम बाहर खाना नहीं खाने जा सकते, किसी की वेडिंग अगर, क्योंकि देखिए मार्च ही सीजन होता है, फरवरी मार्च जिस टाइम पे शादियां भी हो रही होती हैं और इसी टाइम पे एग्जाम्स भी आ रहे होते हैं, ऑल ऑफ अ सडन घर में कर्फ्यू जैसा माहौल बन जाता है। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं इस बात पे भी हमें थोड़ा सा रुककर सोचने की जरूरत है कि अब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और जितना उनको पढ़ना था उन्होंने ऑलरेडी अपनी पढ़ाई या पूरे साल भर कर ली है।
3: एग्जैक्टली
2: अब खाली जो उन्होंने पढ़ा हुआ है उस चीज को वो कितना याद कर पा रहे हैं, उस चीज को रिवाइज कितना कर पा रहे हैं, उसके ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए।
3: लेकिन नहीं लगता भावना कि एक साइकोलॉजी ऐसी है जो कहीं ना कहीं बच्चों की कंडीशनिंग के साथ में आती है, क्योंकि हम जब बच्चा छोटा है, जैसे अभी आपने कहा कि बड़े बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई कर चुके हैं, उनको भी पता है कि उन्हें क्या तैयार करना है, लेकिन कंडीशनिंग वैसी हुई है ना फ्रॉम द रूट्स, तो वो फ्रॉम द रूट वाली कंडीशनिंग का कहीं ना कहीं एक ओवर शेडो बनता बनता उनके हायर क्लासेस में भी दिखाई पड़ता है और वो एक फोबिया उनके चारों तरफ क्रिएट करके हम रख देते हैं। और मुझे लगता है कि अगर वो स्वतंत्र होकर दिमाग से काम करें जैसे आपने कहा।
1: और आशीष एक बात और मैं कहूं कि बड़े बच्चे के साथ साथ अब हम लोग छोटे बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर डालने लगे हैं कि आपका बच्चा नर्सरी या फर्स्ट में ही रहता है फिर भी आप उससे इतनी ज्यादा उम्मीदें करने लगते हैं कि हमारा बच्चा जितने भी क्षेत्र है उसमें बिल्कुल अव्वल ही आए, और वो बच्चा पीठ पर बोझ लादे किताबों का, वो कहां से बढ़ता साइकोलॉजिकल चेंजेस कहां से शुरू हो रहे हैं।
2: बहुत समय लगेगा और कहीं ना कहीं मेरा जो काम है मेरी भी कोशिश इसी क्षेत्र में है कि सबसे पहले ये जो कंडीशनिंग हो गई है कि एग्जाम्स चाहे सेकेंड थर्ड फोर्थ क्लास के बच्चे का हो या क्लास टेंथ और ट्वेल्थ के बच्चे का हो, एक कंडीशनिंग के साथ हमने ये मान लिया है कि एग्जाम्स हैं तो हमें वो प्रेशर बनाना ही है, हमें पढ़ाना ही है और बच्चों को अच्छा स्कोर करना ही है। इसमें आपको पता है मैं एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट ये करना चाहूंगी कि आपको सबसे पहले अपने बच्चे का जो शेड्यूल है ना उसके ऊपर ध्यान देना शुरू करना होगा कि क्या आपका बच्चा जिस चीज को आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट ले रहा है
3: जी।
2: क्या वो कभी भी एग्जाम आने से पहले, एक अलग बात हो गई, लेकिन पूरे साल में क्या वो पूरे दिन भर में एक बार भी उन किताबों को, अगर उसको होमवर्क नहीं मिला है उसके अलावा भी क्या वो उन किताबों को खुद कभी उठा करके बैठता है या सिर्फ उन पन्नों को खुद पलट करके ऐसे देखने की कोशिश करता है कि आज मुझे स्कूल में क्या पढ़ाया गया। तो शुरुआत हमें वहां से करनी है
3: जी।

0: ये नहीं कि जब बच्चा क्लास टेंथ में आ गया तो उस चीज को आपने एक फोबिया बना दिया कि अब आपके बोझ आ गए हैं और आपको बिल्कुल करो या मरो की स्थिति को में पहुंच चुके हैं और इसको आपको पूरा करना ही करना है
1: जी।
0: कहीं ना कहीं एक और बात मैं बोलना चाहूंगी दोबारा से कि ये जो मार्क्स है ना ये इतना बच्चों के लिए ट्रॉफी सिंबल नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉफी सिंबल है कि मेरे बच्चे ने 99% स्कोर किया 95% स्कोर किया। आप अपने बच्चों से उम्मीदें रखते हैं, हर माँ बाप रखते हैं और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस उम्मीद को पूरा करने के लिए कब आपने उसका हाथ पकड़कर साथ उसके बैठ करके ये बताया कि कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कितने भी नंबर आ जाएं,
2: बिल्कुल
0: तुम लाइफ में कुछ बन पाओ नहीं बन पाओ, आगे बढ़ पाओ नहीं बढ़ पाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। सिर्फ ये एक लाइन एक बच्चे को जो आत्मविश्वास दे सकती है वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं दे सकता, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं दे सकता, कोई काउंसलर नहीं दे सकता
1: जी।
0: क्योंकि ये एक ऐसा कनेक्शन फॉर्म करता है जहां बच्चे को ये एहसास होता है कि मुझे ये पढ़ाई किसी को दिखाने के लिए नहीं करनी है, लेकिन एक विश्वास जो मेरे माँ बाप का मेरे ऊपर है, जो माता पिता ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, उसे मुझे आगे बढ़ाना,
1: उसे प्रूव करना है कहीं। लेकिन नहीं लगता आपको कि ये एक स्टिग्मा हो चुका है सोसाइटी लेवल पर, या जैसे आपने पेरेंट्स का जिक्र किया तो एक मजबूरी भी है शायद पेरेंट्स की, क्योंकि जब बच्चों का परसेंटाइल देखे जाते हैं, परसेंटेज देखे जाते हैं, पता चला कि साहब किसी का 92% आ रहा है, किसी के 95, अब तो 99% नंबर भी मिलने लगे बच्चों को, हालांकि हमारे टाइम पे ऐसे हम लोगों को तो नहीं मिलते थे, लेकिन जहां 99 के स्कोर तक कुछ बच्चे पहुंच रहे हैं और वहां पर अगर कोई बच्चा 90% भी ला रहा है तो ये माहौल बन जाता है कि अरे इसके तो 90% आए, मतलब इतने कम ये क्या कर पाएगा। ये पेरेंट्स में जो बना हुआ एक डर है, आपको नहीं लगता कि पहले ये निकल जाए?
0: ये जो डर है ना ये कलेक्टिवली नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जब कलेक्टिवली हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं तो आप भी ये मानेंगे कि हर अभिभावक जो होता है ना वो हामी जरूर भरता है कि हाँ आप सही कह रहे हैं, परेशान होने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही वो भीड़ से अपने घर के दरवाजे के अंदर पहुंचता है तो उसको अगर आंख बंद करके वो सोचे ना तो वो सच में ये बात बोलता होगा अपने आप से, बात तो सही कह रहे हैं लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया।
1: वही चीज।
0: यहाँ मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जो सोच बदलने की बात हो रही है ये हमें इंडिविजुअल स्तर पे करनी पड़ेगी। हर एक पेरेंट जब इस विश्वास के साथ अपने बच्चे से बात करेगा कि जो कंपटीशन का माहौल हो रहा है, जिस तरह से हमें आगे बढ़ना है, जिस तरह से चीजें चल रही हैं, उसमें एवरेज होकर के भी आप कुछ अलग कर सकते हैं, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको पता लगाना पड़ेगा। देखिए बहुत नॉर्मल सी बात है, हर कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकता,
1: राइट।
0: आजकल के टाइम में भी जिस तरह से कंपटीशन है या बहुत पहले से चला आ रहा है, जितनी सीट्स हैं, जिस हिसाब से बच्चे परफॉर्म करते हैं, जो लोग निकलते हैं, लेकिन मेरा आज भी ये मानना है कि अगर आप 99% नहीं स्कोर कर पा रहे तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आप कुछ लाइफ में कर नहीं पाएंगे।
1: एग्जैक्टली। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे आपके बीच में जहां पर बहुत कम स्कोर करने वाले भी इतिहास रच के चले गए। क्यों भावना?
2: बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी मैम आपने अभी कहा है कि ना कि 99% के बावजूद भी 90% लाने वाले भी लोग बेस्ट हो सकते हैं, लेकिन ये बात जो है माता पिता के मन में ये कैसे बिठाए जाए, क्योंकि वो इतना प्रेशर कर देते हैं कि बच्चा इंटर किया नहीं। आप आज हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा सरकारी नौकरी में आए ही आए, क्या इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है? ये माता पिता के दिमाग में कैसे लाई जाए ये बात?
0: भावना जी, ये जो मार्क्स है ना, कब तक? जब तक आप ग्रेजुएशन करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड की पोजीशन कब तक?
2: जी,
0: जब तक आप वहां पर पहुंच रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जो चेंजेस आपके अंदर आने वाले हैं, कहीं ना कहीं लाइफ में, आज मैं फिर इस बात को बोलूंगी कि वही इंसान सक्सेसफुल हो पाता है जो उस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा होता है कि कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ तो क्या, मैं कुछ और जरूर तलाश लूंगा अपने लिए। फेल हो जाना या नंबर कम लाना वो आपको एक दूसरी अपॉर्चुनिटी भी उसके साथ साथ देते हैं कि ये एक पर्टिकुलर चीज है जहां मैं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि अब समय मेरे लिए रुक गया। इनफैक्ट अब तो जिंदगी की शुरुआत हुई है, असली समय तो अब शुरू हुआ है जब वो आपके घर के उन बाउंड्रीज, उन सेफ स्पेस से आगे निकलेगा।
1: एग्जैक्टली,
2: बहुत अच्छी बात आप बोल रही हैं मैम, और ये बात सिर्फ और सिर्फ माता पिता के लिए ही नहीं है, ये बात उन सारे बच्चों के लिए है कि सिर्फ जिंदगी यहीं खत्म नहीं हो जाती। बहुत ही अच्छी बात आप बोल रही, क्योंकि ये बात सिर्फ माता पिता ही नहीं समझा सकते, ये बात आप जैसे काउंसलर भी समझा सकते हैं।
0: एक माता पिता अपने बच्चे का सबसे बड़ा सपोर्टर होता है।
2: जी
0: विश्वास मानिए, आज भी हर बच्चा जो मेहनत करता है और जब उसके पिताजी घर में आ रहे होते हैं और एक नजर जब उस बच्चे की अपने पिता जी पे, अपने माता जी पे पड़ती है, तो उसे आज भी ये लगता है मुझे दुनिया को नहीं, मुझे इनको प्रूव करना है।
1: Correct.
0: और सिर्फ उस वक्त अगर आप अपने बच्चे के कंधे पे हाथ रख के ये कह देंगे ना कि बेटा मुझे पता है तुमने मेहनत की है, चाहे जितनी भी की हो, जितना पढ़ लिया है उतना ही परफॉर्म कर लो। यकीन मानिए, अगर बच्चे ने अपना सिर्फ 60% कोर्स भी पूरा करा हुआ है ना, और उस 60% को वो अगर 100% लगन से रिवाइज कर लेगा, जो टाइम पीरियड इस वक्त चल रहा है, बिल्कुल एग्जाम्स 2-3 दिन ही बाद हैं, शुरू होने वाले हैं, उसके परफॉर्मेंस में 70-80% इम्प्रूवमेंट आ जाएगा।
1: करेक्ट, और वैसे भी देखिए स्काई इज द लिमिट, आपके पास खुला आसमान है, आप अपने आप को जैसा भी मोल्ड करना चाहते हैं ढाल सकते हैं, बशर्ते आपको एक अच्छा गाइडेंस मिले। और शायद रेडियो खीरी 88.4 मेगाहर्ट्ज अपने तमाम लिसनर्स को इसी तरीके से गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो बीइंग अ पेरेंट आप हमारे शो को सुनिए, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो बीइंग अ स्टूडेंट आप हमारे शो को सुनिए, और कुछ ऐसी बातें अपने अंदर बदलने की कोशिश कीजिए जो आपके फ्यूचर को और बेहतर तरीके से डिजाइन कर सकती हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान विदिशा सिंह जी हमारे साथ में हैं, जो काउंसलर हैं और जो आपको ये बता सकती हैं कि एक साइकोलॉजी कौन सी काम कर रही होती है कि बच्चा उस फोबिया को अपने अंदर से निकाल सके। लेकिन विदिशा जी, आपने कामनेस की बात की कि पेरेंट्स जब आए तो एक बच्चों को कंसोल करते हुए कामनेस दें कि बेटा तुम चिंता मत करो। हमें भी ऐसा लगता है कि अगर हम लोग अपने थोड़ा सा जिंदगी में थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो जब हमारे माता पिता हमारे सामने आते थे तो हमें डर ये लगता था कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, कि डांट पड़ जाए। लेकिन आज बच्चे मुझे लगता है कि उस गलती के बारे में नहीं सोचते कि डांट पड़ेगी अगर कुछ गलत करेंगे, लेकिन हाँ उनके दिमाग में ये जरूर है स्कोर अच्छा नहीं हुआ तो जरूर हमारी खिंचाई होने वाली है, डांट पड़ने वाली है। साइकोलॉजी जो काम कर रही होती है, क्योंकि मैं आपसे थोड़ा सा टेक्निकली जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या होता है कि हम बच्चे के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं और अपने ऊपर भी क्रिएट करते हैं, और उसका रिजल्टेंट क्या होता है कि हमने देखा बहुत सारे कोटा में बच्चों को देख लीजिए जो डेथ कर जाते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स कर लेते हैं, और छोटे छोटे बच्चों के अंदर आज के डेट में आप देखिए डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं बच्चे, जबकि ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारियों के बाद होता था। तो इसको कैसे कैसे दूर करें, इसके लिए क्या फ्लो चार्ट बना के चलें, क्या क्या हमको सेगमेंटाइज करना होगा अपनी चीजों को?
0: बहुत दुख होता है जब ऐसी कोई खबरें मैं सुनती हूँ, या कभी कभी ऐसा होता है कि ऑलरेडी मैं कुछ ऐसे पेरेंट्स से डील कर रही होती हूँ जिनको मैं समझाने में बहुत असमर्थ रहती हूँ कि इतनी प्रेशर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद भी बहुत रिलक्टेंट होते हैं, वो मेरी बात को सुनने को नहीं तैयार रहते। लेकिन इन सब में सबसे पहले मैं बोलूंगी कि जो सबसे ज्यादा कम समय हम देते हैं वो शायद हम देते हैं इमोशंस के ऊपर ध्यान नहीं देकर के। बच्चा आया और उसने बोला मम्मी मुझे डर लग रहा है, तुरंत क्या जवाब आता है? डरने की कोई जरूरत नहीं है।
1: या फिर कंपेयर कर देते हैं हम किसी से, देखो वो तो नहीं डरता।
0: एग्जैक्टली लेकिन आपको मैं सच बताऊं, इसका शायद सही तरीका ये होता है कि उस वक्त आप बच्चे को बोलिए कि हाँ बेटा मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, ऐसे समय में ये होना बहुत आम बात है। जब बच्चा जो फील कर रहा है, जो भी उसके डर, भय या एक तरह से आत्मविश्वास नहीं आ पाना, जो भी उसके इमोशंस हैं, अगर आप उन इमोशंस पे ध्यान दें और उनको एक्सेप्ट करें कि हाँ मेरा बच्चा ऐसा फील कर रहा है। और इनफैक्ट ये बात मैं बच्चों के लिए भी बोलूंगी कि जब आपको ऐसा फील हो कि मुझे घबराहट हो, तो बिल्कुल ही जैसे जिसको हम अपने टर्म्स में एक फेक पॉजिटिविटी भी कहते हैं
1: जी,
0: जिसमें हम कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं फील हो रहा हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब आप कुछ फील कर रहे हैं और आप अगर उसको दबाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो इमोशन शूट अप करेगा.
1: एग्जैक्टली.
0: तो जब आपको डर लगे, जब आपको एंग्जाइटी हो, हर बच्चे से भी मैं ये बोलूंगी, उनके माता पिता को भी ये बोलूंगी कि आप एक्सेप्ट करिए कि आपके बच्चे को डर लग रहा है.
1: जी.
0: बहुत नॉर्मल है. एंग्जाइटी हो रही है, हार्ट बीट्स बढ़ रही हैं, घबराहट हो रही है. आप अपने बच्चे को बताइए कि हाँ ये बिल्कुल नॉर्मल है. इसके लिए बच्चों को मैं एक बहुत क्विक टिप देना चाहूंगी.
1: प्लीज.
0: कि सबसे पहले तो जब आप अपने रिविजन के टाइम पे या नॉर्मल भी अगर आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमने देखा होगा कि बच्चे अमूमन क्या करते हैं कि वो 1.5 से 2 घंटे का पूरा शेड्यूल बना करके रखते हैं. और अगर 2 घंटे से पहले बच्चा कमरे से बाहर आ गया तो उसको घर के सारे लोग ऐसी निगाहों से देखते हैं जैसे कि उसने कितनी बड़ी कोई गलती कर दी. बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन स्पैन सिर्फ 35 मैक्सिमम 40 मिनट्स का होता है. उसके बाद अगर आपका बच्चा बैठ के पढ़ भी रहा है तो यकीन मानिए वो डिस्ट्रैक्टेड है, जिसमें उसको भी नहीं पता होता कि वो ऑलरेडी डिस्ट्रैक्शन में जा चुका है. बच्चों के लिए क्विक टिप ये है कि हर 30 मिनट पे एक अलार्म क्लॉक रखिए और उसमें अलार्म सेट करिए. जैसे ही 30 मिनट्स का टाइम पीरियड चला जाएगा, आपका अलार्म बजेगा, आप उसको बंद करिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और क्विकली आप अपने आप को ये एक ऐसे फेज में ला करके रखिए कि आप यहाँ पे रिवाइज कर पाए, देख पाए कि आप जब आपने अलार्म बंद किया तो आप पढ़ रहे थे या आपका माइंड कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड था. ये एक अवेयरनेस क्रिएट करता है.
1: ठीक है.
0: बच्चा जितनी ज्यादा 35 to 40 मिनट्स के बाद जब एक क्विक राउंड लेके आएगा, घर में एक अच्छा माहौल देखेगा, माता पिता भाई बहनों या आजू बाजू थोड़ा सा वो बाहर निकल के आएगा, तो वो दोबारा से रेडी होगा अपने कॉन्सेंट्रेशन स्पैन को शुरू करने के लिए.
1: बहुत ज्यादा बच्चों पर लोग बोलते हैं कड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे जमाने में तो कहा था समझावन लाल होते थे, समझावन लाल छड़ी को बोलते थे हमारे मास्टर्स की, जब तक तुम्हारे ऊपर छड़ी नहीं पड़ेगी तब तक तुमको आएगी नहीं. कहते मुक्का पड़े घमाघम विद्याए झमाझम, ऐसा बोलते थे. तो अब कहीं ना कहीं वो नैरेटिव्स बदल चुके हैं पढ़ाई के,
0: और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा भी है, क्योंकि बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ इसके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी को आप डरा करके बिठा तो सकते हैं लेकिन पढ़ा नहीं सकते.
1: बहुत बढ़िया. करेक्ट.
0: और जैसे आपने मुझे बोला कि ऐसा क्यों माँ बाप को लगता है कि अगर वो डांटेंगे नहीं, अपनी आवाज को ऊंचा करके नहीं बोलेंगे तो उनकी बात सुनी नहीं जाएगी. हमेशा हमें अपनी बात बोलने के टाइम पे अपने टोन पे ध्यान देना चाहिए.
1: जी.
0: आवाज ऊंची करके, चिल्ला करके, यकीन मानिए आप उस टाइम बच्चे को, जैसे ही आप चिल्लाना शुरू करते हैं बच्चा का दिमाग ऑलरेडी बंद हो जाता है, उसे सुनाई देना, समझना सब कम हो जाता है. उससे ज्यादा बेहतर ये है कि आप अपनी एक फिक्स्ड टोन रखिए. सीरियसली, बेटा मैंने तुम्हें बता दिया है ये समय पढ़ने का है, जाओ कमरे में बैठो पढ़ो. बात खत्म हो जाती है.
1: ठीक है. जैसे मान लिया अगर वो फिर भी नहीं मान रहे, देन
0: ये कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के साथ आता है. आप ये एक्सपेक्ट करें कि एग्जाम्स के पहले बिल्कुल आपने अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर करना शुरू कर दिया, यही मैं बोलना चाहूंगी कि आपका बच्चा किसी भी क्लास में हो इस वक्त, ये टाइम है एज अ पेरेंट आपको ऑब्जर्व करने का.
1: ठीक है.
0: कि आपका बच्चा जो है वो बोलने पे भी पढ़ने जा रहा है या नहीं जा रहा, ये आपको रियलाइज कराएगा कि अब समय जो है अभी वाला रुक चुका है. फिर मैं बोलूंगी समय खत्म नहीं हुआ है.
1: एग्जैक्टली.
0: ये वाले साल का जो समय था वो पूरा हो चुका है, अगला साल फिर आएगा. शुरुआत से ही आप एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस जो है अपने बच्चे का जो शेड्यूल है उसके ऊपर काम करिए. अमूमन हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे बड़ी गलती यहाँ करते हैं कि हम हमेशा बहुत हड़बड़ाहट में रहते हैं. जब समय आ गया तभी करना है.
1: लास्ट आर
2: मतलब जब से सेशन शुरू होता है तब से हम पढ़ाई बच्चों के लिए, आपने अप्रैल मई में सारी चीजें फिर से पढ़ाई एक बार शुरू हो जाती है और जुलाई से तो सभी फिर से कंटिन्यू हो जाते हैं. अब तो जून में ही क्लासेस शुरू होने लगी हैं, तो पेरेंट्स को चाहिए उनका शेड्यूल अभी से बनाना शुरू कर दे, चाहे वो 2 घंटे का हो या 3 घंटे का हो. और कहीं ना कहीं मैम ये भी जरूरी है कि बच्चों के साथ माता पिता को खुद भी बैठ के पढ़ना चाहिए या पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मोबाइल का आज जो समय है.
1: करेक्ट.
2: वो कहीं ना कहीं बच्चों और माता पिता को डिस्ट्रैक्ट कर दे रहा है। आशीष जी आपका क्या कहना है?
1: नहीं, बिल्कुल सही कहा, स्क्रीन टाइमिंग बच्चों की बहुत कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए। मुझे लगता है कि रैंडमली अगर बच्चा फोन उठा ले रहा है तो मुझे लगता है उसको एक, जैसे आपने बोला कि फिक्स टाइम होना चाहिए कि बेटा अब उठिए, अब आपका टाइम हो गया, जाइए पढ़िए। इसी तरीके से अगर उनको मोबाइल देखना है या टीवी देखना है, क्योंकि आप रोक तो नहीं सकते उन्हें कि ऐसा मत करो क्योंकि आप उन्हीं के सामने मोबाइल देख रहे हो। तो बच्चों के आजकल अक्सर सवाल भी होते हैं, भावना आप तो कर रहे हो, मुझे रोक रहे हो। तो
0: कैटेगरी के लिए देखिए, क्योंकि इसका जवाब हर एज ग्रुप के लिए बहुत डिफरेंट, मतलब जैसे जब हम छोटे बच्चों को केटर करेंगे तो अलग होगा, बड़े बच्चों के लिए इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि आजकल काफी ज्यादा स्कूल्स भी डिपेंडेंट हो गए हैं मोबाइल फोन्स पे ही, बहुत सारे मैसेजेस हो गए, जो भी पढ़ना है ये सारी चीजें भी
1: कंटेंट आता है उस पे।
0: एग्जैक्टली, और कहीं ना कहीं बच्चों ने भी एक ये आदत बना ली है कि मैं मोबाइल पे पढ़ूंगा, मेरा ये पर्सनली मानना है। वैसे
1: कोविड ने तो ये सिखा दिया है कि पढ़ो
2: मोबाइल से पढ़ो,
0: लेकिन मेरा, फिर मैं बोलूंगी, मेरा ये एक बहुत पर्सनल ओपिनियन यही है कि जो भी पढ़ाई हो रही है, जितनी अच्छी पढ़ाई आप बुक से कर सकते हैं, उतनी अच्छी पढ़ाई शॉर्ट नोट्स की तरह आप एक क्विक रिविजन तो यूट्यूब पे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, आपको बैठ करके कंसिस्टेंटली पढ़ना है। जब हम किसी चीज को विजुअली देखते हैं तो देखिए, ये तो बहुत डेफिनेट है कि विजुअल देखने में हमें वो चीज दिमाग में बैठ जाती है, लेकिन आपको एग्जाम्स ओरली नहीं देने होते राइट, आपको बड़े बड़े लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स, या मैं कहूंगी एमसीक्यूज भी आपको करने होते हैं। उसके लिए अगर आप प्रॉपर ब्रीफली पढ़ाई नहीं करेंगे, आप पैराग्राफ वाइज रीडिंग्स अगर नहीं करेंगे तो आपको उन आंसर्स को लिखने में परेशानी डेफिनेटली आएगी।
1: करेक्ट,
0: आप अपना जो टाइम शेड्यूल है, अगर आप एक घंटे में 45 मिनट्स बुक्स को दे रहे हैं तो 15 मिनट का टाइम आप मोबाइल फोन से, यूट्यूब से, उसके रेफरेंसेस को पढ़ने के लिए दे लीजिए। लेकिन आजकल शायद इससे ऑपोजिट चीजें चल रही हैं कि 45 मिनट्स स्क्रीन टाइम देखते हैं और 15 मिनट आप उसके बाद उन किताब के जो भी आपके टॉपिक्स हैं उन पेजेस को आप आगे पीछे करके देख लेते हैं।
1: मुझे लगता है कि बच्चों को इस तरीके की यूटिलिटी या फैसिलिटीज देनी चाहिए, लेकिन उसको मॉनिटर आप करते रहें, बीइंग अ पेरेंट बहुत जरूरी।
0: मैं फिर बोलूंगी कि अगर बच्चा इतना बड़ा है कि आपने मोबाइल फोन उसके हाथ में दिया, ऐसा तो होगा नहीं कि बच्चे ने,
1: नहीं, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पर्सनल मोबाइल फोन्स नहीं है लेकिन अपने पेरेंट के मोबाइल फोन तो यूज कर रहे हैं।
0: परफेक्ट परफेक्ट।
1: और जैसे आपने यूट्यूब का जिक्र किया, या वो यूट्यूब पे हो सकता है कुछ कार्टून्स देख रहे हो या कुछ पोएम सीख रहे हो या कुछ इस तरीके के इंटरेक्टिव सेशंस लर्न कर रहे हो, तो ऐसे में हमें कम से कम ये मॉनिटर तो करना जरूरी है ना कि वो देख क्या रहे हैं।
0: एग्जैक्टली, इसके लिए तो मैं हमेशा बोलूंगी कि वो देख क्या रहे हैं, ये हमेशा पेरेंटल कंट्रोल में होना चाहिए। क्योंकि ये भी आपके माध्यम से इस बात को भी मैं अवगत सच में कराना चाहूंगी कि जो बच्चे YouTube किड्स करके आता है उस पे भी आप मेरी बात मानिए, ऐसे ऐसे कंटेंट आते हैं जो शायद बच्चों को नहीं देखने चाहिए, जो उनकी नजरों के, लेकिन वो एनिमेटेड होते हैं, बच्चों को भी नहीं पता होता कई बार, मुझे लगता है कि
1: बिल्कुल सही कह रही हैं।
0: देखिए, मैं आपको बहुत छोटे, क्योंकि मैं बहुत सारे स्कूल्स भी विजिट करती हूँ, ऑनलाइन पेरेंटिंग सेशंस भी लेती हूँ, मदर्स से भी स्पेशली मेरी बहुत बात होती है, हमेशा एक सवाल आता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे बच्चे को इसके बारे में पता कहाँ से चला।
1: अगर
0: मतलब यहाँ क्योंकि हम एक नॉर्मल पेरेंटिंग के ऊपर भी बात कर रहे हैं, तो मेरा दोबारा से ये कहना है कि अगर आपको ये पता चल भी गया कि आपके बच्चे को किसी एक पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक के बारे में पता चला है जिसको आपको लगता है कि इस एज ग्रुप में उसे नहीं पता
1: जो
0: होना चाहिए
1: लगता है,
0: बिठाइए, डांटने से पहले अपने बच्चे से उसके बारे में बात करिए। ये बिल्कुल मत पूछिए कहाँ से पता लगा, क्योंकि यकीन मानिए अगर वो किसी दोस्त ने बताया होगा तो आपका बच्चा आपको कभी नहीं बताने वाला कि मुझे मेरे दोस्त ने बताया है। जी
1: जी।
0: लेकिन जब आप बोलेंगे कोई बात नहीं, मुझे नहीं फर्क पड़ता तुमने ये कहां से सीखा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास अवेलेबल है वो आधी अधूरी है। मैं कह रही हूँ शायद अगर वो अमूमन बोलचाल की भाषा में गाली के बारे में ही क्यों ना हो, जिस दिन आपने अपने बच्चे को ये परमिशन दे दी कि मैं ही तुम्हारा गूगल हूँ, मैं ही तुम्हारी टीचर हूँ, मैं ही तुम्हारे लिए यहाँ अवेलेबल हूँ,
2: बिल्कुल
0: आओ उस सवाल को मुझसे पूछो, हम दोनों साथ मिलके देखेंगे कि तुम्हारी एज ग्रुप के हिसाब से कौन सी चीज कितनी चाहिए।
1: जी सही बात है, वो कहीं ना कहीं बच्चों को भी इस बात के लिए उनका नर्चर करना जरूरी है कि आप भी समझें क्या आपके लिए ठीक है क्या नहीं ठीक है। ठीक है, जहां तक बात हम लोग कर रहे हैं पेरेंटिंग को लेकर भी कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम्स के खासकर टाइम पर बच्चे बहुत सारी उलझनों में होते हैं अपने नोट्स को लेकर, अपने कंटेंट को लेकर। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि थोड़ा आप सेगमेंट

0: दोबारा आपने इनहेल किया, तो एक तरह से साइकिल की तरह फॉर्म हो गया, एक बॉक्स फॉर्म हो गया। आपने इनहेल किया और आपने एक्सहेल किया और उस बीच में आपने 4 सेकंड का
1: स्टे किया,
0: स्टे रखा। इससे आपकी जो स्ट्रेस है, आप जब सुबह उठे हैं तो आपका जो एनवायरमेंट है वो आपको अपने कंट्रोल में फील होगा।
1: ओके।
0: दूसरा, अपने दिन की शुरुआत एफर्मेशन से कीजिए। दिन भर आप ये सुनते होंगे कि बेकार है, कुछ नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा बदलते हैं, दुनिया नहीं बोल रही, लेकिन मेरी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप बहुत जोर से अपने आप को गले लगाइए, हक करिए जैसे कहते हैं। जैसे जब मैं ये बात बोलती हूँ तो हर बच्चा बहुत सरप्राइज्ड होता है, हम अपने आप को कैसे हक कर सकते हैं। करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। हक करिए और बोलिए आई एम इनफ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है।
1: करेक्ट।
0: मैं आत्मविश्वास से भरी हुई हूँ। सुनने में ये बातें बहुत नॉर्मल रहती हैं, लगती हैं, लेकिन जैसे कहते हैं कि जब आपको क्लास स्कूल में क्यों होता है कि एक टाइम टेबल सेट किया जाता है, तो ये समझ लीजिए कि आप अपने एनर्जी फील्ड का एक टाइम टेबल सेट कर रहे हैं इन दो चीजों को करके।
1: जी।
0: तीसरा पॉइंट आता है, हाइड्रेटेड रहिए। पानी आपको स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन फील कराता है, बहुत लगातार नहीं, लेकिन एक पानी की बोतल अपने पास हमेशा भर के रखिए और दिन भर पढ़ते वक्त भी आप उसको जरूर पीजिए।
1: ठीक है।
0: खाने की बात करें तो प्लीज जंक फूड से इस वक्त बिल्कुल दूर रहिए। मैं मानती हूँ बहुत टेस्टी लगता है बच्चों को, इस वक्त मन भी बहुत करता है कुछ चटपटा बना दो मम्मा, एग्जाम चल रहे हैं, अच्छा लगेगा, लेकिन फ्रूट्स खाइए, अच्छी चीजें खाइए जो आपको एक्टिव रहने में बहुत मदद करेंगे।
1: एग्जैक्टली।
0: और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आजकल मुझे लगता है 90% बच्चे नहीं करते हैं, प्लीज प्लीज समय पे सोना शुरू कर दीजिए। मैक्सिमम मैं कह रही हूँ 11 o'clock, 11:30 इसको खींच लीजिए, लेकिन टाइम पे सोना शुरू करिए। जब आप अपना टाइम थोड़ा सा सेट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि मॉर्निंग में अगर आप 7 बजे उठ रहे हैं, तो अगर आपने 11 बजे सोना शुरू कर दिया तो आप अगर 6 से 6:30 बजे उठना शुरू कर देंगे, वो आपको फोकस करने में बहुत हेल्प करेगा।
1: मतलब एक फिक्स स्लीप साइकिल आपका होना चाहिए,
0: आपको टाइम शेड्यूल, जो कहते हैं ना, बहुत ज्यादा बच्चे जो है ये बात बोलते हैं कि अरे 24 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला।
1: जी।
0: क्योंकि आपने अपने दिन की शुरुआत बहुत देर से की है।
2: बिल्कुल सही बात है। मेरा एक प्रश्न ये है कि हमारे जो ज्यादातर श्रोता हैं, रेडियो खीरी के सुनने वाले श्रोता, वो ज्यादातर ग्रामीण समुदाय से हैं, और जब हमारी टीम विजिट करने जाती है तो आमतौर पे माता पिता का एक सवाल होता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के करी है का, हम क्यों पढ़ाएं उन्हें। आपको पता है बहुत ज्यादातर बच्चे यहाँ पे एनरोल है सरकारी स्कूल में, वहाँ की पढ़ाई की वजह से कि क्या वजह है वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, और जो भेजना भी चाहते हैं तो वो उनका यही प्रश्न रहता है कि आधे समय में बच्चा वापस आ जाता है। उनको पढ़ाई की, ऐसे माता पिता के लिए एक ऐसा संदेश कुछ दीजिए कि उनके अंदर भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने की एक ललक हो, पढ़ाई के प्रति भी। वहाँ के जो माहौल है, एनवायरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके घर का माहौल नहीं बन पाता है, आखिर क्या वजह है।
0: भावनव जी, क्योंकि आपको पता है आज भी हम जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पर हम पढ़ाई को सीधे सीधे नौकरी से ही जोड़ते हैं।
2: जी
1: बिल्कुल।
0: कहीं ना कहीं हम,
1: और वो भी सरकारी नौकरी से,
0: कहीं ना कहीं हम बहुत असफल हैं ये बताने में कि अगर आपका बच्चा आज पढ़ लेता है तो वो अपने लिए एक बदलाव ला सकता है। जिस माहौल में आप रह रहे हैं वो आगे चल के अपने बच्चों के उस माहौल को बदल सकता है। जैसे हमेशा एक बात होती है कि ये महिलाओं के लिए भी कहा जाता है, इतना पढ़ लिख करके घर संभाल रही हो,
2: संभाल रही है,
0: लेकिन एक पढ़ी लिखी महिला जिस तरह से अपने घर को संभाल रही होगी
1: या संभाल सकती है,
0: या जैसे संभाल सकती है, और एक ऐसी महिला जिसको नहीं पता है कि क्या करना चाहिए, अच्छा सेहतमंद खाने के लिए किस तरह से क्या बनाना चाहिए, घर का माहौल कैसे रखना चाहिए उसमें, और जो पढ़ी लिखी है जिसको जानकारी है इन सारी चीजों के बारे में, बहुत ज्यादा अंतर होगा। तो बस सबसे पहले तो माता पिता को ये समझना चाहिए कि अगर मेरा बच्चा पढ़ लिख लेगा तो वो अपने लिए एक ऐसा जीवन खोज सकता है, या ऐसे एक जीवन को तैयार कर सकता है

0: जिसमें उन्हें प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि वो खाएगा क्या।
1: बिल्कुल
2: ठीक है। बहुत सारी चर्चा हुई है, मुझे लगता है कि लेकिन एक बहुत अगर रैपिड राउंड में मैं जाऊं तो मैं कुछ कुछ चीजें आपसे पूछना चाहूंगा कि बच्चों को डांटना चाहिए?
0: डांटना चाहिए लेकिन अपने शब्दों पे काबू रखना चाहिए।
2: ठीक है, बच्चों को पढ़ाई में हम कैसे लगाएं और क्या ऐसा कह दें कि वो तुरंत जुट जाएं?
0: सबसे पहले पढ़ाई बहुत जरूरी है, ये एक जो फोकस है वो आपको बच्चों को हमेशा बता करके रखना चाहिए। एक एनवायरमेंट, एक डिसिप्लिन, एक रूटीन बच्चों को आपको सेट करके देना ही पड़ेगा।
2: बच्चों को मोबाइल से कितना जल्दी दूर करें?
0: बहुत जल्दी।
1: कितने घंटे देखें मोबाइल?
0: अमूमन पूरे दिन भर में शायद 1 से 2 घंटा सफिशिएंट है, छोटे बच्चों की बात में।
1: माँ बाप कितने घंटे देखें?
0: ये उनकी पर्सनल चॉइस है कि वो मोबाइल फोन के अलावा अपने आप को और दूसरे किन चीजों में इन्वॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये तो देखिए एक ब्लेम गेम हो गया फिर।
2: Correct.
0: आपने देखा, मैंने देखा, मैंने नहीं देखा, आपने देखा, और इस लड़ाई में हम कहीं भी कभी भी कहीं पहुंच नहीं पाएंगे।
2: करेक्ट। टीचर्स को क्या ऐसे में करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के लिए?
0: टीचर्स को अवेलेबल रहना चाहिए, उन्हें बच्चों के ऊपर ये विश्वास जताना चाहिए कि जो भी आपने किया है सब कुछ बहुत अच्छा होगा और ये सिर्फ एक एग्जाम है। और पेरेंट्स के साथ साथ जो रिलेटिव्स हैं, मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब बच्चा एग्जाम देके आ जाए तो प्लीज मत पूछे एग्जाम कैसा गया, दे आया, अच्छा ही गया
2: होगा, वो देखा
0: जो होगा वो देखा जाएगा।
2: ठीक है। बहुत सारी पीटीएम्स होती हैं जिसमें पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि किस पॉइंट को सबसे ज्यादा पीटीएम में डिस्कस होना चाहिए इन बिटवीन पेरेंट एंड टीचर?
0: बच्चे का बिहेवियर कैसा है क्लास में, मेरा बच्चा इन्वॉल्व रहता है कि नहीं रहता है, क्या कुछ ऐसा है जो आपको बच्चे के बिहेवियर में एज अ टीचर लगता है कि घर के माहौल में कुछ ऐसे चेंजेस करने चाहिए?
2: योगा करना चाहिए?
0: बिल्कुल करना चाहिए।
2: बच्चों के लिए कितना फिट है करना योगा?
0: बच्चों के लिए 110% फिट है। डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, इनफैक्ट क्लास में भी जब बच्चे पहुंचे या जब दिन की शुरुआत हो तो एक अच्छी ब्रीदिंग टेक्निक से अगर आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं है।
2: क्या एग्जामिनेशन के टाइम पर उनको खेलने का मौका देना चाहिए?
0: बिल्कुल देना चाहिए।
2: कितने टाइम का?
0: ये डिपेंड करता है कि बच्चा कितना प्रिपेयर्ड है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि 35 to 40 मिनट्स के बाद आप अगर आपका बच्चा खुद कमरे से बाहर नहीं निकल रहा तो आप वहां जाकर के कोई एक जोक सुना के चले आइए, कुछ एक ऐसा एनवायरमेंट वो कर लीजिए, बच्चे का हाथ पकड़ करके टेबल चेयर से उठाइए और बोलिए आओ एक राउंड लगा करके आते हैं।
2: ठीक है, तो बहुत सारी चर्चा हमने की है और निश्चित रूप से ये चर्चाएं हमें लगता है कि हमारे लिसनर्स के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाली हैं।
1: बहुत ज्यादा आशीष, बहुत ज्यादा, और खासकर स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी।
0: और मेरी तरफ से भी एक रिक्वेस्ट दोबारा है पेरेंट्स के लिए, जिन्होंने भी ये सुना हो, जहां से भी वो सुन रहे हैं, जब वापस आप घर जाइए तो एक बार बहुत जोर से अपने बच्चे को गले लगाइए और बोलिएगा कि मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, मुझे पता है तुम कुछ ना कुछ तो बेटा कर ही लोगे। ये बहुत जरूरी है कि आपका बच्चा क्या करना चाह रहा है, अगर आप उस चीज पे आत्मविश्वास नहीं दिखाएंगे और अगर आपका बच्चा थोड़ा सा जिद्दी है तो वो उस चीज को करेगा ही करेगा।
2: Exactly.
0: बस आपसे डिस्कनेक्ट होके करेगा और उसके बाद फिर मुझे लगता है कि सिर्फ परेशानियां के अलावा कुछ और हाथ नहीं आता
1: जी।
0: है तो बेहतर है, एक परिवार है तो हाथ पकड़ करके आगे सब लोग जब बढ़ेंगे तो सबको वो खुशी मिलेगी और सब उस चीज को, उस सक्सेस को एंजॉय कर पाएंगे।
1: बिल्कुल, श्रोताओं पूरा आसमान आपका है।
2: बिल्कुल, एक लास्ट सवाल, रेडियो खीरी में आप आए कैसा लगा?
0: बहुत अच्छा और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं चाहूंगी कि आगे और इस तरह के सेशंस होते रहें ताकि लोगों को सुनने का भी मौका मिले और ग्रेजुअली वो समझ भी पाएंगे कि ये सेशंस हम क्यों कर रहे हैं और एक्चुअली इसके पीछे का रीजन क्या है।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
5: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाद जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: इस आजादी के जश्न को मनाइए और भी खास द हाउस ऑफ राधिका स्वीट बेकरी एंड रेस्टोरेंट के साथ। मिठाइयों की मिठास, बेकरी का स्वाद, रेस्टोरेंट का जायका। द हाउस ऑफ राधिका, एड्रेस प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार, मुरादाबाद।

0: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: मेरा गांव मेरी धरोहर है।
2: मेरा गांव मेरी धरोहर पंच दिवसीय अभियान से जुड़िए, यही तो है हमारी पहचान। पंच दिवसीय अभियान के माध्यम से हम जोड़ेंगे अपनी भूली बिसरी कविताओं, लोक गीतों, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से। गांव की मिट्टी की खुशबू, हमारी बोली, हमारे लोकगीत और हमारी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं, यही तो है हमारी असली पहचान। तो आइए अपनी सांस्कृतिक धरोहर को याद करें, उसे सजोएं और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। मेरा गांव मेरी धरोहर, अपनी संस्कृति अपनी पहचान। तो इस अभियान में आप भी हिस्सा लीजिए, हमें अपनी फोटो वीडियो जरूर सेंड कीजिए। मेरा गाँव मेरी धरोहर।
1: मेरी

0: पंचायतों से।
1: आज ही मिलें अपनी पंचायत से और जुड़ें इस अभियान से।
2: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
5: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा,

हेलो जी, गुड वाली गुड मॉर्निंग है जी आप सभी को। सुप्रभात, राम राम, शशिकाल जी। और आरजे रीना के साथ आप कनेक्टेड श्रोताओं मॉर्निंग मसाला शो में। और समय की बात करूं तो 10:00 यानी कि 12 मिनट हो चुकी है। और आज का दिन बेहद बहुत ही खास है, क्योंकि आज है सावन का यानी कि तीसरा सोमवार, और आज की तारीख यानी कि 17 अगस्त। और साथ ही साथ आज नाग पंचमी भी है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है, और सोमवार के दिन शिव जी की पूजा विशेष महत्व माना जाता है। वहीं नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा की जाती है, सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना भी की जाती है। हर मंदिर में हर घर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। कहीं शिवलिंग पर जल अभिषेक करा जा रहा है, क्योंकि आज यानी कि आप देखेंगे तो सड़कों पर भी बहुत ज़्यादा रस, और ये तो कल से ही है बल्कि, और आज एक तरफ के रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं ताकि कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए जगह जगह पर यानी कि उनके लिए शिविर बनाए गए हैं। साथ ही साथ भंडारों की व्यवस्था भी की गई है ताकि उनको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम परेशानी ना आए। और आज यानी कि कहा जाता है कि देखिए, भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र तो बहुत प्रिय है, साथ ही साथ दूध अर्पित करते हैं। लेकिन आज नाग पंचमी भी है तो आपको दूध अर्पित जरूर करना है, पूजा पाठ करिए, और बल्कि प्राकृतिक और जीव जंतुओं के प्रति सम्मान का संदेश भी होता है, क्योंकि नाग देवता अपने यानी कि भोले बाबा के प्रिय भक्त है। वो जैसे नंदी गणेश है, वैसे ही जैसे नंदी जी हैं वैसे ही नाग देवता भी है, उनके बहुत ही प्रिय भक्त है। तो आज इन दोनों की पूजा की जाती है, सुख समृद्धि की कामना की जाती है। और आप सभी के साथ आपकी आरजे रीना कनेक्टेड श्रोता हो, तो आपको क्या करना है, हमें मैसेज करना है, नंबर है 9823789689। और साथ ही साथ भोले बाबा ने तो आज देखिए भैया सुबह सुबह ही यानी कि 8 बजे समथिंग 8 बजे के टाइम यानी कि झमाझम बारिश हुई, उसके बाद 8:16 के बाद धूप कड़ाके ही निकल गई। अब कभी धूप निकल रही है, कभी बादल छा रहे हैं, तो आज का वेदर है वो ऐसा ही रहने वाला है। और साथ ही साथ आपको एक हम भोले बाबा के भजन सुनाते हैं, उसके बाद अपना जो ये शो का सिलसिला है वो जारी करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। तो फिलहाल आप महसूस करिए 9837896896।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
3: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
2: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
3: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
2: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
4: मेरा गांव मेरी धरोहर है।
5: मेरा गांव मेरी धरोहर पंच दिवसीय अभियान से जुड़िए, यही तो है हमारी पहचान। पंच दिवसीय अभियान के माध्यम से हम जोड़ेंगे अपनी भूली बिसरी कविताओं, लोक गीतों, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से। गांव की मिट्टी की खुशबू, हमारी बोली, हमारे लोकगीत और हमारी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं, यही तो है हमारी असली पहचान। तो आइए अपनी सांस्कृतिक धरोहर को याद करें, उसे सजोएं और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। मेरा गांव मेरी धरोहर, अपनी संस्कृति अपनी पहचान। तो इस अभियान में आप भी हिस्सा लीजिए, हमें अपनी फोटो वीडियो जरूर सेंड कीजिए। मेरा गाँव मेरी धरोहर।

हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है मॉर्निंग मसाला शो में आज रीना के साथ कनेक्ट है जी। राधे राधे, सत श्री अकाल। और समय की बात करूँ तो 10:22 हो चुके हैं श्रोताओं, आज रीना के साथ आप कनेक्ट हैं। और आपको पता है कि देखिए, यानी कि 15 अगस्त से ही पहले, यानी कि मध्य प्रदेश में मंदशोर मंदिर यानी कि पशुपतिनाथ और उज्जैन के बड़े गणेश मंदिर में 11 अगस्त को ही इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मंदिरों में अंग्रेजी कैलेंडर के बजाय हिंदू पंचांग की तिथि के अनुसार यह पर्व मनाने की परंपरा है वहाँ। यानी कि वहाँ हम जैसे कैलेंडर देख के मनाते हैं कि 15 अगस्त को ही यानी कि हम झंडा फहराएंगे, लेकिन वहाँ पर यानी कि हिंदू पंचांग के अनुसार वहाँ के लोग चलते हैं, वहाँ की परंपरा को फॉलो करते हैं। और मंदिर से जुड़े लोगों के अनुसार सन और 15 अगस्त 1947 को हिंदू पंचांग में यानी कि श्रावण कृष्ण चतुर्थी की इस साल यह तिथि यानी कि 11 अगस्त को पड़ी, इसीलिए 4 दिन पहले ही आज़ादी का जश्न मनाया गया मध्य प्रदेश के मंदशोर के पशुपतिनाथ मंदिर में। और वहां पर सभी ने 11 अगस्त को ही यानी कि स्वतंत्रता दिवस मना लिया। और अब हम बात करेंगे आप सभी के यानी कि प्यारे प्यारे मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आज की तारीख है 17 अगस्त। ये मैसेज आता है हमारे पास अमरोहा से। नेहा, कैसी हो रीना दी? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हो। आई लव यू, थैंक यू सो मच।

जी, सेम टू यू। एंड घर पर सब कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। आप आ जाओ हमारे घर, भाई की शादी है, या फिर मैं आऊँ आपको लेने, आप ही आ जाइए। मुझे तो आपके घर का पता ही नहीं है ना, तो आप आएंगे तो बेटर रहेगा। और ये गाना सुनना चाहती है, भाभी आवेगी, ढोल बजेंगे, हल्दी लगेगी, ये वाला गाना सुनना चाहते हैं सुनिए। हम आपको डेफिनेटली ये वाला गाना हम सुनवाएंगे आपको, बस आप कनेक्ट रहिए आर्जेरीना के साथ। और कश्मीर से मिराज उद्दीन जी कनेक्ट होते हैं और ये गाना सुनना चाहते हैं, ये शाम मस्तानी, फिलहाल तो ये दिन है मस्तानी, मदहोश किए जाए। और इनका कहना है कि आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, आई मिस यू दी, थैंक यू जी। एंड आगे बढ़ते हैं, अगला मैसेज हमारे पास आता है, विक्की सागर जी कनेक्ट हो गए हैं, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग जी। और ये गाना सुनना चाहते हैं, आज नाग पंचमी है तो ये गाना सुनना चाहते हैं भैया, नागिन नाचे गली गली। अरे क्या बात है जी, नागिन नाचे गली गली वाला हम आपको गाना सुनवाएंगे, फिलहाल तो गली गली बच्चे घूमते हैं। और ये शानदार आप गाना आपने चूज किया है, तो इस गाने को हम आपको डेफिनेटली सुनवाएंगे सर, बस आपसे यही कहना चाहेंगे, कनेक्ट रहिए क्योंकि आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। चलिए फिलहाल एक हरियाणवी ट्रैक सुनते हैं, भाभी आवेगी, उसके बाद कनेक्ट होते हैं।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705070552।
3: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 20% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है फ्रॉम मूवी नागिन नाचे गली गली। और ये मूवी श्रोताओं रिलीज हुई थी यानी कि 1989 में, और मधुर आवाज़ जो आपने गाने की सुनी है शारदा संगम और नितिन मुकेश जी की आवाज़ में बड़ा ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है। और लिरिक्स की बात करूँ तो अनजान जी की लिरिक्स है मूवी गाने के अंदर। और समय की बात करूँ तो 10:00 यानी कि 36 मिनट हो चुके हैं। गुड वाली मॉर्निंग है जी, मॉर्निंग मसाला शो में आरजे रीना के साथ कनेक्टेड श्रोताओं। और आज की तारीख यानी कि 17 अगस्त, तो रक्षाबंधन पर आप सभी के लिए बहुत ही सुनहरा और खास तोहफा मिल चुका है। यानी कि जो भी बहनें अपने भाई के घर जाएंगी राखी बांधने के लिए, उनके लिए यानी कि बस जो सेवाएं हैं फ्री यात्रा आप कर सकेंगी। तारीख है यानी कि 27 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक, यानी कि जाने के लिए भी फ्री, आने के लिए भी फ्री है। लेकिन डिपेंड ये करना है कि देखिए, आप 27 को जा रहे तो आपको फ्री बस में आप जा सकते हैं, अगर आप रिटर्न 30 को आ रहे तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि तारीख है यानी कि 27 से लेकर 29 तारीख तक। बस ये 3 दिन फिक्स किया गया है यानी कि फ्री बस सेवाएं यानी कि सिर्फ और सिर्फ विमेन के लिए है। चलिए मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। फरजाना जी कनेक्ट होती है लाइन पार से और ये गाना सुनना चाहती हैं, तूने क्या क्या किया, इसका ये गाना सुनना चाहती हैं। अगले मैसेज की बात करूँ तो हेलो रीना मैम, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और ये निधि हमारे साथ कनेक्ट होती है पीतल नगरी मुरादाबाद से, और आज ये गाना सुनना चाहती हैं, रक्षाबंधन का गाना है यानी कि चंदा रे मेरे भैया, ये गाना सुनना चाहती हैं। सो आपको ये गाना हम डेफिनेटली। मैसेज की बात करूँ तो रानी नांगल से रिहाना कनेक्ट होती है, गुड मॉर्निंग पहुँचाती है, वेरी गुड मॉर्निंग जी। और ये गाना सुनना चाहती है, तुम यानी कि हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे तुम चाहो बस। अगला मैसेज आता है हमारे पास, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं फिर मुरादाबाद, सुनते रहिए और गुनगुनाते रहिए। ये अमित वर्मा जी कनेक्ट होते हैं हेमगिरी मुरादाबाद। चलिए जी गाना सुनते हैं यानी कि ये शाम मस्तानी, कश्मीर से रिक्वेस्ट आई थी इस गाने की।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है जी। मॉर्निंग मसाला शो में आरजे रीना के साथ अब कनेक्टेड श्रोताओं, और समय की बात करूँ तो 10:46, यानी कि इंडिपेंडेंस डे की बात करूँ तो 14 अगस्त को, यानी कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, और साथ ही साथ 15 अगस्त को हिंदुस्तान में यानी कि इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, और आज है यानी कि 17 अगस्त, और 17 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे यानी कि इंडोनेशिया में मनाया जाता है। वहाँ पर यानी कि इस दिन साल 1945 में इंडोनेशिया के नेताओं ने देश की आज़ादी यानी कि घोषणा कर दी थी। और इस दिन जैसे इंडिया में बच्चे स्कूल में फंक्शन होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और जगह जगह पर यानी कि हर सड़क गली मोहल्ले में घर घर तिरंगा फहराते हैं, तो आज इंडोनेशिया में यानी कि इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है बड़े ही धूमधाम से। यानी कि वहाँ का देश स्वतंत्र हुआ था, इंडोनेशिया का। तो चलिए श्रोताओं, बिना किसी देरी के आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग जी, और ये कनेक्ट होते हैं हमारे साथ। धनवान जी, और ये गाना सुनना चाहते हैं, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, क्या बात है जी। और मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी कनेक्ट होते हैं। आप सबको हमारी तरफ से सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी पर्व की आपको, और एफएम रेडियो मुरादाबाद सुनने वाले सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी जी हार्दिक शुभकामनाएं। और फिल्म है तुम मेरे हो, गाना सुनना चाहते हैं, शीशा चाहे टूट जाए पर दिल किसी का नहीं टूटना चाहिए। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं गुड मॉर्निंग जनकपुरी सहारनपुर से जोन रोजेस पलवलील जी, और इनका कहना है कि आप अपनी पसंद का कोई भी गाना हमें सुनवा दीजिएगा। जी बिल्कुल। अगले मैसेज की बात करूँ तो बबली अनजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी, आपको और सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और गाना सुनना चाहती हैं दिल है कि मानता नहीं, टाइटल ट्रैक है ये गाना। बिल्कुल जी, आपको मिलता है।

लाइन पार से यानी कि हरिओम महेश्वरी जी कनेक्ट हो गए हैं। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, बहुत ही शानदार ओल्ड इज गोल्ड सदाबहार गाने। और समय की बात को तो 10:50 हो चुके हैं। अगर आप गाना सुनना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैसेज कर सकते हैं, नंबर है 9837896। चाहे किसी का बर्थडे हो जरूर आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, उसके बाद कनेक्ट।

0: जहां विकास सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी में दिखाई देता है।
1: बिल्कुल, और आज की हमारी यात्रा पहुंची है भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, एक ऐसा जिला जहां विकास की रफ्तार गांव से लेकर शहरों तक नई तस्वीर गढ़ रही है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के जन कल्याण योजनाएं समाज के हर वर्ग तक पहुंच रही हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर स्वरोजगार, बुनियादी सुविधाओं और आर्थिक आत्मनिर्भरता तक।
1: और जब योजनाओं का लाभ सीधे लोगों की जिंदगी बदलता है तो उसकी कहानी सबसे ज्यादा असरदार होती है। चलिए सुनते हैं कुशीनगर की श्वेता जायसवाल की कहानी।
2: जी सर नमस्कार, मैं ग्राम पंचायत मिसीपट्टी से हूँ। मेरा नाम श्वेता जायसवाल है और मैं काजल स्वयं सहायता समूह में काम भी करती हूँ और मुझे सरकार से बहुत सारी उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं। जैसे मेरे नाम से राशन कार्ड भी है। पहले राशन कार्ड हस्बैंड के नाम से होते थे, अब वो हमारे नाम से हैं। और इस समय हमारे नाम से शौचालय है, हमारे नाम से हमारे हस्बैंड जाने जा रहे हैं। पहले हम उनके नाम से जाने जाते हैं, वह सरकार की उसके वजह से हम अपने नाम से वो हमारे नाम से वो जाने जाते हैं। और मैं गौशाला भी खोली हूँ, मेरे पास 6-7 गाय हैं। मैं उस गाय से अपना परिवार चलाती हूँ। दूध का उपदान होता है, उत्पादन करके और मैं डेयरी फार्म में उसको उपलब्ध कराती हूँ और उससे जो पैसा मिलता है हमारे घर का खर्चा और सब काम चलता है। इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: वाकई ये सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का कदम है।
1: और ऐसी एक प्रेरक कहानी है अनुपमा तिवारी की। बीसी सखी और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना जैसी योजनाओं ने उनके सपनों को पंख दिए और उन्होंने अपना पार्लर और कॉस्मेटिक की दुकान खोलने का सपना साकार किया।
3: मेरा नाम, पहले तो सभी लोगों को रेडियो प्रज्ञा की तरफ से मौका दिया गया बोलने के लिए, उसके लिए मैं नमस्कार प्रणाम करती हूँ उन लोगों को और बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ कि मुझे ऐसा मौका दिया गया बोलने के लिए। मेरा नाम अनुपमा तिवारी है, मैं ग्राम पंचायत सिद्धवा मिश्रौली से हूँ। मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ के मैं जो भी चीज़ें आज यहाँ तक भी पहुँची हूँ, मुझे BDO साहब के पास बैठने तक का मौका मिला है, तो मैं स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के बाद ही मिला है। और स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के बाद से मैं, पहले तो मुझे परिचय की बात बताऊँ तो मुझे कोई जानता भी नहीं था और धीरे धीरे मुझे स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के बाद मुझे लोग जानना भी शुरू किए। पहले तो मुझे लोग स्वयं सहायता समूह में एक सदस्य के नाम से जानते थे, फिर मैंने धीरे धीरे अपने नाम को बढ़ाया तो बीसी सखी का नाम मेरा हुआ। फिर बीसी सखी से मैंने धीरे धीरे समूहों से पैसे जो भी लोन मुझे मिलते थे, जैसे स्टार्टअप हुआ, रिवाल्विक हुआ, CIF हुआ, CCL हुआ, CCL में मुझे बहुत लंबे अमाउंट तक के प्रोसेस मिलते हैं, तो मैंने उस पैसे को उठा के अपने समूह के सदस्यों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की है और अपने खुद को भी CM युवा उद्यमी के थ्रू अपने खुद को भी काम को बढ़ाने की कोशिश की, जिसमें मैंने कॉस्मेटिक और पार्लर का बिजनेस शुरू किया है, जिसमें मैं अभी तक बहुत अच्छे लेवल पे जा रही हूँ और बहुत अच्छे लेवल तक पहुँच भी चुकी हूँ। बाकी आप लोगों की अगर इच्छा रहेगी तो मैं बहुत आगे जाऊँगी भी। बाकी मुझे BDO साहब की तरफ से मुझे बहुत उनका आशीर्वाद चाहिए कि मैं जब भी आऊँ मुझे एक नई सीख मिले और मुझे नए ज्ञान मिले जो कि मैं जाने बाद दूसरों को भी बताऊँ, खुद भी करूँ। थैंक यू।
0: कहते हैं विकास वही जो अवसर पैदा करे और कुशीनगर की ये कहानियाँ बताती हैं कि अवसर मिले तो हुनर अपने दम पर नई मंजिल बना सकता है।
1: और कुशीनगर में विकास की इस तस्वीर को और करीब से समझने के लिए अब सुनते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की बात।
4: रेडियो प्रज्ञा के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को RK भट्ट का नमस्कार। आज हम खंड विकास अधिकारी कार्यालय पटरौना में उपस्थित हैं और हमारे सामने है श्री KK राय जी, खंड विकास अधिकारी पटरौना, और कार्यक्रम है विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी। और इस कार्यक्रम में सर रेडियो प्रज्ञा की तरफ से हम आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार।
5: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे वहाँ आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
4: सर, शासन की प्राथमिकताओं में है कि ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय क्षेत्र हो, हालांकि हम क्षेत्र पंचायत कार्यालय पर आए हैं, जो अंत्योदय का उत्थान हो ये उसकी प्रायोरिटी है, तो इस समय आपके विभाग के द्वारा ऐसी कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं चल रही हैं जो अंत्योदय के उत्थान के लिए चल रही हैं?
5: देखिए, हमारे वहाँ मुख्य रूप से वर्तमान में मुख्यमंत्री आवास योजना से हम लोग ग्रामीण परिवारों को जिनके पास कच्चे मकान है, मैंने पक्के मकान नहीं है, उनको हम लोग आवास मुहैया करा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। उसमें अनुसूचित जनजाति, विधवा महिलाएं, दिव्यांग परिवार, को मैं आवास मुहैया करा रहा हूँ, उसमें 1,20,000 रुपया उनको नगद दिया जाता है और वो अपना घर बनवा लेते हैं। और दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो भारत सरकार की योजना है, उसमें भी हम 1,20,000 रुपया नगद देते हैं, बाकी मजदूरी का भुगतान करते हैं, स्वच्छ शौचालय का निर्माण कराते हैं, सहजन का पेड़ भी हम लोग उपलब्ध कराते हैं, उनको ये बिजली का कनेक्शन दिलवाते हैं, ये आपका गैस सिलेंडर दिलवाते हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, तमाम सुविधाएं हैं जो हम लोग देते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में जो अति गरीब परिवार हैं वो इसका लाभ उठाते हैं और उनको लाभान्वित होते हैं। फिर हमारे पास एक योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
4: जी,
5: जिसमें समूह बना करके, महिलाओं का एक समूह बना करके
4: जी,
5: 10 महिलाओं से लेकर के 20-20 महिलाओं तक का परिवार की महिलाओं का समूह बना करके और समूह का खाता बैंक में खुलवा करके, ये RFTD भेज करके, स्टार्टअप भेज करके, CIF धनराशि दे करके हम लोग ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के रूप में, मतलब वो अपने कमाने के लिए अपने परिवार का मतलब भरण पोषण कर सकें, प्रेरित करते हैं, लाभान्वित कराते हैं।
4: सर, आपकी इन सारी बातों का कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि सरकार या शासन की मंशा ये है कि एक सामान्य व्यक्ति स्वस्थ और अच्छा जीवन कैसे जिए, चाहे उसके लिए आवास से लेकर के उसके स्वास्थ्य तक और उसके जो मूलभूत उसके अधिकार हैं वो सब उसे प्राप्त हो, ये सारी योजनाएं हैं। लेकिन इन योजनाओं को क्रियान्वित कराने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि योजनाएं धरातल पर ठीक ढंग से पहुंचे?
5: नहीं, देखिए, अब तो योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में जा रहा है, कोई बिचौलियापन नहीं है, कोई दलाली नहीं है, भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फंड सीधे लाभार्थी के खाते में जा रही है। हमारे ग्राम पंचायत स्तर पर हमारे ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, ये लोग फील्ड में जाते हैं, सर्वे करते हैं, गांव सभा की खुली बैठक करते हैं, लाभार्थियों का चयन करते हैं, चयन करने के बाद से सूची को हम लोग जिला मुख्यालय पर हम लोग भेजते हैं, वहाँ से प्रबल हो जाता है और वहाँ से इन लोगों को लाभ मिलता है। जैसे वर्तमान में समझ लीजिए कि इस समय वृक्षारोपण का कार्य चल रहा है
4: जी,
5: ये BBG राम जी विकसित भारत गारंटी रोजगार ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण है
4: जी,
5: इसमें पहले मजदूरी 200 मनरेगा में मजदूरी 252 रुपया था
4: जी,
5: अब जो है 300 रुपया मजदूरी कर दी गई है
4: जी,
5: लाभार्थी खुश है, मजदूर खुश है, काम कर रहे हैं। पहले इस योजना में, मनरेगा योजना में, हम 100 दिन का रोजगार देते थे एक परिवार को एक वर्ष में
4: जी,
5: अब हम 125 दिन दे रहे हैं, 25 दिन और बढ़ गया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी मजदूरा गरीब परिवार के लोग यदि काम करना चाह रहे हैं तो उनको सारी सुविधा मिल रही है, यहाँ तक कि उनके परिवार के बच्चों की शादी के लिए भी हम लोग मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अभी कराए हैं पड़ौना में
4: जी,
5: उसमें भी लोग लाभान्वित हुए हैं
4: जी।
5: ये पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान में भी 20,000 रुपये का सरकार अनुदान दे रही है, उसका भी लाभ लोग ले रहे हैं। तमाम योजनाएं हैं, जिस ग्रामीण परिवार में शौचालय नहीं है उनका भी हम सर्वे करवाते हैं, उनसे ऑनलाइन हम रिपोर्टिंग करवाते हैं और 12,000 रुपया शौचालय निर्माण के लिए भी दे रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग भी हमारे सचिव करते हैं
4: जी,
5: एरियो पंचायत करते हैं।
4: सर, खंड विकास अधिकारी पड़ोना के रूप में, विकासखंड पड़ोना के नागरिकों के लिए आपका कोई विशेष संदेश हो, कोई ऐसी बात हो जो आप कहना चाहें कि वो शासन के योजनाओं का लाभ कैसे उठा सकते हैं, और यदि किसी प्रकार की उनको दिक्कत आ रही है तो आपसे या आपके अधीनस्थ लोगों से कैसे संपर्क स्थापित कर योजनाओं का लाभ?
5: देखिए, ग्रामीण जनता जो भी, हम लोग 10 बजे से 12 बजे तक निश्चित रूप से अपने कार्यालय में बैठते हैं।

0: जी
1: उस बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी जनता मेरे सामने आती है तो उनकी समस्याओं का समाधान मैं करता हूँ, चाहे वह पंचायती राज से संबंधित हो, चाहे वह हमारे बीबी जी राम जी मनरेगा से संबंधित हो, चाहे हमारा ये कृषि से संबंधित हो। अभी कई किसान लोग आए थे, सर हमको किसान सम्मान निधि नहीं मिल रहा है, तो हमने कहा आप ऑनलाइन करिए, मैं दिलवाता हूँ
0: जी।
1: कुछ लोग कहते हैं कि हमको पेंशन नहीं मिला है, हमने कहा था आप अपना सिर्फ आधार कार्ड की फोटो कापी दीजिए, मैं देखता हूँ क्यों नहीं मिलता है
0: जी।
1: तो पता चलता है कि उनका आधार जो है लिंक नहीं है, या किसी ने कुछ त्रुटि हो जाती है, समस्या का समाधान होता है
0: जी।
1: बीडीओ का कर्तव्य है कि वह 10 से 12 हमारा देखिए 10 से 12 तो खैर आपकी ड्यूटी है जन समस्या सुनने के लिए, इसके बावजूद भी हम लोग फील्ड में जाते हैं
0: जी
1: और जाकर के जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं।
0: श्री के राय साहब, खंड विकास अधिकारी परोना, आपने रेडियो प्रज्ञा के माध्यम से हमारे श्रोताओं के लिए इतनी अच्छी जानकारी दी और शासन प्रशासन की जो महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित हो रही हैं उसके विषय में लोग कैसे लाभान्वित हो सकते हैं ये भी बताया। रेडियो प्रज्ञा की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे अवसर दिया। और देखिए यहाँ हमारे समूह की दीदियाँ बैठी हुई हैं, आप चाहें तो इनसे भी कुछ बात कर सकते हैं, ये लोग भी आपको बताएंगे। और निश्चित रूप से मेरे कार्यकाल में मैं जहाँ भी रहता हूँ सारी योजनाओं को खुद देखता हूँ और बढ़िया से क्रियान्वयन करता हूँ
0: जी।
1: और आप बता दें कि हमारे सामने अगर किसी की समस्या आ गई तो 100% उसका निराकरण करता हूँ। अगर वो समस्या जिले स्तर तक है तो वहां भी मैं पहुंचता हूँ।
0: एक बार पुनः आपका ढेर सारा
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: तो ये थी कुशीनगर की विकास यात्रा, जहां योजनाएं कागज से लेकर जमीन तक पहुंच रही हैं और लोगों के सपनों को नई दिशा दे रही है।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लगातार विकास के नए आयाम गढ़ रहा है और कुशीनगर इस बदलते उत्तर प्रदेश की सबसे खूबसूरत तस्वीर है।
2: इसी उम्मीद, इसी विश्वास और इसी विकास की रफ्तार के साथ मिलते हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश के अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए नए उत्तर प्रदेश की नई कहानी।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705070552।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: गुड वाली मॉर्निंग है श्रोता, मॉर्निंग मसाला शो में। और समय की बात करूँ तो देखिए दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, यानी कि 11:09 हो चुके हैं और आज की तारीख यानी कि 17 अगस्त। चलिए बिना किसी देरी के अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। जय श्री राम। गुड मॉर्निंग खुशी जी। लेकिन आज खुशी जी छुट्टी पर है इसलिए रीना आ गई है। ये कनेक्ट होते हैं दुर्गेश सैनी कल्याणपुर मुरादाबाद से। जय माता दी, राधे राधे, लाजवाब प्रस्तुति। अजित कसाना जी, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना कार्ट रोड लदावली से कनेक्ट होते हैं।
1: सारा दिन ही गल्ला, जब मैं तेरे कोल ना होवा, किथे किदे नाल सी तू मेरी।
0: अगले मैसेज की बात करूं तो हेलो रीना मैम, गज वाली मॉर्निंग मसाला, आप कैसे हो? आपकी आवाज, बोलने का अंदाज बहुत ही प्यारा है और उससे प्यारी क्यूट सी आप हैं। थैंक यू सो मच जी। ललिता कश्यप जी कनेक्ट होती है नवीन नगर मुरादाबाद से। आज सावन की यानी कि तीसरे सोमवार की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी सेम टू यू जी। और इनका कहना कि आज मेरी छोटी बेटी का हैप्पी वाला बर्थडे है। हैप्पी वाला बर्थडे जी हमारी पूरी रेडियो की टीम की तरफ से, और वो हमेशा खुश रहे। और इनका कहना कि वो बहुत क्यूट है, बहुत चंचल है, बहुत प्यारी बेटी है। वेरी वेरी विश यू हैप्पी बर्थडे। विभु नाम है इनकी बेटी का, और हमारी रेडियो की तरफ से भी हैप्पी वाला बर्थडे जी, और वो हमेशा खुश रहे अपनी ज़िंदगी में। माता रानी की जो ब्लेसिंग है उनके ऊपर बनी रहे। सच में आपकी बेटी अब बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्यूट है, और आज उसके लिए गाना सुनना चाहती है, हरियाणवी ट्रैक बर्थडे वाला सॉन्ग सुनना चाहती है, तो बिल्कुल हम आपको गाना सुनवाएंगे सर। आज नाग पंचमी भी है और सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी हैप्पी नाग पंचमी। हैप्पी नाग पंचमी जी। तो चलिए श्रोताओं, पहले हम गाना सुनते हैं और उसके बाद कनेक्ट होते हैं आप सभी के साथ। अगर आप गाना सुनना चाहते हैं, किसी का बर्थडे है, मतलब विशेस करवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 9823789689।

नहीं, घूमने से। और मैं हूँ आपके साथ, आपकी आरजे रीना, और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है कि दिल है मानता नहीं। ये मूवी रिलीज हुई थी यानी कि 1991 में, अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ में। बड़ा ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है श्रोताओं। और समय की बात करूँ तो 11 बजकर यानी कि 22 मिनट हो चुके हैं। और चलिए आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। भैया किनका क्या मैसेज आता है, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही शानदार अपडेट। कहते हैं ना भैया कि देखिए, जिंदगी से अगर आप नहीं हारेंगे तो आज आप उस मुकाम को भी हासिल कर लेंगे जिसकी कभी आपने कामना भी नहीं की होगी। यानी कि हम बात करने वाले हैं 3 फीट कद के गणेश की। मतलब अभी KBC 18 में ये अमिताभ बच्चन के साथ ये कनेक्ट हुए थे और उन्होंने अपनी जर्नी बताई, उन्होंने अपनी कहानी बताई। यानी कि उनकी हाइट है सिर्फ 3 फीट है, और 3 फीट की हाइट देखकर यानी कि कसरत वाले जो आए थे, जो कसरत दिखाते हैं कि इनको कसरत में दे दीजिए, हम आपको इतने इतने पैसे दे देंगे। तो घर वालों ने ये नहीं सोचा कि इसकी हाइट छोटी है तो हम इसको सर्कस में भेज देते हैं, बल्कि पिता की एक ही ख्वाहिश थी कि बेटा पढ़े, डॉक्टर बने और अपने देश का, अपने परिवार का नाम रोशन करे। बस यही बेटा गणेश के यानी कि कानों में बैठ गई। गणेश बैरैया की मैं बात कर रही हूँ, उनकी कहानी है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया और पढ़ाई की उन्होंने लगन से, लेकिन जब MBBS के एडमिशन के लिए गए तो वहाँ पर उन्होंने एडमिशन उसकी नहीं ली। ये कह दिया गया कि तुम्हारी हाइट तो 3 फीट है। तो मुझे लगता है किसी की हाइट को और हाइट से मतलब जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं पता कि आज तुम जिसको जज कर रहे हो कल वो क्या बन जाए। और यही फिर उन्होंने, इनके जो प्रिंसिपल थे वो पीछे नहीं, हार नहीं माने, क्योंकि उनको पता था कि गणेश कुछ ना कुछ जरूर करेगा अपनी लाइफ में। फिर उन्होंने जैसे तैसे कर कर यानी कि कानूनी कार्रवाई की, फिर जाके इनका एडमिशन हुआ और आज वो डॉक्टर है। मुझे लगता है कि कद मायने नहीं रखते हैं, ना ही एज मायने रखते हैं। मायने तो सिर्फ रखते हैं आपका अनुभव, आपका संघर्ष, कि आप किस तरीके से संघर्ष कर रहे हो और इसी संघर्ष के साथ आप आगे भी बढ़ते हो। तो देखिए, जो भी आप करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो भी आप बनना चाहते हैं, ये मत सोचिए कि मैं, मेरी हाइट अच्छी नहीं है या फिर मैं मिडिल क्लास से हूँ, ये मैं कर नहीं सकती।

0: करता हूँ, पैसे इतने लगेंगे। मुझे लगता है कि जब आपके हौसले बुलंद हो और आपका जो टैलेंट है, गरीबी, मिडिल क्लास, आई, एज, हाइट, ये मायने नहीं रखते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका टैलेंट देखा जाता है। तो आप आगे बढ़िए, पढ़िए, और आप जितना आगे बढ़ेंगे, आपके माँ बाप है उनको गर्व होएगा कि हमारे बच्चे कुछ कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, सूरज में यानी कि तपता वही है जिसके अंदर कुछ जज्बा होता है, और जो सूरज के यानी कि इतनी कड़ाके वाली धूप में चलना सीख जाता है, उसके लिए छाव भी इंतज़ार करते रहते हैं। जब आप सड़क पर निकलेंगे तो धूप है होती है ना, लेकिन एक वृक्ष, एक पेड़ आपको छाव देता है। तो वही, जब आप धूप से निकल के जाएंगे तो आपके लिए छाव भी इंतज़ार करता है कि भाई आ जा, छाव में बैठ, विश्राम कर। तो जितना आप संघर्ष करेंगे, आप उतने ही निखरेंगे, उतने ही आगे बढ़ेंगे, और उसका परिणाम बहुत अच्छा होगा, आप सभी के सामने होगा। लेकिन मेहनत करिए तो सही। चलिए, फिलहाल मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास अगला मैसेज आता है। हर हर महादेव। रीना जी, क्या हाल चाल है आपके? बहुत अच्छे हैं। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं बबलू सैनी, मुंबई महाराष्ट्र से, और ये गाना सुनना चाहते हैं। और साथ ही साथ सावन के तीसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की ये गाना सुनना चाहते हैं कि मेरी माँ का दिल कभी ना दुखाना। चलिए, गुड मॉर्निंग रीना जी। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं रवि सैनी लाइन पर मुरादाबाद से, और ये गाना सुनना चाहते हैं, प्यार कभी कम नहीं करना। अगले मैसेज की बात करूँ तो श्रोताओं, मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी कनेक्ट होते हैं, और इनका कहना है, रीना मैडम जी, हम आपका प्रोग्राम यानी कि का बहुत सालों से सुन रहे हैं, 700, 7,000, सौ सैकड़ों से जुड़े हुए हैं, मगर हमारी फरमाइश कभी पूरी नहीं हुई हुई। देखिए सर, आप दो बार भी मैसेज करते हैं तब भी आपका मैसेज शामिल किया जाता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे होंगे कि आपका जो हमने मैसेज शामिल करा और एकदम आपका गाना प्ले हो जाए, तो इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता है। और ये भी अलाउड नहीं है कि आप एक नंबर से दो बार मैसेज करें तो आपका मैसेज भी शामिल होए। लेकिन हम सब यहाँ पर करते हैं, यानी कि आप सामने से हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम आप सभी का मैसेज नहीं शामिल करते, ये तो गलत बात है सर। देखिए, हर किसी का मैसेज आता है और हर किसी को बेसब्री से इंतज़ार होता है कि हमारा गाना प्ले होएगा। लेकिन ये नहीं कि उन जिनका मैसेज मैं शामिल कर चुकी हूँ उनके मैं गाने छोड़ के पहले मैं आपके गाने प्ले करूँ, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है सर। आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। आपके गाने भी आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने बोला और आपका गाना ही मैं प्ले करूँगी सबसे पहले। थोड़ा पेशेंस रखिए, आपका गाना भी प्ले होएगा। यहाँ पे बहुत सारे इतने मैसेज आ रहे हैं, उनके भी गाने हैं। गाना चाहे मुझे यहाँ पर लेट तक बैठकर आपका गाना प्ले करना पड़े, लेकिन करके जाऊंगी, मैसेज शामिल करके जाऊंगी। बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए आप सभी। ये नहीं कि गाना नहीं चला तो हम मैसेज कर देंगे कि हमारा मैसेज अभी गाना प्ले नहीं हुआ है, ऐसा नहीं होता है सर। और एक मैसेज से एक बार ही, एक नंबर से एक बार ही मैसेज किया जाता है, दो बार नहीं किया जाता है। दो बार आप करेंगे तो मैसेज शायद शामिल भी नहीं होगी। देखिए श्रोताओं, आप सबका प्यार है जो, मतलब हम सब अकेले कुछ नहीं कर सकते, आप सबका साथ भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन साथ के साथ साथ पेशेंस भी बहुत ज़रूरी होता है। तो पेशेंस रखिए, आप सभी के गाने ज़रूर प्ले होंगे। और चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मिलजुल कर रहना चाहिए। हर किसी, कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, तो आपको फल मीठा ही मिलेगा अगर आप चाहेंगे। आज हमने पेड़ लगाया, कल हमें फल मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं होता है। फल के लिए भी हमें इंतजार करना पड़ता है, 2-3 साल तो इंतजार करना ही पड़ता है, तभी जाकर पेड़ हमें फल देता है। चलिए, सावन के तीसरे सोमवार की और नाग पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल कमर्शियल एड ब्रेक, उसके बाद गाना प्ले करते हैं।
1: Hey, you're tuning to FM Moradabad 89.6 FM.

0: करो।
1: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: इस आजादी के जश्न को मनाइए और भी खास द हाउस ऑफ राधिका स्वीट बेकरी एंड रेस्टोरेंट के साथ। मिठाइयों की मिठास, बेकरी का स्वाद, रेस्टोरेंट का जायका। द हाउस ऑफ राधिका, एड्रेस प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार, मुरादाबाद।

हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है आरजे रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ श्रोताओं, तो समय हो चुका है यानी कि 11:49, और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है मॉर्निंग मसाला शो में। तो चलिए आगे देखते हैं भैया, इनका मैसेज आता है हमारे पास। हेलो, गुड मॉर्निंग रीना जी, कैसे हो आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। और जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से रिजवान खान जी कनेक्ट होते हैं, इनके साथ इनके दोस्त है दीपक जी। रीना जी, हमें गाना सुनना चाहते हैं, तुझे प्यार करे। अगले मैसेज की बात करूं तो श्रोताओं, हमारे पास आता है मसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं, इनके दोस्त है सैयद शारिक अली, मिराज अंसारी, बाबू अंसारी। गुड मॉर्निंग रीना जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं। मंडे में मॉर्निंग मसाला शो में आपको सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। प्रेम प्रतिज्ञा मूवी से आपने गाना एंजॉय किया है श्रोताओं। और यानी कि सिंगर की बात करूँ तो बप्पी लहरी, यानी कि जो डीजे सिंगर माने जाते हैं, साथ ही साथ आशा भोसले जी की आवाज़। और ये फिल्म यानी कि मिथुंदा और माधुरी दीक्षित पर यानी कि फरमाया गया मूवी प्रेम प्रतिज्ञा से। बहुत ही शानदार गाना कि प्यार कभी कम नहीं करना। जिंदगी में सही बात है श्रोताओं, यानी कि प्यार हमेशा बरकरार रहना चाहिए। प्यार से बातें करना किसी से, प्यार के साथ रहना, क्योंकि देखिए गुस्सा तो हर कोई दिखाता है, लेकिन प्यार से रहने में जो रिश्ता एक लॉन्ग टर्म तक चलता है ना, वो अनोखा रिश्ता होता है। अर्जेंटीना के साथ कनेक्टेड श्रोताओं, गुड वाली मॉर्निंग है। मॉर्निंग मसाला शो में समय की बात करूँ तो 11:50 हो चुके हैं, और जिनके भी मैसेज रहते हैं वो शामिल करेंगे। और यहाँ पर मैसेज आता है हमारे पास, दी नमस्ते, और ये हमारे साथ मोहिनी जी कनेक्ट होती हैं मुरादाबाद से। गाना सुनना चाहती हैं चांद के पार चलो, ये कनेक्ट होती है कुंदनपुर मुरादाबाद से। हेलो, मझोले से कनेक्ट होती हैं लाइक खुशी जी। ओके, आपका भी नाम खुशी है। और ये गाना सुनना चाहती है लव मैरिज भोले, मतलब गाना ये मैं पहली बार सुनने वाली हूँ। और अगले महसूस की बात करूँ श्रोताओं से, रीना जी जय श्री राम, गौरव टेलर नवीन नगर मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं। क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे हैं जी। रीना जी वेरी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम बहुत ही बिंदास पेश कर रही हूँ, आपकी जानकारियाँ भी बहुत ही अमेजिंग होती हैं। हर हर महादेव। और ये धड़कन मूवी से गाना सुनना चाहते हैं, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। और ये कुछ लाइनें लिखते हैं, सच जब तक जूते पहन रहा होता है, झूठ तब तक आधा सफर तय कर चुका होता है। क्या बात है जी, पता नहीं सर आप कहाँ से ऐसी ऐसी लाइनें लेकर आते हैं, बहुत प्यारी होती हैं। चलिए इसी के साथ श्रोताओं, मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाज़त। हम आज ही आपको मिलने वाले हैं, यानी कि शाम को इवनिंग मस्ती शो में। समय की बात करूँ तो 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। अभी के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, और यूं ही मुस्कुराते रहिए और जिंदगी को एंजॉय करते रहिए। बाय।

0: Hey, you're tuning to FM Moradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: अगर

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दोस्त आरजे खुशी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जिसका नाम तो आपने शायद सुना होगा, लेकिन सही जानकारी बहुत कम लोगों तक पहुंचती है। नाम है कालाजार। लेकिन आज की शुरुआत मैं एक कहानी के साथ करना चाहती हूँ। टीकन देवी जी, आप तो गांव-गांव में जाती हैं, क्या आपने कभी ऐसा कोई मामला देखा है?
1: अरे आरजे खुशी, देखा ही नहीं, बहुत करीब से देखा है। हमारे पड़ोस में एक औरत थी, नाम था सरोज। पहले तो उसे बस हल्का बुखार आता था। लोग बोले मौसमी बुखार है, ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसका बुखार कम ही नहीं हुआ। उसका वजन गिरने लगा, चेहरा पीला पड़ गया, पेट फूलने लगा। हमने कहा सरोज चलो अस्पताल चलते हैं, लेकिन उसके घर वाले बोले अरे ये तो किसी की नजर लग गई है या कोई
2: शाये हैं।
1: महीने तक इलाज नहीं हुआ। जब अस्पताल पहुंची तब तक हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इलाज हुआ,
2: जान तो बच गई,
1: लेकिन बाद में उसके शरीर पर दाने निकल आए, चेहरा खराब हो गया। डॉक्टर बोले ये PKDL है, कालाजार की बीमारी। आज भी वो घर से कम निकलती हैं। लोग देखकर फुसफुसाते हैं। सोचिए आरजे बहन, अगर समय पर इलाज हो जाता तो ये सब नहीं होता।
0: ये तो बहुत दर्दनाक है दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। तो आज हम समझेंगे कालाजार क्या है, कैसा होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। टीकन देवी जी, सबसे पहले ये बताइए ये कालाजार होता क्या है?
1: देखिए आरजे खुशी, कालाजार एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, जिसे हम आम भाषा में भले ही कालाजार कहते हैं, लेकिन इसका असली नाम विसरल लीसमेनियासिस है। यह बीमारी एक बहुत ही छोटे से कीड़े के काटने से फैलती है, जिसे रेत मक्खी या सेडफ्लाइड कहा जाता है। अब ये मक्खी इतनी छोटी होती है कि कई बार हमें दिखती भी नहीं है, और खास बात यह है कि यह ज्यादातर रात के समय काटती है, जब लोग सो रहे होते हैं। जब यह रेत मक्खी किसी इंसान को काटती है तो इसके साथ एक छोटा सा परजीवी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। यह परजीवी धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारे लीवर, पीलिया यानी तिल्ली, और खून को नुकसान पहुंचाने लगता है। यही वजह है कि शुरुआत में यह बीमारी साधारण लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर को काफी कमजोर कर देती है।
0: अच्छा, तो इसका मतलब है कि बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन टीकन देवी जी, इसके लक्षण कैसे पहचाने, लोगों को कैसे पता चले कि ये कालाजार हो सकता है?
1: बहुत अच्छा सवाल है आरजे खुशी। देखिए, इसके लक्षण एकदम से तेज नहीं आते, बल्कि धीरे धीरे दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो व्यक्ति को लंबे समय तक बुखार बना रहता है, जो ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। इसके साथ साथ व्यक्ति का वजन कम होने लगता है, शरीर में कमजोरी आ जाती है और वह पहले जैसा काम नहीं कर पाता। धीरे धीरे पेट भी फूलने लग जाता है, क्योंकि अंदर की तिल्ली और लीवर बढ़ जाते हैं। इसके अलावा खून की कमी भी हो जाती है, जिससे चेहरा पीला पड़ जाता है और व्यक्ति बहुत कमजोर दिखने लगता है। यही वजह है कि कई बार लोग इसे साधारण बुखार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है।
0: मतलब देखने में तो ये सामान्य बुखार जैसा लगता है, लेकिन असल में ये अंदर से बहुत खतरनाक बीमारी होती है।
1: बिल्कुल सही समझे आप। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर समय पर इसका इलाज ना कराया जाए तो करीब 95% मामलों में यह जानलेवा साबित हो जाती है। इसीलिए लक्षणों को पहचानना और समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: यह बीमारी किन इलाकों में ज्यादा देखने को मिलती है?
1: भारत में यह बीमारी खास तौर पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ज्यादा पाई जाती है। इन राज्यों में करीब 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी के खतरे में हैं।
0: इतने सारे लोग जोखिम में हैं? ये तो सच में चिंता की बात है।
1: हाँ आरजे खुशी, और खास बात यह है कि यह बीमारी ज्यादा उन लोगों को प्रभावित करती है जो कच्चे घरों में रहते हैं, जिन घरों की दीवारों में दरारें होती हैं, जहां साफ सफाई की कमी होती है और जहां पशु घर के बहुत पास रखे जाते हैं, वहां यह रेत मक्खी आसानी से पनपती है और ऐसे वातावरण में इस बीमारी का खतरा और बढ़ जाता है।
3: अगर किसी को लगे कि उसे ये लक्षण है तो उसे क्या करना चाहिए?
1: सबसे पहले तो बिना देर किए नजदीकी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। आजकल वहाँ पर बहुत सी आसान और तेज जांच की सुविधाएं उपलब्ध है। एक ऐसा टेस्ट होता है जो लगभग 10 मिनट में यह बता देता है कि व्यक्ति को काला आजार है या नहीं, और सबसे जरूरी बात कि इसका इलाज सरकारी अस्पतालों में की तरह मुफ्त किया जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति पैसों की वजह से इलाज से वंचित ना रहे।
3: मुफ्त इलाज, ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है।
1: बिल्कुल, और अब तो इलाज के लिए बहुत प्रभावी दवाइयाँ भी उपलब्ध है, जैसे कि लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, जो जल्द असर करती है और मरीज को जल्द ठीक होने में मदद करती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है कि मरीज को पूरा इलाज लेना चाहिए, बीच में दवा छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो बीमारी दोबारा लौट सकती है।
3: टीकन देवी जी, आपने अभी बताया कि लोग समय पर अस्पताल जाएं, लेकिन एक बात बताइए, कई बार लोग सोचते हैं कि जांच में बहुत समय लगेगा या बहुत पैसे लगेंगे, तो क्या सच में जांच इतनी मुश्किल होती है?
1: नहीं नहीं आरजे खुशी, अब तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रही है। पहले के समय में जरूर जांच में समय लगता था, लेकिन अब सरकार ने इतनी सुविधाएं दे दी है कि गांव के पास ही सब सेंटर या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बहुत जल्द काला आजार की जांच हो जाती है। आजकल एक खास तरह का टेस्ट होता है जिसमे रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस उंगली से एक छोटा सा खून का सैंपल लिया जाता है और करीब 10 मिनट के अंदर ही पता चल जाता है कि व्यक्ति को काला आजार है या नहीं।
3: सिर्फ 10 मिनट में? ये तो बहुत ही आसान हो गया है।
1: हाँ बिल्कुल, और यही वजह है कि अब किसी को भी जांच कराने में डरने या देरी करने की जरूरत नहीं है। पहले लोग सोचते थे कि शहर जाना पड़ेगा, बड़े अस्पताल में इलाज करनी पड़ेगी, लेकिन अब ये सुविधाएं गांव के पास ही उपलब्ध है।
3: लेकिन टीकन देवी जी, क्या ये टेस्ट पूरी तरह भरोसेमंद होता है?
1: देखिए, ये टेस्ट बहुत हद तक सही परिणाम देता है और शुरुआती पहचान के लिए बहुत उपयोगी है। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो डॉक्टर तुरंत इलाज शुरू कर सकते हैं, और अगर किसी केस में डॉक्टर को और पुष्टि की जरूरत लगे तो वे आगे की जांच भी करवा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि यह टेस्ट हमें समय पर बीमारी पकड़ने में मदद करता है, जिससे इलाज जल्द शुरू हो सके और बीमारी गंभीर होने से पहले ही रोक दी जाए।
3: मतलब अब सबसे बड़ी बाधा यानी देर से पता चलना, वो भी काफी हद तक खत्म हो गई है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं तो हमेशा लोगों से यही कहती हूँ, अगर किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार रहे, वजन कम हो रहा हो या कमजोरी महसूस हो रहे हो, तो बिना सोचे जे सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाए और टेस्ट कराए। डरने की नहीं, समझदारी दिखाने की जरूरत है।
3: और क्या आशा दीदी भी इसमें मदद करती हैं?
1: हाँ बिल्कुल, आशा दीदी और दूसरे स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर ऐसे लक्षण वाले लोगों की पहचान करते हैं। वे लोगों को समझाते हैं, उन्हें स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाने में मदद करते हैं और कई बार खुद टेस्ट करवाने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर किसी को जाने में दिक्कत हो तो आशा दीदी से मदद जरूर लेनी चाहिए, वे आपके सबसे करीब की स्वास्थ्य साथी है।
3: ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब अब जानकारी, जांच और इलाज तीनों एक ही गांव के पास उपलब्ध हैं।
1: बिल्कुल, और यही वजह है कि अब काला आजार को हराना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है, बस जरूरत है कि लोग समय पर कदम उठाएं।
3: सरकार इस बीमारी को खत्म करने के लिए क्या कर रही है?
1: सरकार इस दिशा में काफी काम कर रही है। एक बड़ा कार्यक्रम चला रहा है जिनका नाम है राष्ट्रीय काला आजार उन्मूलन कार्यक्रम, और यह NCVBDC के तहत आता है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्षण यह है कि हर ब्लॉक में काला आजार के मामले 10,000 लोगों में से एक

0: ये भी कम हो जाए। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने 2023 में यह लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो कि बहुत ही उपलब्धि है।
1: ये तो सच में गर्व की बात है।
0: हाँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम लापरवाह हो जाए। अभी भी सावधानी बहुत जरूरी है। सरकार हर साल लाखों घरों में स्प्रे करवाती है। करीब 3.5 से 3.8 करोड़ लोगों के घरों में दीवारों पर दवा का छिड़काव किया जाता है, जिसमें रेत मक्खियां खत्म हो सके और बीमारी फैलने से रोकी जा सके।
1: तो आम लोग खुद क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए?
0: बहुत आसान उपाय है, जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा के जिंदगी में अपना सकते हैं। सबसे पहले तो घर की दीवारों की दरारों को भरना चाहिए, ताकि मक्खियों को छिपने की जगह ना मिले। घर और आसपास की साफ सफाई बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा पशुओं को घर से थोड़ा दूर रखना चाहिए, ताकि मक्खियां इंसानों के पास ना आए। रात में सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जमीन पर या खुले में बाहर सोने से बचे। इन छोटे छोटे उपायों से हम काला आजार जैसी बीमारी से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं।
1: टीकन देवी जी, एक बात बताइए, गांव में लोग इस बीमारी को लेकर किस तरह की गलतफहमियां रखते हैं? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग बीमारी से ज्यादा डर उसके बारे में सुनी सुनाई बातों से जताते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने आरजे खुशी, और यही सबसे बड़ी समस्या भी है। हमारे गाँव में आज भी बहुत लोग काला आजार को भूत प्रेत साया या किसी की बुरी नजर का असर मान लेते हैं। जब किसी को लंबे समय तक बुखार रहता है, शरीर कमजोर हो जाता है और पेट फूल जाता है, तो लोग सीधे डॉक्टर के पास जाने के बजाय झाड़ फूक या ओज गुनी के पास चले जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, अरे भाई, ये कोई जादू टोना नहीं, ये एक बीमारी है और इसका इलाज भी है। अगर समय पर सही इलाज मिल जाए तो व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो सकता है।
1: हाँ, और शायद इसी वजह से लोग देर कर देते हैं इलाज कराने में।
0: बिल्कुल। और एक और बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग सोचते हैं कि यह बीमारी छूने से फैलती है, इसीलिए मरीज से दूरी बना लेते हैं। कुछ लोग मरीज को तो अलग कमरे में रखने लगते हैं या उसे बात तक नहीं करते, लेकिन सच्चाई यही है कि काला आजार छूने, साथ बैठने या खाना खाने से नहीं फैलता, ये सिर्फ रेत मक्खी के काटने से फैलता है। इसीलिए मरीज से डरे या उसे अलग कमरे की कोई जरूरत नहीं, बल्कि उसे सहारा देने की जरूरत है।
1: और क्या क्या गलत धारणाएं होती हैं लोगों में?
0: कई लोग यह भी मान लेते हैं कि अगर बुखार अपने आप कम हो या तो बीमारी ठीक हो गई, जबकि अंदर से बीमारी बनी रहती है और बाद में और गंभीर हो जाती है। कुछ लोग दवा शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा आराम मिलता है दवा बीच में ही छोड़ देते हैं। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इससे बीमारी दोबारा लौट सकती है या और जटिल हो सकती है। और एक बात, और कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ गरीब या कमजोर लोगों को ही काला आजार होता है, जबकि सच्चाई यह है कि अगर माहौल सही नहीं है और मक्खियां पनप रही है तो कोई भी व्यक्ति इसका शिकार हो सकता है।
1: तो इसका समाधान क्या है? लोग इन गलत फहमियों से कैसे बाहर आए?
0: समाधान बहुत साफ है आरजे खुशी। सही जानकारी और जागरूकता। सबसे पहले तो जैसे ही किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार रहे, वजन कम हो या पेट फूलने लगे, तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाइए। किसी भी तरह का झाड़ फूक या देरी से बचे। दूसरी बात, अगर डॉक्टर इलाज शुरू करे तो पूरा कोर्स पूरा करे, चाहे बीच में कितनी भी आराम क्यों ना मिल जाए। और तीसरी बात, घर और आसपास की सफाई रखे, दीवारों की दरारें भरे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करे। और सबसे जरूरी, मरीज का साथ दे, उसे अलग या कमजोर महसूस ना होने दे।
1: बहुत ही जरूरी बातें आपने बताई। लेकिन टीकन देवी जी, आपने शुरुआत में एक दुखदायी कहानी सुनाई थी, क्या कोई ऐसी कहानी भी है जहां जागरूकता ने किसी की जिंदगी बदल दी है?
0: हाँ बिल्कुल है, और ये कहानी सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा। हमारे पास के गांव में मेरी एक सहेली है रीना। कुछ साल पहले उसके इलाके में काला आजार के कई मामले सामने आए थे, जिससे गांव पूरा डरा हुआ था। लेकिन रीना ने डरने के बाद समझदारी दिखाई। उसने पहले से ही अपने घर की दीवारों को ठीक कराया, दरारें भरवाई और घर के आसपास साफ सफाई पर ध्यान देना शुरू किया। उसने मच्छरदानी का इस्तेमाल करना शुरू किया और आशा दीदी की हर बात को ध्यान से सुना और अपनाया। एक दिन उसे भी हल्का बुखार आया। पहले तो वो थोड़ी घबरा गई, लेकिन इस बार उसने देर नहीं की, तुरंत स्वास्थ्य केंद्र गई, टेस्ट करवाया और रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो हंसते हुए मुझसे बोली, यार टीकन, इस बार मैं डरने वाली नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि क्या करना है और कहाँ जाना है। आज वही रीना अपने पूरे गांव में लोगों को समझाती है कि डरना नहीं बल्कि समय पर कदम उठाना है।
1: सच में ये तो असली बदलाव है जब एक व्यक्ति जागरूक होता है और पूरे गांव को जागरूक बना देता है।
0: बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी ताकत है, जागरूकता। याद रखिए, काला आजार खतरनाक जरूर है, लेकिन अगर हम समय पर पहचान ले और इलाज करा ले तो इसे पूरी तरह हराया जा सकता है।
1: और यही सबसे बड़ा संदेश है आज के कार्यक्रम, समय पर जांच और सही इलाज आपकी जिंदगी बचाता है।
0: और साथ ही सही जानकारी अपनाइए, गलत फहमियों से दूर रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक बनाइए।
1: तो दोस्तों, आज से ही एक कदम बढ़ाइए, अपने और अपने पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए जागरूक बनिए।
0: जागरूक बने,
1: सुरक्षित रहें और कालाजार को मिलकर हराएं। तो इसी के साथ आज का शो समाप्त होता है, पर जाने से पहले हम सब मिलकर लेते हैं आज ये शपथ कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करें ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कई। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार श्रोताओं।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
4: उत्तर प्रदेश में कावड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
3: कावड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
4: कावड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
3: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
5: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे रीना। पिछले एपिसोड के बाद बहुत सारे कॉल आए, लोगों के मन में ढेरों सवाल है लेकिन ज्यादातर खुलकर बात नहीं करना चाहते। तो आज हम उसी जरूरी कम बोली जाने वाली बात पर सिर्फ चर्चा करेंगे, परिवार नियोजन। और आज हमारे साथ है आपकी हमारी समझदार और प्यारी टीकन भाभी।
1: नमस्कार दोस्तों, आरजे रीना ने मुझे फोन किया तो बोली, भाभी आज का मुद्दा बहुत जरूरी है, आपके बिना बात अधूरी, तो बस मैं चली आई।
5: शुक्रिया भाभी। चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सीधे सवाल पर आती हूँ। महिलाएं जानना चाहती है परिवार नियोजन और उनके असल में क्या फायदा होता है, क्या इससे उनका शरीर मजबूत होता है और क्या ये घर की आमदनी पर भी असर डालता है।
1: सही कहा आरजी रीना। अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। हमारे गाँव की रेखा दीदी की शादी कम उम्र में हो गई थी। परिवार साधारण था, 5 बहनें थी। 10वीं के बाद पिता ने पढ़ाई छुड़वा दी और शादी कर दी। रेखा पढ़ना चाहती थी लेकिन घर वालों को लगता था अच्छा घर मिल गया तो पढ़ाई की क्या जरूरत है। शादी के कुछ महीने बाद ही सबने पूछना शुरू कर दिया बच्चा कब होगा, लेकिन रेखा जानती थी कि अगर उसने जल्दी माँ बनने का फैसला किया तो उसके सपने वहीं रुक जाएंगे। उसने अपने पति से बात की, कहा कि कुछ साल रुक जाइए, मैं पढ़ाई पूरी करके कंप्यूटर सीख सकती है और अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। पहले तो पति नाराज हुए लेकिन धीरे धीरे समझ गए। उसने अपने परिवार को भी समझाया। रेखा ने घर के सारे काम किए, खेत में भी हाथ बटाया, 12वीं की परीक्षा भी दी और कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन की। फिर बीए में एडमिशन लिया और सरकारी नौकरी की तैयारी करनी शुरू कर दी। गाँव वाले ताना मारते थे, अगर बच्चा नहीं चाहिए था तो शादी क्यों की, नौकरी का क्या करेगी। लेकिन रेखा डरती रही और पढ़ाई पूरी होने से पहले ही उसे कलेक्टर ऑफिस में एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब वही लोग जो उसे ताना देते थे उसके पास अपने काम लेकर आने लगे। शादी के लगभग 4 साल बाद जब रेखा 22 की हुई, उसने परिवार बढ़ाने का फैसला किया। सोच समझकर खुशी से अब वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से तैयार थी।
5: वाह भाभी, रेखा की कहानी तो सब कुछ साफ कर दिया। परिवार नियोजन से महिलाओं को न सिर्फ समय मिलता है अपने सपनों को पूरा करने का, बल्कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे। और जब माँ मजबूत होती है तभी परिवार भी मजबूत बनता है।
1: और सबसे जरूरी बात, ये फैसला जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। ये महिलाओं और उसके साथी दोनों की समझदारी आपसी बातचीत से आना चाहिए। सोच समझकर लिया गया फैसला ही परिवार को देता है सही दिशा। सेहत सही तो लाभ कई।
5: भाभी, कई लोग सोचते हैं कि बच्चों में उम्र का अंतर कोई खास मायने नहीं रख, लेकिन असल में इसका सेहत और परिवार दोनों पर बड़ा असर होता है ना?
1: बिल्कुल सही कहा बहन आपने। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने ना समझी में मैंने पहला बच्चा खो दिया था। फिर मैंने और आपके सेहतिया भैया ने निर्णय लिया कि पहले मैं अपनी सेहत सही करूंगी, फिर दूसरे बच्चे की सोचूंगी। और हमारे दोनों बच्चों में 4 साल से भी ज्यादा का अंतर है। अगर एक बच्चे के पैदा होने के 6 महीने के अंदर ही दूसरा गर्भ ठहर जाए तो माँ के शरीर को पूरा आराम नहीं मिल पाता। इससे माँ कमजोर हो जाती है और आने वाले बच्चे को भी पूरा पोषण नहीं मिल पाता। कई बार बच्चा समय से पहले भी पैदा हो सकता है।
5: मतलब माँ की सेहत के लिए भी जरूरी है कि उसे पूरा वक्त मिले खुद को रिकवर करने का।
1: कम से कम 2 साल का अंतर हो तो माँ का शरीर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। याद रखें कि माँ के खून और माँ की हड्डियों से ही बच्चा, हड्डी से ही बीज बनता है। एक बच्चे के बाद कम से कम 3 साल का समय माँ को फिर से तंदुरुस्त होने के लिए मिलना चाहिए। अगला बच्चा तंदुरुस्त होगा और माँ के अंदर भी ताकत बनी रहेगी। इसलिए बच्चे के बीच गैप होना जरूरी है।
5: और अगर देखा जाए तो पूरे परिवार को भी इससे फायदा होता है।
1: हाँ आरजी रीना, जब बच्चे सोच समझकर और सही अंतराल पर हो तो परिवार आर्थिक रूप से मजबूत रहता है। बच्चों की पढ़ाई, उनके खाने पीने और इलाज का खर्च ठीक से उठाया जा सकता है। जल्दी जल्दी बच्चे होंगे तो खर्च भी बढ़ेगा और ध्यान भी बटेगा।
5: बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर भी इसका असर पड़ता है क्या?
1: बिल्कुल पड़ता है। जब बच्चों के बीच ठीक ठाक उम्र का फासला होता है तो छोटा बच्चा अपने बड़े भाई बहन से बहुत कुछ सीखता है। बोलना, चालना, समझना, इससे दोनों का विकास बेहतर होता है। लेकिन अगर दोनों बहुत छोटे हैं तो माँ बाप के लिए दोनों को संभालना मुश्किल हो जाता है।
5: आपने तो बड़े कमाल की बात कह दी।
1: ये बातें हर घर तक पहुँचे तभी तो हर परिवार रहेगा खुशहाल।
5: परिवार नियोजन से महिलाएं मजबूत होती है, ये बात कितनी सच है?
1: आरजे रीना, ये बात बिल्कुल सच है। एक महिला खुद तय कर सके कि कब माँ बनना है, कितने बच्चे चाहिए और अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सके, यही तो असली सशक्तिकरण है।
5: कैसे भाभी?
1: देखो, जब महिला के पास सही समय और सही योजना होती है तो वे अपने लिए सोच सकती हैं। मेरी बहन सरला की बात लो, उसने समझदारी से फैसला लिया। दो बच्चों के बाद परिवार नियोजन अपनाया, जिससे वो खुद और अपने बच्चों की परवरिश दे सकी। जब घर की जिम्मेदारियां संभाली गई, तो उसने सिलाई का कोर्स किया, फिर धीरे धीरे अपना काम शुरू किया। पहले छोटे मोटे ऑर्डर लिया, फिर हुनर बढ़ाया और कमाई भी बढ़ने लगी। अब वो अपने परिवार को आर्थिक रूप से संभाल रही है, बच्चों को

0: जब वो आत्मनिर्भर होती है तो अपने परिवार की भी अच्छी देखभाल कर सकती है।
1: तो भाभी, परिवार नियोजन से न सिर्फ महिला की जिंदगी बेहतर होती है बल्कि पूरे परिवार का भविष्य भी अच्छा बनता है।
0: बिल्कुल सही कहा रीना, जब सही योजना बनाई जाती है तो पूरा परिवार खुशहाल होता है और सबसे बड़ी बात, महिलाओं को अपने फैसले लेने की आज़ादी मिलती है।
1: श्रोताओं, कई जगहों पर परिवार नियोजन को अपनाने में सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं भी है। लोग सोचते हैं कि उनकी परंपराओं के खिलाफ है। ईकन भाभी, अपना इस पर क्या विचार है?
0: हमारे यहाँ परंपराएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हर परंपरा समय के साथ बदलती भी है। अगर कुछ चीजें हमारे जीवन को बेहतर बना सकती हैं, तो उन्हें अपनाने में कोई बुराई नहीं है। परिवार नियोजन का मतलब ये नहीं कि हम अपने मूल्यों को छोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपने परिवार को सही तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। जब सही जानकारी मिलेगी तो लोग इसे अपनाने के लिए आगे आएंगे।
1: वैसे एक और मुद्दा है, पुरुषों की भागीदारी। कई बार महिलाओं को अकेले ही फैसला लेना पड़ता है, लेकिन अगर पति और परिवार साथ है तो फैसला लेना आसान हो जाता है।
0: देखो, परिवार नियोजन केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं, जब पति, पिता और अन्य पुरुष सदस्य इस विषय को गंभीरता से लेंगे तभी सही बदलाव आएगा।
1: लेकिन जब पुरुष नसबंदी की बात आती है तो कई पुरुष इसे अपनाने से डरते हैं। वो सोचते हैं कि इससे उनकी मर्दानगी पर असर पड़ेगा।
0: यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। डॉक्टर कहते हैं कि पुरुष नसबंदी सुरक्षित और प्रभावी है, इससे पुरुष की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता। पुरुष नसबंदी परिवार नियोजन को आसान और सुरक्षित बना सकती है।
1: वैसे सरकार भी परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है।
0: सरकार ने कई पहल की हैं, जैसे कि मुफ्त गर्भ निरोधक साधक, जागरूकता अभियान और विपत्ति प्रोत्साहन। कई राज्यों में महिलाओं और पुरुषों को परिवार नियोजन के साधनों को अपनाने के लिए विशेष लाभ दिया जाता है। सरकार कोशिश तो कर रही है, पर साथ ही जागरूकता और सही जानकारी पहुंचाना बहुत जरूरी है। अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे और सही विकल्प चुने तो परिवार नियोजन का लाभ सभी को मिल सकता है।
1: छोटा परिवार सुखी परिवार, एक बार फिर बताइए, छोटे परिवार से क्या फायदा है?
0: आजकल एक बच्चे को पालने में ही बड़ा खर्च है। उसकी पढ़ाई, अच्छे खाने पीने का ध्यान, कपड़े, दवाई, सब में पैसा लगता है। अगर जल्दी जल्दी कई बच्चे हो तो खर्च इतना बढ़ जाता है कि माता पिता के लिए संभालना मुश्किल हो जाता है।
1: मतलब अगर हर साल एक बच्चा हो तो मुश्किल बढ़ जाती है।
0: अगर हर साल एक बच्चा हो तो माँ के पास ना तो आराम करने का समय होगा, ना ही बच्चों की सही देखभाल करने का। पिता भी बच्चों की जरूरतों को पूरा करने में ही लगे रहेंगे और घर के बाकी खर्च पूरे करने में परेशानी होती है।
1: तो फिर क्या करना चाहिए?
0: समझदारी से योजना बनानी चाहिए। जब बच्चों के बीच सही अंतर रखा जाता है तो माता पिता उन्हें बेहतर पढ़ाई का मौका दे सकते हैं, अच्छा खाना खिला सकते हैं और सेहत का सही ध्यान रख सकते हैं। इससे बच्चे विशेष रूप में सफल होते हैं।
1: तो आप कह रही हैं कि ये सिर्फ खर्च बनाने की बात नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य का सही इन्वेस्टमेंट है।
0: सही कहा, जब बच्चों को अच्छी शिक्षा, सही पोषण और बेहतर जीवन शैली मिलती है तो वो बड़े होकर आत्मनिर्भर बनते हैं। इससे पूरा परिवार मजबूत बनता है और भविष्य में आर्थिक रूप से भी सुरक्षित रहता है।
1: तो भाभी, परिवार छोटा करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं?
0: अब तो बहुत सारे विकल्प हैं, गोली, कॉन्डोम, इंजेक्शन और यहाँ तक कि इम्प्लांट भी। गांव में हमारी आशा बहन सब समझाती हैं, सब आसानी से मिलता है, गोपनीयता भी रहती है, मतलब कोई और जाने ना जाने पति पत्नी को सब पता होता है।
1: तो क्या परिवार नियोजन के उपाय महिलाओं को नुकसान नहीं पहुँचाते?
0: सही जानकारी लेकर उचित इस्तेमाल हो तो ये सब सुरक्षित है। महिलाएं खुद तय करें कि सही क्या है, यही असली सशक्तिकरण है।
1: क्या युवाओं को भी जानकारी होनी चाहिए?
0: बिल्कुल होनी चाहिए। युवा अवस्था में अगर सही जानकारी मिले तो अनचाहे गर्भ अवस्था रोकी जा सकती है। हमारे गांव की रेखा को देखो, उसने शादी के बाद 2 साल तक बच्चा नहीं चाहा, पढ़ाई की, कंप्यूटर सीखा और वो सरकारी दफ्तर में काम कर रही है। सही जानकारी से महिलाएं अपनी जिंदगी खुद तय कर सकती हैं।
1: भाभी, लेकिन कई लोग कहते हैं कि गोली खाने से बांझपन हो जाता है या कॉन्डम से मजा नहीं आता, क्या ये सच है?
0: ये सब अफवाह है। गोली हो या इंजेक्शन, ये

0: अब सिर्फ थोड़े समय के लिए गर्भ रोकता है, बांझ नहीं बनाता। कोंडोम का तो फायदा डबल है, गर्भ भी नहीं होता और बीमारी भी नहीं होती।
1: ये सारी जानकारी मिली कहाँ से है, कौन समझाता है?
0: हमारी आशा दीदी हर मर्ज की दवा है। वे घर घर जाकर लोगों को समझाती हैं, सही जानकारी देती हैं और दवाइयाँ लाकर देती हैं। अगर किसी को जरूरत हो तो हॉस्पिटल जाने में भी मदद करती हैं।
1: आशा दीदी तो सच में बड़ी काम की है, लेकिन क्या सिर्फ उन्हीं से मदद मिलती है? आशा दीदी के अलावा गर्भ निरोधक उपायों में और कौन मदद करता है?
0: सरकारी अस्पताल के डॉक्टर और नर्स भी मदद करती हैं। अब तो स्वास्थ्य सेवा प्रथाओं को खास परीक्षण दिया जा रहा है, जिससे वो लोगों को सही परामर्श दे सकें और गर्भ निरोधक उपायों के बारे में पूरी जानकारी दे सकें। इससे महिलाएं सही फैसला ले पाती हैं और परिवार की सेहत भी बनी रहती है।
1: परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए और क्या किया जा रहा है?
0: सरकार ने भी बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। अब नए गर्भ निरोधक उपाय जैसे इंजेक्शन, इम्प्लांट भी उपलब्ध हैं। इससे महिलाओं को सुविधाजनक तरीके से परिवार नियोजन करने में मदद मिलती है। मिशन परिवार विकास जैसी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिससे जागरूकता बढ़ेगी और लोग सही जानकारी पा रहे हैं।
1: पर मिशन परिवार विकास है क्या?
0: मिशन परिवार विकास के अंतर्गत सरकारी नव दाम्पत्ति को परिवार नियोजन किट देती है। साथ ही सास बहू सम्मेलन का आयोजन करती है, जिससे कि सास और बहू के बीच बातचीत हो सके और उन दोनों को समझ आ सके परिवार नियोजन कितना जरूरी है।
1: तो क्या इसका मतलब है जो बहुएं अपनी सास पर सास को घर में बात नहीं समझा पाती, उनके इस सम्मेलन में संवाद करके आशंकाएं और नियोजन से संबंधित वार्तालाप कर सकती है?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने।
1: तो इसका मतलब परिवार नियोजन अब पहले से ज्यादा आसान हो गया है।
0: ऐसा ही, अब तो मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के साथ गर्भ निरोधक सेवाएं भी जोड़ दी गई हैं। यानी जब भी कोई सरकारी अस्पताल जाता है, उसे परिवार नियोजन के विकल्पों की जानकारी भी दी जाती है। इससे लोगों को सही समय पर जरूरी सलाह मिल जाती है।
1: और ये मोबाइल हेल्थ और टेलीमेडिसिन क्या है?
0: मोबाइल पर भी जानकारियाँ मिलती हैं। परिवार नियोजन के हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ से कॉल करके मदद मिल सकती है। अब तो बस एक फोन कॉल या ऐप डाउनलोड करने से ही सारी सूची मिल जाती है। टेलीफोन मेडिसिन के जरिए लोग डॉक्टर से सीधा बात कर सकते हैं, सही जानकारी पा सकते हैं और हाँ, याद दिलाने वाले रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं। खासकर जो लोग दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है।
1: तो सरकार के प्रयास से डॉक्टर, आशा दीदी और मोबाइल सेवाएं सब मिलकर परिवार नियोजन को आसान बना रहे हैं।
0: अब हर किसी के पास जानकारी है और सही रास्ता चुनने का मौका भी है। जब परिवार नियोजन सही तरीके से होगा तो माँ स्वस्थ रहेगी, बच्चा सेहतमंद होगा और पूरा परिवार खुशहाल रहेगा।
1: भाभी, आपने तो आज कमाल कर दिया, आसान भाषा में बड़ी जरूरी बातें समझा दी।
0: अरे बहन, बात सीधी है, सोच समझकर बच्चा पैदा करो, उनके बीच सही अंतराल रखो ताकि माँ का शरीर भी ठीक रहे, बच्चे भी सेहतमंद रहेंगे और परिवार की जिंदगी भी खुशहाल बनी रहेगी। और हाँ, महिलाएं पढ़ें, आगे बढ़ें, कमाएं, तभी तो घर और समाज देश की असली तरक्की होगी।
1: तो साथियों सुन लिया ना, परिवार नियोजन कोई मजबूरी नहीं बल्कि समझदारी भरा फैसला है। जब आप सही समय पर बच्चा पैदा करने का निर्णय लेते हैं तो आप न सिर्फ अपने परिवार की सेहत और खुशहाली की रक्षा करते हैं बल्कि अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य भी देते हैं। याद रखिए, माँ स्वस्थ रहेगी तभी बच्चा मजबूत होगा, बच्चा मजबूत होगा तभी परिवार आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा तभी देश तरक्की करेगा। तो आज की चर्चा को सिर्फ सुनिए मत, अपने घर में, अपने मोहल्ले में और हर उस जगह जहां आपकी बात पहुंच सकती है परिवार नियोजन के संदेश को फैलाइए। सेहत सही लाभ कई, यही है हमारा नारा और यही है आगे बढ़ने की राह। सुनते रहिए कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। अगली बार फिर मिलेंगे नई और रोचक जानकारी के साथ। नमस्कार और सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 FM, रेडियो बजाते रहिए एंड गुनगुनाते रहिए।
2: हम सब मिलकर आज यह शपथ लेते हैं, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
3: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
4: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
2: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
3: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
4: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
2: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
3: शुक्रिया सेहतिया भैया।
4: तो दोस्तों, आज का हमारा यह सेगमेंट यहीं समाप्त होता है। याद रखें, सही जानकारी, समय पर इलाज और सामूहिक प्रयास से हम हर बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं। अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें, मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के तहत दवाई जरूर खाएं। सेहतिया भैया के अनुभव से हमें बहुत प्रेरणा मिली है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
0: सिजमी आरजे रीना FM मुरादाबाद 89.6 FM रेडियो बजाते रहिए एंड गुनगुनाते रहिए जनाब। आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास है हमारे लिए, क्योंकि आज है 11 जुलाई और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और ये दिन हमें हमेशा याद दिलाता है कि बढ़ती जनसंख्या सिर्फ आबादी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। और परिवार नियोजन को लेकर क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है और आम जनता कैसे इसका लाभ उठा सकती है, इसी की जानकारी के लिए आज हम पहुंचे हैं CMO ऑफिस, जहां मेरे साथ है डॉक्टर संजीव जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं और विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है और 2025 का इसकी थीम क्या रहने वाली है। सर,
5: मैं डॉक्टर संजीव बेलवाल मुरादाबाद से हूं और मेरे पास फैमिली प्लानिंग का भी कार्य मैं देखता हूं और सभी और भी नेशनल प्रोग्राम्स मेरे द्वारा देखे जा रहे हैं। 11 जुलाई को बेसिकली विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और इस बार की जो थीम हमारे यहाँ रखी गई है, हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेस बिटवीन द प्रेगनेंसीज ऑफ द प्लांट्स एंड द पेरेंटहुड। माँ बनने की उम्र वही है वह जब तन और मन की तैयारी सही हो। तो बेसिकली हम लोगों को अपना एक पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, उसके बारे में हमें ये सारी लोगों को अवेयरनेस के बारे में हमें ब्रीफ करना होता है, सोसाइटीज को बताना होता है और जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं वो जगह जगह जाके सारी चीजें कुछ हम इसके लिए प्रसार प्रसार भी करते हैं, ICs भी बनवाया जाता है, सास बेटा बहु सम्मेलन भी इसके तहत हमारे यहाँ पे कराया जाता है जो कि विलेज लेवल पे होता है। जो कपल्स होते हैं उन कपल्स को जितने भी हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल्स करने के मेथड्स होते हैं वो सारी चीजें उसमें समझाई जाती है। तो इस बार जो हमारी गवर्नमेंट ने जो थीम रखी है, हेल्दी टाइमिंग स्पेसिंग बिटवीन द प्रेगनेंसीज ऑफ द प्लांट पेरेंटहुड।
1: सर, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये होगा कि भारत या विशेष रूप से हमारे जिले में जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान स्थिति क्या होने वाली है?
5: देखिए मैम, अभी भी कुछ अवेयरनेस की कमी है और कुछ तबका एक ऐसा होता है कि जो अभी इस पे ध्यान नहीं दे रहा, तो उसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की साइड से विलेज लेवल्स पे, मोहल्लाज में, सभी जगह आशाओं के माध्यम से, आंगनवाड़ी के माध्यम से और हमारे जितने भी ICs के माध्यम से हम उसको तो हमारी पॉपुलेशन है वो ज्यादा इंक्रीज ना हो, तो ये चीजें उसको बताया जाता है। और इसीलिए और अर्ली स्पेसिंग ना हो जल्दी से, बहुत जल्दी मैरिज ना हो, है ना, ये सारी चीजें जो रूढ़िवादी समस्याएं आती हैं उनके बारे में ब्रीफ किया जाता है। और अभी हम डिस्ट्रिक्ट हमारा मुरादाबाद जो अभी इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा, तो हमारे अच्छे खासे लोग हैं जो हमारी फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करते हैं।
1: सर, हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो परिवार नियोजन में मदद करती है?
5: मैडम, बेसिकली क्या है कि इसमें टेम्पररी मेथड और परमानेंट मेथड दोनों ही इसमें प्रकार में यूज होते हैं। टेम्पररी मेथड्स में मेल एंड फीमेल दोनों को लिए होता है, जिसमें हम NSB बोलते हैं और फीमेल स्टरलाइजेशन जो होते हैं जो कि ट्यूबेक्टमी की जाती है, इससे इसमें कोई हानि नहीं होती है, ना ही उसको कोई हेल्थ तो मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स होती कराने के बाद, तो ये परमानेंट मेथड्स के रूप में आते हैं। दूसरे टेम्पररी मेथड्स होते हैं जैसे इंट्रा कॉन्सेप्टिव होती हैं, ओरल स्पिल्स होती है, हमारे पास छाया होता है, अंतरा होता है और अन्य डिवाइसेस भी हमारे पास यूज होती है और जो हमारा कॉन्डम्स यूज किए जाते हैं, ये सारी जो मतलब टेम्पररी में नहीं आती है, ये बेसिकली आदमी इनको यूज करने के बाद बाद अपनी फैमिलीज को एक नॉर्मल उसमें साइज में रख सकता है। और कोई इसमें कुछ इंजेक्टेबल्स भी होते हैं जो कि कुछ 6 महीने के लिए दिए जाते हैं, और कुछ इंटरटाइन डिवाइसेस होती है वो उसमें यूज की जाती है, तो वो लोग सब यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं और अच्छी खासी मात्रा में हमारा ये।
1: क्या आज की पीढ़ी परिवार नियोजन को लेकर कितना ज्यादा जागरूक है?
5: अगर मैं बात करूँ तो पुराने जमाने में और आज के जमाने में काफी डिफरेंसेस है। पहले 80s में 70s की अगर हम बात करते तो एक फैमिलीज में मेल बेबी की लालसा में लोग अधिक बच्चे जन्म पैदा कर लेते थे फैमिलीज में, ये मैंने अपने गांव में भी देखा है, और कि वही एक बेटा आवश्यक है। लेकिन आज की कंडीशंस में जो यंगर्स हैं वो इस तरह की भावना को नहीं सोचते हैं, उनके लिए मेल बेबी और फीमेल बेबी दोनों ही समान होते, तो इस तरह की कंडीशन अब बहुत कम हो गई है कि भाई मेल की अपेक्षा ज्यादा रखते हुए और फैमिली को साइज एक रीजन से ये भी करता था। और आज लोग इसको जो यंगर्स हैं आज की जो पीढ़ी है वो फैमिली प्लानिंग को एक्सेप्ट कर रही है।
1: परिवार छोटा रखने से क्या फायदे हो सकते हैं?
5: देखिए मैम, परिवार अगर आपका छोटा रहेगा तो आपका एक मेंटल पीस रहेगा, फाइनेंशियल समस्याएं नहीं आएंगी, आप अपने बच्चे को अच्छी सी एजुकेशन दे सकते हैं। अगर कभी कोई हेल्थ इश्यूज आता है उसका भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो मेंटल पीस हो गया, आपका सोशल एक्टिविटीज आप अच्छे से करा सकते हैं, बच्चे को अच्छे से शिक्षा दे सकते हैं, कोई भी चीज आप किसी भी फील्ड में किसी भी साइड में अगर आप भेजेंगे तो उसको अच्छे से उसका लालन पालन पोषण किया जा सकता है। अगर बिग फैमिली से आपका जो साधन है, सोर्स ऑफ इनकम कम है और आपका बिग फैमिली, तो आपको मेंटली प्रॉब्लम्स होती है, हर चीजों की समस्या उसको जूझना से पड़ता है। आपका छोटा फैमिली होगा, खुशहाल रहेगा और अच्छे से जीवन जिएगा।
1: क्या आपको लगता है कि भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है?
5: मैम, भारत की जनसंख्या बढ़ रही है इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट्स अभी भी अभी हमारे जो हम ये फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम से ऑल ओवर इंडिया चल रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी इसको समझ रही है कि ज्यादा अगर ये इस तरह से पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी तो उसमें आने वाली समस्याएं होंगी। तो बहुत सारी चीजें होती है, एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आती है, हेल्थ में प्रॉब्लम्स आती है, ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट में समस्याएं आती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आपको मतलब ऑक्यूपेशन में सर्विसेज लेने में या देने में सारी समस्याएं क्रिएट होती है अगर बहुत लार्ज पॉपुलेशन होती है। दूसरा हमारा एग्रीकल्चर पे लैंड पे भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी समस्याएं पॉपुलेशन की होने की वजह से कुछ बेसिकली एंटी एलिमेंट्स भी कभी कभी इस तरह से उत्पन्न हो जाते हैं, घर में फाइनेंशियल की क्राइसिस होती है और बच्चे किसी दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। तो ये सब चीज कंट्रोल होना आवश्यक है, और हेल्दी लाइफ, सुकून की जीवन जीना, पीसफुल लाइफ जीने के लिए आपको एक छोटा परिवार की आवश्यकता है।
1: बिल्कुल, गांव और शहर में परिवार नियोजन को लेकर क्या फर्क है आजकल अगर देखा जाए तो आज के टाइम?
5: देखिए मैम, अभी जो हमारा गाँव में और शहर में दोनों में जो एजुकेटरी लेवल्स है वो लगभग समान सा आता चला जा रहा है, तो दोनों ही साइड में इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। विलेजेस में अभी थोड़ा सा जो हमारा एजुकेशन लेवल है थोड़ा कम है, तो वहाँ के जो भी पुराने लोग हैं उनमें थोड़ा सा हमने देखने को मिला है, उनके तो अंदर थोड़ी सी हेजिटेशंस रहती है, तो उसी के लिए गवर्नमेंट के साइड से ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे सास बेटा बहु सम्मेलन। ये बेसिकली एक छोटे से गाँव में उसमें आंगनवाड़ी, आशा, एनम और अन्य गांव के समाज लोग वहां बैठते हैं एक साथ, और उसके पूरी फैमिली प्लानिंग के बारे में चर्चा की जाती है। उस चर्चा करने के बाद लोग इसको समझ रहे हैं धीरे धीरे, और हम शहर और गांव को बराबर लाने की कोशिश में लगी हुई है सरकार हमारी, तो जल्दी से जल्दी हम सोचते हैं कि इसका अनुपात बराबर आ जाएगा।
1: ओके सर।
0: हाँ जी सर, जैसे कि हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि हम दो हमारे दो, तो सर ये आखिरकार है क्या?
5: हाँ मैम, हम दो हमारे दो का ये स्लोगन तो बहुत पहले से चला आ रहा है, जब से मैंने जन्म लिया तब से मैं सुनता आ रहा हूँ कि हम दो और हमारे दो, ये अच्छा है और इसको लोग एक्सेप्ट करें और इसी स्लोगन को मानते हुए अपने जीवन में इसको लें और पॉपुलेशन को कंट्रोल करें।
0: सर लास्ट क्वेश्चन है कि आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में, छोटा सा अपना मैसेज दीजिए।
5: हमारे मुरादाबाद की अगर हम बात करें तो 11 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें जो भी हमारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, फीमेल हॉस्पिटल्स, वहां पे टेम्पररी मेथड को एक्सेप्ट करें और पॉपुलेशन कंट्रोल करने में हमारे देश की और हमारे स्टेट की मदद।
0: थैंक यू सो मच सर, और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 FM, रेडियो बजाते रहिए एंड गुनगुनाते रहिए जनाब।
6: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
7: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
2: मेरा गांव मेरी धरोहर है,
3: मेरा गांव मेरी धरोहर। पंच दिवसीय अभियान से जुड़िए, यही तो है हमारी पहचान। पंच दिवसीय अभियान के माध्यम से हम जोड़ेंगे अपनी भूली बिसरी कविताओं, लोकगीतों, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से। गांव की मिट्टी की खुशबू, हमारी बोली, हमारे लोकगीत और हमारी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं, यही तो है हमारी असली पहचान। तो आइए अपनी सांस्कृतिक धरोहर को याद करें, उसे सजोएं और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। मेरा गांव मेरी धरोहर, अपनी संस्कृति अपनी पहचान। तो इस अभियान में आप भी हिस्सा लीजिए, हमें अपनी फोटो वीडियो जरूर सेंड कीजिए। मेरा गाँव मेरी धरोहर।
2: मेरी

0: पंचायतों से।
1: आज ही मिलें अपनी पंचायत से और जुड़ें इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर।

0: जहां विकास सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी में दिखाई देता है।
1: बिल्कुल, और आज की हमारी यात्रा पहुंची है भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, एक ऐसा जिला जहां विकास की रफ्तार गांव से लेकर शहरों तक नई तस्वीर गढ़ रही है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के जन कल्याण योजनाएं समाज के हर वर्ग तक पहुंच रही हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर स्वरोजगार, बुनियादी सुविधाओं और आर्थिक आत्मनिर्भरता तक।
1: और जब योजनाओं का लाभ सीधे लोगों की जिंदगी बदलता है तो उसकी कहानी सबसे ज्यादा असरदार होती है। चलिए सुनते हैं कुशीनगर की श्वेता जायसवाल की कहानी।
2: जी सर नमस्कार, मैं ग्राम पंचायत मिसीपट्टी से हूँ। मेरा नाम श्वेता जायसवाल है और मैं काजल स्वयं सहायता समूह में काम भी करती हूँ। और मुझे सरकार से बहुत सारी उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं, जैसे मेरे नाम से राशन कार्ड भी है। पहले राशन कार्ड हस्बैंड के नाम से होते थे, अब वो हमारे नाम से हैं। और इस समय हमारे नाम से शौचालय है, हमारे नाम से हमारे हस्बैंड जाने जा रहे हैं। पहले हम उनके नाम से जाने जाते हैं, अब वो सरकार की उसके वजह से हम अपने नाम से वो हमारे नाम से वो जाने जाते हैं। और मैं गौशाला भी खोली हूँ, मेरे पास 6-7 गाय हैं। मैं उस गाय से अपना परिवार चलाती हूँ। दूध का उपदान होता है, उत्पादन करके और मैं डेयरी फार्म में उसको उपलब्ध कराती हूँ और उससे जो पैसा मिलता है हमारे घर का खर्चा और सब काम चलता है। इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: वाकई ये सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का कदम है।
1: और ऐसी एक प्रेरक कहानी है अनुपमा तिवारी की। बीसी सखी और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना जैसी योजनाओं ने उनके सपनों को पंख दिए और उन्होंने अपना पार्लर और कॉस्मेटिक की दुकान खोलने का सपना साकार किया।
3: मेरा नाम पहले तो सभी लोगों को रेडियो प्रज्ञा की तरफ से मौका दिया गया बोलने के लिए, उसके लिए मैं नमस्कार प्रणाम करती हूँ उन लोगों को और बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ कि मुझे ऐसा मौका दिया गया बोलने के लिए। मेरा नाम अनुपमा तिवारी है, मैं ग्राम पंचायत सिद्धवा मिश्रौली से हूँ। मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ के मैं जो भी चीज़ें आज यहाँ तक भी पहुँची हूँ, मुझे BDO साहब के पास बैठने तक का मौका मिला है, तो मैं स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के बाद ही मिला है। और स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के बाद से मैं पहले तो मुझे परिचय की बात बताऊँ तो मुझे कोई जानता भी नहीं था और धीरे धीरे मुझे स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के बाद मुझे लोग जानना भी शुरू किए। पहले तो मुझे लोग स्वयं सहायता समूह में एक सदस्य के नाम से जानते थे, फिर मैंने धीरे धीरे अपने नाम को बढ़ाया तो बीसी सखी का नाम मेरा हुआ। फिर बीसी सखी से मैंने धीरे धीरे समूहों से पैसे जो भी लोन मुझे मिलते थे, जैसे स्टार्टअप हुआ, रिवाल्विक हुआ, CIF हुआ, CCL हुआ, CCL में मुझे बहुत लंबे अमाउंट तक के प्रोसेस मिलते हैं, तो मैंने उस पैसे को उठा के अपने समूह के सदस्यों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की है और अपने खुद को भी CM युवा उद्यमी के थ्रू अपने खुद को भी काम को बढ़ाने की कोशिश की, जिसमें मैंने कॉस्मेटिक और पार्लर का बिजनेस शुरू किया है, जिसमें मैं अभी तक बहुत अच्छे लेवल पे जा रही हूँ और बहुत अच्छे लेवल तक पहुँच भी चुकी हूँ। बाकी आप लोगों की अगर इच्छा रहेगी तो मैं बहुत आगे जाऊंगी भी। बाकी मेरे बेटे साहब के तरफ से मुझे बहुत उनके आशीर्वाद चाहिए कि मैं जब भी आऊँ मुझे एक नई सीख मिले और मुझे नए ज्ञान मिले जो कि मैं जाने बाद दूसरों को भी बताऊँ, खुद भी करूँ। थैंक यू।
0: कहते हैं विकास वही जो अवसर पैदा करे और कुशीनगर की ये कहानियाँ बताती हैं कि अवसर मिले तो हुनर अपने दम पर नई मंजिल बना सकता है।
1: और कुशीनगर में विकास की इस तस्वीर को और करीब से समझने के लिए अब सुनते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की बात।
4: रेडियो प्रज्ञा के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को आरके भट्ट का नमस्कार। आज हम खंड विकास अधिकारी कार्यालय पडरौना में उपस्थित हैं और हमारे सामने है श्री KK राय जी, खंड विकास अधिकारी पडरौना, और कार्यक्रम है विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी। और इस कार्यक्रम में सर रेडियो प्रज्ञा की तरफ से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार।
5: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे वहाँ आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
4: सर शासन की प्राथमिकताओं में है कि ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय क्षेत्र हो, हालांकि हम क्षेत्र पंचायत कार्यालय पे आए हैं, जो अंत्योदय का उत्थान हो ये उसकी प्रायोरिटी है। तो इस समय आपके विभाग के द्वारा ऐसी कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं चल रही हैं जो अंत्योदय के उत्थान के लिए चल रही हैं?
5: देखिए, हमारे वहाँ मुख्य रूप से वर्तमान में मुख्यमंत्री आवास योजना से हम लोग ग्रामीण परिवारों को जिनके पास कच्चे मकान है, मैंने पक्के मकान नहीं है, उनको हम लोग आवास मुहैया करा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा महिलाएं, दिव्यांग परिवार को मैं आवास मुहैया करा रहा हूँ। उसमें 1,20,000 रुपया उनको नगद दिया जाता है और वो अपना घर बनवा लेते हैं। और दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो भारत सरकार की योजना है, उसमें भी हम 1,20,000 रुपया नगद देते हैं, बाकी मजदूरी का भुगतान करते हैं। स्वच्छ शौचालय का निर्माण कराते हैं, सहजन का पेड़ भी हम लोग उपलब्ध कराते हैं, उनको ये बिजली का कनेक्शन दिलवाते हैं, ये आपका गैस सिलेंडर दिलवाते हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, तमाम सुविधाएं हैं जो हम लोग देते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में जो अति गरीब परिवार हैं वो इसका लाभ उठाते हैं और उनको लाभान्वित होते हैं। फिर हमारे पास एक योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
4: जी,
5: जिसमें समूह बना करके, महिलाओं का एक समूह बना करके
4: जी,
5: 10 महिलाओं से लेकर के 20-20 महिलाओं तक का परिवार की महिलाओं का समूह बना करके और समूह का खाता बैंक में खुलवा करके, ये RFTD भेज करके, स्टार्टअप भेज करके, CIF धनराशि दे करके हम लोग ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के रूप में, मतलब वो अपने कमाने के लिए अपने परिवार का मतलब भरण पोषण कर सके, प्रेरित करते हैं, लाभान्वित कराते हैं।
4: सर, आपकी इन सारी बातों का कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि सरकार या शासन की मंशा ये है कि एक सामान्य व्यक्ति स्वस्थ और अच्छा जीवन कैसे जिए, चाहे उसके लिए आवास से लेकर के उसके स्वास्थ्य तक और उसके जो मूलभूत उसके अधिकार हैं वो सब उसे प्राप्त हो, ये सारी योजनाएं हैं। लेकिन इन योजनाओं को क्रियान्वित कराने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि योजनाएं धरातल पर ठीक ढंग से पहुंचे?
5: नहीं, देखिए, अब तो योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में जा रहा है, कोई बिचौलियापन नहीं है, कोई दलाली नहीं है। भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फंड सीधे लाभार्थी के खाते में जा रही है। हमारे ग्राम पंचायत स्तर पर हमारे ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी है, ये लोग फील्ड में जाते हैं, सर्वे करते हैं, ग्राम सभा की खुली बैठक करते हैं, लाभार्थियों का चयन करते हैं और चयन करने के बाद सूची को हम लोग जिला मुख्यालय पर हम लोग भेजते हैं, वहां से प्रबल हो जाता है और वहां से इन लोगों को लाभ मिलता है। जैसे वर्तमान में समझ लीजिए कि इस समय वृक्षारोपण का कार्य चल रहा है
4: जी,
5: ये BBG राम जी विकसित भारत गारंटी रोजगार ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण है
4: जी।
5: इसमें पहले मजदूरी 200, मनरेगा में मजदूरी 252 रुपया था
4: जी,
5: अब जो है 300 रुपया मजदूरी कर दी गई है
4: जी।
5: लाभार्थी खुश है, मजदूर खुश है, काम कर रहे हैं। पहले इस योजना में, मनरेगा योजना में, हम 100 दिन का रोजगार देते थे एक परिवार को एक वर्ष में
4: जी,
5: अब हम 125 दिन दे रहे हैं, 25 दिन और बढ़ गया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी मजदूरा गरीब परिवार के लोग यदि काम करना चाह रहे हैं तो उनको सारी सुविधा मिल रही है, यहाँ तक कि उनके परिवार के बच्चों की शादी के लिए भी हम लोग मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अभी कराए हैं पड़ौना में
4: जी,
5: उसमें भी लोग लाभान्वित हुए हैं
4: जी।
5: ये पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान में भी 20,000 रुपए का सरकार अनुदान दे रही है, उसका भी लाभ ले रहे हैं। तमाम योजनाएं हैं, जिस ग्रामीण परिवार में शौचालय नहीं है उनका भी हम सर्वे करवाते हैं, उनसे ऑनलाइन हम रिपोर्टिंग करवाते हैं और 12,000 रुपया शौचालय निर्माण के लिए भी दे रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग भी हमारे सचिव करते हैं
4: जी,
5: एरियो पंचायत करते हैं।
4: सर, खंड विकास अधिकारी पड़ौना के रूप में, विकासखंड पड़ौना के नागरिकों के लिए आपका कोई विशेष संदेश हो, कोई ऐसी बात हो जो आप कहना चाहें कि वो शासन के योजनाओं का लाभ कैसे उठा सकते हैं, और यदि किसी प्रकार की उनको दिक्कत आ रही है तो आपसे या आपके अधीनस्थ लोगों से कैसे संपर्क स्थापित कर योजनाओं का लाभ?
5: देखिए, ग्रामीण जनता जो भी, हम लोग 10 बजे से 12 बजे तक निश्चित रूप से अपने कार्यालय में बैठते हैं
4: जी।
5: उस बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी जनता मेरे सामने आती है तो उनकी समस्याओं का समाधान मैं करता हूँ, चाहे वह पंचायती राज से संबंधित हो, चाहे वह हमारे BBG राम जी मनरेगा से संबंधित हो, चाहे हमारा ये कृषि से संबंधित हो। अभी कई किसान लोग आए थे, सर हमको किसान सम्मान निधि नहीं मिल रहा है, तो हमने कहा आप ऑनलाइन करिए, मैं दिलवाता हूँ
4: जी।
5: कुछ लोग कहते हैं कि हमको पेंशन नहीं मिला है, हमने कहा था आप अपना सिर्फ आधार कार्ड की फोटो कापी दीजिए, मैं देखता हूँ क्यों नहीं मिलता है
4: जी।
5: तो पता चलता है कि उनका आधार जो है लिंक नहीं है या किसी ने कुछ कुछ त्रुटि हो जाती है, समस्या का समाधान होता है
4: जी।
5: BDO का कर्तव्य है कि वह 10 से 12 बजे हमारा, देखिए 10 से 12 तो खैर आपकी ड्यूटी है जन समस्या सुनने के लिए, इसके बावजूद भी हम लोग फील्ड में जाते हैं
4: जी
5: और जाकर के जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं।
4: श्री KK राय साहब, खंड विकास अधिकारी पड़ौना, आपने रेडियो प्रज्ञा के माध्यम से हमारे श्रोताओं के लिए इतनी अच्छी जानकारी दी और शासन प्रशासन की जो महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित हो रही है उसके विषय में लोग कैसे लाभान्वित हो सकते हैं ये भी बताया। रेडियो प्रज्ञा की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
5: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे अवसर दिया। तो देखिए, यहाँ हमारे समूह की दीदियाँ बैठी हुई हैं, आप चाहें तो इनसे भी कुछ बात कर सकते हैं, ये लोग भी आपको बताएंगे। और निश्चित रूप से मेरे कार्यकाल में, मैं जहाँ भी रहता हूँ
4: जी,
5: सारी योजनाओं को खुद देखता हूँ और बढ़िया से क्रियान्वयन करता है
4: जी।
5: और आप बता दें कि हमारे सामने अगर किसी की समस्या आ गई तो 100% उसका निराकरण करता हूँ। अगर वो समस्या जिले स्तर तक है तो वहाँ भी मैं पहुँचता हूँ।
4: एक बार पुनः आपका ढेर सारा
5: बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
0: तो ये थी कुशीनगर की विकास यात्रा, जहां योजनाएं कागज से लेकर जमीन तक पहुंच रही हैं और लोगों के सपनों को नई दिशा दे रही है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लगातार विकास के नए आयाम गढ़ रहा है और कुशीनगर इस बदलते उत्तर प्रदेश की सबसे खूबसूरत तस्वीर है।
0: इसी उम्मीद, इसी विश्वास और इसी विकास की रफ्तार के साथ मिलते हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश के अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए नए उत्तर प्रदेश की नई कहानी।
6: नई

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

0: कमेंट करो।
1: एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आरजे आनंद को, और मेरे साथ इस प्रोग्राम में है हमारी प्यारी दोस्त आरजे रीना। श्रोताओं, प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ, ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, अलग अलग विषयों पर हम बात करते हैं ताकि हमारे समाज में और हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है वो अपनी सोच बदल सके। क्योंकि देखिए, जब उनकी सोच बदलेगी तो अपने आप ही समाज और देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा और हमारा देश और भी खूबसूरत बनेगा। क्यों आरजे रीना, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। बढ़िया
2: हूँ मैं तो, बहुत बढ़िया हूँ आनंद। तुम बताओ, तुम कैसे हो इस गर्मी में? इतनी ज्यादा गर्मी है यार कि पूछो मत।
1: ऊपर से लाइट जो है बार बार भागे जा रही है, तो यही कहने वाली थी।
2: हाँ, यही कहने वाली थी। हाँ,
1: इसकी और मेरे विचार इसलिए मैच कर रहे हैं क्योंकि रात को मच्छर और पसीना दोनों ही परेशान कर रहे हैं। ये ऊपर से एसी में चली आती है और मैं ऊपर से नीचे खुले चौड़े में चला हूँ सड़कों पे, रातों रात परेशान हो रहे हैं ना।
2: बिल्कुल सही।
1: और दोपहर में भी बहुत तेज गर्मी है श्रोताओं। इस वक्त देखिए दोपहर हो रही है और चिलचिलाती तगड़ी धूप है। हम कोशिश यही करेंगे कि हम तो स्टूडियो के अंदर ही रहें, लेकिन आपसे भी गुजारिश करेंगे कि इस धूप में बाहर ना ही निकलो तो अच्छा है।
2: और स्टूडियो में है ना तब भी राहत मिल रही है, सच बताऊं। बाहर जाके तो ऐसा लग रहा है कि भाई क्यों ही आ गए बाहर, इतनी गर्मी मिर्ची वाली धूप लग रही है।
1: करेक्ट। और इस गर्मी में अपना ख्याल रखिए, अपने बार का ख्याल रखिए। खैर दोस्तों, आज सोच बदलो में हम एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही प्यारा है। आज का हमारा विषय है पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी, जो कि बहुत जरूरी और बहुत ही अहम मुद्दा है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत जरूरी है आज, और इसीलिए मैं और रीना ये टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। कभी सोचा है गर्मी हर साल सालों साल क्यों बढ़ती जा रही है, बारिश का मौसम क्यों बदल रहा है और पेड़ क्यों कम होते जा रहे हैं? दोस्तों, आज का हमारा विषय ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी है और आज की एक छोटी सी कहानी के जरिए हम आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। और आज की कहानी एक छोटे से गांव की है। जी हाँ, कुछ लोगों ने अपनी सोच बदली और पूरा गांव ही बदल गया। कहाँ की है ये कहानी जरूर आपको बताएंगे। चलिए रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

0: तो आज की कहानी की जो शुरुआत है वो रीना करेगी, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम सोच बदलो में। एक गीत आपने सुना, उसके बाद अब कहानी सुनेंगे आप रीना के साथ और आनंद के साथ। जी रीना।
1: हाँ, तो मैं बताना चाहती हूँ, एक छोटा सा गांव था
0: जी,
1: नाम था हरियापुर।
0: ओके।
1: पहले यहाँ गांव बहुत खूबसूरत था, चारों तरफ पेड़, साफ नदी और ठंडी हवा, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने पेड़ काटने शुरू कर दिए, प्लास्टिक हर जगह फेंकी जाने लगी और नदियां सूख गई। कुछ साल बाद हालत ऐसी हो गई, गर्मी में पानी भी कम पड़ने लगा। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। सो आगे की कहानी अब आरजे आनंद आपको बताएंगे।
0: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम आनंद के साथ। श्रोताओं, यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। दोस्तों, उसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था, उसका नाम आरव था। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी पहले इस गांव में कितनी ठंडक थी और बहुत ही हरा भरा था, लेकिन अब इतना गर्म क्यों हो गया है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा क्योंकि पहले लोग प्रकृति को माँ मानते थे, जो हमारी प्रकृति थी उसे लोग पूछते थे, उसे माँ मानते थे, लेकिन अब लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं। आरव को यह बात दिल से लग गई। दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्या हम भी कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या हम पानी बेवजह बहाते हैं? क्या हम प्लास्टिक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो सोच बदलने का समय आ गया है।
1: अगले दिन आरव ने अपने स्कूल में एक छोटा सा अभियान शुरू किया। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम सब मिलकर हर साल सिर्फ एक पेड़ भी लगाए तो हमारा गांव फिर से हरा भरा हो सकता है। धीरे धीरे बच्चे जुड़ने लगे, फिर शिक्षक भी जुड़ने लगे, फिर पूरा गांव एक साथ देने लगा।
0: क्या बात है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही करके जो है ये गांव ने पूरा एक दूसरे का साथ दिया। और दोस्तों, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम सब कर सकते हैं। इस कहानी का मतलब सोच बदलो में सिर्फ इतना सही है कि आजकल जो हमारी प्रकृति से हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो तभी बंद होगी, तभी रुकेगी, तभी थमेगी जब हम लोग अपनी सोच को बदलेंगे। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और हर में एक जिम्मेदारी ले कि हम मतलब हर दिन एक पेड़ लगाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और पेड़ लगाने के साथ साथ उसको अच्छे से पानी भी दें, उसकी देखरेख भी करें, उसका ख्याल भी रखें। श्रोताओं, कुछ चीजें हैं जो हम और आप मिलकर कर सकते हैं तो शायद हम हमारी प्रकृति को हम अच्छे से बचा सकें। जैसे साल में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। हालांकि रीना ने तो रोज ही बोला है, अगर ये पॉसिबल हो तो बहुत अच्छी बात है। पानी की बर्बादी कम कीजिए, जितना हो सकता है उतना ही पानी का इस्तेमाल करें। अक्सर खाना बनाते समय घर की लेडीज की टंकी खुली छोड़ देती है, ब्रश करते टाइम हम भी पानी की टंकी को खुला छोड़ देते हैं, वो बेहतर रहता है। कई बार हम वॉशरूम नहाने जाते हैं, पानी भर चुका होता है, उसके बाद भी पानी बहता रहता है। तो ये चीजें अगर हम कम कर देंगे तो शायद हमारी प्रकृति पहले की जैसी खूबसूरत और सुंदर हो जाए। अपना कंट्रीब्यूशन देना बहुत जरूरी है। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कीजिए, जितना हो सकता है आप कम से कम इस्तेमाल कीजिए। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप सब्जियां लेने जा रहे हैं, आप बाजार जा रहे हैं, तो घर के बने थैलों का इस्तेमाल कीजिए। प्लास्टिक का जितना आप कम इस्तेमाल करेंगे, जितना कम यूज में लाएंगे, उतना ही हमारी प्रकृति को हम सुंदर बना पाएंगे। कचरे को सही जगह डालिए। कल तो खैर वो हरा गीला और सूखा डब्बा चल गया है ना रीना? हाँ, तो उसमें आप जो है कचरा डालिए। ब्लू एंड ग्रीन कलर के बॉक्स होते हैं लगे हुए नगर निगम की तरफ से, बहुत ही खूबसूरत पहल है।
1: एक कचड़े में मतलब जो गीला डालते हैं और एक दूसरा सूखा कचरा डालते हैं,
0: तो बस सूखे में सूखा डालें, गीले में गीला डालें। और ये डस्टबिन का जो इस्तेमाल बताया गया है वो मेरे आपके हम सभी के लिए है। अगर हम इनका सही से इस्तेमाल करेंगे तो ऑफकोर्स हमारी प्रकृति को और भी खूबसूरत और सुंदर लगेगी। यकीन मानिए दोस्तों, छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। जरूरत है सही समय पर सही सोच बदलने की। आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, 2 साल के बाद हरियापुर गांव में फिर से वो गांव हरा भरा लगने लगा। नदियां साफ होने लगी, हवा ठंडी लगने लगी और गांव के लोगों को समझ भी आ गया कि अब हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो प्रकृति भी हमारा ध्यान रखेगी। और बहुत जरूरी है श्रोताओं, ये कहानी नहीं है, एक्चुअली एक जेन्युइन थॉट है। और मुझे भी लगता है रीना, जब हम अपने आसपास प्रकृति का, अपने नेचर का ध्यान रखते हैं तो वो भी ध्यान रखता है। शुद्ध हवा हमें मिलती है, समय समय पर हमें फल, ताजे सब्जियां, दालें सब कुछ हमें मिलता है, प्रकृति से तो मिलता है।
1: लेकिन वो तभी मिलेगी ना जब हम उसकी रक्षा करेंगे।
0: हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। तो उसकी रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है रीना?
1: वो हमारी
0: जिम्मेदारी है, बिल्कुल। जैसे रीना ने कहा आप डेली एक पेड़ लगा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है तो आप हफ्ते में एक बार पेड़ लगाइए।
1: बिल्कुल लगाइए, जरूर लगाइए,
0: जरूर लगाइए। अगर आप नहीं लगा पा रहे तो जो लगे हुए हैं आपके आसपास पार्क में किसी खुले एरिया में, आप उनको पानी दीजिए, आप उनका ध्यान रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। वो जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा वो आपको ब्लेसिंग्स भी देगा, वो मुस्कुराएगा भी और आप भी बहुत खुश होंगे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा। क्यों?
1: पहले के टाइम में तुम्हें देखा है कि हर घर के पास ना एक पेड़ जरूर होता था।
0: बिल्कुल।
1: वरना फिर आप बाहर चले जाओ, सड़कों पर चले जाओ, पेड़ आपको मतलब पहले दिखते ही थे। लेकिन अब क्या है कि हम पेड़ों को काट रहे हैं, घर बना रहे हैं, वहां पर अच्छी अच्छी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, जिसके वजह से पेड़ तो कम हो गए लेकिन जनसंख्या यानी कि घर की तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज्यादा है। तो आपसे यही गुजारिश करना चाहेंगे, इस शो का मकसद यही है कि हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रखें, पेड़ लगाए ज्यादा से ज्यादा, पानी के जो वेस्टेज है वो कम करें। पहले के टाइम में होता था कि लोग कुएं से पानी भरते थे, नल से पानी भरते थे और उसी उतना ही पानी यूज करते थे जितना उनको नीड होती थी, लेकिन अब हम उससे ज्यादा बहाते रहते हैं पानी।
0: बिल्कुल सही कहा, तो पानी वेस्ट मत कीजिए। फिलहाल अभी एक काम करते हैं, छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद में और रीना मिलेंगे। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम सोच बदलो रीना और आनंद के साथ, और ये प्रसारित होता है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ से। तो श्रोताओं मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल गीत के बाद।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से श्रोताओं, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं आप। और इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना फेवरेट सोच बदलो, जिसमें मैं और रीना आज एक कहानी के जरिए आपको समझा रहे हैं कि हमारी प्रकृति का ध्यान रखना कितना जरूरी है। आजकल तुम देखते हो रीना, बिना मौसम के बरसात हो जाती है। इवन अभी भी आप यकीन मानना, थोड़े टाइम पहले हमें लग रहा था कि गर्मियां आ गई, लेकिन उसमें ठंड आ रही थी। लोगों ने गर्म कपड़े बाहर निकाल लिए थे बारिश की वजह से भी, और थोड़ी ठंड भी, मतलब बेमौसम की ठंड हो रही थी। तो जिससे हमें लग रहा था कि हाँ भाई, जो प्रकृति है वो कहीं ना कहीं हमसे नाराज है। वो हमें दिखा रही है, बता रही है, जता रही है कि भैया जागो, नहीं तो फिर आगे आपको ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो।
1: वो इसीलिए ना कि हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं,
0: बिल्कुल बेवजह पेड़ काट देते हैं जिसका कोई सेंस नहीं होता। लगाने की कम और काटने की ज्यादा कोशिश की जाती है,
1: जबकि पेड़ तो कुछ भी नहीं मांगता है, बल्कि आपको वो फल देता है, सब्जियां देता है, ताजी हवा। बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे आनंद, गर्मी के टाइम में अगर पहले की बात करूं तो पहले क्या होता था कि पेड़ इतने ज्यादा होते थे ना कि जिनको भी अगर गर्मी लगती तो वो पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाते थे। पूरा गांव मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था वहां पर, एक दूसरे से बातें भी करते रहते थे और दिन यूं ही गुजर जाता था। लेकिन अब क्या है, हम पेड़ काट रहे तो उसके नीचे बैठ भी नहीं पाते हैं।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं ये। और श्रोताओं, हम तो सिर्फ इतना से कहना चाहते हैं सोच बदलो के माध्यम से कि आप भी प्लीज अपनी सोच बदलिए, निरंतर प्रयास कीजिए कि अपने प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ न करके उसका ख्याल रखें। अगर आप किसी पार्क में जा रहे हैं, किसी खुले एरिया में जा रहे हैं जहां पर खूबसूरत ग्रीनरी है, तो उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है। उसे गंदगी से ना भर के उसकी साफ सफाई का ख्याल रखें। अक्सर हम अपनी परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो हम वहीं पर कुछ भी खा रहे होते हैं, प्लास्टिक की चीजें वहीं छोड़ के आ जाते हैं, चिप्स खाया बच्चे ने पैकेट वहीं फेंक दिया, तो उससे आसपास की गंदगी जो है ना वो बढ़ रही है, कहीं हो रही है। और उसका जो जिम्मेदार है वो कौन है? आम इंसान ही उसका जिम्मेदार है, यानी कि मैं और आप ही। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ताकि वो साफ और स्वच्छ बना रहे? मैं और आप ही तो लेंगे। तो बस इन बातों का जरा ख्याल रखिए और बच्चों को डिसिप्लिन में रहे। कहीं बाहर जा रहे हैं जहां पर आपको और उनको पता है कि यहां गंदगी नहीं करनी है, तो वहां नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। तो छोटी छोटी चीजें, इनका ख्याल अगर आप रखेंगे, आपका परिवार के लोग रखेंगे, हम रखेंगे, तो सोच भी बदलेगी, समाज भी बदलेगा और खूबसूरती जो प्रकृति की वो और बढ़ जाएगी। क्यों?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और आजकल क्या होता है ना कि हम कचरा भी अपने बगल में ही सरका देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप कचरा वहां पर देखेंगे कि कचरे की ढेर लग जाती है, फिर वो सड़ने लग जाता है, जो उसे दूषित हवाएं आती है उसे हम बीमार पड़ने लग,

0: म्यूजिकल ब्रेक के बाद वेलकम बैक है। मैं और रीना आपके साथ बने हुए हैं प्रोग्राम सोच बदलो में। कहानी के जरिए बता रहे थे कि कितना जरूरी है अपने पर्यावरण का ख्याल रखना, अपने प्रकृति का ख्याल रखना। और श्रोताओं कहते हैं कि हम अक्सर यही सोचते हैं और हमारी सोच भी बन गई है कि दुनिया बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच तो यह है रीना, दुनिया बदलने के लिए ना बस एक छोटी सी सोच बदलनी पड़ती है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने कि सोच बदलते हैं तभी दुनिया अपने आप बदल जाएगी।
0: करेक्ट। तो अपनी दुनिया को बदलना है अगर आपने, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी लेकर आइए और एक कंटिन्यूटी में एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए। और दोस्तों, यह धरती हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, यह हमारे बच्चों से उधार मिली है। श्रोताओं, अगर आज हम इसका ध्यान रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी साफ हवा और साफ पानी पा सकेगी। तो आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ आज के दिन, आज के इस खास टॉपिक पे, इस खास फुल सेशन में, कि देखिए आप जो है ना अपनी प्रकृति का अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो अपना कॉन्ट्रीब्यूट देना शुरू कीजिए। जब आप अपना कंट्रीब्यूट देंगे, छोटी छोटी चीजों को अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे, तो हमारा पर्यावरण और हमारी प्रकृति दोनों ही खूबसूरत बनेंगे। और जब ये खूबसूरत होंगी तो हमारा समाज भी स्वस्थ होगा, खूबसूरत होगा और मस्त होगा। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने।
0: और मुझे लगता है कि दोस्तों अपनी सोच को बदलने के साथ साथ ना, मेरा सिर्फ एक छोटा सा और आपके लिए सजेशन रहेगा कि आजकल ना गर्मियां हो रही है, गर्मियों में हम क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं हम दो बार नहाएं, हम चार बार नहाएं। नहाना कंपलसरी है, लेकिन आप बार बार अगर नहाएंगे तो उससे हमारा पानी भी वेस्ट होगा। पानी वेस्ट मतलब हम प्रकृति के साथ फिर से छेड़छाड़ पर आ गए।

0: क्योंकि हमें लगता है यार हमें खुद को ठंडक प्रदान करनी है तो हम नहा लेते हैं। तो तुम्हारा क्या मानना है रीना, क्या हम दो बार नहा के पानी वेस्ट नहीं कर रहे हैं? चलो दो बार नहाना तो छोड़ो, नहाना जरूरी है, लेकिन हम बड़ी बड़ी गाड़ियां धोने लग जाते हैं अपनी पानी के से,
1: हाँ
0: उसमें कितना पानी वेस्ट करते हैं हम।
1: ऊपर से एक बात की जाए, हम घर को ऐसे धोने लग जाते भैया जैसे नदी बहा देते हैं।
0: हाँ, ये
1: घर को साफ कर, आई नो कि आप देखिए घर में झाड़ू पोछा लगा सकते हैं वो ठीक है, उसमें कम पानी वेस्ट होता है पोछा लगाते तो, लेकिन हम धोने लग जाते ऊपर से सड़कों को उतना रगड़ रगड़ के धोने लग जाते, पानी ऐसे बहा देते जैसे भैया पता नहीं क्या कितने टाइम से गंदा है सड़क। तो ऐसा नहीं करना है हमें, पानी को अगर आप सेफ रखेंगे तभी आप भी सेफ रहेंगे, और वही कहते हैं ना जल बचाओ तो कल काम आएगा ये।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। देखिए सड़कों को धोना मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे आसपास में जो हम कई बार क्या करते हैं ना कि बहुत ज्यादा वेस्टेज कर देते हैं। शर्मा जी सामने सुबह सुबह टंकी खोल के खड़े हैं, बतिया रहे हैं वर्मा जी के साथ, पानी बर्बाद हो रहा है, तो वो नहीं करना है आपने, है ना शर्मा जी? अगर आप सुबह सुबह साफ सफाई कर रहे हैं तो जरा वर्मा जी थोड़ी देर के बाद बतिया लीजिएगा, पहले सफाइयां कर लो, उससे पानी वेस्ट नहीं होगा, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी सही जगह पर लगेगा और आप सही जगह पर काम कर रहे होंगे, क्योंकि कई बार हम बातूनी के चक्कर में अपना पानी की बर्बादी कर देते हैं, है ना? और अगर आप कहीं आसपास निकल रहे हैं अभी गर्मियों के इस टाइम में और आपको कहीं पानी की टंकी खुली नजर आए तो प्रयास करें कि वो बंद कर दें,
1: बंद करें बिल्कुल, ये ना सोचे कि कोई और आके बंद करेगा बल्कि आप ही करिए,
0: या मुझे बहुत जल्दी है, एक मिनट एक सेकंड भी नहीं लगेगा, आप अगर वहां जाओगे पानी का बंद कर दोगे टंकी तो शायद वो पानी कल आपके और मेरे फ्यूचर के लिए काम आ सकता है, क्यों?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, और आजकल आपको भी पता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी में हम कूलर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते भी हैं ताकि गर्मी से हमें राहत मिले,
0: उसके अंदर पानी डालते हैं।
1: हाँ। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जो आप कूलर में पानी डालते हैं उसको फेंके ना, उस पानी को बल्कि गमले में डालिए ताकि गमलों को भी पानी मिलता रहे, वो भी स्वस्थ रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और पेड़ पौधों को, और ये बड़ा अच्छा बोला रीना ने, पानी को यूटिलाइज कीजिए। बेसिकली क्या होता है ना, जब हम अपने छतों पे यानी कि टेरेस पे हम पक्षियों के लिए पानी भर के रखते हैं ना छोटे छोटे बॉल्स में, उनको चेंज करना जरूरी है, पानी जमा मत होने दीजिए, और अगर कूलर में आपका पानी है आप उसको चेंज करो बट उसको फेंको मत, उसी पानी को अगर आप किसी अच्छे से बर्तन में निकाल के उसी पानी को आप अपने गमलों में प्लांट्स में यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके इन दिनों में क्या होता है ना, हमारी छत की टैंक भी बड़ी गर्म हो जाती है और हम जो पानी चलाते हैं तो गर्म निकलता है एकदम आग की तरह, फिर हम उस पानी को थोड़ी देर बहते रहते हैं ताकि ठंडा आए, है ना, इस चक्कर में ही पानी वेस्ट
1: पानी वेस्ट होता है,
0: तो वो वाला पानी को आप बहाना नहीं है, उस पानी को भी आप सेव करें और सेव करने के बाद जो है उसे अपने प्लांट में यूज करें या उसको दो घंटे बाद आप इस्तेमाल करेंगे तो वही पानी आपको ठंडा
1: हो जाता है। बिल्कुल सही,
0: बहुत ज्यादा चिल तो नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा।
1: बिल्कुल सही,
0: तो श्रोताओं छोटी छोटी चीजें करके आप अपनी सोच को भी बदल सकते हैं और अपने आसपास की प्रकृति को और पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। फिलहाल बचाना पड़ेगा हमें और रीना को, एक छोटा सा क्या म्यूजिकल वाला ब्रेक आ रहा है तो हमें बचानी पड़ेगी अपनी एनर्जी ताकि हम दोबारा आके आपसे फिर से बातचीत कर सके। तो चलो एक छोटा सा गीत, उसके बाद आते हैं।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से। यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। रीना और आनंद आपका साथ दे रहे हैं और आज हमने ढेर सारी बात करी, साफ पानी कितना जरूरी है, साफ हवा, शुद्ध हवा का होना कितना जरूरी है, पेड़ों को बचाना कितना जरूरी है। अगर हम इन सबका ख्याल रखेंगे तो हमारी प्रकृति और भी सुंदर और खूबसूरत लगेगी। कहानी भी हमने सुनाई इस प्रोग्राम के जरिए और अब हमारा जाने का भी समय हो गया है। पता नहीं चल रहा है ना रीना कितनी तेजी से समय निकला, लेकिन जाते जाते हमारी प्रकृति हमें क्या क्या देती है एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। शुद्ध हवा, साफ पानी और हरियाली। लेकिन जरा सोचिए अगर हमारी हवा ही गंदी हो जाए, अगर हमें ताजी हवा मिलना ही बंद हो जाए तो क्या होगा? सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा श्रोताओं, बीमारियां बढ़ने लगेंगी और जिंदगी का सुकून कहीं जैसे खो सा जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी प्रकृति की रक्षा करें, पेड़ लगाएं, प्रदूषण कम करें और पर्यावरण को साफ रखें। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, अगर प्रकृति सुरक्षित है तो हमारी जिंदगी भी सुरक्षित है। तो आइए मिलकर आज हम सब एक छोटा सा कदम उठाएं और अपनी सोच को बदलें और अपने आसपास की चीजों का जरा खास तौर पर ख्याल रखें। स्पेशली पेड़ को लगाने के साथ साथ उसका देख रेख भी उसकी रखनी बहुत जरूरी है, उसका सही ख्याल रखना भी जरूरी है। बाकी पोल्यूशन कम करने के लिए अपनी गाड़ियों को जरा कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपकी गाड़ी से जो धुआं निकलता है ना वो भी प्रदूषण फैलाता है और हमारे आसपास की प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्यों?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी की वजह से जो पर्यावरण में ये जो दिक्कतें आ रही है, हवा की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो सिर्फ गाड़ियों की वजह से ही तो हो रही है।
0: ये तो आपने सही कहा। तो दोस्तों आज का सोच बदलो कार्यक्रम हमने पर्यावरण बचाने की इसमें बात करी और अब हमें जाना पड़ेगा, हमारा जाने का समय हो गया है। और आज हमने जाना इस प्रोग्राम में पेड़, पानी और हवा से हमने जुड़ी हुई तमाम सारी बातें करी। तो बस जाते जाते इतना ही कहेंगे, पानी की बर्बादी को रोकिए, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल कीजिए और हर साल कम से कम कुछ पेड़ तो आप जरूर लगाइए। तुम क्या कहोगी रीना जाते जाते?
1: मैं तो यही कहूंगी आप मतलब हफ्ते में एक पेड़ नहीं लगा सकते तो महीने में कम से कम एटलीस्ट दो पेड़ जरूर लगाइए।
0: करेक्ट, सही कहा आपने। और अब तो पेड़ों का सीजन भी आने वाला है और इस भीषण गर्मी से जरा अपना ख्याल रखिए, खुद को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, जितना हो सकता है तरल पदार्थों का सेवन कीजिए।
1: पानी तो देखिए हमेशा पीते रहिए अपने पास। अब बाहर भी जा रहे हैं ना तो जैसे हम फोन को नहीं भूलते वैसे पानी की बोतल भी आपने नहीं भूलना है, अपने साथ लेकर जाना है।
0: एग्जैक्टली, डिहाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि आप पानी के भी अलग अलग फ्लेवर बना के रखें। आप पानी के अंदर कुछ लेमन्स के स्लाइस डाल सकते हैं, आप उसमें खीरे के कुछ स्लाइस डाल सकते हैं, वो एक वाटर आप तैयार कर सकते हैं। कुछ पुदीने की पत्तियां आप डालेंगे तो वो पानी और भी ज्यादा फ्रेश हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने फ्लेवर को चेंज कीजिए और पानी पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि नारियल पानी का इंटेक भी आप ज्यादा से ज्यादा अपनी रूटीन में शामिल करें। अभी के लिए मैं और रीना लेंगे आपसे इजाजत, छोड़ के जाएंगे कुछ और खूबसूरत गीत के साथ। फिर आपकी और मेरी मुलाकात होगी जल्दी और रीना के साथ इसी प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है सोच बदलो। याद रखिए श्रोताओं, अगर आपकी सोच बदलेगी तो चीजें हमारी और आपकी अपने आप ही बदल जाएंगी। ऐसे ही बातों के लिए प्लीज सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6,
1: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
0: बिल्कुल जी, बाय बाय, टेक केयर,
1: बाय।

0: विजिट करो।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप और प्रोग्राम का नाम है हेलो डॉक्टर। और हमारे साथ कोई ना कोई विशेषज्ञ, कोई ना कोई एक्सपर्ट मौजूद होते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर आकाश सिंघल, जो श्री साई हॉस्पिटल में है, इस वक्त वहाँ पर वर्किंग है। अब सर का वेलकम करेंगे और उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज हमने उनको क्यों आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में और हमारे इस प्रोग्राम में हेलो डॉक्टर में, तो वो तो हम आकाश जी से ही जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में, जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू एफएम मुरादाबाद। हाउ आर यू, कैसे हैं आप, प्लीज बताएं आकाश जी।
1: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म।
0: थैंक यू सर,
1: दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस।
0: ओह वाओ, लवली, कैसा लग रहा है? पहले तो मैं यही पूछूंगा।
1: इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। लाइक थोड़ा सा है कि नाउ आई कैन शेयर माई थॉट्स विद द पीपल, ठीक है। आपके चैनल से काफी लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा जो जो चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि एवरी पेरेंट शुड नो।
0: क्या बात है।
1: तो पहले तो मैं बताता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर आकाश सिंघल है, जैसे कि आपने सबको बताया है।
0: जी जी, प्लीज।
1: मैंने MBBS किया है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से, फिर MD पीडियाट्रिक्स किया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से। उसके बाद मैंने किया है DM नेनोटोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से।
0: क्या बात है।
1: अब लोग सोचते हैं ये DM नेनोटोलॉजी है क्या?
0: जी,
1: तो मैं बताना चाहूंगा कि DM नेनोटोलॉजी बच्चों की सुपर स्पेशलिटी है।
0: हाँ जी।
1: इसमें हम बर्थ से 1 मंथ तक के बच्चों को देखते हैं। अब आजकल प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट, मतलब समय से पहले बच्चे डिलीवर हो रहे हैं, कम वजन के साथ बच्चे डिलीवर होते हैं, तो इसकी एक सुपर स्पेशलिटी है। ऑल्दो हम सारे ही पेडियाट्रिशियंस अपने ही कोर्स में न्यूबॉर्न बच्चे देखते हैं, बट सुपर स्पेशलिटी की जहां बात आती है तो वी आर एक्सक्लूसिवली लुकिंग आफ्टर न्यूबॉर्न फॉर द लास्ट 3 ईयर्स।
0: हाँ जी।
1: तो इसमें एक्सपर्टीज बढ़ता है और विद टाइम नॉलेज भी होती है। एंड रही बात मेरे बारे में, तो मैंने दिल्ली एम्स से किया है, तो वो एक हायर रेफरल सेंटर है, तो वहाँ पे हाई रिस्क केसेस ही मोस्टली होते हैं।
0: Alright.
1: तो हमारी एक्सपर्टीज उसी में ज्यादा होती है। समय से पहले डिलीवर हो गए हैं, खून बदलना पड़ा है किसी बच्चे का, बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया है, ये सब केसेस।
0: बहुत ही अच्छा परिचय सर ने दिया है, तो ऑडियंस अब आप दिल थाम के बैठिए, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। आज हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को जो है आपके साथ इंट्रोड्यूस किया। सो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जो नवजात शिशु है उसकी देखभाल में मतलब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है,
1: जब बेबी डिलीवर होता है। एक्चुअली कॉमन चीजें, कुछ मिथ्स हैं जो अगर बेबी नॉर्मल है, हेल्दी है, तो क्या करते हैं फैमिलीज, कभी कभी कुछ घुट्टी पिलाने लगते हैं।
0: जी जी।
1: कोई कोई अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे की नाल होती है उस पर पाउडर या तेल लगाने लगते
0: जी
1: हैं।
0: जी जी जी।
1: एक बहुत बड़ा मिथ है कि धूप दिखाएंगे तो पीलिया कम हो जाएगा, जॉन्डिस कम हो जाएगा।
0: जी जी जी।
1: ये कॉमन चीजें हैं। कुछ लोग गाय का दूध, भैंस का दूध, मतलब डिफरेंट ये सब चीजें ट्राई करते हैं, ये चीजें नहीं होती, होनी चाहिए। ये सब चीजें बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाती है। तो कुछ जैसे कि जैसे अगर बेबी हेल्दी है, मदर के पास है, तो उसे हर से 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, ठीक है। अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए। ये नहीं कि कभी कभी मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में कि एक बेबी डिलीवर हुआ है, साथ में 6-7 रिश्तेदार हैं उसके साथ, तो हमें नहीं पता कि किसको क्या बीमारी है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कुछ है, तो वो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं और फिर बच्चों के उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बेबी डिलीवर है तो पूरी साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, हाथ धो के ही बच्चे को टच करें, इन सब चीजों का ध्यान दें।
0: ओके, सो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपने बताया। और कई बार ऐसा होता है कि जन्म के तुरंत बाद, जैसे कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध देना बहुत जरूरी होता है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए?
1: हाँ, डेफिनेटली यस। अगर मदर हेल्दी है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है,
0: हाँ जी,
1: तो
0: हाँ
1: हम प्रैक्टिस करते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट एंड अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। इसका मतलब है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसे माँ के पेट के ऊपर रख देते हैं।
0: दिस इज कंगारू मदर केयर आई थिंक,
1: सॉर्ट ऑफ, इट्स अ डिफरेंट थिंग।
0: ऑलराइट।
1: कंगारू मदर केयर मोस्टली प्रीटम बच्चों के लिए होती है, जो कम वजन के बच्चे होते हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: ठीक है। इन एवरी बेबी डिलीवरी के बाद क्या होता है, अंदर जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका तापमान मेंटेन रहता है, बाहर आने के बाद ठंडा होने का रिस्क रहता है
0: जी।
1: तो बच्चों के लिए ठंडा होना काफी हानिकारक होता है। तो यही कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ है तो उसको माँ के पेट के ऊपर रखें और वहीं पे ही इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें। नॉर्मल डिलीवरी में ये पॉसिबल होता है। कुछ मुश्किलें आती हैं जब बच्चा ऑपरेशन से सीजरियन डिलीवरी से होता है
0: तो जी,
1: उसमें इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो पाता है कुछ कुछ जगह, अगर हम चाहें तो हम कोशिश कर सकते हैं।
0: ओके
1: ठीक है, बट ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग फॉर द बेबी।
0: ओके डॉक्टर साहब, एक सवाल रहेगा, जो नवजात शिशु होते हैं उनको वो मतलब कितनी बार वो दूध पीते हैं या उन्हें कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
1: बेबी को 2-3 आवर्ली इनिशियली 2-3 आवर्ली हम बोलते हैं, जैसे अगर बच्चे शुरू में कि दो से तीन घंटे में आप फीड कराएं, कुछ चीजें होती हैं जैसे मदर्स को नहीं, जो फर्स्ट टाइम मदर्स बने
0: हैं, हाँ जी,
1: उनको नहीं पता होता है, वो क्या करती हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है फोर मिल्क और हैंड मिल्क, मतलब शुरू का

0: और बात कर लो
1: जी।
0: तो हम ये कहते हैं कि एक बार अगर मदर फीड करा रही हैं तो वो सफिशिएंट टाइम के लिए फीड कराएं जिससे बच्चे को पूरे एक तरफ से पूरा दूध मिले।
1: ओके।
0: क्योंकि क्या होता है, अगर बच्चा सिर्फ शुरू का दूध पीता है तो उसमें सिर्फ उसकी थर्स्ट, मतलब कि उसकी प्यास बुझती है, उसका पेट नहीं भरता है, ना ही वजन बढ़ता है। जो बाद का दूध होता है वो जो गाढ़ा होता है, जिसको हम हैंड मिल्क बोलते हैं,
1: हाँ,
0: उसमें हमारे फैट्स होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, तो जिससे उसका पेट भी भरता है और उसका वजन बढ़ता है। तो कुछ मदर्स अगर एक बार में दोनों तरफ से फीड करा रही हैं तो सिर्फ फोर मिल्क दे रही हैं तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं भरेगा, बच्चा क्रैंकी रहेगा। और जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम प्रैक्टिस करते हैं फीडिंग ऑन डिमांड, मतलब बच्चा जब मांग रहा है दूध हमें उसको फीड कराना है। फीड कराने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें हर बार डकार दिलानी है। फीड कराने के बाद बर्फ कराना, मतलब डकार दिलाना, बेहद जरूरी होता है। तुरंत लेटाएं ना उसको, अच्छे से बर्फ करा के तभी लेटाएं।
1: बहुत ही बढ़िया। आप सुन रहे प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, मेरा नाम आनंद है और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर आकाश सिंगल जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं वो कई बार रोने लगते हैं, तो ऐसे में जो समझ नहीं आता है, ना तो मम्मी को समझ आता है ना पापा को समझ आता है, तो बच्चा अगर ज्यादा रोता है तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए?
0: अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो कुछ बच्चे तो उसके पास ओनली वे ऑफ एक्सप्रेशन इज रोना। अगर उसको कोई भी दिक्कत होगी वो सिर्फ रोएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना,
1: बिल्कुल।
0: तो कॉमन चीजें होती हैं, सबसे पहले
1: मतलब कोई रीजन, कोई कारण, मतलब जिससे पता,
0: तो हम थोड़ा सा सबसे पहले ट्राई करते हैं कि

0: नोज ब्लॉक बहुत कॉमन होता है। सिंपल, अब बेबी की नोज गंदी है, वो क्लीन तो कर पाएगा नहीं, तो उसके लिए है कि हम कुछ मेडिकेशन या फिर नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स होती हैं उसको हम डालते हैं, बेबी की नोज क्लियर हो जाती है तो वो इजिली फीड कर पाते हैं, शांत हो जाती है। ठीक है, कुछ बच्चे लाइक अगर हमें देखना है कि अगर एक्सेसिवली क्राई कर रहा है तो उसमें डाइपर तो वेट नहीं है, कॉमन कॉमन चीजें हमें देखनी है। कभी कभी हम मिस कर देते हैं कि बच्चे का डाइपर गीला है, वो उसको इरिटेट कर रहा होता है और बच्चा रो रहा होता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब आपने बताया है। नवजात में जो बुखार है वो कितना खतरनाक होता है छोटे बच्चों में?
0: छोटे बच्चों में ज्यादा खतरनाक पहले कहें तो हमें उनके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने की इतनी कैपेसिटी नहीं होती, तो इसलिए ही आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपने अगर नर्सरी देखी होगी तो उसमें हर बच्चा यूजुअली वार्मर के नीचे लेटा होता है, मतलब कि उसको कॉन्स्टेंटली हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो इसलिए उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता है।
1: ठीक है, बहुत
0: उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता
1: जी,
0: है
1: जी, जी,
0: ठीक है, तो हमें, मैं यही बोलता हूँ सब पेरेंट्स को कि जितने आप कपड़े पहन रहे हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखें, बच्चों को कवर करके रखें। पेरेंट्स का सवाल होता है कि सर एसी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, अब इतनी गर्मी है। मैं यही बोलता हूँ कि ठीक है आप एसी चला सकते हैं, बट टेम्परेचर आप रूम का 25-27 डिग्री मेंटेन करके रखो, डायरेक्टली पंखे के नीचे नहीं लेटाओ बच्चों को, बच्चों को अपने से लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखो। ठीक है, और दूसरा चीज आती है बच्चे का टेम्परेचर आप थर्मोमीटर से चेक करने की जरूरत नहीं है, हम अपने हाथ से भी छू के बच्चे के हाथ और पैर देख सकते हैं कि अगर वो ठंडे हैं तो हम एक्स्ट्रा कपड़े पहना रहे हैं। ठीक है, और अगर बच्चा बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं कुछ है तो हमें कपड़े कम कर देने हैं।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जो जन्म लेते हैं बच्चे उन्हें जन्म की कितनी देर बाद उनको नहलाना चाहिए और उनको कब नहलाना चाहिए? बेसिकली नहीं पता होता है, जो न्यू पेरेंट्स होते हैं तो आजकल लाइफस्टाइल इतना बिजी है, सुपर फास्ट है भाई, बहुत सारी चीजों से जो पेरेंट्स नहीं होते हैं रूबरू, तो मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ तो डॉक्टर साहब,
0: अगर बेबी का वेट 2 kg से ज्यादा है
1: जी,
0: मतलब यूजुअली हमारा 2 kg से ज्यादा था, मतलब ऑलमोस्ट पूरे समय पे पैदा हुआ है।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: ठीक है।
2: अगर आप ऐसी पोजीशन में सोते हैं,
0: बच्चे की जो कॉर्ड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, इसको हम आम भाषा में बच्चे की नाल बोलते हैं या नाभि बोलते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: जब वो
3: पानी से विश्व दर्पण के साथ, मैं प्रियंका अरोड़ा,
0: और अगर किसी बच्चा को
3: मुख्य समाचार, सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज काठमांडू में नेपाल के सेना प्रमुख से बातचीत करेंगे। जिम्बाब्वे में नौका दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 84 हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा विभाग से दक्षिण कोरिया के साथ आगामी संयुक्त सैन्य अभ्यास कम करने को कहा। FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से, और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज काठमांडू में नेपाल के सेना प्रमुख के साथ बातचीत करेंगे। नेपाली सेना के सैन्य संचालन महानिदेशक जनरल सेठ को आपसी हित के मुद्दों पर जानकारी देंगे। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सैन्य संबंध मजबूत करना है। जनरल सेठ टुंडीखेल के सेना मंडप में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उन्हें नेपाल के सेना मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। 3 दिवसीय नेपाल यात्रा के दौरान सेना प्रमुख कल शिवपुरी में सेना कमान के विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे और प्रशिक्षकों तथा विदेशी विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। वे आपसी हित के मुद्दों पर नेपाल के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। जनरल धीरज सेठ बुधवार को पोखरा में पूर्व सैनिकों की रैली में शामिल होंगे। वीर नारियों और वीरता पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगे। वे बुधवार को स्वदेश लौट आएंगे। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास।
4: कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने कहा है कि यह बैठक ठोस चर्चा, सहमति को बढ़ावा देने और पर्यावरण सहयोग को सशक्त बनाने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। मंत्रालय ने बताया है कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के अंतर्गत वरीयता

0: वाले चार क्षेत्रों की पहचान की है। वरीयता के इन क्षेत्रों में सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वन संवर्धन, जंगल की आग का प्रबंधन और आपदा लचीलापन, चक्रीय अर्थव्यवस्था तथा अनुकूलन शामिल है।
1: विशाखापट्टनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित हो रही हैं। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेंगी। 77,342 वर्ग मीटर में फैला ये नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। जिम्बाब्वे में पिछले सप्ताह करीबा झील में नौका दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 84 हो गई है। नौका में क्षमता से अधिक 153 यात्री सवार थे। पिछले सप्ताह मंगलवार को तेज लहरों के कारण नौका पलट गई। पुलिस ने बताया है कि शवों की बरामदगी के बाद मृतकों की संख्या पिछले दिन के 72 से बढ़कर 84 हो गई है। जिम्बाब्वे की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने बताया कि 77 लोगों को बचा लिया गया है। नौका में 90 लोगों को ले जाने
2: की। तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त मैत्री सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए आज थाईलैंड रवाना हो गई। सैन्य अभ्यास कल से इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मैत्री अभ्यास का उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाना है। इससे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत जंगलों और अर्धशहरी क्षेत्रों में उग्रवाद तथा आतंकवाद का सामना करने की संयुक्त क्षमता बढ़ेगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भी कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारिककाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन के दौरान गरज के साथ आंधी वर्षा की संभावना है। दिल्ली के कुछ भागों में आज हल्की बारिश हो सकती है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। MR अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुणन की भारतीय जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। आज ही पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल के साथ खेलेंगी। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने 5 विकेट पर 187 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। हॉकी विश्व कप में आज नीदरलैंड्स के अम्स्टरफेंड में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत शनिवार को वेल्स पर 3-1 की विजय के साथ की, जबकि इंग्लैंड ने प्रतियोगिता के पहले दिन पाकिस्तान को 4-1 से हराया। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 कर्मियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार से सम्मानित किया। इन पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने कानून निरस्त किए जाने और नए कानून बनाने तथा प्रशासन और लेखांकन में प्रौद्योगिकी अपनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331081, व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 148 अंक की गिरावट से 77,861 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 189 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
5: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
6: उत्तर प्रदेश में कावड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
5: कावड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
6: कावड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
5: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
7: हेलो, हाय एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अब पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी और मेरे साथ में है प्यारी सी आरजे रीना। जी हाँ, आपको पता ही है एवरीवन कि हम एवरीडे आपके लिए लेकर आते हैं आपका खास कार्यक्रम महिला मंच। और दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय की जिस पर चर्चा तो बहुत होती है लेकिन बदलाव की जरूरत आज भी उतनी ही है। दहेज प्रथा। शादी दो लोगों की जीवन की नई शुरुआत होती है लेकिन अगर इस शुरुआत से पहले ही सामान, पैसे और गाड़ी की मांग सामने आ जाए तो क्या ये रिश्ता सच में बराबरी का रह जाता है? शादी कोई सौदा नहीं, ये दो लोगों का साथ है, दो परिवारों का जुड़ना है। इसीलिए रिश्ता शुरू होने से पहले मांगों की नहीं, समझ और सम्मान की बात चाहिए।
8: बिल्कुल सही कही तुमने, क्योंकि सम्मान की बात होती है तो वहाँ मांग की बात नहीं होती है। और बात करेंगे दहेज की मांग आखिरकार क्यों होती है। कभी आपने सोचा है कि शादी के समय आखिर इतनी सारी मांगे क्यों जुड़ जाती है? कहीं कार चाहिए, कहीं महंगे गहने, कहीं फर्नीचर और कहीं नगद पैसे। शुरुआत में शायद एक छोटी सी मांग होती है लेकिन धीरे धीरे वह उम्मीद और फिर दबाव बन जाती है। खासकर लड़की माता पिता सोचते हैं कि कहीं उसकी बेटी को शादी के बाद कोई परेशानी ना हो। लेकिन दोस्तों, रिश्ते की मांग और रिश्ते की नींव अगर मांगने पर रखी जाए तो क्या वह नींव मजबूत रह पाएगी? क्या अपनी सोच बदलनी होगी? और शादी को आर्थिक लेन देन नहीं बल्कि जीवन भर का साथ समझना होगा। और मुझे लगता है कि जहाँ रिश्ते में मांग हो वो रिश्ता कैंसिल ही कर देना चाहिए, क्योंकि आज आपसे मांगा जा रहा है, कल को शादी होने के बाद आपके ऊपर और दबाव डाला जाएगा, आपकी बेटी के ऊपर और दबाव डाला जाएगा कि भाई हमें ये चाहिए वो चाहिए। मुझे लगता है कि जहाँ पर ये मांगे आती वहाँ रिश्ता खत्म करो। दुनिया में बहुत लड़के हैं यार, और आजकल मुझे लगता है कि लड़कियां कंधे से कंधे मिला के चल रही है, उनके माता पिता उनके पैसे पढ़ाई में इतने पैसे लगा रहे हैं, तो वो भी सोचो। और दहेज प्रथा मुझे लगता है कि जड़ से खत्म कर देनी चाहिए।
7: बिल्कुल, ये बैन होना चाहिए। और रीना बताएं, सरकारी नौकरी और दहेज, जिनकी सरकारी नौकरी होती है उनकी भी बहुत सारी डिमांड्स होती है, हम सबको नहीं इन्वॉल्व करेंगे
8: उनकी तो और भी ज्यादा डिमांड होती है। पता नहीं कौन से 30 मार खान से वो पढ़कर आते हैं, कहाँ से पढ़कर आते हैं, जो उनके अंदर भी सोच भी वैसी आ जाती है। मतलब कह रहे हैं ना, जितने शिक्षित हो रहे हैं लोग उतनी ज्यादा मांगे बढ़ती जा रही है।
7: अक्सर सुनने को भी मिलता है कि लड़का सरकारी नौकरी में है, इसीलिए मांग तो होगी ही, लेकिन जरा सोचिए श्रोताओं, क्या सरकारी नौकरी किसी इंसान की कीमत तय करती है? सरकारी नौकरी निश्चित रूप से मेहनत और उपलब्धि है और उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन शादी के बदले किसी परिवार से कार या लाखों रुपए मांगना सम्मान नहीं बल्कि दबाव बन सकता है। सवाल ये होना चाहिए कि लड़का और लड़की एक दूसरे को कितना समझते हैं, उनके विचार कैसे हैं और वे जिंदगी साथ कैसे बिताएंगे। नौकरी अच्छी हो सकती है लेकिन अच्छा इंसान होना उससे भी बड़ी बात है।
8: बिल्कुल, अरे बिल्कुल, इंसानियत अच्छा होना चाहिए बस।
7: देखो, अगर इंसान के पास बहुत पैसा हो और वो इंसान हमें ना समझे
8: तो क्या फायदा,
7: उस रिश्ते में फिर इंसान नहीं रह पाएगा।
8: ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आजकल इंसान पता है क्या देखता है, कोई भी हो पैसे वाले के घर शादी होना चाहिए। ये नहीं पता कि भाई जिस पैसे, देखो हर किसी को हम नहीं कह सकते, बहुत से ऐसे हैं जो दहेज के बिल्कुल खिलाफ लेते ही शादी में पैसे, और बहुत ऐसे होते हैं नहीं भैया हमें तो पूरा खजाना ही दे दो। मतलब लगता है कुबेर जी को ही दान में दे देना चाहिए उनको तो।
7: बेटी तो वो देते ही देते हैं, साथ में वो इतनी डिमांड्स भी लोग करते हैं। पर रीना, मुझे ऐसा लगता है, देखो जो अपने जिगर का टुकड़ा दे देता है अपनी बेटी को पाल पोस कर बचपन से बड़ा कर वो अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे घर में करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे बड़ा और क्या दान हो सकता है जिसने अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया।
8: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन बहुत से नहीं समझते है ना। मुझे लगता है कि देखिए, आज आप किसी की बेटी के लिए मतलब अपने घर में शादी करके ला रहे हैं, उस दहेज ले रहे हैं, लेकिन क्या पता आपके घर में भी लड़की होए और आपकी आपसे बोला जाए डबल यानी कि दहेज दो, तो आप उस टाइम सोचेंगे कि मैंने शायद गलत करा था दहेज लेके। इसीलिए कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप करोगे वैसा तो देखो भरना पड़ेगा आपको। तो खुशी, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, तुम्हें कार चाहिए या साथ चाहिए?
7: देखो, कार तो मैं खुद भी पैसे कमा कर ले सकती हूँ, बट तुम्हारा साथ मुझे चाहिए क्योंकि वो मिलना बहुत मुश्किल है।
8: ये तो बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन आज मुझे हमें दुनिया को बताना है ना कि कार नहीं साथ ढूंढो, क्योंकि आज के समय में साथ किसी का पाना बड़ा ही मुश्किल हो गया है श्रोताओं। तो इसी टॉपिक पर बात करेंगे। शादी की बातचीत में कभी कभी सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की होती है कि क्या क्या मिलेगा, कार होगी या नहीं, इतने गहने होंगे या नहीं। लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कभी इस सवाल को बदल कर देखिए, पूछिए क्या दोनों एक दूसरे की इज्जत करेंगे, मुश्किल समय में साथ खड़े होंगे, क्या लड़की अपने सपने पूरे कर पाएगी। क्योंकि कार सड़क पर साथ चल सकती है, लेकिन जिंदगी के रास्ते पर साथ चलने के लिए समझदारी चाहिए। इसीलिए शादी में चीजें कम और समझ ज्यादा हो तो ये रिश्ता कहीं ज्यादा खूबसूरत बन सकता है। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि अगर आप कार चाहिए दहेज में, तो सावित्री जैसी पत्नी आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर सावित्री जैसी पत्नी चाहिए तो कार नहीं, समझ होनी चाहिए आप में, ताकि वो यमराज जब आपकी प्राण लेकर जाना तो उसके पीछे पीछे जाकर लेकर अपनी पति का प्राण लेकर आ जाए।
7: बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि देखिए, अगर आपको सावित्री जैसी पत्नी चाहिए तो उसके लिए आपको डिमांड्स नहीं, अच्छी लड़की देखनी चाहिए, अच्छा व्यवहार, अच्छा नेचर। क्योंकि हमेशा ना, इंसान अच्छा होता है तो हर चीज हम खरीद सकते हैं।
8: हाँ, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप उसका साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे, ये भी बहुत मैटर करता है
7: जिंदगी में। तो अभी ना हम
8: आगे अपने शो में,
7: लेकिन एक पहले गाना तो सुन ले यार, बहुत बातें हमने कर ली है, एक म्यूजिकल ब्रेक होना भी जरूरी है, उसके बिना हमारे लाइफ अधूरी है, म्यूजिक के बिना।
8: ये गाना सुनेंगे, सासू जी तूने
7: कदर न जानी।
8: ये गाना सुनने वाले श्रोताओं, FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।

0: चालू।
1: तो दोस्तों अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा गीत और हम लौट कर आ चुके हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में। कार्यक्रम का नाम है महिला मंच और मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी और मेरे साथ में रीना जी भी हैं यहाँ पर। और दोस्तों माता पिता का दबाव, बेटी की शादी हर माता पिता के लिए खुशी का पल होता है, लेकिन जब सामने से लगातार मांगे आने लगती है तो ये खुशी चिंता में बदल सकती है। कई माता पिता अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि बेटी की शादी में कोई कमी न रह जाए, लेकिन दोस्तों बेटी की शादी की खुशी उसके माता पिता की आर्थिक मजबूरी पर नहीं टिकी होनी चाहिए। माता पिता ने बेटी को प्यार दिया, शिक्षा दी, संस्कार दिए, ये किसी भी महंगे सामान से कहीं ज्यादा कीमती है। बेटी की विदाई मुस्कुराती हुई होनी चाहिए, कर्ज के बोझ के साथ नहीं।
2: ये तो बिल्कुल 100% तुमने सही कही है, कर्ज के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत से मिडिल क्लास फैमिली में कर्ज भी लेना पड़ता है यार, तो वो इसलिए लेना पड़ता है ना कि दहेज की मांगे होती है। जब दहेज की मांगे ही नहीं होंगी तो कर्ज भी मुझे लगता है कि नहीं लेना
1: पड़ेगा। नहीं लेना पड़ेगा। या आई एग्री विद यू रीना।
2: हाँ तो देखिए श्रोताओं, बहुत से घरों में लड़कियों को बोझ माना जाता है। बेटी कोई बोझ नहीं, हम अक्सर कहते हैं बेटी को अच्छे घर में भेजना है, लेकिन अच्छा घर आखिर किसे कहेंगे? वह घर जहाँ बहुत सम्मान हो या वह घर जहाँ बेटी को सम्मान मिले? मेरे हिसाब से अच्छा घर वही है जहाँ बेटी को अपनेपन का एहसास मिले, उसकी बात सुनी जाए और उसे बराबरी का अधिकार मिले। बेटी कोई जिम्मेदारी नहीं जिसे किसी भी कीमत पर पूरा करना है, वह परिवार का हिस्सा है, एक इंसान है अपने सपने और अपनी पहचान के साथ। इसीलिए उसके शादी में सबसे जरूरी बात दहेज की ना करें, अच्छे रिश्ते की करें।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लड़की की जिम्मेदारी दहेज प्रथा को खत्म करने की बात होती है। तो हम अक्सर सिर्फ लड़के वालों की तरफ देखते हैं, लेकिन बदलाव की सबसे मजबूत शुरुआत खुद लड़का कर सकता है। अगर कोई लड़का शादी से पहले साफ कह दे मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक अच्छा जीवन साथी चाहिए, तो ये बात बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। क्योंकि शादी में लड़की की आवाज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अपने परिवार से प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन गलत मांग के सामने अपनी बात रखना भी जिम्मेदारी है। एक युवा की ऐसी सोच आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन सकती है। क्यों रीना? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बहुत फैमिलीज में मैंने देखा है कि लड़का डिमांड नहीं करता है, उसके पेरेंट्स डिमांड करते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन लड़का उसी वक्त अगर वहाँ एक्शन ले, अपने पेरेंट्स को बोले, तो चीजें संभल सकती हैं।
2: बिल्कुल संभल सकती है यार। और मुझे लगता है कि दहेज पर जो पैसे मिलते हैं, जो सामान मिलते हैं, उस पर कितने दिन तक राज कर पाओगे? 1 महीना 2 महीना, उसके बाद फिर से वैसा ही। तो क्यों ना हम अपने बलबूते पर आगे बढ़े। जो भी सामान खरीदना है, सबसे बड़ी बात है कि इंसान को पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचकर जो भी आप काम करेंगे ना, तो देखिए आपके पास लक्ष्मी कैसे भागती भागती आएगी। लेकिन मन में जब वही पाप भरा होगा तो लक्ष्मी भी नहीं टिकती है वहां पर। इस चीज को जरूर सोचे। और मुझे ना ये लगता है कि लड़कियों को भी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि जब लड़कों की सुनी जा सकती है तो लड़कियों की क्यों नहीं सुनी जा सकती है। मुझे लगता है कि उनकी बातें भी सुननी बहुत जरूरी है। अगर किसी रिश्ते में शादी से पहले लगातार मांगे रखी जा रही हो तो लड़की और उसका परिवार उस पर खुलकर बात कर सकते हैं। शादी जिंदगी का बड़ा फैसला है और इसमें आपकी सहमति, आपकी खुशी और

0: आपका मान सबसे जरूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए किसी बात को स्वीकार करना जरूरी नहीं। अब रिश्ता तय हो गया है या लोग क्या कहेंगे, सही रिश्ता वही है जहां दोनों परिवार एक दूसरे का सम्मान करे और दोनों की खुशी को महत्व दे। ये बिल्कुल सच है। कभी कभी रिश्ता तय हो जाने के बाद ये कहा जाता है, बहुत से हमने न्यूज भी देखी है जहाँ पर बारात मतलब लड़की के घर पर चले जाते हैं और वहाँ से वापस ले जाते हैं।
1: बारात
0: या फिर ये होता है कि बारात की पूरी तैयारी हो जाती है और लड़के वाले से कॉल आता है कि मैं इतने लाख पैसे अभी पहुंचाओ तब हम आएंगे आपके घर, वरना शादी कैंसिल। ऐसे भी कर देते हैं। तो मुझे लगता है जब ऐसे ऐसे बातें आती हैं तो आपको ये नहीं देखना चाहिए कि समाज क्या कहेगा, समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सोचिए जब आपकी बेटी ही नहीं रहेगी तो इज्जत का क्या करिएगा। इसीलिए भाई मुझे लगता है कि जब आप शादी तय होती है वहाँ पर अच्छे से बातें हो जाना चाहिए, और जहाँ पर मांग हो मुझे लगता है कि मैं तो इसके खिलाफ हूँ कि वहाँ शादी कैंसिल कर देना चाहिए।
1: मुझे लगता है रीना, देखिए शिक्षा सबसे बड़ा उपहार है। अगर बेटी की शादी के लिए पैसा बचा रहे हैं तो उसके साथ साथ उसकी शिक्षा और आत्मनिर्भरता में भी निवेश कीजिए, क्योंकि
0: एक बात और जितना पैसा हम दहेज में लगाते हैं अगर उतना ही पैसा बेटियों को पढ़ाने में आगे बढ़ाने में लगेंगे तो मुझे लगता है कि जब वो भी अपने पैर पर खड़ी रहेगी और लड़का भी अपना पैर पे
1: तो वही मैं
0: वहाँ दहेज की बात ही नहीं आई।
1: हाँ, तो वही मैं कहना चाह रही थी तुमसे कि अगर

0: होगी।
1: ये तो बिल्कुल बात सही कही है तुमने। और एक और बात जो आज के समय में ना मतलब एक दूसरे को देखा देख बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वो है दिखावे की शादी। आजकल
0: मैंने अगर 50 लाख की शादी की है तो यार मैं 60 लाख की शादी करूँगा।
1: हाँ ये रहता है आज के टाइम में, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पता है लोग क्या कहते हैं, सबसे बड़ी चीज देखते हैं बड़ा वेन्यू, महंगे कपड़े, शानदार सजावट और लाखों का खर्चा। खुशी मनाना गलत नहीं है, लेकिन जब दिखावे के लिए परिवार अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करने लगे तो हमें रुककर सोचना चाहिए। शादी कुछ घंटों का समारोह है, लेकिन वैवाहिक जीवन सालों का सफर, इसलिए शादी में दिखावा कम और समझदारी ज्यादा हो। आखिरकार जिंदगी की खूबसूरती वेडिंग डेकोरेशन से नहीं रिश्तों की समझदारी से बनती है।
0: दहेज और आत्मसम्मान। देखिए दोस्तों, दहेज की मांग सिर्फ आर्थिक बोझ नहीं होती, कई बार ये परिवार के आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाती है। सोचिए कोई परिवार अपनी क्षमता से ज्यादा सिर्फ इसलिए दे रहा है क्योंकि उसे डर है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो कहीं रिश्ता ना टूट जाए। क्या ऐसा रिश्ता सच में मजबूत हो सकता है? रिश्ते में सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर शुरुआत ही दबाव से हो तो आगे चलकर समझ और बराबरी कैसे आएगी? इसीलिए दहेज के खिलाफ आवाज उठाना सिर्फ पैसा बचाना नहीं बल्कि अपने सम्मान की रक्षा करना है। तो दोस्तों अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, फिर लौट कर आएंगे और भी आपसे इसी विषय पर चर्चा करने लगे। तो बने रहिए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। और इसी के साथ अर्जेंटीना फिर से आप सभी के बीच कनेक्ट हो गई है महिला मंच शो में। और आप बात करने वाले हैं कि हर किसी के जुबान पे एक ही बात होता है, लोग कहेंगे, है ना। हमारे समाज में एक वाक्य बहुत कुछ बदल देता है, लोग क्या कहेंगे। कई बार इसी डर से परिवार ऐसी मांगे भी मान लेते हैं जिन्हें वे खुशी से नहीं मजबूरी से पूरा करते हैं। लेकिन जिंदगी आपको और आपकी बेटी को जीनी है, समाज को नहीं। कुछ लोग कुछ दिन बात करेंगे और फिर अपने जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे, लेकिन कोई फैसला जिंदगी भर परेशानी बन जाए तो उसका असर परिवार को ही झेलना पड़ता है। इसलिए फैसले समाज के दबाव से नहीं, समझदारी और अपनी क्षमता को देख कर लेनी चाहिए ताकि आपको आगे पछतावा ना होए।
1: बराबरी का रिश्ता, रीना आजकल बराबरी बहुत देखते हैं लोग। अगर मैं इतना कमाता हूँ तो उसका स्टैंडर्ड भी इतना ही होना चाहिए, है ना। लेकिन शादी का सबसे खूबसूरत शब्द क्या है? साथ। और साथ तभी खूबसूरत होता है जब उसमें बराबरी हो। और एक परिवार अपनी बेटी को प्यार और सम्मान के साथ रहा है तो दूसरे परिवार की जिम्मेदारी भी है कि वह उसे उसी सम्मान के साथ स्वीकार करे। शादी में किसी एक को छोटा या बड़ा समझने की जरूरत नहीं, दोनों परिवार बराबर हैं, दोनों बच्चे बराबर हैं और दोनों की खुशियां बराबर हैं। तो मुझे लगता है रीना कि दहेज की जगह अगर बराबरी आ जाए कितने ही रिश्ते ज्यादा मजबूत और खुशहाल बन सकते हैं ना। अगर रिश्ते यहाँ पे एकता हो, है ना, कि देखिए वो लड़की भी मेरी मतलब इक्वल है और मैं भी, दोनों को एक समान देखा जाए। ये नहीं कि वो गरीब घर से आई है, मिडिल फैमिली से आई है, मैं रिच फैमिली से हूँ तो उसकी वैल्यू कम करते हैं कि ये तो मिडिल फैमिली से लड़की है, मिडिल क्लास लड़की है, इसकी क्या रिस्पेक्ट करना। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप एक दूसरे से रिश्ते में बनते हैं, एक दूसरे से रिश्ता होता है, तो वहाँ पर आपको एक दूसरे को बराबर रिस्पेक्ट, बराबर सम्मान, प्यार देना चाहिए।
0: बिल्कुल, ये तो है। ये चीजें अगर दुनिया में सबकी सोच ऐसी हो जाए तो मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार की परेशानी ही नहीं आएगी किसी की भी जिंदगी में। कई बार दहेज की शुरुआत बहुत छोटी मांग से होती है, बस इतना ही और चाहिए, लेकिन यही छोटी सी मांग आगे चलकर बड़ी अपेक्षाओं का रूप ले सकती है। और जब परिवार एक मांग पूरी करता है तो अगली मांग के लिए रास्ता खुल जाता है। इसीलिए शुरुआत में ही अपनी सीमाएं और अपनी सोच स्पष्ट रखना जरूरी है। शादी में उपहार देना अगर खुशी और अपनी इच्छा से हो तो अलग बात है, लेकिन मांग और दबाव बिल्कुल अलग चीजें हैं। फर्क समझना बहुत जरूरी है। क्या उपहार भी दहेज होता है खुशी?
1: नहीं, दहेज और उपहार दोनों में डिफरेंस है। दहेज हम देने की इच्छा नहीं होती, दहेज जबरदस्ती दिया जाता है,
0: वो ना मांगा जाता है।
1: मांगा जाता है, लेकिन अगर बात करें उपहार की तो उपहार हम अपनी मर्जी से देते हैं, अपनी खुशी से देते हैं,
0: अपनी बेटी के लिए देते हैं।
1: हाँ, तो दोस्तों आजकल बेटियां आत्मनिर्भर बन रही हैं, स्टडी कर रही हैं, हर फील्ड में वो हर क्षेत्र में किसी कंधा मिलाकर चल रही हैं, बराबरी कर रही हैं। और आज की बेटियां पढ़ रही हैं, नौकरी कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं और अपने सपने पूरे कर रही हैं। ऐसे में सबसे खूबसूरत तोहफा ये है कि उसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, उसे ये भरोसा मिले कि अगर जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। आत्मनिर्भर बेटी सिर्फ अपनी जिंदगी मजबूत नहीं करती बल्कि पूरे परिवार को मजबूत बनाती है। इसीलिए बेटियों के भविष्य में निवेश कीजिए, उनकी पढ़ाई, स्किल्स और कॉन्फिडेंस में, यही असली संपत्ति है।
0: ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। रिश्ते की असली कीमत, अगर कोई रिश्ता सिर्फ वह वजह से टूट जाए कि सामने वाला परिवार कार या पैसा नहीं दे सकता, तो शायद हमें उस रिश्ते की असली कीमत पर विचार करना चाहिए। रिश्तों की कीमत बैंक बैलेंस से नहीं, व्यवहार से तय होनी चाहिए। जीवन साथी ऐसा हो जो बीमारी में साथ दे, मुश्किल समय में साथ पकड़े और आपकी खुशियों में भी दिल से खुश हो। ऐसी चीजें किसी दुकान से खरीदी नहीं जा सकती, इसीलिए शादी में सबसे पहले इंसान देखे, सम्मान नहीं देखा जाता है। श्रोताओं, देखिए सम्मान तो आप जितनी मर्जी खरीद लेंगे, लेकिन है जब उसमें प्यारी समझ ही नहीं होगा, एक दूसरे का साथ ही नहीं होगा, तो फिर क्या फायदा ऐसी दहेज का। इस पे सोचिएगा जरूर आप। मैं अर्जेंटीना बोल रही हूँ आप सभी से, और मुझे मैसेज करके भी आपने बताना है। नंबर है 9837899 1-800-516-8996 पर कि दहेज के प्रति आपका क्या राय है, क्योंकि देखिए हमारे साथ साथ मुझे लगता है कि आपकी भी राय हमारे लिए बहुत, मतलब ऐसा कुछ तो लगेगा कि हम आप सभी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो आपका फीडबैक जब तक ना आए तो मजा नहीं आता, इतनी मेहनत करो तो थोड़ा बहुत फीडबैक बनता है श्रोताओं। जल्दी जल्दी मैसेज करिए, वेट करने हम आपके मैसेज का, देख लीजिए। अब आप
1: बेटियों को सिर्फ ये मत सिखाइए कि शादी के बाद सबको खुश रखना है, उन्हें ये भी सिखाइए कि अपना सम्मान कैसे पाएं, और उन्हें ये भी बताइए और उन्हें अपनी बात कहना सिखाइए, अपने फैसले लेना सिखाइए और गलत बात को गलत कहना सिखाइए। साथ ही बेटों को भी सिखाइए कि पत्नी किसी के घर से आई हुई जिम्मेदारी नहीं बल्कि बराबरी की साथी है। अगर बेटियों और बेटों की परवरिश में सम्मान और बराबरी होगी तो आने वाली पीढ़ी की सोच अपने आप बदल जाएगी। सोचिए दोस्तों, एक ऐसी शादी जहाँ कोई मांग नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई तुलना नहीं, दोनों परिवार की खुशी से मिलें, बच्चे अपनी नई जिंदगी शुरू करें और माता पिता के चेहरे पर सिर्फ संतोष हो। ऐसी शादी शायद बहुत महंगी ना हो लेकिन उसकी यादें बहुत कीमती होंगी। दहेज मुक्ति शादी सिर्फ एक रस्म नहीं, एक संदेश है कि हम रिश्तों को सम्मान से ऊपर रखते हैं और हर परिवार अपने स्तर पर इस बदलाव की शुरुआत कर सकता है। क्यों रीना, कितनी अच्छी रहेगी ना ये शादी। हाँ। ना कोई दहेज
0: और क्या, मतलब दहेज ना हो, जहाँ वहीं पे पता है क्या रिश्तों की समझ होती है ना, उस हाँ। जगह पे दहेज नहीं लिया जाता है। तो श्रोताओं, हर चीज के बारे में हमने बात करी लेकिन अब हम बात करते हैं बेटी की खुशी। बेटी की खुशी, बेटी की शादी में माता पिता की सबसे बड़ी इच्छा क्या होती है, यही कि उसकी बेटी खुश रहे। तो फिर उसकी खुशी को सम्मान और पैसे से क्यों जोड़े। बेटी के चेहरे की मुस्कान क्या किसी कार से बड़ी है, उसका सम्मान किसी गहने से ज्यादा कीमती है, उसका सुरक्षित और खुशहाल जीवन किसी बड़े समारोह से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए बेटी की शादी में खर्च करने से पहले ये जरूर सोचिए कि उनके आने वाले जीवन में उसे किसी चीज की सबसे बड़ी जरूरत क्या होगी, सम्मान या समझदारी, सम्मान देने वाले साथी, ये जरूर ध्यान दीजिए। तो श्रोताओं, आज का जो मेरा ये सवाल है उन युवाओं, उन जेन जी से जो अब शादी करने जा रहे हैं, तो आप अपने होने वाले जीवन साथी से क्या चाहते हैं, प्यार, सम्मान, समझदारी, साथ। अगर यही आपकी जरूरतें हैं फिर उसके परिवार से अतिरिक्त सम्मान की मांग क्यों। और अगर आप लड़की है तो क्या आप ऐसे रिश्ते को स्वीकार करेंगी जहां आपकी पहचान से ज्यादा आपके परिवार की आर्थिक क्षमता देखी जाए। बदलाव का सबसे अच्छा समय आज है और शुरुआत हमारी अपनी सोच से ही होती है और सोच समझ कर ही फैसला लेना चाहिए। श्रोताओं,
1: बात करते हैं मैका और ससुराल की। तो शादी के बाद बेटी दो परिवार से जुड़ती है। मैका चाहता है कि बेटी खुश रहे और ससुराल चाहता है कि नई बहू परिवार का हिस्सा बने, लेकिन इस रिश्ते की शुरुआत तभी खूबसूरत होगी जब दोनों तरफ से सम्मान हो। मायके की आर्थिक क्षमता को बेटी के सम्मान से जोड़ना सही नहीं और उन्हें और ससुराल को ये भी समझना चाहिए बहू अपने साथ सिर्फ सामान नहीं अपने सपने और भावनाएं भी लेकर आती है, उसे अपनाइए, उसकी कीमत मत लगाइए। और दोस्तों, एक पिता की चिंता, एक पिता बेटी की शादी के लिए कितने सपने देखता है, लेकिन अगर उन सपनों के बीच लगातार ये डर रहे कि मांग पूरी नहीं हुई तो क्या होगा, तो खुशी अधूरी रह जाती है। हमें ऐसी व्यवस्था बनानी है जहां पिता बेटी को विदा करते समय ये ना सोचे कि मैंने कितना दिया, बल्कि ये महसूस करे कि मैंने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार, शिक्षा और आत्मविश्वास दिया है और अब वह एक नए परिवार में सम्मान के साथ अपनी जिंदगी शुरू करेगी, यही सबसे बड़ी खुशी है। और दोस्तों, शादी का असली उपहार क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। अगर मुझसे पूछा जाए कि शादी में सबसे बड़ा गिफ्ट क्या होना चाहिए तो मेरा जवाब होगा विश्वास, क्योंकि गहने खो सकते हैं, सामान खराब हो सकता है, लेकिन विश्वास और सम्मान रिश्तों को जिंदगी भर संभाल सकते हैं। शादी में दोनों परिवार अगर एक दूसरे को सम्मान दें और बच्चों के फैसलों का साथ दें तो यही सबसे बड़ा उपहार है। इसलिए दहेज की सूची छोटी कीजिए और प्यार, विश्वास और समझदारी की सूची लंबी कीजिए। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ अब हमें भी दीजिएगा जाने की अनुमति। हम मिलेंगे आपको नए एपिसोड में, तब तक के लिए हमें दीजिएगा जाने की अनुमति। और हाँ, हमारा आपको कार्यक्रम कैसा लगा ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा और हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। आप चाहे तो टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, अब वो आपकी च्वाइस है। धन्यवाद। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: इस आजादी के जश्न को मनाइए और भी खास द हाउस ऑफ राधिका स्वीट बेकरी एंड रेस्टोरेंट के साथ। मिठाइयों की मिठास, बेकरी का स्वाद, रेस्टोरेंट का जायका। द हाउस ऑफ राधिका, एड्रेस प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार, मुरादाबाद।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: हेलो जी, हेलो, गुड वाली आफ्टरनून है फरमाइशों में। आज रीना के साथ कनेक्टेड श्रोता हूँ और समय की बात करूँ तो 3:17 हो चुके हैं। आज रीना आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई है और आपने क्या करना है, हमें कॉल करना है, नंबर है 9837896896 पर, यानी कि कॉल करके आप अपने फेवरेट वाला गाना सुन सकते हैं। तो चलिए, यानी कि अपने फर्स्ट कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो,
1: हेलो फरमाइश, सबसे पहले आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कैसे हैं आप?
1: मैं पहले अपना तारुफ करा दूं, मैं गांधी समाधि दोस्त रामपुर से हाजिर अखबार खान आपसे बात कर रहा हूँ। हम बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइए आपके और स्टूडियो में क्या हाल है।
0: सर, हमारे स्टूडियो में भी सब बहुत बढ़िया है, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और बताइए जी, कौन सा गाना सुनेंगे सर?
1: मूवी का नाम है कुछ कुछ होता है, गाने के बोले तुझे याद ना आए तुम,
0: तुझे याद
1: और
0: ना आए मेरी।
1: कुछ सुनने वालों के नाम है।
0: जी कुछ नहीं, सिर्फ दो ही नाम लेने हैं सर।
1: जी जी राधिया खान है, सिमरन है, बाबू अंसारी।
0: ठीक है, ठीक है जी, चलिए इन्हीं के साथ आपको गाना सुनवाते, ठीक है? तो चलिए श्रोताओं, कुछ कुछ होता है मूवी से गाना सुनते हैं। अलका याग्निक जी की आवाज़ में बड़ा ही खूबसूरत ये गाना है, तुझे याद न मेरी आए।
2: मैं उसको कह दूं अभी जाऊं

0: this idea of celebrating
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाल जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
5: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
6: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
5: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
7: हेलो जी, गुड वाली आफ्टरनून है, फरमाइशों में आप आर्जरीना के साथ कनेक्टेड श्रोताओं, और समय की बात करूँ तो 3:24 हो चुके हैं और बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है, तुझे याद न मेरी आए कि किसी से अब क्या कहना। सही बात है, किसी से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि दुनिया जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ बात बनाने की होती है। तो मतलब आप किसी से अपना दुख शेयर करने जाओगे, लेकिन वो अपनी दुख की गाथा गाने लग जाता है, इसीलिए किसी से कुछ भी नहीं कह सकते हैं। बस एक काम तुम कर सकते हैं जो कि बहुत सिंपल है और किसी को फोर्स भी नहीं करना पड़ेगा आपको। यानी कि देखिए, बहुतों को आदत होती है कि वो अकेले बैठकर गाना सुने, कोई मतलब हर किसी की अपनी एक अच्छी पसंद चीज़ होती है। सो आप वो खुद करिए, आपको वहाँ खुशी मिलेगी। और मुझे लगता है कि जब खुद पे ज़्यादा समय देते हैं, खुद के लिए ज़्यादा समय निकालते हैं ना, तो इतना कभी दुख होता ही नहीं। तो इसीलिए खुद से अटैच होइए, खुद से अटैचमेंट रखिए, खुद से अटैचमेंट रखना बहुत ज़रूरी है। सो श्रोताओं, यानी कि फरमाइश शो में कनेक्ट हैं, चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं कि कौन हमारे साथ कनेक्ट होते हैं और कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो।
8: हेलो
7: जी, नमस्कार।
8: मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ।
7: कहाँ से बात कर रहे हैं?
8: कश्मीर से।
7: कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी। क्या नाम है सर आपका?
8: इनाम उल हक बोल रहा हूँ।
7: जी बताइए, कैसे हैं?
8: आप कैसे?
7: बहुत बढ़िया।
8: जुड़े में कैसे?
7: सब बहुत बढ़िया है सर।
8: अच्छा सर,
7: आप कश्मीर से हैं, कब से सुन रहे हैं आप हमारा रेडियो?
8: 2 साल हो गए।
7: अच्छा, मतलब आपको मुरादाबाद का रेडियो सुनना अच्छा लगता है?
8: हाँ, बहुत अच्छा लगता है।
7: चलिए जी, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
8: माँ तुझे सलाम छोड़ के ना जाओ प्रिया।
7: ठीक है जी, चलिए हम आपको ये गाना सुनवाते हैं। ठीक है
8: जी, सुना।
7: ओके जी, तो चलिए श्रोताओ, बहुत ही शानदार ये गाना है, मुझे छोड़ के ना जाओ पिया, माँ तुझे सलाम मूवी से। ये 2002 में मूवी रिलीज हुई थी। सो फिलहाल इस गाने को एंजॉय करते हैं, उसके बाद कनेक्ट होती है आप सभी के साथ। कॉल कर सकते हैं, नंबर है 9823789689।

0: माँ तुझे सलाम मूवी से आपने गाना सुना है, छोड़ के न जा ओ पिया। अलका याग्निक जी की आवाज में बड़ा ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया श्रोताओं। और समय की बात करूँ तो 3:32 हो चुके हैं, फरमाइश शो में आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है। सो आइए अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। आज का वेदर भी देखिए, धूप के साथ साथ सुनहरी हवाएं जब चलती है ना, तो अलग ही आनंद आ जाता है, मज़ा आ जाता है ना। इतनी गर्मी फील होती है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर होता है। फिलहाल अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कहाँ से कनेक्ट हुए हैं। हेलो,
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: रणवीर सिंह जेठालाल मुरादाबाद यूपी से। जी
0: सर आपका पूरा नाम यही है क्या, रणवीर सिंह जेठालाल जी?
1: मैम। जी
0: मतलब ऐसा क्यों सर, एक तो रणवीर सिंह होता है, जेठालाल तो अलग होता है ना।
1: नहीं मैम, यही है, यही नाम है।
0: अच्छा, तो क्या करते हैं आप?
1: हम
0: जी
1: काम ही ढूंढ रहे हैं। काम ढूंढना भी एक काम है। मैम
0: अच्छा, चलिए ढूंढिए आप काम और गाना बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
1: सोनू निगम जी की आवाज है, तू नहीं तो तेरी याद सही याद जो तुम्हारी जी लेंगे।
0: ओके
1: जी मैम कुछ कहें।
0: जी, बिल्कुल कह सकते हैं आप।
1: किस्मत के खेल भी हजार हैं, किस्मत के खेल भी हजार हैं, जो मिल नहीं सकता उसी से प्यार है। किस्मत के खेल भी हजार हैं, जो मिल नहीं सकता उसी से प्यार है। एक को कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा जान देने को तैयार है।
0: ओके जी, बहुत अच्छा आपका शायरी है। चलिए हम आपको गाना सुनवाते हैं, ठीक है जी? नमस्ते। तो चलिए श्रोताओ गाना सुनते हैं, और समय देखिए पूरी अपनी कगार पर है, बस आप कॉल करते रहिए। नंबर है 9837 8968 96।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है श्रोताओं। देखिए, इंसान रहे ना रहे हमारे बीच, लेकिन उसकी यादें ना कभी कम नहीं होती है और उसकी यादें बहुत आती रहती है। और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है फरमाइश शो में। समय की बात करूं तो 3:42 हो चुके हैं और आपने आरजे

0: महीने में।
1: अच्छा, इस महीने में दूसरी बार बात हो रही है।
0: हाँ मैडम
1: चलिए जी,
0: जी,
1: बताइए कौन से गाना सुनना चाहते हैं।
0: गाना माधुरी दीक्षित पे चित्रित हुआ है, और गीत के बोल है पिया पिया ओ पिया पिया, जान
1: पिया
0: रहे
1: पिया ओ
0: पूनम
1: पिया।
0: पर तुझे न मेरे मन का।
1: लेकिन फिलहाल पानी पीते रहिए जी, गर्मी बहुत है।
0: मैडम जी पानी अभी हमारे सोयाबीन 2 फुट 2.5 फुट हो गए, लेकिन पानी की बहुत सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन पानी गर्मी ज्यादा है, मगर पानी कई बार तो पीछे पीछे हो रहा था 15 दिन पहले, लेकिन 15 दिन से पानी नहीं, थोड़ा थोड़ा आ रहा है जा रहा है, थोड़ा आ रहा है जा रहा है, पानी नहीं है मैडम जी। अभी तो पानी की जरूरत है बहुत।
1: क्या बो रखा है अपने खेतों में?
0: खेतों में सोयाबीन है, तुअर है, और वैसे हल्दी है, गन्ना भी है।
1: अच्छा, सर आप बोल रहे थे गन्ना भिजवा दूंगा, अभी भिजवाया नहीं आपने।
0: गन्ना भिगाने का गन्ने की उतनी जरूरत नहीं रहती मैडम जी, अभी हल्दी को पानी और सोयाबीन को होना, और गन्ना कैसा है उसको नहीं दिए तो भी चलता है उसको, वो क्योंकि 15-20 दिन उसको दम पकड़ता है, उसको कुछ जरूरत नहीं होती।
1: अच्छा,
0: अगर
1: तो
0: ये बोर का पानी अगर दिए, अगर ऊपर का पानी गिरे तो ये हल्दी ये राग चिकड़ हो जाता ना, फिर बाद में ऊपर का पानी और नीचे का पानी वो दोनों का पानी अलग अलग रहता है, ऊपर का अच्छा पानी रहता है मगर नीचे का जो पानी पीने वाला वो अलग रहता है।
1: ओके, तो चलिए सर हम आपको गाना सुनवा देते हैं, ठीक है?
0: थैंक यू, धन्यवाद।
1: ओके जी, वेलकम। तो चलिए श्रोताओं, गाना सुनते हैं पिया ओ पिया। लेकिन अभी फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है, उसके बाद हम आप सभी के साथ कनेक्ट होंगे श्रोताओं, और करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल आप सभी को कहीं नहीं जाना है, क्योंकि आज की तारीख 17 अगस्त और दिन है यानी कि सोमवार का, महादेव का यानी कि तीसरे सोमवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज नाग पंचमी है, उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाद जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना, पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर, 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर, किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी, 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद, कॉल करें 7055070552।

0: गुड वाली आफ्टरनून है श्रोताओं, समय की बात करूँ तो 3:54 हो चुके हैं और आप आरजे रीना के साथ कनेक्टेड और फरमाई शो एंजॉय कर रहे हैं। और बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया था अभी, पिया। चलिए साथ ही साथ अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो फरमाई
0: जी सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार,
1: अमीर हुसैन कहते हैं मुझे।
0: अच्छा, कहते हैं आपको, अब
1: नाम भी यही है।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: मैं पीतल के फूलदानों पर फूल सबसे तराशता हूँ।
0: ओके, तो बताइए सर कौन से गाना सुनना चाहते हैं?
1: गाना वो ही सुनेंगे, इस दुनिया में ऐ दिल वालों दिल का लगाना खेल नहीं।
0: ओके, चलिए सर हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है?
1: शुक्रिया
0: जी। तो चलिए श्रोताओं, ये है सदाबहार गाने दिल लगे मूवी से। ये मूवी यानी कि 1949 में आया था ये मूवी, और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गाना सुनेंगे आप, बहुत ही शानदार गाना।

0: शानदार आपने गाना है, इंजॉय किया है। इस दुनिया में ए दिल वालों, दिल लगाना ठीक नहीं। बिल्कुल सही बात है, दिल लगाना बिल्कुल। और जब दिल लग तो मुझे लगता है कि अटैचमेंट है ना, वो थोड़ा कम रखना चाहिए, क्योंकि जब इंसान आपसे दूर जाता है ना, तो आप रह नहीं पाते उसके बिना। इसीलिए अटैचमेंट जितना हो सके उतना रखिए। और पहली बात तो क्यों लग, अगर लग को तो जागते उठते बैठते उसी इंसान, तो फोकस खुद पर करिए, खुद को समय दीजिए। और फरमाइशों में आप आरजे रीना के साथ कनेक्टेड श्रोताओं, समय की बात करूँ तो बस 4 बजने में सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट बाकी है। तो आइए अपने यानी कि अगले कॉलर से बात करते हैं, सुनना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: जी, बोलिए, क्या नाम है आपका?
1: कमाल
0: जी, ओम प्रकाश जी, बोलिए, कैसे हैं फैमिली में?
1: अकेले पड़े तो गाने सुनते रहते हैं आपके, तो
0: क्या कह रहे हैं?
1: नवीन द्वारे।
0: अच्छा जी, ठीक है सर, हम आपको।
1: हेलो,
0: हाँ जी,
1: पता
0: हाँ जी, हाँ जी, बोलिए।
1: चल
0: ठीक है मैं, हाँ जी, पता लग गया, मैं आपको सुनवाती हूँ ये गाने, ठीक है
1: धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
0: जी सर। तो चलिए श्रोताओं, गाना सुनने से पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है, और मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाज़त। हम आपको मिलने वाले हैं, शाम को ही मिलेंगे और करेंगे ढेर सारी बातें, यानी कि इवनिंग मस्ती शो में मिलने वाले हैं, शाम 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। अभी के लिए बाय-बाय, और आप कनेक्ट होंगे, आप उनकी आवाज़ पहचान जाएंगे। अभी के लिए बाय।
2: Hey, you're tuning to FM Rababa, 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
3: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।

नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हेलो फरमाइश में। हाँ, आपकी आवाज़ अब थोड़ी सी बदली बदली आपको सुनाई आ रही होगी आपको, तो कोई नहीं साहब, पहचान लीजिए कौन बोल रहा है और मैसेज भी कर दीजिएगा कि इस समय कौन आपसे बात कर रहा है। चलिए तब तक अपने हम एक लिस्ट

0: से बात करते हैं और पूछते हैं उनकी फरमाइश क्या है। हेलो फरमाइश, कैसे हैं आप
1: हेलो फरमाइश। नमस्कार सर जी।
0: सर, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार जी,
1: हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर जी। जी
0: तो परमार जी, कैसा मौसम है इस समय मध्य प्रदेश में?
1: सर, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, माँ की जाना तो नहीं हो रही। मौसम बड़ा सुहाना है, ठंडा मौसम है और बहुत बढ़िया भाव मौसम है सर जी। जी
0: तो आप क्या करते हैं मध्य प्रदेश में?
1: सर, हम खेती किसानी करते हैं और किसान हैं।
0: परमार जी, जहाँ तक मुझे पता चला है कि आप हमारे एफएम से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, तो कैसे जुड़े आप हमारे एफएम से?
1: जी सर, हमारा एक ग्रुप है, हेलो फरमाइश एकता रेडियो ग्रुप सर, उसके माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ। करीबन 3 साल हो गए सर, उसमें आपके कार्यक्रम की जानकारी रहती है हमेशा और नंबर भी साझा करते हैं उसमें। जी
0: चलिए साहब, तो आप हमसे हर बार इसी बहाने जुड़ जाते हैं, तो आज आप कौन सी फरमाइश लेके आए हैं सर?
1: सर जी, आज आप सुना दीजिए नदिया की क्वार फिल्म में से कोई सा भी गीत सुनवा देना। आज सचिन जी का जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर जी।
0: धन्यवाद, ये मैसेज उनके पास पहुंच जाए किसी ना किसी रूप में, आपकी तरफ से भी और हमारी पूरी एफएम टीम की तरफ से भी, पूरे मुरादाबाद वासियों की तरफ से भी सचिन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिवस की।
1: धन्यवाद।
0: चलिए, ओके सर, धन्यवाद। तो चलिए, आपकी भी अगर हो कोई फरमाइश तो ज़रूर हमें 9837896896 पे कॉल करें और अपनी फरमाइश का आनंद लें।

0: क्या गाना था साहब, कौन दिशा में, नदिया की पार मूवी से इतना अच्छा। सचिन जी का जन्मदिन है, और सचिन जी एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार, ये तो आपको पता ही है। इनकी इतनी फिल्में आई हैं कि उस समय के अपने की अगर गिने चुने जो एक्टर्स थे उनमें से एक हमारे साथ सचिन जी भी थे। और अब हम लेते हैं नई फरमाइश नए हमारे लिसनर को कॉल पे। हेलो, फरमाइश।
1: हेलो जी, नमस्ते।
0: नमस्ते सर, क्या नाम है आपका?
1: मैं रमेश पत्र हूँ, मेथिनी टी स्टेट गोलाघाट आसाम से बात कर रहा हूँ।
0: आसाम से बात कर रहे हैं आप?
1: अच्छा हाँ।
0: तो सर क्या काम करते हैं आप?
1: मैं तो एक टीचर था, अब रिटायर हुआ हूँ।
0: अच्छा, आप अभी रिटायर्ड हुए हैं टीचर से?
1: हाँ।
0: तो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे?
1: मैं गणित सब्जेक्ट पढ़ाता था, गणित मैथमेटिक्स।
0: मैथमेटिक्स। तो आप कभी आए हैं इधर यूपी? कभी कभी आपका मौका लगा हो और आप
1: अभी तक तो गया नहीं उधर।
0: अच्छा, और आसपास आपने कोई ऐसे कोई राज्य घूमे हो जो आपको बहुत अच्छा लगा हो? कि भाई असम तो अपने में ही बहुत एक अच्छा राज्य है, बहुत पर्यटन स्थल एक एक तरीके से बहुत बड़ा। तो आपको लगा कि कोई और राज्य आपने घूमा और आपको अच्छा लगा हो कोई?
1: घुमाऊँ, मैं नागालैंड घुमाऊँ, उधर भी अच्छा लगता है, पहाड़ी इलाका है, और दूसरा राज्य नहीं गया है मैं।
0: दूसरी जगह नहीं गए हैं आप?
1: नहीं।
0: चलिए सर, अब आप रिटायर हो गए हैं तो आप, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप कहीं ना कहीं ऐसे घूमें और थोड़ा सा।
1: मिलेगा तो हमारा सोच है उड़ीसा जाऊँगा, जगन्नाथ पुरी यूपी जाऊँगा, उधर धर्म क्षेत्र है ना, राम मंदिर।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
1: देखने का खूब मन है।
0: आइए साहब, जब भी आप आएँ तो ज़रूर एफएम मुरादाबाद को ज़रूर याद रखें। और आज बताइए कौन सी फरमाइश सुनना चाहेंगे आप?
1: हम तो आज बरसात मूवी का गाना है,
0: हाँ जी,
1: ये दिल पागल दीवाना है ये प्यार करेगा।
0: क्या बात है साहब, क्या बात है, ज़रूर ये गाना अभी पेश करते हैं आपके लिए। उस करते हैं।
1: मित्रों को नाम ले सकता हूँ?
0: अरे सर, ज़रूर ज़रूर लीजिए सर।
1: मेरा रेडियो मित्र है असम का, भाईकुन मुंडा है, अमोल बसुमतारी, विमल बसुमतारी, और है उधर का है मध्य प्रदेश का भगवान सिंह वर्मा, अभी फोन किया था, प्रेम सिंह सिसोदिया, पूरन वर्मा, रमेश प्रजापति, और सभी इस तरह को ये गाना डेडिकेट करा, और आपको भी
0: धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपको।
0: तो ये थे हमसे आसाम से जुड़े हुए और इनकी फरमाइश करते हैं प्ले। और दिल पागल दीवाना है बरसात मूवी से, आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए

0: क्या बात है साहब, छोटी उंगली पे नचाएगी तुझे हॉट टाउन गर्ल। मूवी का नाम है बचना है सीनो और म्यूजिक दिया है विशाल एंड शेखर जी ने। तो इतना बेहतरीन गाना सुन के आपको आया होगा मज़ा। और सुनते हैं नए लिसनर से बात करते हैं कुछ नई बातें। हेलो हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाइश,
0: सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: संबल से छोटे अंसारी का नाम है, छोटे अंसारी संबल से। बहुत
0: छोटे अंसारी साहब कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हैं, और अच्छा हो गया मेरी कॉल लग गई FM मुरादाबाद में।
0: चलिए साहब, हमें भी अच्छा लगा आपकी कॉल लगी है। तो आप क्या फरमाइश लेके आए हैं, कौन सी फरमाइश सुनेंगे आप?
1: जन्माष्टमी बहुत बहुत मुबारक मुरादाबाद में, और सभी सुनने वालों को दुआ सलाम जी छोटे अंसारी का।
0: धन्यवाद साहब, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो आने वाले फेस्टिवल, सभी आपको सभी मुबारक हो।
1: और जी हम मोहम्मद रफी की आवाज में गीत सुनेंगे।
0: ठीक है साहब, तो मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में एक गाना प्रस्तुत करते हैं आपके लिए।
1: हाँ, मोहम्मद रफी साहब ने बोला था जी, वो प्रधानमंत्री थे अपने जमाने के, उन्हें
0: हाँ
1: भी उन प्रधानमंत्री जी ने बोला कुछ कहना चाहते हैं आप, तो
0: हाँ हाँ
1: रफी साहब ने कहा मेरा नाम पूरा लेना चाहिए मोहम्मद रफी।
0: अच्छा,
1: हाँ, कि भाई ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में है, तो
0: क्या बात है।
1: हाँ उन्होंने अपनी ये बात रखी थी। और जितने भी प्रोग्राम सुनना है ना, अब जैसे बस में बैठ कर सफर कर रहा है, ठीक है जी, तो
0: हाँ जी।
1: बस चलती बस में थूके नहीं तो वो पिछली वाली सवारियों पे चला जाता है, जब बस रुक जाए जब थूकना।
0: हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया मैसेज दिया। चाहे बस हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कोई मोटरसाइकिल हो, मगर जब
1: ट्रेन हो
0: भी,
1: क्या है, ट्रेन हो
0: हाँ,
1: क्या है,
0: कोई किसी भी चलती गाड़ी से आप कभी भी कोशिश ना करें कि खिड़की मतलब खिड़की खोली और आपने अपना थूक दिया। ना उसे ऐसे थूक ना थूकें, क्योंकि पीछे जो बैठे हुए होते हैं सवारी, उन्हें भी असमंजस होता है। जो सड़क पे चल रही होती है उन्हें भी असमंजस होता है।
1: और दूसरी बात यह है प्याज को काट ले में, ठीक है, थोड़ा सा नमक छिड़क ले में, अब उसे सादे पानी से धो ले में, और नींबू हरी मिर्च और प्याज का प्रयोग करें तो सलाद जो है ना, ये खाने के साथ में सलाद भी खाएं, और जी कुछ लोग बिरयानी से भी खा सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने, बिल्कुल सही बात।
1: हाँ, तो ये बहुत लाभदायक है ये बरसात में, कचूमर भी कहते हैं, सलाद भी कहते हैं।
0: चलिए अंसारी साहब, ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। और इसी के साथ मोहम्मद रफ़ी जी का भी एक बहुत बढ़िया सा गाना आपके लिए पेश करते हैं।
1: हाँ, बाबू अंसारी हैं छप्पर वाली मस्जिद से, इरशाद अहमद भाई हैं मुरादाबाद से ही, और संभल से छोटे अंसारी हैं, और आपको भी डेडिकेट करना चाहते हैं।
0: धन्यवाद साहब, छोटे अंसारी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना अच्छा गाना डेडिकेट करा।
1: ठीक है भाई साहब, आदाब जी, आदाब,
0: आदाब
1: अपना
0: जी,
1: ख्याल रखिए भाई जान।
0: आप भी अंसारी साहब।
1: ओके,
0: ओके, श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं अंसारी जी। अंसारी जी ने संभल से एक रिक्वेस्ट भेजी, फरमाइश भेजी है। आप भी अपनी फरमाइश भेजना चाहते हैं तो 9837896896 पर कॉल करें और हमें अपनी फरमाइश भेज सकते हैं।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
3: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
5: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

प्यार आ गया रे, प्यार आ गया, हमें भी बहुत प्यार आया है आज। आप इतनी सारी कॉलें आ रही हैं, फरमाइश प्ले हो रही है, तो प्यार तो सर आना लाजमी।

0: तो आपके साथ साथ और कौन सुन रहा है इस समय एफएम?
1: इस समय हमें आगे घर परिवार के सभी लोग सुनते हैं एफएम मुरादाबाद। ये सुबह से रेडियो चालू कर देते हैं
0: सुबह
1: तक रहते हैं।
0: सुबह से ही रेडियो चालू हो जाता है।
1: जी,
0: और क्या आपने मुरादाबाद इस एफएम की ऐप भी आपने डाउनलोड कर रखी है?
1: जी हाँ, कभी रेडियो से जो उपलब्ध नहीं होता है तो मोबाइल द्वारा भी सुन लेते हैं।
0: चलिए, तो आप हमारे सारे श्रोताओं को बताइए आपने कैसे डाउनलोड करी थी ऐप।
1: प्ले स्टोर से डाउनलोड करी थी, एफएम मुरादाबाद के नाम से ही है।
0: आपने क्या लिखा था पूरा? एफएम मुरादाबाद 89.6।
1: जी, खाली एफएम मुरादाबाद डाल दो तो वो पूरा डिटेल आ जाती है निकल कर।
0: चलिए साहब, तो बहुत ही बढ़िया। तो अभी कौन सी फरमाइश है आपकी, बताइएगा।
1: जी, इस समय तो ये पवित्र महीना चल रहा है सावन का।
0: हाँ जी,
1: हाँ जी, तो ये भोले चल रहे हैं तो भोले का गाना सुनना चाहेंगे, याराना मूवी का।
0: ज़रूर ज़रूर ज़रूर, किशोर कुमार जी की आवाज़ का है होगा ना,
1: बिल्कुल बिल्कुल सर,
0: तो ज़रूर आपकी ये फरमाइश पूरी करते हैं और भोले जी का ये गाना प्ले करते हैं। धन्यवाद।
1: परिवार वालों के नाम है सर।
0: क्यों नहीं सर, क्यों नहीं सर, ये तो आप पहले बोलिए।
1: जी, हमारे पापा हैं चंद्रपाल सिंह, हमारी माता है सरोज देवी, हमारी वाइफ है राखी, और दो बेटे हैं अनुज प्रशांत और कुमार पाल रवि। ये सभी लोग ही सुनना चाहेंगे।
0: धन्यवाद धन्यवाद, आपने सभी का नाम लिया। और बेटियाँ कौन सी स्कूल में पढ़ रही हैं, मतलब कौन सी
1: जी
0: क्लास में है?
1: जी ये 7th क्लास में है और 6th में है।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। चलिए सर, आप का ये गाना जो आपने फरमाइश करी है इसे ज़रूर प्ले करते हैं।
1: बिल्कुल। और सर, एफएम मुरादाबाद में सभी लोग किस प्रकार हैं, ठीक ठाक?
0: सब सब बढ़िया हैं, सभी अच्छे हैं।
1: हाँ, सभी बहुत ही मेहनत करते हैं सर। आप लोग जो है अच्छी मेहनत करते हैं, आपके कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लगते हैं सर।
0: हमारी मेहनत तभी सफल हो जाती है जब आप हमें कॉल करते हैं और अपनी फरमाइश हमें बताते हैं और हम उसे प्ले करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा आनंद लगता
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। सुबह के जो भक्ति में कार्यक्रम है ये बहुत ही अच्छा चल रहा है सर। इस समय बहुत ही आनंदमय है कार्यक्रम।
0: जी। आनंद जी के साथ जो भी कार्यक्रम होता है वो आनंदमय ही होता है।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल।
0: धन्यवाद सर।
1: धन्यवाद सर आपका भी कॉल लेने के लिए।
0: तो श्रोता, हमारे साथ जुड़े थे तीरथ जी, जो इस समय गांव में खेती बाड़ी करते हैं और पूरे परिवार के साथ एफएम सुनते हैं और पूरा आनंद ले रहे हैं। कह रहे हैं बस बारिश थोड़ी आनी बाकी है, जैसी बारिश आएगी तो उसका भी आनंद लेंगे। तो ज़रूर, और साथ के साथ आप अपना सावन के महीने में ये जो आपने गाने की फरमाइश करी है भोले और भोले याराना मूवी से, ज़रूर इसे प्ले करते हैं। आपकी भी कोई है फरमाइश तो 9837896896 बिल्कुल तैयार बैठा है आपकी फरमाइश लेने।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। ये गाना सुन रहे थे आप सुमित महेश्वरी जी और उनके दोस्तों की फरमाइश से और जय जय शिव शंकर। चलिए बात करते हैं अपने नए लिसनर से और पूछते हैं उनकी क्या फरमाइश है। हेलो फरमाइश, कैसे हैं आप? हेलो फरमाइश।
1: हेलो, हेलो सर जी, क्या हाल है?
0: सर बढ़िया सर, आप कैसे हैं? क्या नाम है आपका और कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए।
1: सर मेरा नाम आसफ है और मैं इटली से बात कर रहा हूँ। मैं आपका एफएम इधर सुनता हूँ, वो सुबह फरमाइश और ये हेलो फरमाइश भी हर रोज सुनता हूँ। और मेरा एग्रीकल्चर का काम है यहाँ, तो इधर रेडियो सुनता हूँ तो टाइम भी पास हो जाता है।
0: तो इटली में इस समय आप किस चीज की
1: तो कॉल लागी की आपसे।
0: चलिए साहब, आप इटली में किस चीज की एग्रीकल्चर फार्मिंग करते हैं?
1: सर ये संतरे के बगात हैं, संतरे के।
0: संतरे के, सही है साहब। तो जब आप जब भी आप आए इटली से तो संतरे जरूर लेकर आए। तो कौन सी
1: चक्कर लगाएं कभी हमारे पास इधर, आपको विजिट कराएं इधर का।
0: जरूर साहब, जरूर जरूर। और कौन सी फरमाइश है जो आप सुनना चाहते हैं इस समय?
1: सर आज प्ले करते सावन के झूलों ने मुझे बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया, ये प्ले करते।
0: निगाहें मूवी का।
1: हाँ जी, हाँ जी, निगाहें निगाहें।
0: ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े इतनी दूर से जुड़े और बहुत अच्छा लगा आपने हमें कॉल किया।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।
0: किसी का नाम लेना चाहेंगे, किसी को मैसेज देना चाहेंगे आप?
1: हाँ मेरे दोस्त हैं वो भी इधर साथ में हैं, उनका नाम ले लेता हूँ।
0: हाँ हाँ बताइए।
1: अख्तर भाई हैं, सजाद भाई हैं और फैसल है, नाज है, फजान है, ये साथ में ही है।
0: चलिए साहब, सभी को सावन की बधाई दीजिएगा और जरूर आपसे अच्छा लगा सर बात करके।
1: ओके ओके, बहुत शुक्रिया।
0: तो चलिए सर, फरमाइश पूरी करते हैं। आपकी भी अगर कोई फरमाइश है तो 9837896896 पे आप कॉल करें और अपनी फरमाइश प्ले करें।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर।

0: जहां विकास सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी में दिखाई देता है।
1: बिल्कुल, और आज की हमारी यात्रा पहुंची है भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, एक ऐसा जिला जहां विकास की रफ्तार गांव से लेकर शहरों तक नई तस्वीर गढ़ रही है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के जन कल्याण योजनाएं समाज के हर वर्ग तक पहुंच रही हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर स्वरोजगार, बुनियादी सुविधाओं और आर्थिक आत्मनिर्भरता तक।
1: और जब योजनाओं का लाभ सीधे लोगों की जिंदगी बदलता है तो उसकी कहानी सबसे ज्यादा असरदार होती है। चलिए सुनते हैं कुशीनगर की श्वेता जायसवाल की कहानी।
2: जी सर नमस्कार, मैं ग्राम पंचायत मिसीपट्टी से हूँ। मेरा नाम श्वेता जायसवाल है और मैं काजल स्वयं सहायता समूह में काम भी करती हूँ और मुझे सरकार से बहुत सारी उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं। जैसे मेरे नाम से राशन कार्ड भी है। पहले राशन कार्ड हस्बैंड के नाम से होते थे, अब वो हमारे नाम से हैं। और इस समय हमारे नाम से शौचालय है, हमारे नाम से हमारे हस्बैंड जाने जा रहे हैं। पहले हम उनके नाम से जाने जाते हैं, वो सरकार की वजह से हम अपने नाम से वो हमारे नाम से वो जाने जाते हैं। और मैं गौशाला भी खोली हूँ, मेरे पास 6-7 गाय हैं। मैं उस गाय से अपना परिवार चलाती हूँ। दूध का उपदान होता है, उत्पादन करके और मैं डेयरी फार्म में उसको उपलब्ध कराती हूँ और उससे जो पैसा मिलता है हमारे घर का खर्चा और सब काम चलता है। इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: वाकई ये सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का कदम है।
1: और ऐसी एक प्रेरक कहानी है अनुपमा तिवारी की। बीसी सखी और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना जैसी योजनाओं ने उनके सपनों को पंख दिए और उन्होंने अपना पार्लर और कॉस्मेटिक की दुकान खोलने का सपना साकार किया।
3: मेरा नाम पहले तो सभी लोगों को रेडियो प्रज्ञा की तरफ से मौका दिया गया बोलने के लिए, उसके लिए मैं नमस्कार मतलब प्रणाम करती हूँ उन लोगों को और बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ कि मुझे ऐसा मौका दिया गया बोलने के लिए। मेरा नाम अनुपमा तिवारी है, मैं ग्राम पंचायत सिद्धवा मिश्रौली से हूँ। मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ के मैं जो भी चीज़ें आज यहाँ तक भी पहुँची हूँ, मुझे बी डी ओ साहब के पास बैठने तक का मौका मिला है तो मैं स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के बाद ही मिला है। और स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के बाद से मैं पहले तो मुझे परिचय की बात बताऊं तो मुझे कोई जानता भी नहीं था और धीरे धीरे मुझे स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के बाद मुझे लोग जानना भी शुरू किए। पहले तो मुझे लोग स्वयं सहायता समूह में एक सदस्य के नाम से जानते थे, फिर मैंने धीरे धीरे अपने नाम को बढ़ाया तो बीसी सखी का नाम मेरा हुआ। फिर बीसी सखी से मैंने धीरे धीरे समूहों से पैसे जो भी लोन मुझे मिलते थे, जैसे स्टार्टअप हुआ, रिवाल्विक हुआ, सीआईएफ हुआ, सीसीएल हुआ, सीसीएल में मुझे बहुत लंबे अमाउंट तक के प्रोसेस मिलते हैं तो मैंने उस पैसे को उठा के अपने समूह के सदस्यों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की है और अपने खुद को भी सीएम युवा उद्यमी के थ्रू अपने खुद को भी काम को बढ़ाने की कोशिश की, जिसमें मैंने कॉस्मेटिक और पार्लर का बिजनेस शुरू किया है, जिसमें मैं अभी तक बहुत अच्छे लेवल पे जा रही हूँ और बहुत अच्छे लेवल तक पहुँच भी चुकी हूँ। बाकी आप लोगों की अगर इच्छा रहेगी तो मैं बहुत आगे जाऊंगी भी। बाकी मेरे बेटे साहब के तरफ से मुझे बहुत उनके आशीर्वाद चाहिए कि मैं जब भी आऊँ मुझे एक नई सीख मिले और मुझे नए ज्ञान मिले जो कि मैं जाने बाद दूसरों को भी बताऊँ खुद भी करूँ। थैंक यू।
0: कहते हैं विकास वही जो अवसर पैदा करे और कुशीनगर की ये कहानियाँ बताती हैं कि अवसर मिले तो हुनर अपने दम पर नई मंजिल बना सकता है।
1: और कुशीनगर में विकास की इस तस्वीर को और करीब से समझने के लिए अब सुनते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की बात।
4: रेडियो प्रज्ञा के सभी श्रोताओं को दर्शकों को आरके भट्ट का नमस्कार। आज हम खंड विकास अधिकारी कार्यालय पडरौना में उपस्थित हैं और हमारे सामने हैं श्री के राय जी, खंड विकास अधिकारी पडरौना, और कार्यक्रम है विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी। और इस कार्यक्रम में सर रेडियो प्रज्ञा की तरफ से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार।
5: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे वहाँ आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
4: सर शासन की प्राथमिकताओं में है कि ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय क्षेत्र हो, हालांकि हम क्षेत्र पंचायत कार्यालय पे आए हैं, जो अंत्योदय का उत्थान हो ये उसकी प्रायोरिटी है। तो इस समय आपके विभाग के द्वारा ऐसी कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं चल रही हैं जो अंत्योदय के उत्थान के लिए चल रही है?
5: देखिए हमारे वहाँ मुख्य रूप से वर्तमान में मुख्यमंत्री आवास योजना से हम लोग ग्रामीण परिवारों को जिनके पास कच्चे मकान है, मैंने पक्के मकान नहीं है, उनको हम लोग आवास मुहैया करा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। उसमें अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, विधवा महिलाएं, दिव्यांग परिवार को मैं आवास मुहैया करा रहा हूँ। उसमें 1,20,000 रुपया उनको नगद दिया जाता है और वो अपना घर बनवा लेते हैं। और दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो भारत सरकार की योजना है, उसमें भी हम 1,20,000 रुपया नकद देते हैं, बाकी मजदूरी का भुगतान करते हैं। स्वच्छ शौचालय का निर्माण कराते हैं, सहजन का पेड़ भी हम लोग उपलब्ध कराते हैं, उनको ये बिजली का कनेक्शन दिलवाते हैं, ये आपका गैस सिलेंडर दिलवाते हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, तमाम सुविधाएं हैं जो हम लोग देते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में जो अति गरीब परिवार हैं वो इसका लाभ उठाते हैं और उनको लाभान्वित होते हैं। फिर हमारे पास एक योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
4: जी,
5: जिसमें समूह बना करके, महिलाओं का एक समूह बना करके
4: जी,
5: 10 महिलाओं से लेकर के 20-20 महिलाओं तक का परिवार की महिलाओं का समूह बना करके और समूह का खाता बैंक में खुलवा करके, ये RFTD भेज करके, स्टार्टअप भेज करके, CIF धनराशि दे करके हम लोग ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के रूप में, मतलब वो अपने कमाने के लिए अपने परिवार का मतलब भरण पोषण कर सके, प्रेरित करके हैं, लाभान्वित कराते हैं।
4: सर, आपकी इन सारी बातों का कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि सरकार या शासन की मंशा ये है कि एक सामान्य व्यक्ति स्वस्थ और अच्छा जीवन कैसे जिए, चाहे उसके लिए आवास से लेकर के उसके स्वास्थ्य तक और उसके जो मूलभूत उसके अधिकार हैं वो सब उसे प्राप्त हो, ये सारी योजनाएं हैं। लेकिन इन योजनाओं को क्रियान्वित कराने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि योजनाएं धरातल पर ठीक ढंग से पहुंचे?
5: नहीं, देखिए, अब तो योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में जा रहा है, कोई बिचौलियापन नहीं है, कोई दलाली नहीं है, भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फंड सीधे लाभार्थी के खाते में जा रही है। हमारे ग्राम पंचायत स्तर पर हमारे ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, ये लोग फील्ड में जाते हैं, सर्वे करते हैं, ग्राम सभा की खुली बैठक करते हैं, लाभार्थियों का चयन करते हैं, चयन करने के बाद सूची को हम लोग जिला मुख्यालय पर हम लोग भेजते हैं, वहां से प्रबल हो जाता है और वहां से इन लोगों को लाभ मिलता है। जैसे वर्तमान में समझ लीजिए कि इस समय वृक्षारोपण का कार्य चल रहा है
4: जी,
5: ये BBG राम जी विकसित भारत गारंटी रोजगार ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण है
4: जी,
5: इसमें पहले मजदूरी 200 मनरेगा में मजदूरी 252 रुपया था
4: जी,
5: अब जो है 300 रुपया मजदूरी कर दी गई है
4: जी,
5: लाभार्थी खुश है, मजदूर खुश है, काम कर रहे हैं। पहले इस योजना में, मनरेगा योजना में हम 100 दिन का रोजगार देते थे एक परिवार को एक वर्ष में
4: जी,
5: अब हम 125 दिन दे रहे हैं, 25 दिन और बढ़ गया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी मजदूरा गरीब परिवार के लोग यदि काम करना चाह रहे हैं तो उनको सारी सुविधाएं मिल रही है, यहाँ तक कि उनके परिवार के बच्चों की शादी के लिए भी हम लोग मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अभी कराए हैं पड़ौना में
4: जी,
5: उसमें भी लोग लाभान्वित हुए हैं
4: जी।
5: ये पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान में भी 20,000 रुपए का सरकार अनुदान दे रही है, उसका भी लाभ लोग ले रहे हैं। तमाम योजनाएं हैं, जिस ग्रामीण परिवार में शौचालय नहीं है उनका भी हम सर्वे करवाते हैं, उनसे ऑनलाइन हम रिपोर्टिंग करवाते हैं और 12,000 रुपया शौचालय निर्माण के लिए भी दे रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग भी हमारे सचिव करते हैं
4: जी,
5: रेडियो पंचायत करते हैं।
4: सर, खंड विकास अधिकारी पड़ौना के रूप में, विकासखंड पड़ौना के नागरिकों के लिए आपका कोई विशेष संदेश हो, कोई ऐसी बात हो जो आप कहना चाहें कि वो शासन के योजनाओं का लाभ कैसे उठा सकते हैं, और यदि किसी प्रकार की उनको दिक्कत आ रही है तो आपसे या आपके अधीनस्थ लोगों से कैसे संपर्क स्थापित कर योजनाओं का लाभ
5: उठा सकते हैं? हम लोग 10 बजे से 12 बजे तक निश्चित रूप से अपने कार्यालय में बैठते हैं
4: जी,
5: उस बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी जनता मेरे सामने आती है तो उनकी समस्याओं का समाधान मैं करता हूँ, चाहे वह पंचायती राज से संबंधित हो, चाहे वह हमारे BBG राम जी मनरेगा से संबंधित हो, चाहे हमारा ये कृषि से संबंधित हो। अभी कई किसान लोग आए थे, सर हमको किसान सम्मान निधि नहीं मिल रहा है, तो हमने कहा आप ऑनलाइन करिए, मैं दिलवाता हूँ
4: जी।
5: कुछ लोग कहते हैं कि हमको पेंशन नहीं मिला है, हमने कहा था आप अपना सिर्फ आधार कार्ड की फोटो कॉपी दीजिए, मैं देखता हूँ क्यों नहीं मिलता है
4: जी।
5: तो पता चलता है कि उनका आधार जो है लिंक नहीं है या किसी ने कुछ त्रुटि हो जाती है, समस्या का समाधान होता है
4: जी।
5: BDO का कर्तव्य है कि वह 10 से 12 बजे हमारा, देखिए 10 से 12 तो खराफी ड्यूटी है जन समस्या सुनने के लिए, इसके बावजूद भी हम लोग फील्ड में जाते हैं
4: जी,
5: और जाकर के जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं।
4: श्री KK राय साहब, खंड विकास अधिकारी पड़ौना, आपने रेडियो प्रज्ञा के माध्यम से हमारे श्रोताओं के लिए इतनी अच्छी जानकारी दी और शासन प्रशासन की जो महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित हो रही है उसके विषय में लोग कैसे लाभान्वित हो सकते हैं ये भी बताया। रेडियो प्रज्ञा की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
5: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे अवसर दिया। तो देखिए यहाँ हमारे समूह की दीदियाँ बैठी हुई हैं, आप चाहें तो इनसे भी कुछ बात कर सकते हैं, ये लोग भी आपको बताएंगे। और निश्चित रूप से मेरे कार्यकाल में मैं जहाँ भी रहता हूँ
4: जी
5: सारी योजनाओं को खुद देखता हूँ और बढ़िया से क्रियान्वयन करता है
4: जी।
5: और आप बता दें कि हमारे सामने अगर किसी की समस्या आ गई तो 100% उसका निराकरण करता हूँ। अगर वो समस्या जिले स्तर तक है तो वहाँ भी मैं पहुँचता हूँ।
4: एक बार पुनः आपका ढेर सारा
5: बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
0: तो ये थी कुशीनगर की विकास यात्रा, जहां योजनाएं कागज से लेकर जमीन तक पहुंच रही हैं और लोगों के सपनों को नई दिशा दे रही है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लगातार विकास के नए आयाम गढ़ रहा है और कुशीनगर इस बदलते उत्तर प्रदेश की सबसे खूबसूरत तस्वीर है।
0: इसी उम्मीद, इसी विश्वास और इसी विकास की रफ्तार के साथ मिलते हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश के अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए नए उत्तर प्रदेश की नई कहानी।
6: नई

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 20% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार। आपने राम लखन मूवी से गाना एंजॉय किया है, तेरा नाम लिया तुझे याद किया। फाइनली आरजे ने आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई। श्रोता, और समय की बात करूँ तो 5 बजकर यानी कि 26 मिनट हो चुके हैं इवनिंग मस्ती शो में, और बताया जा रहा है भैया यानी कि हल्की हल्की फुहारे वाली बारिश भी हो रही है। तो देखिए, शाम का आनंद लीजिए क्योंकि इस टाइम मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है। और बात करने वाले हैं यानी कि आज की स्पेशल डे और देश दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आपने क्या करना है जी, बस आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहना है। ऑल ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। तो एक बहुत ही शानदार गाने के बाद लौट कर आते हैं और फिर बात करेंगे श्रोताओं।
1: गड्डी ले।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: मेरा गांव मेरी धरोहर है,
3: मेरा गांव मेरी धरोहर, पंच दिवसीय अभियान से जुड़िए, यही तो है हमारी पहचान। पंच दिवसीय अभियान के माध्यम से हम जोड़ेंगे अपनी भूली बिसरी कविताओं, लोक गीतों, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से। गांव की मिट्टी की खुशबू, हमारी बोली, हमारे लोकगीत और हमारी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं, यही तो है हमारी असली पहचान। तो आइए अपनी सांस्कृतिक धरोहर को याद करें, उसे सजोएं और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। मेरा गांव मेरी धरोहर, अपनी संस्कृति अपनी पहचान। तो इस अभियान में आप भी हिस्सा लीजिए, हमें अपनी फोटो वीडियो जरूर सेंड कीजिए। मेरा गाँव मेरी धरोहर।

0: खुशियों से।
1: आज ही मिलें अपनी पंचायत से और जुड़ें इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: हेलो, मेरी गांव मेरी पहचान। आज जुरीना के साथ अब कनेक्ट हो शोता हूँ और समय की बात करूँ तो 5:34 हो चुके हैं इवनिंग मस्ती शो में और आप ऑन द वे हैं। तो देखिए इस टाइम ना ट्रैफिक आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, तो आप कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, नंबर है 9837896896 पर, क्योंकि ये नंबर आपको याद भी होता है और साथ ही साथ आपने देखिए हेलमेट और सीट बेल्ट ज़रूर लगाना है क्योंकि इसमें आपकी सेफ्टी है और एक जिम्मेदारी समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए, लेकिन हेलमेट और सीट बेल्ट हमें ज़रूर लगाना चाहिए। जब भी आप घर से चाहे 2 कदम पर जा रहे हैं, चाहे आधे घंटे के लिए जा रहे हैं, चाहे 1 कदम पर जा रहे हैं, लेकिन हेलमेट सीट बेल्ट ज़रूर लगाना है। कहते हैं ना, आपको सेकंड का नहीं पता होता है कि क्या हो जाए क्या नहीं हो जाएगा। तो डेफिनेटली श्रोता आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कहीं ट्रैफिक है तो, ताकि उस रूट से और भी आने वाले हैं वो भी थोड़ा बच सके ट्रैफिक जाम से और आराम से अपने घर पहुंच सके, क्योंकि इस टाइम का जो वेदर है, इस टाइम का जो मौसम है वो थोड़ा और काले काले बादलों के साथ और हल्की हल्की फुहारों के साथ बारिश शुरू हो गई है। तो ऐसा होता है कि भाई आराम से घर पहुँच जाए। और सावन की तीसरे सोमवार और नाग पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए एक हरियाणवी ट्रैक सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते श्रोताओं और भी करेंगे ढेर सारी बातें, यानी कि 15 अगस्त के मौके पर यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 5 ऐसे नियम कौन से लागू करे हैं जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल कनेक्ट रहिए ऑनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 से, रेडियो बजाते रहे गुनगुनाते रहे।
3: और अपने म्यूजिक

हेलो जी, डा हो गया वे की करिए वे की करिए। कुछ नहीं करना जी, बस आपने ट्विनिंग करके रखना है अपने शहर का। सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ श्रोताओं, तो 5:43 हो चुके हैं और अब हम बात करने वाले हैं, यानी कि हमारे देश के पीएम मोदी यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने 5 बड़े नियम कौन कौन से लागू किए हैं बच्चों के लिए, हर किसी के लिए है। तो पहला आता है यानी कि एआई की ट्रेनिंग, यानी कि नरेंद्र मोदी जी का कहना है 1 साल में कम से कम 1 करोड़ युवाओं को

0: और नीट की एग्ज़ाम की परीक्षाएं की जो तैयारी करने चाहते हैं उनके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था करने का ऐलान किया जाएगा और साथ ही साथ ऑनलाइन कोचिंग भी दी जाएगी ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और तीसरी बात करूं तो यानी कि देश में तीन यानी कि सेमीन कमांडर यानी कि यंत्रों में उत्पादन शुरू हो चुका है। आने वाले 7 से 8 वर्षों में 5 से लेकर 8 और संयंत्र शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। शक्ति की सप्तधारा का विजन यानी कि ये सप्तधारा क्या है, 7 इसमें नियम है यानी कि उत्पादन है, कृषि और खाद्य उत्पादन, तकनीकी और नवचार, गति शक्ति और रक्षा शक्ति, हरित और नीली व्यवस्थाएं और सॉफ्ट पावर, ये सब इनमें इंक्लूड है श्रोताओं, जिन्होंने यानी कि लागू कर दिया है। साथ ही साथ और भी ढेर सारी बातें करेंगे यानी कि आज के डेज के बारे में बात करने वाले, आज की तारीख यानी कि 17 अगस्त। लेकिन उससे पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है, उसके बाद कनेक्ट होंगे श्रोताओं। फिलहाल आप सभी से यही कहेंगे कि रेडियो की सुई बिल्कुल नहीं घुमानी है, आज जरीना के साथ कनेक्ट रहना है।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM. DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।

क्या बात है जी, वखरा सुवैगनी, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया श्रोताओं। और आगे शो में बढ़ते हैं, और गर्ज वाली इवनिंग है अर्जेंटीना के साथ। आप कनेक्टेड समय की बात करूँ तो 5:54 हो चुके हैं, और आज का स्पेशल डे यानी कि बहुत ही शानदार वाला है। आज है नेशनल थ्रिफ्ट शॉप डे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये क्या होता है। तो ऐसी दुकानों पर हमें पहले इस्तेमाल किए जा चुके, लेकिन अच्छी हालात ये है कि जब हम शॉप पर जाते हैं, यानी कि कपड़े, जूते, फर्नीचर, कई दूसरी चीज़ों यानी कि कम कीमतों पर मिल जाती है, यानी कि जो यूज़ वाली चीज़ें होती हैं। और पहले के टाइम में क्या होता था, देखिए कुछ भी यानी कि थैला वगैरह ही सोच लीजिए, पहले घर खुद बना लिया करते थे, लेकिन अब कुछ भी हो हम हर चीज़ मार्केट से खरीदने जाते हैं, और फिर जो पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो कहते हैं कि ये जो हमने बिना मतलब में खरीद लिया, इसको नहीं खरीदना चाहिए था। तो इसी को यानी कि नेशनल थ्रिफ्ट शॉप डे कहते हैं, यानी कि बचत करनी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो घर पर ही हम बना लेते हैं, मार्केट से हमें खरीदने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो इससे क्या होगा कि आपके पैसे भी बचेंगे, आपका समय भी बचेगा। मार्केट जाएंगे तो समय तो देखिए लगता ही है, आप चले जाए तो कम से कम 2-3 घंटे तो भैया कहीं नहीं जाते, समय ऐसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। मार्केट में घूमते घूमते ही पता नहीं चलता है, आप एक शॉप पर नहीं 3-4 शॉप पर जाएंगे जहाँ पर समझ ही नहीं आता है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। और कभी कभी हम ऐसी चीज़ें भी ले लेते हैं जो सोचते हैं कि नहीं यार अभी नहीं लेना चाहिए था, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए यानी कि ये समय भी बचाता है, और साथ ही साथ आप अपने घरों से कुछ ऐसी चीज़ें भी बना सकते हैं जिसके लिए आपको मार्केट जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। पहले के अगर टाइम की बात करूँ तो पहले घर पर ही यानी कि स्वेटर बना लिया करते थे ऊन से, लेकिन अब कोई भी नहीं बनाता क्योंकि किसी के पास भी टाइम नहीं है। हम सारा टाइम तो काम में और फ़ोन में, सबसे ज़्यादा तो फ़ोन में बिजी रहते हैं। थोड़ा सा काम किया फ़ोन उठा लिया, थोड़ा काम किया फोन देख लेते हैं, अच्छा किसी का मैसेज तो नहीं है, अच्छा एक रील देख लेते हैं, अच्छा एक स्टोरी लगा लेते हैं, अच्छा कॉल कर लेते हैं, इसमें ही सारा दिन हमारा व्यस्त हो जाता है। तो कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पर आपका समय बच सकता है, और फ़ोन ने तो भाई ज़िंदगी भाई सच में ही ख़राब कर रखी है। चलिए फिलहाल एक गाना सुनते हैं और उसके बाद कनेक्ट होंगे श्रोताओं। बने रहिए आर्जेरीना के साथ, FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। फिलहाल कुछ मैसेज भी आए उनको भी शामिल कर लेते हैं। ये विक्की सागर जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से, और इनका कहना है कि हमारे तरफ बारिश हो रही है, आपकी तरफ बारिश हो रही है? अभी तो सर मैं बाहर नहीं गई हूँ तो मुझे नहीं पता है, अगर आप हैं तो बिल्कुल मैसेज करके बता सकते हैं। नंबर है 9837896896। लेकिन मुरादाबाद के कई जगहों पर यानी कि हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, तो एंजॉय करिए क्योंकि वेदर भी ठंडा ही है। और ये गाना सुनते हैं।

0: Yo, Carinogila.
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
2: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: आतंकवाद के प्रति भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति की सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के भी निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा गया है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि वे पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वे विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पुणे और उसके आसपास लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इससे शहर को भीड़भाड़ और प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकेगा। लावले स्थित सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आयोजित बुनियादी ढांचा विकास विकसित भारत की राह विषय पर श्री गडकरी ने कहा कि पुणे शिरूर हडपसर यावत तलेगांव चाकन शिकरापुर और शिरूर संभाजीनगर सहित कई प्रमुख परियोजनाएं चल रही हैं। यूपीआई से संचालित पोस ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सेवा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोगों को कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजी जा सकती है। ईरान ने कहा है कि उसने ओमान के साथ होर्मुस जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की योजना पर सहमति बना ली है। दोनों देश अब इससे संबंधित अंतिम संयुक्त बयान की तैयारी कर रहे हैं। होर्मुस जलडमरू मध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह फिर से खोलना अमेरिका की प्रमुख मांग रही है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो गई। पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7, 21-11 से हराकर दूसरे दौर में पहुंच गई है। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं। दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है। समय की बात करूं तो 6:09 हो चुके हैं, और जहां ये कहा जा रहा था कि 16 अगस्त तक ही आपने अगर घरेलू गैस का यानी कि EKYC नहीं कराया तो फिर आगे आपको यानी कि सिलेंडर बुक करते हैं उसमें दिक्कत आएगी, साथ ही साथ जो आपको सब्सिडी मिलती है उसमें भी प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन जो डेट यानी कि 16 अगस्त तक था वो डेट यानी कि अब बढ़ा दिया गया है, यानी कि 23 अगस्त कर दिया गया है। देखिए, ये सिलेंडर के बिना तो भाई किसी का गुजारा नहीं है, सच बताओ, क्योंकि ईंधन चूल्हे पर तो कोई खाना बनाता नहीं है, बनाना भी नहीं चाहता कोई, क्योंकि धुआं धुआं हो जाता है ना, इसलिए। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए यानी कि इसका डेट है वो चेंज कर दिया गया, यानी कि डेट आगे बढ़ा दिया गया है कि अभी आपके पास समय है, EKYC आराम से आप करवा सकते हैं। 23 तारीख तक आपके पास समय है श्रोताओं, तो करा लीजिए जल्दी भैया, इंतजार नहीं करने का। चलिए, मिलते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए आर्जेरीना के साथ ऑनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

अचक है तू आय हाय। हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओ। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 6:21 हो चुके हैं। और देखिए, अपने आप पर केयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए कभी धूप, कभी बारिश और कभी उमस वाली गर्मी। इस गर्मी में ना टैनिंग जो चिपचिपी वाली हो जाती है ना भैया, यानी कि बहुत ही अजीब सा फेस हो जाता है।

अपने आप को चकाचक तो रखना बनता ही है जी, फेस केयर तो करना बनता ही है आपको, अदरवाइज फेस पर बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाएंगे। साथ ही साथ बात करेंगे, देखिए पहले ना किसी भी चीज़ को यानी कि आप सर्च करते थे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, उसके बाद यानी कि 2G लॉन्च होया, फिर 4G, फिर 5G, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में 6G लॉन्च होने वाला है, उसकी तैयारियां अब बहुत ही जल्द शुरू कर दी जाएगी। लेकिन सोचिए हम इंसानों के लिए तो सही हो जाएगा, जो भी आप ट्रांसफ़र करते हैं, पेमेंट करते हैं या ऑनलाइन कुछ भी आप कर रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। लेकिन सोचिए जब इंसान की हम सुविधा देख रहे हैं, हम अपनी सुविधा देख रहे हैं, लेकिन जो पशु पक्षी हैं उनके बारे में तो हम सोच ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जो जब इतनी रेंज बढ़ने लगेगी तो सोचिए उनका जो जीवन है वो तो बिल्कुल खतरे में आ जाएगा। साथ ही साथ जब इतने ज़्यादा रेंज बढ़ेंगे तो लोगों के अंदर बीमारियाँ भी उतनी ज़्यादा होंगी। मुझे लगता है कि 6G लॉन्च करना इतना ज़रूरी भी नहीं, क्योंकि 5G भी सही चल रहा है इस टाइम। पता नहीं भैया क्या करने वाले हैं, यानी कि क्या चल रहा है देश दुनिया में, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मेरे ख्याल से तो 6G नहीं लॉन्च होना चाहिए। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं, आप भी अपना राय रख सकते हैं। नंबर है 9837896896 पर। इसके बाद आप सभी के लिए लेकर आएंगे कड़क सवाल। कड़क सवाल यानी कि देखना ये कि राइट आंसर सबसे पहले कौन पहुंचाता है। चलिए उससे पहले गाना सुनते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल रामपुर रोड मुरादाबाद।
4: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोता, और समय की बात करूँ तो 6:35 हो चुके हैं। इवनिंग मस्ती शो में आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है, और साथ ही साथ यानी कि कड़क सवाल पूछने का टाइम भी आ गया है। लेकिन आज कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाले आपसे, आज एक म्यूजिक प्ले करूंगी जो कि 90s के बहुत ही शानदार वाला गाना है, और शाम का वक्त है तो ये म्यूजिक हम प्ले करेंगे आपको, और आपने बताना है कि आखिरकार गाने का क्या नाम है। लेकिन उससे पहले कुछ मैसेज है उनको भी शामिल करते हैं। रीना जी, नई गीतों से सजा आपका ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच जी। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं दौलत बाग मुरादाबाद से अंसार हुसैन जी और इनके दोस्त है समीर मलिक। अगले मैसेज की बात करूं तो बबली अनजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी, और हमारी तरफ से आपको नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी जी हार्दिक शुभकामनाएं। और पिन कोड कैलेंडर जो हमने गाना प्ले किया था वो विक्की सागर जी को बहुत ही अच्छा लगा है, कह रहे हैं नाइस गाना, बेस्ट अर्जुनीना जी, थैंक यू। चलिए फिलहाल अगले मैसेज की बात करूं तो मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी कनेक्ट हो गए हैं, गुड इवनिंग पहुंचाते हैं, वेरी गुड इवनिंग जी, और आपको हमारी तरफ से सावन माह के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए जी फिलहाल म्यूजिक प्ले करते हैं, वो आपने सुनना है और बताना है कि क्या

जी की हाल है जी। जल्दी जल्दी सोचो कि आखिरकार इस गाने का क्या नाम है जो अभी अभी अभी आपने मैंने आपके लिए म्यूजिक प्ले किया है। आपने मैसेज करना है, नंबर है 9837896896 पर, यानी कि व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं अगर आपको ये गाने का यानी कि पता चल गया भैया कौन सा गाना है। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं।

चलिए जी, सोचिए और बताइए कि आखिरकार जो मैंने म्यूजिक प्ले किया है कौन से गाने का, इस गाने का क्या नाम है। और साथ ही साथ अगर आप वैष्णो देवी जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ट्रेन आखिरकार, पहले देखा दिल्ली से ना हम वंदे भारत में जाते थे जो कि 3 बजे मिलती थी, लेकिन अब एक और वंदे भारत आपको मिल सकती है जो कि आपको दिन में ही पहुंच सकते हैं आप। तो बताने वाली हूँ उसकी टाइमिंग। फिलहाल आप महसूस करिए कि आखिरकार ये गाने का क्या नाम है जो मैंने म्यूजिक प्ले किया है, और अगला गाना भी शानदार वाला है। सो इस गाने को एंजॉय करते हैं श्रोताओं, और मैसेज करिए, सोचिए।

0: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती। सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफ एम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफ एम मुरादाबाद। Thank you.

0: जिद करो।
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: जी गज वाली इवनिंग है श्रोताओं, FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 6:48 हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि देखिए, हर कोई वैष्णो देवी की यात्रा करता है, लेकिन साथ ही साथ ट्रेन के बारे में भी तो जानना बहुत जरूरी है ना श्रोताओं। देखिए, अगर आप जाते हैं और आप चाहते हैं कि जो हमारा सफर है वो थोड़ा शॉर्ट हो जाए और हम जल्दी पहुंच जाए, एक दिन में ही पहुंच जाए, हर कोई चाहता है यार एक दिन में ही पहुंच जाए, क्योंकि ट्रेन में बैठे बैठे बोर भी तो उड़ जाती है ना, है ना। लेकिन साथ ही साथ लग्जरी वाली आपको फीलिंग आए और आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना होए, धूल मिट्टी की भी ना होए, तो उसके लिए क्या है मैं बताती हूँ आपको। देखिए, अगर आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं तो सुबह यानी कि 6 से ट्रेन चलाई जा रही है वंदे भारत, और दोपहर में वो पहुंचने वाली हैं 2:20 यानी कि कटरा आप पहुंच जाएंगे। यानी कि सुबह से लेकर समथिंग समझ लीजिए कि आप 2:30 तक आराम से वैष्णो देवी पहुंच जाएंगे। और साथ ही साथ दोपहर की अगर समय की बात करूं, लेकिन ये जो 6 ट्रेन जाती है वो याद रखिएगा कि मंगलवार को नहीं जाती है वंदे भारत। अगर आप जा भी रहे हैं तो सर्च करके जाइए, क्योंकि मंगलवार को वंदे भारत नहीं चलती है। साथ ही

दोपहर की अगर मैं टाइम बताऊँ तो 3 बजे चलती है और रात कोई 11:20 पर आपको कटरा पहुंचा देगी। और उधर से वापसी की अगर समय की बात करूँ तो रात के 11 बजे का समय है श्रोताओं। यानी कि देखिए अब रास्ता और भी आसान हो चुका है। यानी कि सफर बात करें तो 8 घंटे और 20 मिनट का होता है। यानी कि आसानी से बिना किसी परेशानी के एक दिन में ही पहुंच जाएंगे अब कटरा और एंजॉय कर सकते हैं। और ये जो ट्रेन है भैया सुपर फास्ट वाली ट्रेन है, मतलब चलेगी भी ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि अच्छा ये ट्रेन चल रही है। और आप सोचेंगे अच्छा हम अगले स्टेशन का दर्शन कर ले, लेकिन आपको दिखेगी नहीं, इतनी सुपर फास्ट स्मूथ चलती है। किसी भी प्रकार की आपको परेशानी होती है तो हर यानी कि जगह जगह पर नंबर लिखे होते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इनफैक्ट आपके सीट के नीचे पानी भी गिर गया तब भी आप कॉल करेंगे तो तुरंत आके वहां पर सफाई की जाती है उस ट्रेन में, यानी कि वंदे भारत ट्रेन में। अगर आप चाहते हैं कि स्मूथ रास्ता बने, आसान बने तो आप सफर कर सकते हैं। लेकिन किराए की अगर टिकट्स की बात करूँ तो 1500 से 1600 के बीच में है, तो ये भी जरूर सर्च कर लीजिएगा श्रोताओं। चलिए फिलहाल आज का जो कड़क म्यूजिक पूछा है मैंने आप सभी से, उसको बताना है आपने मैसेज करके कि आखिरकार जो मैं म्यूजिक प्ले कर रही हूँ उस गाने का क्या नाम है, क्योंकि अगली बारी आपके मैसेज की ही है।

की हाल चाल है जी। जल्दी सोचिए, जल्दी दिमाग लगाइए, क्योंकि ये गाना तो हर किसी के जुबा पे रहती है। नंबर है 9823789689 पर आपने मैसेज करना है कि आखिरकार गाने का क्या नाम है। वंस अगेन एक बार और रिपीट करते हैं।

गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं, FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ ना तो समय हो चुका है 6:55। और चलिए जो मैंने आप सभी से पूछा है, यानी कि देखते हैं कि किनका राइट आंसर आ गया है। वंस अगेन एक बार और रिपीट करती हूँ म्यूजिक।

0: तो चलिए भैया देखते हैं, सबसे पहले राइट आंसर हमारे पास किनका आता है। ये हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं प्रिय मित्र आरजे रीना जी। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सर। और राइट आंसर होता है शाम भी खूब है पास महबूब है। नवनेश कुमार जी मुरादाबाद से कनेक्ट हो गए हैं और आप बनते हैं इवनिंग मस्ती शो के विनर, क्योंकि राइट आंसर दिया है आपने। चलिए और देखते हैं हमारे पास
1: शाम
0: आंसर आता है।
1: खूब है पास महबूब है शाम भी।
0: बबलू सैनी जी मुंबई महाराष्ट्र से कनेक्ट हो गए हैं और इनका भी राइट आंसर है शाम भी खूब है पास महबूब है।
1: और क्या चाहिए शाम भी।
0: राज टीचर विवेकानंद मुरादाबाद से कनेक्ट हो गए हैं। रीना मैम गुड वाली इवनिंग है, हाँ हैप्पी नाग पंचमी टू ऑल लिसनर। और शाम भी खूब है साथ महबूब है, यानी कि ये भी राइट आंसर पहुंचाते हैं।
1: है।
0: बबली अंजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी, और इनका कहना है पैडमैन फिल्म का नाम है। ये तो जरा सर बिल्कुल गलत आंसर है जी। अगले मैसेज की बात करूं तो शाम भी खूब है पास महबूब है, विभू कश्यप जी कनेक्ट हो गई हैं। और ये ललिता कश्यप जी की छोटी बेटी हैं और आज इनका हैप्पी वाला बर्थडे है, तो हैप्पी वाला बर्थडे। रणवीर जी जेठालाल जी कनेक्ट हो गए हैं और इनका कहना है कि आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई। अजी बिल्कुल नहीं होएगी क्योंकि आपने गलत आंसर दिया है। मसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से शाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट हो गए हैं। शैयर शारिक अली जी गुड इवनिंग, रीना जी कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हैं जी, आपका शो इवनिंग मस्ती सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है और साथ ही साथ आप गाने बहुत अच्छे प्ले करती हैं। और राइट आंसर होता है
1: शाम भी खूब है पास महबूब है।
0: यह आंखें यह मस्ती, जरा सर गलत आंसर आ गया सर आपका भी। सानू खान जी फ्रॉम मुरादाबाद से कनेक्ट हो गए हैं। रीना जी क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे है जी, इतने हल्के फो सावन सावन पूछो। नहीं जी गलत आंसर है आपका भी। चलिए जी आज इस शो के विनर बनते हैं नवनेश कुमार जी, क्योंकि इनका पहले आंसर आया था और राइट आंसर दिया था। और भी मैसेज की बात करूं श्रोताओं, तो हमारे पास मैसेज आया दीपक जी कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से और इनका कहना कि आपने वैष्णो देवी के बारे में बताया ना मैडम, हम बहुत ही जल्द वैष्णो देवी जाने वाले, यानी कि बुलावा हमारा आ गया है। क्या बात है जी, बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि स्वर्ग की नगरी जाने वाले हैं। जाइए जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, प्रसाद भिजवा दीजिएगा ऑफिस में। प्रीति जी कनेक्ट हो गई है मुरादाबाद से और इनका कहने की शाम भी खूब है और ये गाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है कि आपको ये गाना बहुत ज्यादा पसंद है। दिलीप जी कनेक्ट होते हैं लाइन पर मुरादाबाद से और इनका कहना की राइट आंसर है शाम भी खूब है साथ महबूब है। चलिए जी, इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, लेकिन आज सुबह से लेकर शाम तक कनेक्ट रहे। अच्छा लगा मुझे कि आप सभी के साथ कनेक्ट होना श्रोताओं, और कल मिलेंगे और भी ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप कनेक्ट रहिएगा और सुनते रहिएगा, रेडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए क्योंकि आपके प्यार के बिना यह अधूरा है। सुबह बाय, टाटा, टेक केयर। और आज जिनका फास्ट है और आप सभी को वंस अगेन सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक और सोमवार बचता है, लेकिन उस दिन आपको ट्रैफिक जाम बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, बहुत बहुत से बहुत ज़्यादा, और नज़ारे सड़कों पर कुछ अलग ही होएगा श्रोताओं। तो चलिए फिलहाल यहाँ से मैं लेती हूँ जाने की इजाज़त। बाय, टाटा, टेक केयर। अपना ध्यान रखिए क्योंकि ध्यान रखना अपना बहुत ज़रूरी है।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की, जो आतंकवाद के प्रति भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाता है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट देने को भी कहा है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 31 और आवेदनों को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,877 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है और इससे 9,500 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। ये आवेदन 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 आवेदन शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में आवेदकों को मंजूरी पत्र सौंपे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
2: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि वे पार्टी को मजबूत करने और जन सेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वे विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर जिले के रामनगर वन क्षेत्र में 2 अज्ञात व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद व्यापक संयुक्त घेराबंदी और तलाश अभियान शुरू किया। क्षेत्र में कई स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोईसर तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में एक इस्पात निर्माण इकाई में हुए विस्फोट में 3 मजदूर घायल हो गए। ये विस्फोट आज सुबह एक निजी विनिर्माण कंपनी में उत्पादन के दौरान हुआ। विस्फोट के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सेवा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोगों को कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजने की सुविधा मिल गई है। ईरान ने कहा है कि उसने ओमान के साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की योजना पर सहमति बना ली है। दोनों देश अब इससे संबंधित अंतिम संयुक्त बयान की तैयारी कर रहे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह से फिर से खोलना अमरीका की प्रमुख मांग रही है। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर ऑल आउट हो गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो गई है। पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु आयरलैंड की सोफिया नोबल को हराकर दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
6: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
5: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
6: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841।

0: हेलो जी, नमस्कार। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। श्रोताओं, ये है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जहाँ बातें होती हैं दिल से दिल तक। और मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद और मेरे साथ है मेरी प्यारी दोस्त
1: प्राची।
0: यस, और प्राची, आज हम पता है किस चीज की बात करने वाले हैं?
1: हाँ, किस चीज की बताइए?
0: आज हम बात करने वाले हैं गोंडा के दही बड़े और खस्ता कचौड़ी की।
1: अरे वाह, तो शुरू करते हैं जल्दी।
0: बिल्कुल
1: से।
0: तो दोस्तों, आप सभी के लिए आज का ये प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं गोंडा की गलियों में, जहाँ की हर सुबह उम्मीद लेकर आती है, जहाँ की परंपराएं आज भी दिलों में बसती है, जहाँ स्वाद में संस्कृति है और विकास में एक नई पहचान, जहाँ छोटे छोटे हुनर बन रहे हैं बड़े सपनों की उड़ान। ये है नया उत्तर प्रदेश, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद और आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको रूबरू कराते हैं उत्तर प्रदेश की उन कहानियों से जो सिर्फ विकास का नहीं बल्कि मेहनत, परंपरा, स्वाद और आत्मनिर्भरता की मिसाल है।
1: और मैं हूं आपकी दोस्त प्राची। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का हर जिला अपने भीतर एक अलग रंग, एक अलग खुशबू और एक अलग पहचान समेटे हुए है। कहीं चिकनकारी, कहीं बनारसी साड़ी, कहीं पेड़ा, कहीं इत्र और कहीं ऐसा स्वाद जो बरसों तक रह जाए याद।
0: और आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे ही जिले में जहां की सुबह की शुरुआत होती है गर्मा गर्म खुशबू से, जहां गलियों में स्वाद बसता है और जहां हर निवाला अपने पन का एहसास देता है।
1: जी हाँ दोस्तों, आज का एहसास हमारा खास पड़ाव है गोंडा। और आज यहाँ बात होगी यहाँ के मशहूर दही बड़े और खस्ता कचौड़ी, जो अब एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के जरिए एक नई पहचान हासिल कर रहे हैं।
0: यानी जो स्वाद पहले सिर्फ गोंडा की गलियों तक सीमित था, आज वह स्वाद पूरे प्रदेश और पूरे देश में अपनी खुशबू फैला रहा है, क्योंकि ये है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी नई।

0: दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, सुबह का वक्त, हल्की हल्की ठंडी, सड़क के किनारे दुकान से उठती देसी घी की खुशबू और कढ़ाई में छनती हुई खस्ता कचौड़ी
1: और सामने बड़ी सी भगौनी में रखा मुलायम दही बड़े, ऊपर से ठंडा ठंडा दही, मीठी चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च, भुना जीरा, काला नमक।
0: अरे बस बस, सुनते मुँह में जैसे पानी ही आ गया है।
1: दोस्तों गोंडा का दही बड़ा सिर्फ एक व्यंजन ही नहीं बल्कि यहाँ की मेहमान नवाजी की पहचान है। किसी के घर मेहमान आए हो, कोई त्योहार हो, शादी हो या फिर शाम की छोटी सी दावत, दही बड़े हर खुशी का हिस्सा बन जाते हैं।
0: यह दही बड़ा बनाने की प्रक्रिया बेहद ही खास होती है। उड़द की दाल को घंटों तक भिगोया जाता है, फिर उसे बारीक पीस कर फेटा जाता है ताकि बड़ा एकदम मुलायम बने।
1: और कई दुकानदार तो इसमें ड्राई फ्रूट्स की हल्की स्टफिंग भी करते हैं ताकि स्वाद में आपका रॉयल टच बना रहे।
0: और फिर बड़े को सुनहरा होने तक तला जाता है और बाद में ताजी मलाईदार दही में डुबो दिया जाता है।
1: ऊपर से मीठी इमली की चटनी, हरा धनिया की चटनी, भुना जीरा, चाट मसाला और अनार के दाने।
0: वाह वाह, सच कहें तो जैसे गोंडा के दही बड़े सिर्फ पेट नहीं भरते, दिल जीत लेते हैं।
2: ये बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना ODOC आपके गोंडा जिला में दही बड़ा और कचौड़ी का चयन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में?
3: नमस्कार, हमें इस पता लगा कि हमारे दही बड़े का चयन गोंडा जिला के अंतर्गत और कचौड़ी का चयन हमारे गोंडा जिला के अंतर्गत ODOC योजना में चयन हुआ है। हमें बहुत अच्छा लगा, प्रसन्नता हुई। और इसके बारे में यही कहा जाएगा, जहां तक हमको जो जानकारी मिली है, प्रदेश सरकार की एक ऐसी योजना है जो छोटे व्यापारी

0: बल्कि डुकू की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा भी है।
1: दोस्तों गोंडा में लगभग 100 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयों में 400 से अधिक कारीगर इस कारोबार से जुड़े हैं।
0: यानी ये स्वाद सिर्फ लोगों की पसंद नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी भी है।
1: और अब बात उस पहल की जिसने गोंडा के इन पारंपरिक स्वादों को एक नई पहचान दी है।
0: जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और ODOC यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन योजना।
1: क्या बात है, इस योजना का उद्देश्य है हर जिले की खास पहचान को आगे बढ़ाना, स्थानीय हुनर को मंच देना और छोटी कारोबारियों को आत्मनिर्भर बनाना।
0: गोंडा की दही बड़ी और खस्ता कचौड़ी को भी इसी योजना के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है।
1: सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों को आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और सपोर्ट और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
0: यानी जो स्वाद पहले सिर्फ स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था, अब वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बड़े बाजारों तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार स्थानीय कारोबार, पारंपरिक व्यंजन और छोटे उद्यमी को प्रोत्साहित कर रही है
0: और इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। गाँव और कस्बों के लोग अब अपने हुनर से नई पहचान बना रहे हैं।
1: दोस्तों किसी भी प्रदेश की असली पहचान सिर्फ उसकी इमारतों या सड़कों से नहीं होती
0: बल्कि वहाँ के लोगों, उनकी मेहनत, उनकी संस्कृति और उनके स्वाद से होती है।
1: गोंडा का दही बड़ा और खस्ता कचौड़ी इसी की पहचान का हिस्सा है। श्रोताओं,
0: एक ऐसा स्वाद जो परंपरा से जुड़ा है और विकास के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: बढ़ती लागत, साफ सफाई बनाए रखना, कम सेल्फ लाइफ और कुशल कारीगरों की कमी,
0: लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन लगातार इन चुनौतियों को कम करने के प्रयास कर रहे हैं।
1: नई तकनीक, बेहतर ट्रेनिंग और मार्केटिंग सपोर्ट के जरिए छोटे व्यापारियों को मजबूत बनाया जा रहा है
0: ताकि गोंडा का स्वाद सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी खास पहचान बना सके।
1: अगर अभी हमारे सामने गर्मा गर्म कचौड़ी आ जाए ना तो मैं इंटरव्यू छोड़कर सीधा प्लेट पकड़ लूंगा।
0: और अगर साथ में दही बड़ी भी मिल जाए
1: तो भाई फिर शो खत्म होने तक कोई बात ही नहीं करेगा, सिर्फ खाने की आवाज आएंगी।
0: दोस्तों अगर आप कभी गोंडा जाए वहाँ की दही बड़ी और खस्ता कचौड़ी का स्वाद जरूर,
1: और अगर आपने पहले से खाया है तो हमें जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया,
0: क्योंकि स्वाद सिर्फ खाने की चीज नहीं यादों का भी हिस्सा होता है।
1: तो दोस्तों आज हमने जाना कि कैसे गोंडा का पारंपरिक स्वाद आज विकास और आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी लिख रहा है,
0: कैसे छोटे कारोबार बड़े सपनों में बदल रहे हैं और कैसे उत्तर प्रदेश का हर जिला अपनी नई पहचान बना रहा है।
1: हम फिर मिलेंगे उत्तर प्रदेश के किसी और जिले की नई कहानी के साथ, नए स्वाद के साथ और नई संस्कृति और नए विकास के साथ। तब तक सुनते रहिए विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश। श्रोताओं आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो और फिलहाल लेता हूँ आपसे जाने की इजाजत। मैं आनंद और मेरे साथ
0: प्राची,
1: जल्दी आपको मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।
0: बाय बाय।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल रामपुर रोड मुरादाबाद।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान 2026 की शुरुआत की और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। भारत के MR अर्जुन हरिहरन अमसा करुणन पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री BL संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और विप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम में नवीन दायित्व ग्रहण करने वाले सभी पदाधिकारियों को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के संगठनात्मक मार्गदर्शन में ये टीम सेवा, समर्पण और राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ संगठन को जन जन तक और अधिक सुदृढ़ करेगी। दिल्ली सरकार ने सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया SOP लागू की है। इसका उद्देश्य सिनेमाटोग्राफ लाइसेंस जारी करने और जांच की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी तथा तय समय के भीतर पूरा करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नई व्यवस्था के अंतर्गत वर्षों से चली आ रही अलग अलग विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की प्रक्रिया को समाप्त करते

0: हुई एकीकृत सिंगल विंडो प्रणाली लागू की गई है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस व्यवस्था का उद्देश्य लाइसेंसिंग प्रक्रिया में अनावश्यक देरी और अलग अलग विभागों के बीच समन्वय की समस्या को दूर करते हुए आवेदकों को स्पष्ट जवाबदेह और तकनीक आधारित व्यवस्था उपलब्ध कराना है। नई एसओपी के अंतर्गत पहली समिति जिला लाइसेंसिंग डीएलसी का गठन किया गया है। ये समिति राजस्व विभाग के जिला प्रशासन के अधीन गठित की गई है, जो कि लाइसेंसिंग संबंधी अंतिम निर्णय लेगी। वहीं नई एसओपी के अंतर्गत दूसरी समिति जिला निरीक्षण समिति डीआईसी का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि अब इसी समिति द्वारा प्रत्येक सिनेमा घर का निरीक्षण संयुक्त रूप से किया जाएगा। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के तीन विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों में पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। एनटीए ने बताया कि अंग्रेजी की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से, जबकि वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से आयोजित की जाएगी। समाजशास्त्र की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से होगी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और गोपनीय संचालन व्यवस्था, सुरक्षित कक्षों, एयर गैप सिस्टम तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने के निर्देश दिये। दिल्ली सरकार कल त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 10वीं कक्षा के बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए लैपटॉप वितरण समारोह आयोजित करेगी। इस कार्यक्रम में 1200 छात्रों को लैपटॉप वितरित किए जाएंगे। ये समारोह शैक्षणिक उत्कृष्टता और एक उज्ज्वल भविष्य के लिए योग्य छात्रों को डिजिटल उपकरणों से सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में पूर्व स्नातक, स्नातकोत्तर और अति विशेषज्ञता मेडिकल सीटों को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने जा रही है। इस पहल का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में योग्य मेडिकल और डेंटल पेशेवरों की कमी को दूर करना और साथ ही दिल्ली के स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य आधारभूत संरचना को और मजबूत करना है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस रोडमैप के अंतर्गत सरकार ने तीन तरफा रणनीति अपनाई है, जिसमें नए चिकित्सा संस्थानों में सीटों का विस्तार, मौजूदा संस्थानों की क्षमता का विस्तार और स्नातकोत्तर तथा विकसित मेडिकल प्रोग्राम का विस्तार शामिल है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने आज राष्ट्रीय रेटिना कौशल विकास केंद्र में मॉड्यूलेटेड रेटिना प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये अपनी तरह की पहली सुविधा है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में रेटिना संबंधी देखभाल में नैदानिक क्षमताओं को मजबूत करना है। रेटिना केंद्र के प्रोफेसर रोहन चावला ने कहा कि यह अनुकूलित मॉड्यूल आधारित रेटिना प्रशिक्षण कार्यक्रम नेत्र रोग विशेषज्ञों को रेटिना संबंधी रोगों के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करेगा।
2: ये प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रशिक्षकों को रेटिना रोगों के बारे में अधिक जानकारी में मदद करेगा, ताकि वे रोगियों का उचित उपचार और रेटिना रोगों के कारण होने वाले अंधेपन को रोकने में मदद कर सकें। इसके लिए हमने अपने राष्ट्रीय रेटिना ऐप को अपग्रेड किया है और यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मैनुअल भी बनाया है, जिससे ये नवीनतम तकनीक का प्रशिक्षण दे सकते हैं।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान 2026 की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य राजधानी में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करना, कूड़े के वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ावा देना और सार्वजनिक स्थलों की सफाई सुनिश्चित करना है। ये विशेष अभियान पूरी दिल्ली में 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा।
2: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्वच्छता केवल किसी एक विभाग या एजेंसी की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि अगले 12 महीनों तक वार्ड स्तर पर स्वच्छता प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रत्येक महीने जो वार्ड सबसे अधिक स्वच्छ पाया जाएगा, उसे 1 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। साथ ही यदि कोई वार्ड लगातार अगले महीने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, तो उसे 2 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त प्रोत्साहन मिल सकता है। इसके अलावा श्रीमती गुप्ता ने कूड़ा प्रबंधन के लिए 4C यानी कलेक्शन, क्लीनिंग, कन्वर्जन उत्पादन और सर्कुलर इकोनॉमी पर विशेष बल दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस महीने की 23 और 30 तारीख तथा अगले महीने की 6 और 13 तारीख को झुग्गी झोपड़ी समूह में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। इस विशेष अभियान के अंतर्गत हर शनिवार और रविवार को सार्वजनिक शौचालयों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस बीच दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य केवल सड़कों की सफाई करना नहीं बल्कि दिल्ली तस्वीर नागरिकों की आदत और स्वच्छता के प्रति सोच में बदलाव लाना है। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज नई दिल्ली नगरपालिका परिषद NDMC द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा हर मन तिरंगा के आह्वान को जन जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनी है। एक रिपोर्ट।
3: यह यात्रा हर घर तिरंगा 2026 अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई। इस तिरंगा यात्रा में 6000 से अधिक NDMC के विद्यालयों के हजारों विद्यार्थियों शिक्षकों और NDMC कर्मचारियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हाथों में तिरंगा लेकर चलना केवल एक यात्रा नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति प्रेम गौरव सम्मान और देशभक्ति की सामूहिक अभिव्यक्ति है।
4: ये तिरंगा यात्रा ये केवल हाथ में भारतीय ध्वज पकड़ के चलना नहीं है, ये राष्ट्र के प्रति हमारी प्रेम की यात्रा है, हमारी गौरव की यात्रा है।
3: उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ये तिरंगा यात्रा विकसित भारत के निर्माण के संकल्प की यात्रा है और इसमें शामिल बड़ी संख्या में बच्चे युवा भारत की नई ऊर्जा और सामर्थ्य के प्रतीक हैं। इस अवसर पर मौजूद NDMC के उपाध्यक्ष कुलदीप चहल ने कहा कि तिरंगा यात्रा में युवाओं की भागीदारी इस बात का प्रतीक है कि नई पीढ़ी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।
5: युवा आज जब इस तिरंगा यात्रा में शामिल होते हैं तो उस विश्वास के साथ होते हैं कि विकसित भारत का जो संकल्प 2047 का है, जो राष्ट्रीयता का भाव 2047 का है, जो माने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व है, उस पर एक विश्वास जताते हुए लेके चलते हैं।
3: इस अवसर पर NDMC के अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी और परिषद के कई सदस्य भी शामिल रहे। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
0: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के निर्देश पर पार्टी के 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने आज दिल्ली के विशेष पुलिस आयुक्त देवेश श्रीवास्तव से मुलाकात कर उन्हें एक शिकायत पत्र सौंपा। पार्टी के अनुसार कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के हाथ में उल्टा राष्ट्रीय ध्वज दिखाने वाली कथित फर्जी तस्वीर तैयार कर उसे सोशल मीडिया पर विभिन्न मंचों पर प्रसारित करने का प्रयास किया गया। श्री मल्होत्रा ने इस प्रयास की जांच कर दोषी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि कूलिंग वाटर पंप हाउस पर लगे 1100 मिलीमीटर व्यास वाले हेडर वॉल्व के नवीनीकरण और मरम्मत के कारण कई क्षेत्रों में 20 अगस्त को पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। बोर्ड ने बताया कि नारायण छावनी इंद्रपुरी कृषि कुंज और पंजाबी बाग में जलापूर्ति बाधित रहेगी। जल बोर्ड ने स्थानीय निवासियों से पर्याप्त मात्रा में पानी के भंडारण का अनुरोध किया है। आपातकाल स्थिति में जल बोर्ड के कंट्रोल नंबर 1916 पर फोन कर पानी के टैंकर मंगाए जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। पूर्व विश्व चैंपियन सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7 21-11 से हराया। वहीं आयुष ने पुरुष सिंगल्स के अपने पहले मुकाबले में चीन के शी युकी को 21-14 13-21 21-19 से हराया। वहीं महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिग्स को 21-9 21-13 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। इससे पहले पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की जोड़ी भी दूसरे दौर में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने पहले गेम 21-16 से जीता। इसके बाद दूसरे गेम में दोनों 6-4 से आगे चल रहे थे तभी उनके प्रतिद्वंदी आयरलैंड के स्कॉट गिलिडिया और पॉल रेनॉल्ड्स चोटिल होकर खेल से बाहर हो गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सभी देशवासियों को नागपंचमी की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि श्रावण मास में भगवान शिव के प्रिय नागदेव की आराधना का ये पावन पर्व लोगों की प्रकृति आस्था और संतुलन का संदेश देता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331048। राजधानी दिल्ली में आज तेज धूप रही, जिसके कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। आज का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, ये टीम सेवा राष्ट्र प्रथम के भावना के साथ संगठन को और अधिक सुदृढ़ करेगी। दिल्ली सरकार ने सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया लागू की है। इसका उद्देश्य लाइसेंसिंग प्रक्रिया में अनावश्यक देरी और जांच प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट परीक्षा के तीन विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान 2026 की शुरुआत की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: ये विशाल है ना, इसका सब

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: हाँ जी, कैसे हालचाल? आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। और यहाँ पर जब आनंद आता है तो कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आता है। और दोस्तों, आज तो मैं भी एक शायर बन के आ गया हूँ। माना कि मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी अंदर की जो बातें हैं ना, जो अंदर की फीलिंग्स है, वो निकल जानी चाहिए और अच्छा होता है यार। और आज हमारे साथ में जो शख्स हैं, जो जनाब हैं, वो भी बस इसी के सरताज बनने वाले हैं हमारे स्टूडियो में। आज बहुत सारी बातचीत होगी आपके साथ, आपकी शाम को थोड़ा सा और खूबसूरती के साथ जो है हम ब्यूटीफुल बनाएंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। हाँ जी, फिलहाल मैं कहना चाहता हूं कि जहां भावनाएं मिलती हैं सुरों से, कि जहां भावनाएं मिलती हैं सुरों से, वहीं शुरू होती है हमारी महफिल, दिलों की बात दिलों के साथ। आपका अपना रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद, जहां पर आज प्यार मोहब्बत इश्क और ना जाने कौन कौन सी बातें होने वाली है, लेकिन जो भी बातें होंगी वो सिर्फ आपके काम की होंगी और आपसे रिलेटेड होंगी, यानी कि आपको एंटरटेनमेंट का डोज भी देंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। और अभी मैं अपनी बातों को देता हूं विराम, क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं अब उन्हें नहीं करने देंगे आराम, उनसे बातचीत करना है यार, ये तो हमारा काम है। हेलो सर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टेशन में आपका।
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू आनंद जी।
0: जी, हालांकि इनकी आवाज आपने पहले भी सुनी है, लेकिन ये अभी काफी सीरियस होके बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों। सर, मतलब लंच वंच खा पी के आए हो ना आप स्टूडियो में हमारे?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। जरा एक शुरुआत होती है तो उससे फिर आगे बढ़ना होता है, तो वही मैं उस इंजन को स्टार्ट करने के।
0: बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है, आप इंजन स्टार्ट कीजिए, हमने तो पूरी गाड़ी स्टार्ट कर दी है सर। वेल, आगे बढ़ते हैं सर। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अपने बारे में हमारी जनता को अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए, इंट्रोड्यूस कीजिए जरा आपने आपको।
1: जी, मेरा परिचय क्या है कि मैं आप ही के बीच का हूँ।
0: बिल्कुल सर।
1: मेरा नाम मनोज बनू है
0: जी,
1: और शायरी और कविताओं से मुझे निस्बत है।
0: क्या
1: मैं
0: बात है?
1: अपने परिचय के बारे में चार मिसरे ही क्यों ना रखूं?
0: बिल्कुल इरशाद जनाब, मजा आ जाएगा फिर तो। आए हाय,
1: कहता हूँ कि अपनी धुन में रहता हूँ, बस एक खुमारी मुझमें है।
0: अरे वाह,
1: अपनी धुन में रहता हूँ, बस एक खुमारी मुझमें है। कौन है कैसा खबर है मुझको, सब होशियारी मुझमें है।
0: क्या बात है,
1: पीतल नगरी घर है मेरा, मैं मनोज उपनाम मनु। पीतल नगरी घर है मेरा, मैं मनोज उपनाम मनु। गीत गजल दोहे से निस्बत, ये बीमारी मुझमें है। गीत गजल दोहे से निस्बत, ये बीमारी मुझमें है।
0: क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, सुपर फैंटास्टिक। तो मनु जी, एक बात मैं आपसे, मैं आपको मनु जी बोल सकता हूँ ना सर?
1: क्या बात है, मेरा
0: सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक तो आपकी आवाज में बेस इतना अच्छा है, इतनी अच्छी क्वालिटी है, इतना बढ़िया आप डिलीवर कर रहे हैं अपना, लेकिन ये जो आपने अभी अपने आप को भी इन शब्दों में पिरो दिया मुरादाबाद, और फिर अपने आप को भी कनेक्ट कर दिया, तो ये खूबसूरती कहाँ से आती है मुरादाबाद के कलाकारों में? अभी तक जितने भी लोगों से मिला हूँ, सबका कुछ ना कुछ रहा है मुरादाबाद की चीजों से रिलेटेड, अपने आप को भी उसमें शामिल कर देना, ये मतलब कैसे कर लेते हैं आप लोग जब लिखते हो तो उसके अंदर खुद को फील करते हो क्या?
1: आपने सुना होगा कि अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस की बात नहीं।
0: एग्जैक्टली,
1: तो ये बस प्रभु का आशीर्वाद है।
0: क्या बात है,
1: जिसने जो शब्द अता किए हैं उनके माध्यम से जो जहन में आता जाता है, उतरता जाता है, वही कहा जाता है। कहते हैं ना कि शेर लिखा नहीं जाता, कहा जाता है, पढ़ा जाता है,
0: पढ़ा जाता है, फील किया जाता है।
1: जी जी, तो बस वही जो वो दे देता है वही हम ले लेते हैं।
0: क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया सर। और ऐसी खूबसूरत बातें जो है आज सुनते रहेंगे आप इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। फिलहाल आपके शाम को खूबसूरत बना रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मनोज वर्मा मनु जी, और आज आपकी शाम को स्पेशल बनाने के लिए कुछ तो अपनी डायरी में चिट्ठा लेकर आए हैं, पूरा एकदम भारी भरकम तैयारी के साथ आए हैं। तो सर, शुरुआत कैसे होने वाली है, क्या है जो आप हमारे श्रोताओं को आज की शाम सुनाएंगे? लेकिन उससे पहले एक बात कह दूं मैं, मतलब बता दूं आपको गाइज, जैसे मनु जी हमारे स्टूडियो में आए तो उन्होंने बोला कि आनंद जी अपनी रफ्तार थोड़ी कम रखिएगा, तो मैं थोड़ा सा डर गया कि भाई ऐसे में कौन सी एक्सप्रेस में सवार होता हूं जो सर ने मेरे को ये पहले से अलर्ट भेज दिया। ऐसा क्यों बोला सर आपने? माना कि आपका फ्लो वो अपना शायर वाला चलेगा, बट मेरा तो वो जॉकी वाला ही रहेगा ना सर?
1: जी, एक शेर कहा जाता है,
0: हर बार
1: वो बर्क रो था,
0: हाँ,
1: वो बर्क रो था,
0: हाँ,
1: कहाँ रह गया जाने पीछे,
0: हाँ,
1: अब इंतजार करेंगे सकिश्तापा उसका।
0: हाँ, अरे वाह,
1: सकिश्तापा यानी कि जो धीरे धीरे कदमों से चलने वाले हैं,
0: हाँ, हाँ,
1: वो इंतजार करते रह जाते हैं।
0: ओके,
1: तो जाहिर सी बात है कि आपका प्रोफेशन है और आप जुड़े हुए हैं, शहर मुरादाबाद की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो ये एक बहुत, जो उसकी स्पीड है आपकी, वो स्पीड काबिले तारीफ है, लेकिन ये जो शायरी है ये हसास का विषय है,
0: इसमें ठहराव
1: एहसासों का विषय है और इसमें ठहराव की बहुत जरूरत है। बस इसीलिए मैंने आपसे दर्ज की थी
0: कि तो मैंने वो पब्लिकली रख दी ना सर, देखिए इतनी अच्छी बात है ताकि वो चीज हमें पता तो चले और हमारी ऑडियंस को भी पता चले।
1: नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है, जब हम पब्लिक के सामने होते हैं तो हमारा अपना कुछ नहीं होता, सब कुछ पब्लिक के लिए होता है,
0: क्या ही होता है और उसी के लिए होता है।
1: बेशक इसमें कोई जरा सा भी गुंजाइश नहीं कहने की कि मुरादाबाद की और आपके एफएम की जो जनता है, जो श्रोता है, वो निहायत खास हैं, कोई आम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सुनते हैं रेडियो एफएम 89.6 मेगाहर्ट्ज पर।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपने बोला और आप भी काफी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लग रहा है आरजे बन जाएंगे आप भी अगर ऐसी प्रैक्टिस चलती रही तो। खैर आगे बढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा लग रहा है मनु जी आपसे बातचीत करके। और वैसे तो कई मर्तबा मेरी इनसे मुलाकात होती रहती है आते जाते रोड के किनारे, सड़क के किनारे हम लोग गुफ्तगू करने लग जाते हैं जब भी मिलते हैं, लेकिन आज जो ये इंटरेक्शन हो रहा है ना सर, मेरा आपका पहली बार हो रहा है शायद ये कॉन्वर्सेशन ना?
1: जी जी, ये पहली बार ही है जो मैं हिम्मत समेट के आपके सामने हूँ।
0: अरे सर क्या बात कर रहे हैं, आप हमेशा इतना अच्छा करते हैं, मैं इवन आपकी स्टेटस भी देखता रहता हूँ व्हाट्सएप के थ्रू, आप कनेक्टेड है मेरे साथ, तो जब भी कोई ओकेजन होता है सर का हम देखते रहते हैं, मान सम्मान और आपकी जो चीजें आप करते हैं मतलब बढ़िया है। और मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खास कलाकारी है, अगर वो पहचान के उसमें कुछ अच्छा करना चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है।
1: सही कहा आनंद जी, ये बिल्कुल आपकी निस्बत है, आपकी मोहब्बत है जो मुझे इतनी आपने सम्मान प्रदान किया है। मैं फिर अपनी दो लाइनें रहूं?
0: जरूर सर,
1: यही शेर में दो लाइनें दो मिसरे होते हैं जो आपके साथ साथ हमारे जो सामाईन जो श्रोतागण है
0: जी जी
1: उनके लिए भी है कि मेरे शेरों में जो लज्जत है मेरा कुछ भी नहीं।
0: वाह।
1: मेरे शेरों में जो लज्जत है मेरा कुछ भी नहीं, उसकी बख्शी हुई नेमत है मेरा कुछ भी नहीं, और चंद मिसरों को जो तरजीह अता करता है ये तेरा हुस्ने समात है मेरा कुछ भी नहीं।
0: क्या बात है,
1: ये तेरा हुस्ने समात है मेरा कुछ
0: गजब भी नहीं। अजी गजब, मुझे लग रहा है कि दोस्तों कल सुबह अगर मैंने उर्दू के कुछ भी शब्द नए बोले तो उसमें सारा योगदान मनु जी का होगा। आज पूरी उर्दू सिखा के जाने वाले हैं, मतलब क्या इनके शब्द है, मतलब तलफ्फुज देख रहे हैं आप इनका कितना गजब का है सर, मतलब
1: उर्दू यार, बहुत बहुत शुक्रिया,
0: मुझे बहुत मजा आ रहा है आपके साथ ये कॉन्वर्सेशन करते हुए सर।
1: ये कॉम्प्लीमेंट्स है मेरे लिए,
0: एब्सोल्युटली सर आप डिजर्व करते हैं। और गाइस हम जो है आपकी शाम को ऐसे ही रॉकिंग बनाते रहेंगे, काम करते हैं रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो सर से कुछ बेहतरीन सा सुनेंगे जो आपकी शाम को और भी बेहतर से बेहतरीन बना देगा। फिलहाल आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।

0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गीत। और इस गीत के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैंने कहा जी आपका खैर मकदम करते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर आपका भी इस्तकबाल करते हैं। आज मैं भी थोड़ा उर्दू में, थोड़ा शायराना अंदाज में मैं भी कुछ ना कुछ कहता रहूंगा। जब इतने खास लोग सामने बैठे हों शानदार प्रस्तुति के साथ तो फिर वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है। तो मनु जी वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में। और मैं चाहूंगा कि कुछ बढ़िया से अपने अल्फाजों में कुछ बढ़िया से हमारे लिसनर्स को सुना दें आप।
1: शुक्रिया आनंद जी, मैं फिर रखता हूँ दो मिसरे
0: जी।
1: तमाशा बन के रह जाए मरासिम,
0: वाह,
1: मोहब्बत में कभी इतना ना झुकना। तमाशा बन के रह जाए मरासिम, मोहब्बत में कभी इतना ना झुकना।
0: क्या बात,
1: उसी की जी हुजूरी मार देगी, मोहब्बत में अजी इतना ना झुकना।
0: क्या बात है,
1: मोहब्बत में अजी इतना ना झुकना।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे भी कुछ लिखते हैं सर या यहीं पे ये लाइन जो है एंड हो जाती है?
1: जी लाइनें तो हैं लेकिन जो मौजू है
0: वो ये क्या बात है। लेकिन सर एक बात तो है कि कहीं ना कहीं जो प्यार करने का तरीका होता है, जब आप शेर व शायरी के साथ आते हो तो उसका मजा डबल हो जाता है। आप लोगों तक वो बात पहुंचा देते हो जो एक्चुअली आप जानते हो, और जो सुन रहा होता है ना, जो उसको फील करता है तो वो समझ पाता है। क्योंकि जो कनेक्शन होता है ना वो दिल से दिल तक का होता है। और ये बात जो आप अपने अल्फाज के थ्रू कह रहे हैं हमारे लिसनर्स से, जो अपनी शायरी के थ्रू रख रहे हैं, ये ज्यादातर लोग रिलेट कर पाएंगे जो दिल से इस चीज को फील करते हो या इस चीज से जुड़े हो कहीं ना कहीं।
1: नहीं, मैं समझता हूँ कि शायरी का जो अपना मकाम है, जो उसकी सफलता है
0: जी जी,
1: वो भी यही है कि जो मन कह रहा है
0: वो मन सुने
1: सामने वाला।
0: वही वही बिल्कुल सही कहा,
1: कनेक्ट करता है तो ये शायरी वास्तव में अपनी अपनी सार्थकता महसूस कराती है।
0: गॉट इट, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। आजकल के प्यार के बारे में कुछ है आपके पास, कुछ इंटरेस्टिंग? आजकल का जो सोशल मीडिया वाला जमाना है, सोशल मीडिया वाला प्यार है, जहां एक घंटे के अंदर प्यार हो जाता है, वहीं दूसरे घंटे में लोग ब्लॉक हो जाते हैं, फिर ब्रेकअप हो जाते हैं, फिर कोई नया मिल जाता है। तो इस आजकल का जो जमाना चल रहा है, अगर उसकी बात करूं तो उस पर कुछ अगर आप रखना चाहें।
1: देखिए चीज तो होती है, दरअसल क्या है, बाकी की चीजें मौका ही नहीं देती। जिंदगी इतनी तेज भाग रही है मौजूदा हालात में
0: 100%
1: कि उसे आप कुछ भी नहीं कह सकते, रोक नहीं सकते। जहां रुकते हैं तो दुनिया आगे निकल जाती है। लेकिन आप इस बारे में ये नहीं कह सकते कि जो कली जो जो जो एक पौधा उसके जो बीज मोहब्बत का उस दिल में फूटा था वो दबके रह गया, हो सकता है वो खत्म हो गया, ऐसा आप नहीं कह सकते। उनके लिए मैं दो लाइनें बताता हूँ आपको।
0: प्लीज, श्योर।
1: ये किसी शय का किसी तौर भी

0: वेलकम बैक हियर वंस अगेन। आप सुन रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्वर्सेशन जिसमें आज हमारे साथ मनु जी मौजूद हैं। ढेर सारी आपको शेर व शायरी के साथ एक कह सकते हैं फ्लो बना रहे हैं आपको और मेरा एक बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी शाम को खूबसूरत बना रहे हैं। नए नए शब्दों से हमें रूबरू करा रहे हैं, ढेर सारी बातें उनके साथ चल भी रही हैं और उनकी अंदर की जो कलाकारी है वो भी कहीं ना कहीं निकल के आ रही है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से।
1: शुक्रिया।
0: जी मनु जी, मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था, और मतलब पूछना क्या, साफ शब्दों में कहूँ तो सुनना चाह रहा हूँ। शेर और शायरी और ये जो कविताएं हैं जो आप रचनाएं वो तो आप करते ही रहते हैं, इवन आप गीत भी बढ़िया गाते हैं, मैंने आपके सुने हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी में भी आप अच्छा करते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ वही नज्म की, क्योंकि शेर और शायरी से हटके कुछ अलग चीज लगती है मुझे नज्म, है ना? तो कुछ अगर आप नज्म पे चर्चा कर लें, कुछ बढ़िया सी सुना दें तो हमारे सुनने वाले श्रोताओं को डबल मजा आ जाएगा।
1: क्या बात है, वास्तव में नज्म अपने आप में एक मुकम्मल चीज है।
0: Absolutely.
1: और शायरी में जहाँ गजलें अपने मुख्तलिफ शेर अलग अलग शेरों में अलग अलग बात कहती हुई चली जाती है, वो कहीं भी हो सकती है। नज्म की खासियत यह है कि ये जब उतरती है तो पहले अक्षर से शुरू होकर अपनी बात मुकम्मल करने तक उतरती है।
0: क्या बात है।
1: तो एक मेरी एक पसंदीदा नज्म है
0: जी,
1: जिसका अनुवाद मैंने हसरत रखा हुआ है।
0: अरे वाह,
1: मैं आपको और दर्शकों के बीच में रखता हूँ।
0: पक्का पक्का, श्योर।
1: हो भी जाने दे तमन्ना पूरी, आज हाथों में हाथ रहने दे।
0: क्या बात है।
1: ये देखिए एहसास किस तरह से पिरोते हैं एक नज्म के साथ, कैसे बहती है एक
0: फ्लो नज्म
1: है, जो फ्लो होता है उसमें क्या होता है। हो भी जाने दे तमन्ना पूरी, आज हाथों में हाथ रहने दे, कल मुकद्दर में ना हो मैं न रहूं, दिल के जज्बे जुबा से कहने दे, हाँ तेरी आस में जाने कितने, मैंने लम्हों को जिया सदियों सा, फासला तेरे दरमियां मेरा, फासला जैसे रहा सदियों सा, फासला तेरे दरमियां मेरा, फासला जैसे रहा सदियों सा, कतरा कतरा जो निचोड़ा खुद को, तो यह एहसास बयां कर पाया, देख ले तू जो तेरा जी चाहे, जिंदगी का ये मेरी सरमाया, शर्त वैसे ये नहीं होती, जो तुझे चाहे तू उसे चाहे, पर जो तकदीर मेहरबान रहे, खुशी छा सकती है गाहे गाहे, पर जो तकदीर मेहरबान रहे, खुशी छा सकती है गाहे गाहे, मैं जो इस दर्जा चाहता हूं तुझे, इसके इजहार में हो सकता है, ये जो एहसास रिफाकत है मेरा, आखिरी आस भी खो सकता है, पर ये उम्मीद के साये भी तो उलझने जीस्त की बढ़ाते हैं, जो महल चुनते हैं रेजा रेजा, और फिर आप ही गिराते हैं, इससे बेहतर तो यही है ये दिल जान ले बात की हकीकत को, इससे बेहतर तो यही है ये दिल जान ले बात की हकीकत को, मुतमईन हो ले जो भी होना है, दिल के मिटने को या मोहब्बत को, हो भी जाने दे तमन्ना पूरी, आज हाथों में हाथ रहने दे। तो देखा आपने कि ये रवानी
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती के साथ आप जो है शब्दों को पिरो रहे थे, और मतलब मैं तो कश्मकश में था कि सर ये मतलब कहाँ क्या क्या फ्लो बना रहे, कहाँ मतलब कहना क्या चाह रहे, और इतनी बढ़िया आपने जो है शुरुआत करी नज्म की, और कहाँ से कहाँ आप ले गए, जो आपने स्टार्टिंग में बोला था ना, मतलब वो शब्द वाला सीन वही जी, था जी। मतलब मजा आ गया, मैं पूरी गहराइयों के साथ।
1: आनंद जी, होता यही है कि जो नज्म है वो उतरती है उसका
0: सच में,
1: उसका जो लुत्फ है वो यही लुत्फ है
0: कसम से,
1: अपने आप में आखिरी मिसरे को जाकर ये मुकम्मल कर दे।
0: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन।
1: तो मैंने आपके बीच रखी और आपको और श्रोताओं को मुझे यकीन है पसंद आई होगी।
0: बहुत मजेदार लग रही है, और आपके जो शब्द हैं, आपके जो अल्फाज हैं बहुत ही क्लियर हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। नो डाउट आप इतना अच्छा बोल रहे हैं। और सर देखिए, बातचीत तो चलती रहेगी, लेकिन थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को और मुझे भी जानने की क्यूरियोसिटी हो रही है कि आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं, और आप वैसे प्रोफेशनली क्या करते हैं अपनी रियल लाइफ में, थोड़ा इसके बारे में बताएं।
1: जी प्रोफेशनली मैं ज्वेलर्स परिवार से ताल्लुक रखता हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: और बेसिकली मैं रामपुर जनपद के टांडा का निवासी हूँ।
0: अच्छा अच्छा।
1: पिछले 2011 से हम लोग यहाँ पर मुरादाबाद शिफ्ट हुए हैं, पीतल नगरी।
0: अरे वाह।
1: और सही कहूँ तो जो मेरी साहित्यिक शुरुआत, साहित्यिक जन्म हुआ वो 2006 से मुरादाबाद से ही प्रारंभ हुआ। दादा महेश्वर तिवारी जी,
0: जी, जी।
1: जैसी अजीम नव गीत की जो हस्ताक्षर,
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
1: उनके बीच उनसे मिलना जो हमारे सौभाग्य की बात थी।
0: अरे वाह
1: जी। कृष्ण कुमार नाथ साहब, आदरणीय योगेंद्र वर्मा व्योम जी, मंसूर उस्मानी साहब, इन सब से जब मिलना हुआ, इनको सुनना हुआ, तो इनको सुनते सुनते धीरे धीरे वहीं से वो अनवरत यात्रा शुरू हुई है। तो वर्तमान में मैं मीडिया से भी जुड़ा हुआ हूँ।
0: अच्छा।
1: और जेंडर्स का तो हमारा वर्क है, तो वो चलता रहता है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जैसे ही वर्मा नाम दिमाग में आता है, वो ज्वेलर्स तो ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है, नो डाउट। वेल, खैर कह सकते हैं कि एक
1: जी,
0: अपना घर का
1: ही हाँ, हाँ, है।
0: वही वही वही वही, मतलब एक होता है ना कि आप शुरू से आप चलता आ रहा है एक।
1: जी जी, हमारा दादालाई जो कारोबार है वो यही है।
0: वो यही है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा सर, और ऐसी खूबसूरत बातें और खूबसूरत जो ये सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद जल्दी से लौट कर आते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। आरजे आनंद के साथ हैं आप।

0: और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और हमलों की साजिश नाकाम की। एक रिपोर्ट।
1: ये आतंकी गतिविधियां स्वतंत्रता दिवस के आसपास की जानी थी। इस ऑपरेशन के तहत 14 राज्यों में 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51 और पंजाब से 44 लोग शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान आईएसआई समर्थित इस आतंकी संगठन के पास से आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे बरामद किए गए। शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान में स्थित और आईएसआई समर्थित एक आतंकी सिंडिकेट है जो भारत में ग्रेनेड, आईईडी और पेट्रोल बम हमलों और टारगेटेड हत्याओं से जुड़ा है। अब तक इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई है और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। अमन यादव के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलीन ब्लैक स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है।
2: भारत में पिछले 12 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना बढ़ी है, अब 13 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स 11 गुना बढ़कर 4 लाख करोड़ से ज्यादा के इलेक्ट से होने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, उसके बाद में मॉड्यूल्स और उसके बाद में कंपोनेंट्स और आगे डीप जाने पर कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले मटेरियल्स और कैपिटल इक्विपमेंट, जिन मशीनों से इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चर होती है।
0: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। एक रिपोर्ट।
3: श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था

0: व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति की सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारी विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा है कि ब्रिक्स संगठन पिछले 2 दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है। आज नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य समूह और संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान में मध्य करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे वर्ष 2002 और 2003 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 1 दशक में भारत की विदेश नीति किस प्रकार विकसित हुई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान किए। पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण, पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने नियमों को समाप्त करने और नए नियम बनाने, प्रशासन में तकनीकी बदलाव तथा लेखा व्यवस्था जैसी विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार बदलती प्रशासनिक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार पेंशन प्रक्रिया को लगातार सरल बना रही है। उन्होंने बताया कि पेंशन फॉर्म से अनावश्यक प्रावधान हटाए गए हैं और जटिल प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है।
3: भारत सरकार में सेवानिवृत्त या पेंशनर्स की संख्या जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वर्किंग एम्प्लॉय उससे कहीं अधिक है। रिटायरमेंट हैपनिंग एट द एज ऑफ 60 व्हेन द लाइफ स्पैन हैज गॉन ऑलमोस्ट अप टू 70 सो मोस्ट ऑफ दीज रिटायरिंग कुलीग्स आर इन द प्राइम ऑफ देयर हेल्थ, ऑल्सो प्राइम ऑफ देयर एक्सपर्टाइज, प्राइम ऑफ देयर एक्सपीरियंस और इसलिए उनको इस तरह से छुट्टी पे न जाने दिया जाए। उनकी सेवाएं, उनका योगदान किसी न किसी तरह से राष्ट्र निर्माण के कार्य आए और किस प्रकार आ सकता है ये उनके साथ चर्चा करने का माध्यम बने।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने फर्जी जमानतदारों को लेकर चिंताओं के बीच मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम से संबंधित मामलों में आरोपी विदेशी नागरिकों के लिए जमानत की शर्तें कठोर करने का आदेश दिया है। इस संबंध में कई निर्देश जारी करते हुए न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि जमानत पर रिहा किए गए विदेशी नागरिकों को अपने पासपोर्ट संबंधित न्यायालयों में जमा करने होंगे और वे पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा नहीं कर सकेंगे। देश की 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी के लिए बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.1% रह गई, जो इस वर्ष जून में 5.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मासिक श्रम बल और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जारी किए हैं। ग्रामीण बेरोजगारी दर पिछले महीने घटकर 4.5% रह गई, जबकि जून में यह 5% थी। हर घर तिरंगा अभियान का आज समापन हो गया। हर घर तिरंगा अभियान के पांचवें वर्ष में लाखों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने, तिरंगा यात्राओं में शामिल होने और वंदे मातरम गाने के लिए एकजुट हुए। 2022 में शुरू हुआ यह अभियान अब देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। एक रिपोर्ट।
4: इस वर्ष का अभियान भारत के राष्ट्र गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर केंद्रित था, जिसमें देशभक्ति के अनोखे जश्न के तौर पर राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गीत को एक साथ लाया गया। देश भर में तिरंगा यात्राओं, साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियां, सांस्कृतिक जुलूसों, स्कूल कॉलेज के कार्यक्रमों और सामुदायिक आयोजनों में हर घर तिरंगा की भावना साफ दिखी। पिछले 5 वर्षों में हर घर तिरंगा लोगों की भागीदारी और गर्व का एक देशव्यापी प्रतीक बन गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित खतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से खतर में भारतीय समुदाय के लोग खतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 281 अंक लुढ़क कर 77,728 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी में 78 अंक की गिरावट देखी गई और ये 24,288 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 18 पैसे कमजोर होकर 95.61 रुपए पर बंद हुआ।
1: और अब कुछ खेल खबरें। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगभग 42,000 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है।
5: क्यों सर, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, जाजपुर और केंद्रापड़ा में बाढ़ का असर हुआ है, जिससे 1,304 गांव के लगभग 8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बैतरणी, ब्राह्मणी और सालंदी नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को भोजन, पीने का पानी और बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक और जाजपुर जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। राज्य के जल संसाधन विभाग का कहना है कि यह स्थिति अगले 4 से 5 दिनों तक बनी रह सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने झारखंड में कल के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9.

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

नमस्कार दोस्तों, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल और दिल से एक बहुत प्यारा सा सलाम। पूरी उम्मीद है आप लोग सब मस्त होंगे इस समय। आज ऑफिस करके निकले होंगे घर से, तो लग रहा होगा यार अभी तक तो चल रही थी छुट्टियां, अब कैसा ये मेरा आराम खत्म हो गया। आप करेंगे हम दिल से दिल की बात अखिल संग, और आज का शो थोड़ा सा अलग करेंगे क्योंकि आज ना कोई भारी भरकम ज्ञान की बात होगी और ना जिंदगी लेक्चर। आप दिल की चलेंगे भैया टीवी कौन और कुछ ऐसी बातें जो मुस्कुराने पे मजबूर आदत बना दी। 8378968968 और करते हैं खूब सारी दिल की बातें। दिल का कौन सा गाना जो है आपके कोने में बैठा हुआ है, जगह बना नहीं पा रहा है, मगर आज उसे गा के भी सुना है, तो कॉल करें 9837896896 पे और मैसेज भी कर सकते हैं। किसी को डेडिकेट भी करना है तो बोल नहीं पा रहे हैं तो साहब मैसेज करके ही बता दीजिए, हम नाम लेकर डेडिकेट कर देंगे। तो इस गाने के बाद आते हैं और खूब सारी मस्ती करते हैं, दिल से दिल की बात करते हैं और आपकी कॉल का भी इंतज़ार करते हैं।

0: एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। और मुस्कुराने की वजह तलाश मत करना, बस मुस्कुरा दिया करो। कभी कभी आपकी एक मुस्कान किसी दूसरे की पूरी दुनिया बदल देती है। तो साहब मुस्कुराते रहेंगे तो सामने वाला भी कभी कभी मुस्कुरा ही देगा जी। जब ये मुस्कुराना छोड़ नहीं रहा है तो हम क्यों अपना रूठापन अपने साथ पकड़ के रखें, मुस्कुरा ही देंगे। खूब सारी बातें जो होती हैं ना वो ऐसी होती हैं। अभी हमारे पास हमारे एक लिसनर हैं नरेंद्र जी का कॉल आया था। नेटवर्क हो जाता है कभी इधर कभी उधर, मगर आप मत होना, एफएम पकड़ के रखना अपने साथ। गायब हो गए हैं वो, मगर उन्होंने अपनी फरमाइश बता दी थी तो उनकी फरमाइश हम करेंगे अभी प्ले और करेंगे खूब सारी मस्ती भात। अगर आज आप गाड़ी में बैठे हो ना तो बगल वाले पार्टनर से ज़रूर ये पूछना कि भाई ये बता मेरा गाना प्ले होगा या नहीं होगा, आज गैस करो। और क्या पता वो उस एक घंटे में वो आपका पसंद का गाना प्ले हो जाए, जो इमेजिन करते हैं ना आप, कभी कभी हो जाता है साहब। अगर आपका नहीं हुआ तो क्या पता आपके पार्टनर का प्ले हो जाएगा, मगर कोई नहीं, कोई ना कोई तो गाना ज़रूर बचेगा। हमारे पास एक शायरी आई है बहुत प्यारी सी, और उस शायरी की बात ही दिल से शुरू हो रही है। दिल की बात दिल में रखना भी कमाल है। अर्जुन जी हैं आशियाना से। दिल की बात दिल में रखना भी कमाल है, चेहरे पे मुस्कान और अंदर सवाल है। कभी किसी अपने से कह दिया करो हाले दिल, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और रिश्ते बेमिसाल है। क्या बात है अर्जुन जी, आपने बिल्कुल एकदम सटीक बात भेजी है। आशियाना कॉलोनी में रहते हैं तो क्या पता वहाँ रिमझिम हो रही हो, बारिश अभी हो रही थी कभी इधर कभी उधर, तो ये तो फसाना चलता ही रहेगा। तो चलिए अपने कॉलर से बात करते हैं, वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है आपका? यशमित जी, क्या करते हैं आप? आप फोर्थ क्लास में पढ़ाई करते हैं?
1: हाँ।
0: तो बारिश हो रही है नहीं हो रही है आपकी तरफ?
1: हमारी तरफ तो भी सूखा पड़ा है।
0: आपकी तरफ सूखा पड़ा है?
1: हाँ।
0: तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है?
1: मैथ।
0: मैथ है आपका फेवरेट सब्जेक्ट?
1: हाँ।
0: तो 12th की टेबल सुना देंगे आज?
1: हाँ।
0: चलिए कोई बात नहीं, अभी मत सुनाओ 12th की टेबल, क्योंकि अभी तो खाने पीने का टाइम हो रहा है। 12th की टेबल सुना के क्या करोगे? गाना हाँ। बताओ कौन सा सुनना चाहते हो आप?
1: ऑल इज वेल।
0: ऑल इज वेल।
1: हाँ।
0: तो डांस करोगे उस गाने पे आप?
1: हाँ।
0: अच्छा ये बताओ आपकी फेवरेट टीचर कौन है?
1: क्या?
0: आपकी फेवरेट टीचर का नाम बताइए आप। पूजा अग्रवाल मैम आपकी फेवरेट टीचर हैं?
1: हाँ।
0: तो चलिए ये गाना आज उन्हीं को हम डेडिकेट कर देते हैं, ठीक है?
1: हाँ ठीक है, थैंक यू।
0: ओके बाय बाय। तो ये थे यशमित जी जो कह रहे हैं कि मुझे ऑल इज़ वेल का टाइटल ट्रैक बहुत पसंद है। तो मैंने कहा क्यों नहीं साहब, आज आप स्टूडेंट होके अपने टीचर को ये गाना डेडिकेट कर दीजिए। तो देखिए कितने खुशी खुशी कह रहे हैं थैंक यू। तो चलिए ऑल इज़ वेल सुन के आते हैं, बहुत ही बढ़िया गाना है। मन भी कहते हैं ना जब अशांत होता है तो एकदम शांत हो जाता है ये गाना सुन के। तो आप भी कॉल मिलाइए 9837896896। जब एक छोटा सा बच्चा शुरुआत कर सकता है साहब, आपके पास तो भयंकर आईफोन है हाथ में, तो क्यों नहीं कॉल तो मिल ही सकती है। करते हैं इस ऑल इज़ वेल के बाद खूब सारी दिल की बातें।

0: ये जो गाना आप सुन रहे हैं ना, ये गाना देवानंद साहब और हेमा मालिनी के ऊपर फिल्माया गया था। मूवी का नाम था जॉनी मेरा नाम, और इतना बढ़िया गाना रहा है कि शायद ही कोई इसे सुनते समय गुनगुनाया नहीं। बहुत ही बढ़िया। कल्याण जी आनंद जी म्यूजिक डायरेक्टर थे उस समय, और कहते हैं ना कि वन ऑफ दी ओल्ड इज गोल्ड, तो ओल्ड इज गोल्ड में ये गाना तो हमेशा गोल्ड ही रहेगा साहब। हमारे पास हमारे एक लिसनर हमसे अभी जुड़े हैं, चलिए उनसे भी बातें करते हैं। मगर एक बात आपने कभी नोटिस करिए दोस्तों, कि हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा झूठ कौन बोलता है? हम खुद ही बोलते हैं। सुबह अलार्म बज जाता है, अलार्म कहता है उठ जाओ, हम कहते हैं नहीं साहब 5 मिनट और, 5 मिनट बाद फिर हम कहते हैं अरे साहब फिर अलार्म बजता है, कहता है फिर स्नूज लगा दिया, नहीं साहब 5 मिनट और, फिर हम कहते हैं जी आज तो छुट्टी ही ले लेते हैं। बच्चों का भी रहता है, वो ये इंतज़ार में रहते हैं कि भैया अगर बादल हो रहे हैं तो बरस जाओ, कम से कम हमारी छुट्टी तो कंफर्म हो जाए। या ऑफिस वाले फ़ोन करके पूछ लेते हैं भाई साहब हो कहाँ, आपका तो अभी तक पता ही नहीं है, कितनी देर लेट आओगे, कोई तो फोटो अपडेट कर दो। मगर होता है ना साहब, थोड़ी तो मौज मस्ती ऐसी चलती है। चलिए अपने नए लिसनर से बात करते हैं, पूछते हैं क्या कह रहे हैं वो। हेलो दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है सर आपका?
1: जी नमस्ते, मेरा नाम नई मलिक है, मैं सेंट्रल कश्मीर से बात कर रहा हूँ, जिला बड़गाम में हमारे गांव पड़ते हैं सर।
0: तो सर इस समय कैसे कश्मीर के ठंड वंड कैसी हो रही है? इस समय बारिश हो रही है, क्या हो रहा है?
1: नहीं गर्मी है, बहुत अच्छी गर्मी है, और पिछले 5-7 दिन से यहाँ पर बहुत अच्छी गर्मी है, और सुबह सवेरे जब हम निकलते हैं तो सूरज भी चमक बहुत अच्छा लगता है, और सही बता देने का हमारे जो इसमें किसी किस्म की सेब है हम बता देने का काम करें।
0: बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाल लाल सेब आ रहे हैं, पीले पीले सेब आ रहे हैं आपके पास?
1: रेड सेब आ रहे हैं, बहुत ही मीठा, उसको हाइड्रेंस कहते हैं, वो सबसे पहले ही तैयार हो जाते हैं, वही उतारने का काम करें। जैसे सितंबर का महीना लगेगा तो फिर हम जो बाकी किस्म होती है सेब के, चाहे डिक्शन होते हैं, अमेरिकन होते हैं, या महाराजी होती है, या और किस्म होते हैं, हम उसको उतारने का काम करेंगे सितंबर के महीने में।
0: सही कह रहे हैं। तो सेब में भी ऐसा कोई होता है कि किसी की हाइट कम होती है, किसी की हाइट ज्यादा होती है?
1: बहुत सारी किस्म होती है सर, अलग अलग किस्म होती है। एक सेब सबसे छोटा होता है, और सबसे छोटा जितने आपके पास उंगली है ना, उंगली का आप आधा हिस्सा कीजिए, इतना छोटा भी सेब होता है, लेकिन इसकी कीमत सबसे ज्यादा होता है, वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते है।
0: तो सेब की कोई सब्जी बनती है कालिम साहब? नहीं
1: बनती है, हम कश्मीर के अंदर बनाते हैं, एक हलवा हम बनाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कौन कौन सा आइटम हमें इस्तेमाल करना होता है, सेब हम इस्तेमाल करते हैं।
0: आपके यहाँ तो सब बच्चे ए फॉर एप्पल ही बोलते होंगे, ए फॉर एरोप्लेन तो कोई बोलता ही नहीं होगा फिर।
1: सबसे पहले जो फर्स्ट जमा जिसकी सबसे पहले यही सब्जेक्ट आता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट।
0: सही है साहब, सही है, बिल्कुल बढ़िया है। तो आप भी सेब का आनंद लीजिए खूब, और खूब कहते हैं ना इस समय मौसम जो है, आप खुद ही बता रहे हैं इतना खुशनुमा मौसम हुआ पड़ा है।
1: जी सर बिल्कुल, बहुत ही खुशगवार मौसम है सर, क्योंकि बारिश होती है, अगर हम कश्मीर में रहते हैं तो कश्मीर के अंदर अंदर तो बहुत तरह मौसम होता है, कहते हैं कि दुनिया के अंदर 4 मौसम होते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है हमारे कश्मीर के अंदर 5-6 मौसम होते हैं।
0: बिल्कुल सही। तो आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे जो आपको मौसम में यादगार रहे?
1: फिल्म तुम बिन का नगमा, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठ के बिठाई हूँ, वही नगमा सुनना चाहता।
0: बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया सर, जरूर आपकी छोटी छोटी रातें लंबी करते हैं आज इस गाने के साथ। धन्यवाद मलिक साहब।
1: थैंक यू।
0: तो दोस्तों हमारे साथ मलिक साहब जुड़े थे कश्मीर से। कश्मीर में ना इस समय कह रहे हैं बिल्कुल ठंड और एकदम मस्त वाला मौसम हो रहा है, और सेब की ये बागानी करते हैं, और सेब इनके पास खूब सारा है, छोटा मोटा बड़ा सब तरह का सेब इनके पास मिल जाता है। दोस्तों ज़िंदगी में ना दो चीज़ों से बिल्कुल भी बहस मत करना कभी, एक वाईफाई से और दूसरा अपनी वाइफ से, दोनों कब डिसकनेक्ट हो जाए ना पता ही नहीं चलता। तो बिल्कुल मज़े लेते रहें, खूब मुस्कुराते रहें, अगर नहीं भी आ रही हो ना हंसी तो सामने वाले को तड़पाते रहें, मतलब हंसा हंसा के। चलिए इस गाने को सुनते हैं और आते हैं फिर वापस। आप भी करिए कॉल 9837896896 पे, या फिर छोड़ दीजिए 1100 मैसेज, किसी को कोई डेडिकेट करना हो कुछ भी हो तो आज कर लेंगे उसे सरप्राइज कॉल, कोई बात नहीं साहब, कभी कभी ऐसे सरप्राइज होने चाहिए, ऐसी फरमाइशें चलती रहनी चाहिए। तो अपनी मस्ती करें, खूब हंसते रहें और ये गाना सुने, उसके बाद करते हैं खूब सारा धमाल आपके साथ ओनली ऑन मुरादाबाद FM 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। डूबना तो है सर प्यार में, मगर इतना भी मत डूबना कि बाहर ना आ पाए। थोड़ा सा तो तैरना जानना, क्योंकि भाई साहब अगर एक बार डूब गए ना इस प्यार में तो बड़ा मुश्किल है साहब। फिर तो 3-4 गोताखोरों को भेजना पड़ेगा आपको भाल लेके आने के लिए। तो कोशिश करें कि जब तैरना जानते हो तभी डूबें, वरना किनारे किनारे बहते रहें साहब। प्यार में तो किनारे किनारे ही बहोगे ना तो भी उतना मज़ा आएगा जितना डूबने में नहीं आएगा। तो इसलिए खूब मस्ती करें और तैरना सीख लें साहब। तो अब खोलते हैं थोड़ा सा अपना फरमाइश वाला बॉक्स, देखते हैं आज किस किस के दिल की आवाज़ रेडियो तक पहुंची है। जी पहुंची तो है, दूर दूर तक पहुंची है। एक हैं हमारे अज्जुल अंसारी जी, एयर और टेल, उनका एयरटेल से बोल रहे हैं। या सुनने में ना देखने में ऐसा लग रहा है एयर अलग है और तेल अलग लग रहा है। तो भाई साहब सही से लिखें और एयरटेल को जोड़ के रख लें, एयरटेल को अलग अलग ना करें भाई साहब, वरना एयर और टेल अलग अलग हो जाएगा। करूला पीर के बाजार से हैं, फिल्म तेरे नाम का गाना सुनने का उनका मन कर रहा है। तो ज़रूर साहब तेरे नाम भी सुनाएंगे आप भी, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं प्यार में डूबे हैं। अगर डूबे हैं तो तेरे नाम सुन के आप पार हो जाएंगे। हमारे पास आए हैं एक और मैसेज, सर जी सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं चल रहे हैं बहुत बढ़िया। सलमान अख्तर जी, सभी दोस्तों को नमस्कार, जिला बिजनौर यूपी 20। बहुत ही बढ़िया साहब, बिजनौर तक हमारी बातें पहुंच रही हैं। क्या वहां पे बारिश हो रही है? अगर हो रही है तो ज़रूर हमें बताएं, नहीं हो रही है तो भी बता दीजिए सलमान साहब। खूब मस्त वाले गाने सुनाए जाएंगे आपको, खूब प्यार भरे वाले। चलिए अपने नए लिसनर से बात करते हैं, देखिए क्या कहते हैं वो आज। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है आपका?
1: सर जो आप कह रहे हैं, हम तो मुरादाबाद यूपी से बोल रहे हैं सर।
0: हाँ तो हम तो सर आपको जेठालाल बोलेंगे, जो आपके दोस्त आपको बोलते हैं। क्या कर रहे हैं आप इस समय?
1: क्या बात है। अरे सर हम तो आपके गाने सुन रहे हैं, और क्या नाम है बस आप पूछो मत। आपने तो रेडियो में हाहाकार मचा रखा है
0: सर। हम
1: चांद में तो 16 चांद लग गए
0: सर, 16 चांद और 18 चांद 20 चांद तो हम दोनों सब ढूंढ के ले आएंगे। अभी आप बताइए कौन सी शायरी सुना रहे हैं? कुछ सुनाएंगे? आज तड़कता भड़कता बारिश हुई है, खूब मस्ती वाला मौसम चल रहा है। गाड़ी में दो तीन लोग जो बैठ के अपनी आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें भी कुछ अच्छी से सुना दीजिए शायरी बढ़िया सी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तेजी से भी क्या खूब, तेजी से भी उसकी क्या खूब अदा थी, तेजी से भी उसकी क्या खूब अदा थी, नमक भी अदा किया जख्मों पर
0: छिड़क कर। क्या बात है साहब, क्या बात है, आपने तो बहुत ही बढ़िया बात कह दी, शेर बोल दिया आपने साहब, इतना अच्छा शेर। तो कौन सा आज आप गाना सुनना चाहेंगे?
1: मेरा दर्द कोई नहीं समझता, आप भी समझता
0: सर। आपका दर्द तो सर पता नहीं कैसे समझा जाएगा, इसका भी बता दीजिए। ये सरकार भी किसी का दर्द नहीं समझ रही और आप भी किसी का दर्द नहीं समझ रहे।
1: अरे हमारा दर्द तो आप समझ रहे हैं ना सर।
0: हाँ साहब हम तो समझ रहे हैं आपका दर्द,
1: आप ही समझते हैं, आप फायर ब्रिगेड हैं हमारे।
0: हाँ सर हमें तो आप फायर ब्रिगेड बना दें आप, या आप हमें एम्बुलेंस बना दें आप, तो कुछ जो चाहें वो बना दें आप हमें।
1: आप हमारी बात का मतलब नहीं समझ रहे सर।
0: सर हम
1: सब तो सोच रहे हैं भगवान आपको इतना ऊपर कि आप हमें देख ही नहीं पाए, आपकी कार करके बिल्डिंग बन जाए, हमें नहीं देखें।
0: सही है सर, हम इतना ऊपर चले जाएं कि फ्लाइट पकड़ के दो ही निकल जाएं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बढ़िया। नहीं साहब हम आपको अभी नहीं भूलेंगे, तब तो बात की बात है।
1: अरे सब सब कहने की बातें हैं।
0: चलिए साहब हमें बहुत बहुत अच्छा लगा जेठालाल जी, जब भी आपकी आवाज आ जाती है कुछ ना कुछ नया आ जाता है सुनने को।
1: सोनू निगम की आवाज है
0: सर। सर अब आपको सोनू निगम की सुनाएंगे सर, बेवफा सनम से मेरा दर्द तुम ना समझा करो। धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े हैं जेठालाल जी, जिनका अभी कॉल अभी डिस्कनेक्ट किया। वो कह रहे हैं मेरा दर्द तुम नहीं समझ सके। हाँ साहब दर्द जो है ना बहुत ही मुश्किल होता है समझने के लिए, अगल बगल वाले अगर आपका हमदर्द समझ जाएं तो उससे अच्छी बात ही क्या है। हम पे एक मैसेज आया, अखिल सर जी मेरे बेस्ट फ्रेंड के लिए एक गाना बजा दीजिएगा। साहब बजा देंगे, गाना भी बजा देंगे, गाना प्ले कर देंगे। गाना बजाना और गाना प्ले करने में फ़र्क है मैं बताऊंगा इस ब्रेक के बाद, म्यूजिकल ब्रेक के बाद। 9837896896 पे आप हमें करें कॉल या करें मैसेज, आपकी फरमाइश जरूर होगी पूरी। दोस्ती वो नहीं जो रोज बात करे, दोस्ती वो है जो सालों बाद मिले और बात वहीं से शुरू हो जाए जहां छोड़ी थी। तो साहब दोस्ती बहुत कीमती है, इसे ना पकड़ के रखना। अगल बगल वाला जो दोस्त आपका बैठा है ना गाड़ी में, उसे जाने मत देना, कहना भाई साहब आज तो दरवाजा तभी खुलेगा जब मैं चाहूंगा। तो चलिए तब तक सुनते हैं ये गाना और उसके बाद मिलते हैं आपसे 9837896896 पे।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: mi master, bate nel ballo faster.
1: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पे। अभी जो आप गाना सुन रहे थे ना, चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम, तो भाई साहब ये घर जाने से पहले ना बिल्कुल बढ़िया गाना है, अपनी वाइफ को डेडिकेट कर दूं, जिससे कि घर जाके थोड़ी कम डांट पिटे और ऐसा ना लगे कि भाई साहब आज आप फिर खाली हाथ आ गए। कोई बात नहीं, कभी कभी तो मैनेज करना पड़ता है। तो दोस्तों कहते हैं ना कि खूब सारी मस्ती हमेशा चलती रहनी चाहिए, मस्ती भरी बातें होती रहनी चाहिए। तो सही है, कहते हैं कि होती रहनी चाहिए, मगर ज़्यादा मस्ती कर देते हैं ना तो कभी कभी डांट भी पड़ जाती है। आपकी कॉल आए या नहीं आए, मगर हमें पूरी उम्मीद है, पूरा पता है कि कहीं ना कहीं आप अंदर कुछ ना कुछ तो किसी के लिए गुनगुना रहे हैं। एक डॉक्टर ने कहा कि भाई साहब हंसना अच्छी बात है, लेकिन मेरी कॉमेडी सुनकर हंसना आपकी जिम्मेदारी, ये डॉक्टर भी नहीं तो थोड़ा सा मुस्कुराए, मगर ये ना कहें कि हाँ भैया क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। पत्नी कहती है आप मुझसे कितना प्यार करते हो, पति कहता है इतना ही, इतना कि तुम्हारे लिए मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा। पत्नी कहती है अच्छा भाई साहब, तो आज बाहर से ना पहले धनिया लेके आ जाओ, चांद तारे तो मैं तुम्हारे बाद में देख लूँगी। पति कहता मैंने प्यार की बात की थी भाई साहब, मजदूरी की नहीं, ये मजदूरी में आता है। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है भाई तू जिम क्यों नहीं जा रहा, तो दूसरा कहता है मैं तो रोज जाता हूँ, तू देखता नहीं है। वो कह रहा है भाई साहब कब जाता है तू, तो कहता है भाई साहब गूगल मैप पर लोकेशन देख के पहुँच जाता हूँ मैं। हाँ साहब ऐसे सारे गूगल मैप पर लोकेशन देख के काम होने लगे तो हो गया। चलिए लिसनर से बात करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं वो। हेलो दिल से दिल तक अखिल संघ, क्या नाम है आपका? सर गुड्डू पंडित। तो अरे साहब ये तो आपने बहुत भारी नाम बता दिया हमें गुड्डू जी, क्या करते हैं आप?
2: पीतल मजदूरी।
1: पीतल मजदूरी करते हैं, तो आज आपने किसको चमका दिया?
2: आज काम चमकाने का है साहब।
1: तभी तो कहते हैं साहब आज आपने कितनों को चमका दिया?
2: भतेरों को चमका दिया।
1: भतेरों को चमका दिया आपने, तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे अब आप? हाँ
2: गाना सुनना, लीडर फिल्म का।
1: लीडर फिल्म का
2: ये
1: क्या है गाने के बोल?
2: अपनी आजादी को हम मिटा सकते नहीं।
1: अपनी आजादी को आप मिटा नहीं सकते, आपकी शादी हो गई है
2: ये,
1: तो आपकी आजादी मिट गई नहीं मिटी?
2: आजादी तो आजादी है
1: वही, आपको आजादी मिली हुई है भाई साहब? आप ये बहुत दिल पे हाथ रख के बोल रहे हैं, मुझे लगता है ये आवाज थोड़ी दब सी रही थी।
2: नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है।
1: अपनी आजादी को हम हर गिज मिटा सकते नहीं, ये गाना तो आप रोज ही गाते होंगे
2: नहीं
1: साहब? गुड्डू जी तो अभी आपने कौन सा गाना सुनना चाहा?
2: ये वाला सुनना सुनना।
1: कौन सा?
2: अपनी आजादी को हम
1: सकते नहीं। अच्छा यही गाना सुनना है आपको?
2: जी
1: ठीक है साहब, जरूर आपको ये गाना सुनाते हैं। आप किसे डेडिकेट करना चाहते हैं?
2: नहीं,
1: किसी को तो बोल दीजिए साहब, अब तो आपने फोन पे बात कर ही लिए तो आप डेडिकेट कर ही दीजिए, कोई बात नहीं, डरने वाली क्या बात है इसमें?
2: डरने वाली क्या बात है,
1: चलिए साहब आज आपका जब निकल गया तो फिर जरूर इसे हम करते हैं। ठीक है धन्यवाद जी। तो श्रोता हमारे साथ जुड़े थे गुड्डू जी, जो शादीशुदा हैं और गाना भी उन्होंने ऐसे ही सुना है, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते हैं नहीं, तो आप समझ सकते हैं कितने मन से निकला है गाना। बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू जी, आप आज कनेक्ट हुए, भले ही आज़ादी के बाद हुए मगर हुए तो सही। तो दोस्तों करते हैं इस गाने के बाद एक थोड़ी सी गुफ्तगु 9837896896 पे। कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे मिल जाते हैं जो यादों में हमेशा के लिए खिल जाते हैं, मुलाकात भले कम हो उनसे लेकिन दिल से कभी दूर नहीं जाते हैं। तो ऐसे ही हैं आप भी, और रिश्ते संभाल के रखना दोस्तों, रिश्ते संभाल के रखना दोस्तों, क्योंकि तस्वीरें तो हर कोई संभाल कर रखता है, लेकिन तस्वीर में साथ खड़ा इंसान हर किसी के पास नहीं होता है। तो साहब उस इंसान को बहुत ध्यान से अपने पास संजो के रखना है और प्यारे से नगमे और गीतों के साथ उसके साथ गुनगुनाते रहना है, या हमें फरमाइश भेजते रहना। 9837896896 पे आप भेजिए अपनी मनपसंद शायरी या मनपसंद गाने की फरमाइश। पानी ना हो तो नदी किस काम की, आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, अगर हम इस वतन के नाम काम ना आए तो ये जिंदगी किस काम की। क्या बात है साहब, कितना बढ़िया मैसेज किया है अमित यादव जी ने। सबको रेफरेंस दिया है ऋतु यादव जी, निरांशी यादव जी, शंकर लाल यादव जी, लाइन पर प्रकाश नगर चौराहे से, हर हर महादेव। तो ज़रूर आपने इतना बढ़िया मैसेज किया है तो उसका रिक्वेस्ट आपका तो पूरा किया जाएगा। पहले उससे पहले हम सुनते हैं गुड्डू जी की रिक्वेस्ट और करते हैं खूब सारी दिल की बात।

एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। अब घड़ियां पहुंच गई हैं टिक टिक टिक टिक टिक टिक करके 10:06 पे। थोड़ा सा हो गया टाइम, मगर कोई बात नहीं, जब सब अपने होते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो ही जाता है। आज जो है ना, थोड़ा सा जाने से पहले करते हैं बात मोबाइल के ऊपर। जो ये अपना मोबाइल है ना, आज इसे ले लेते हैं कटघरे में। मोबाइल जो होता है ना, रात में कहता है बस एक रील और फिर सुबह के 2 कम बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। एक और आरोप है हमारे मोबाइल पर कि कहते हैं साहब आज फ़ोन कम चलाएंगे और 10 मिनट बाद अगर देखा जाए तो हमारा स्क्रीन टाइम 6:42, कहें तो 7 घंटे तक, पता ही नहीं चलता साहब कहाँ देखते रहे, स्क्रीन टाइम ऐसे ही बदल जाता है। और फिर खुद से कहते हैं आज तो बहुत काम था, आज तो मतलब कहते हैं ना थक गए भाई साहब, इतना काम होता हमारे साथ। मगर सबसे बड़ा क्या काम होता है, फ़ोन को चार्जिंग पे लगाते हैं। फ़ोन को तो चार्जिंग पे लगा दिया साहब, उसकी तो हो गई बैटरी 100% और अपने हो गए भाई साहब 20%। तो फ़ोन जो है ना, बिल्कुल एकदम आपका ना सटीक रहता है आपके पास, तो थोड़ा सा उस पर रखे कंट्रोल। कहने का मतलब यही है साहब, आप हो समझदार, जितना यूज़ करना उतना ही यूज़ करना है साहब। ज़्यादा ये ना पता चले कि मोबाइल को हम यूज़ कर रहे हैं या मोबाइल हमें यूज़ कर रहा है, तो ये तो आप ही को पकड़ना पड़ेगा। चाहे कहीं भी हो, आप गाड़ी में हो या गाड़ी के बाहर हो, जब मोबाइल हाथ में होता है ना तो बस उसको बंद ही रखना है, बहुत ज़रूरी होगा तभी उसके साथ काम करना है। शायद ही कोई एक ऐसा दिन होता होगा जैसे हम संडे ऑफ़ रखते हैं, तो मोबाइल डे भी ऑफ होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो कौन सा दिन होना चाहिए, आप मैसेज करके बताइए। आपका भी अपना एक दिन हो सकता है, चाहे मंडे हो, चाहे सैटरडे हो, चाहे संडे हो। अगर आपका वो दिन रहा जिस दिन आपको मोबाइल स्विच ऑफ करना है, तो हमें बताएं कि कौन सा वो दिन रहेगा और क्यों रहेगा। थोड़ी सी तो बातें अब आपको बतानी ही पड़ेंगी। चलने से पहले कुछ शायरी आपके साथ हो जाए। चेहरे पे मुस्कान रखो, दिल में उम्मीद रखो, कल क्या होगा छोड़ दो, आज को खूबसूरत रखो। और याद रखिए, ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन उसे खूबसूरत बनाया जा सकता है, थोड़ी हंसी से, थोड़े प्यार से और बहुत सारी उम्मीदों से। तो दोस्तों, आज का ये खूबसूरत सफ़र, आप कहते हैं ना अपने बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे है, लेकिन आपकी फरमाइशें और आपकी बातें और आपकी मुस्कान, ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होगा। हम फिर मिलेंगे आपको कल ठीक 9 बजे, जहाँ होगी खूब सारी गुफ्तगू, आपकी फरमाइशें, आपकी दिल की भी बातें। हंसते रहो तो ज़िंदगी आसान लगती है, मुस्कुराते रहो तो हर शाम खास लगती है, दिल से दिल तक यूं ही जुड़े रहना, आपकी आवाज़ से ही तो मेरी पहचान लगती है। तो मैं हूं आपका दोस्त अखिल और आप सुन रहे थे दिल से दिल तक अखिल संग, जहां बात सिर्फ आवाज़ तक नहीं, सीधे दिल तक जाती है साहब। तो चलते चलते प्यारा सा गाना नगमा आप लोगों के लिए अभी डेडिकेट करते हैं, और मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने लोगों से प्यार करते रहिए। गुड नाइट, गुड म्यूज़िक और दिल से ढेर सारा प्यार। बाय बाय।

0: अभी मैं तुझे कुछ नंबर्स एसएमएस कर रहा हूँ, पता लगा है किनके हैं और उन्हें 24 घंटे मॉनिटर करवा।
1: अरे शिवम, यहाँ पर वैसे ही 100 काम है, ये नंबर्स ढूंढना इतना जरूरी है?
0: सवाल पूछे बिना तुझसे कोई काम होगा?
1: ओके ओके, चल ठीक है, प्लीज।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा,

0: चलो चले शिव के धाम, कांधों पर कावड़ लेकर महादेव का नाम।
1: उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
0: कांवड़ियों के लिए स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। यात्रा मार्गों की पवित्रता सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार।
1: कांवड़ शिविरों में लाइट, पेयजल, शौचालय, बिजली, साफ सफाई तथा सात्विक भोजन की समुचित व्यवस्था है।
0: समरसता का पर्व मनाएं, कांवड़ यात्रा को भव्य बनाएं।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: जून 15 अगस्त को 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य है। तो आइए हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।